जिसे भी देखेंगे वो सब आत्माएं हैं, सभी परम धाम से आई हैं और हमें सबको ही परम धाम ले जाना है। ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ, अब ये देह और देह का सब कुछ, धन संपत्ति, मकान, दुकान, ज्वेलरी, सब कुछ यहीं छोड़कर हम सबको वापिस चलना है। और मैं आत्मा भी इस देह से न्यारी हूँ, मुझे भी सब कुछ छोड़कर वापिस जाना है। तो इस तरह जाने की स्मृति रखेंगे और जाने की स्मृति के द्वारा इस संसार को खेल की न्याई देखेंगे और देखें ऐसा करने से कितना सुंदर आनंद जीवन में आता है। ओम।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर। जब फिल्म स्टार केविन कॉस्टनर से उसके पेशे के उतार चढ़ाव के बारे में पूछा गया तो उसका जवाब था, मैं जीवन को जी रहा हूँ। यह उत्तर अत्यंत विद्वतापूर्ण है। अपने अनुभवों और घटनाओं के बारे में अच्छा या बुरा होने का निर्णय लेते हुए समय नष्ट करने के बजाय उसने एक तटस्थ रहने का तरीका अपना लिया और सादगी के साथ उन्हें उसी रूप में स्वीकार करने का फैसला कर लिया जिस रूप में वह रास्ते में आते हैं। हम सब अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए अनेकों रास्तों पर चलते हैं। हम में से कुछ लोगों के रास्ते दूसरों से ज्यादा पथरीले होते हैं, परंतु कोई भी अपने लक्ष्य तक बिना परेशानियां झेले नहीं पहुंचता है। अतः उससे लड़ाई करने के बजाय क्यों न हम उन्हें अपने जीवन का रूप समझकर स्वीकार कर लें? क्यों न आप अपने आप को परिणामों से अलग करके सफलता और संपूर्णता के साथ सिर्फ उन परिस्थितियों का अनुभव करें जो आपके जीवन में प्रवेश करती है। दर्द को महसूस करिए और प्रसन्नता का स्वाद लीजिए। जब तक आपने कभी किसी घाटी के दर्शन नहीं किए हैं, तब तक किसी पहाड़ की ऊंचाइयों का दृश्य आपको सांस रोकने वाला नहीं लगेगा। याद रखिए, जीवन में सिर्फ परिणाम होते हैं, न कि नाकामयाबियां। सिर्फ सीख होती है, न कि पाठ। वास्तव में परेशानियां कुछ भी नहीं है, वे सिर्फ अवसर होते हैं जो कि समाधान का रूप लेने के लिए बुद्धिमान इंसान के इंतजार में होते हैं। समय आपके

धरोहर को पूरा करने में सहायता देगी और आपके जीवन को बदल देगी। इतिहास के बड़े विचारक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। महान ज्ञानी कन्फ्यूशियस ने कहा है, एक इंसान जो दो खरगोशों के पीछे भागता है वह एक को भी नहीं पकड़ पाता है। रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, आप अपनी व्यस्तताएं कम कर दीजिए अगर आपको जीवन में शांति की तलाश है। पीटर ड्रकर ने ज्ञान के बिंदु के रूप में एक दूसरे ही तरीके से कहा है, जिस कार्य को करने की आवश्यकता नहीं है उसे पूरी क्षमता के साथ करने से ज्यादा निरर्थक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो कार्य आपके जीवन में जरूरी है उसे प्राथमिकता देकर पहले कीजिए। व्यर्थ निरर्थक कामों के पीछे अपनी कार्य शक्ति को व्यर्थ मत करो।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार अपने जीवन की दौड़ में हम 8 महीने अपनी जंक मेल खोलने में, 2 वर्ष फोन की गलत कॉल का जवाब देने में और 5 वर्ष कतार में खड़े रहने में व्यतीत कर देते हैं। इस आश्चर्यजनक सच्चाई के बाद सबसे साधारण परंतु बुद्धिमत्ता से समय का सही उपयोग करने का तरीका है कि आप जहां भी जाए वहां किसी पुस्तक को ले जाएं। जब दूसरे लोग कतार में इंतजार करते हुए असंतोष प्रकट करते हैं, वहीं आप अपने आप को उन्नत करने की प्रक्रिया में लगे होते हैं और अपने दिमाग को उस महान किताब में दिए हुए बहुमूल्य विचारों से पोषण दे रहे होते हैं। जब तक आप जिंदा है तब तक जीने का तरीका सीखते रहिए, रोमन दार्शनिक सेनेका ने कहा था। फिर भी ज्यादातर लोग अपने स्कूल की औपचारिक शिक्षा के अलावा गिनती की किताबें पढ़ते हैं। इस शीघ्रता से बदलती दुनिया में विचार ही सफलता की कुंजी है। सिर्फ आवश्यकता है कि सही किताबों से उन विचारों द्वारा अपने चरित्र का पुनर्निर्माण या अपने रिश्तों को एक नया रूप देने या अपने जीवन में एक क्रांति लाने की दिशा में प्रयुक्त करना चाहिए। एक बढ़िया किताब आपके जीने का तरीका बदल सकती है, जैसा कि दार्शनिक हेनरी डेविड थोरो ने वाल्डन में लिखा है, शायद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी स्थिति को अचूक तरीके से बयान करते हैं, जिन्हें अगर हम सही में सुन और समझ सकते तो वह शायद सुबह और शरद ऋतु से ज्यादा पवित्र होगा और संभवतः हमारे रास्ते में आने वाली चीजों को एक नई दिशा देगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक किताब पढ़ने के बाद एक नए युग का अनुभव किया है। किताबें हमें संयोगवश मिलती हैं जो हमारे चमत्कारों की व्याख्या करती हैं और नई आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताती हैं। आप जीवन में कितनी उन्नति करेंगे यह सिर्फ आपके परिश्रम पर नहीं बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप इस नई अर्थव्यवस्था में सबसे महान विचारक ही सबसे महान नेता होंगे और आप 5 वर्षों के बाद किस प्रकार का व्यक्ति होने वाले हैं। और यह 2 तरह के प्राथमिक प्रभावों पर निर्भर करता है, वह यह कि आप किन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं और आप कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं। इन 2 बातों पर ही आपके व्यक्तित्व का विकास होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को महानतम व्यक्तित्व के विचारों के सामने लाते हैं जो इस ग्रह पर पहले कदम रख चुके हैं, आपके खेल में सुधार आता है, आपके मनन की गहराई बढ़ती है और आप बुद्धिमत्ता के नए धरातल की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। गहन पाठ आपको 24 घंटे इस दुनिया के सर्वोच्च सृजनात्मक ज्ञानी और प्रेरक व्यक्तियों के साथ संबंधित रखता है। अरस्तु, इमर्सन, सेनेका, गांधी, थोरो, डेरोथिया, ब्रैंडी और अनेकों बुद्धिमान पुरुष और स्त्रियां जो हमारे ग्रह की सुंदरता बढ़ा रहे हैं, वे सिर्फ इस प्रतीक्षा में हैं कि आप उनका ज्ञान उनके पुस्तकों के माध्यम से उनके साथ बांट सके। आप ऐसे अवसरों को अपने हाथ में जब भी संभव हो लेते रहें। अगर आज आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आज के दिन आप जिए भी नहीं है, और पढ़ना आते हुए भी अगर आप पढ़ने में नाकामयाब होते हैं तो यह उसी समान है जैसे जिसको पढ़ना नहीं आता है पर पढ़ना चाहता है।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

एक बार मदर टेरेसा ने कहा था, कोई कार्य महान नहीं होता, सिर्फ छोटे कार्य होते हैं जो महान प्रेम के साथ किए जाते हैं। ऐसे कौन से छोटे कार्य हैं जो आप खुद अपने लिए और आपके जीवन में महत्वपूर्ण लोगों के बीच का रिश्ता मजबूत करने के लिए आज कर सकते हैं? ऐसे कौन से निरुद्देश्य दयालुता और बिना स्वार्थ के सुंदर कार्य हैं जो आप किसी के दिन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं? संवेदनशील होने की सबसे बड़ी विडंबना है कि देने की प्रक्रिया अपने बारे में अच्छा महसूस करने पर मजबूर करती है। दूसरों के लिए प्रेम की भावना से परिपूर्ण होने का अभ्यास करने के लिए एक प्यार का बही खाता बनाइए। हर दिन उसमें कुछ नाम जमा कीजिए, जैसे अपने आसपास वाले किसी व्यक्ति के लिए कोई एक छोटा सा कार्य करना जो आपके जीवन में खुशी भर सके, अपने सहकर्मी के लिए बिना कारण फूल ले जाना, अपने मित्र को अपनी पसंदीदा किताब की प्रति भेजना और समय निकालकर अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को बताना कि आप उनके बारे में क्या अच्छा महसूस करते हैं। ऐसी बातें शुरुआत करने के अच्छे तरीके हैं। एक चीज जो हमें अपने जीवन में सीखना जरूरी है वह यह है कि छोटी बातें ही जीवन की बड़ी बातें होती हैं। प्रतिदिन आपके प्यार के खाते में यह छोटी धरोहर आपको अपने बैंक में जमा धन से ज्यादा प्रसन्नता देगी। जैसा कि इमर्सन ने कहा है, बिना एक धनवान हृदय के धन एक बदसूरत भिखारी के समान है। या जैसा टॉलस्टॉय ने कहा है, खुशी बटोरने के लिए हमें अपने आप को एक मकड़ी की तरह अपने प्रेम का जाल हर दिशा में बुनना होगा, जिससे जो भी उसमें आए फंस कर

करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाए और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन।

0: मानवीय जीवन की सबसे बड़ी लालसा है कि हमें लोग समझें, प्यार करें और हमारा आदर करें। फिर भी इस द्रुतगामी गति से भागती हुई जिंदगी में बहुत से लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि सुनने की प्रक्रिया सिर्फ दूसरे व्यक्ति के चुप होने का इंतजार करना है। स्थिति और खराब हो जाती है अगर कोई हमसे बात करता है और हम अधिकतर समय स्वयं के उत्तरों को तैयार करने में लगा देते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी बातों को समन्वित करने की कोशिश करें। वास्तव में दूसरों के नजरिए को समझने के लिए समय निकालना यह प्रकट करता है कि आपके मन में उस व्यक्ति के ख्यालात का महत्व है और आप उस व्यक्ति की फिक्र करते हैं। अगर आप उस व्यक्ति जो आपसे बात करता है उसकी आंखों की पुतली के पीछे जाकर उसके नजरिए से दुनिया देखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा करने से आप उसके साथ एक गहन रिश्ता बना लेंगे और यह एक ऐसे बंधन में ढलेगा जो उच्च स्तर के स्थायी विश्वास को जगह देगा। हमारे दो कान और एक मुंह होने का कारण है हम जो बात करते हैं उसे दो बार सुन सकें। और एक अच्छा श्रोता होने की शिष्टता होने का एक और लाभ है, क्योंकि अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो पूरे वक्त सीख रहे हैं। आप उस सूचना तक पहुंच रहे हैं जो अगर आप खुद वार्तालाप करते तो आपको मिलने से चूक जाते। कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिसके द्वारा हम सुनने की कला में प्रवीण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं और वह व्यक्ति जिसके साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं अगर पिछले 60 सेकंड से नहीं बोला है, तो इसका मतलब है कि आपकी बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और यह वक्त चुप हो जाने का है। बीच में बोलने के लालच से अपने को रोकिए। अपने आप को ऐसा करने से पहले ही पकड़ लीजिए और जिस विषय पर दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अगर किसी व्यवसायिक समूह में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो यह प्रदर्शित करिए कि आप वास्तव में उसके वार्तालाप से सीखना चाहते हैं। इसके लिए आप जरूरी टिप्पणियों को उसी समय लिखिए, अचानक पुस्तिका निकाल कर लिखने के बजाय। जब दूसरा व्यक्ति अपने विचार जाहिर कर चुके, जो तुरंत प्रक्रिया करने के बजाय पहले उस पर सोच विचार करिए जो आपने सुना है। ऐसा कहना कि मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात को पूरी तरह से समझा कि नहीं, क्या आप यह कह रहे हैं? और पूरी सच्चाई के साथ ऐसा करने से आप उन लोगों के और निकट आ जाते हैं जिनके साथ प्रतिदिन आपका व्यवहार होता है। तो इस प्रकार अगर आप एक अच्छा श्रोता बन जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे वक्ता भी जरूर बन जाएंगे। बस जरूरत है तो सामने वाले व्यक्ति के नजरिए को समझने की। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: The concept of martyrdom amongst Sikhs is an inspiring chapter in the history of mankind. The torch lit by Guru Nanak was handed down from Guru to Guru till Guru Gobind Singh declared Sri Guru Granth Sahib as the living Guru. If Guru Nanak regenerated the spirit of man, Guru Gobind Singh, the 10th Guru, gave a new earthly hope and nationality to the liberated soul. His global vision and concept of universal man, if practiced, can eliminate all wars and even the artificial man-made frontiers that divide different nations and countries. The world has far greater need of such teachings now than it ever had before.
2: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो आज यह चीज देखने को मिलती है कि स्वास्थ्य के बारे में अनेकों लोग अनेक प्रकार की राय रखते हैं। स्वास्थ्य के लिए अनेक पद्धतियां आज विश्व भर में व्यापक हैं। भारत में ही अगर हम देखते हैं तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद सबसे शिखर पर जाना जाता है। विश्व भर में आयुर्वेद की पहुंच है, उसका नाम है। आज हम एलोपैथी, होम्योपैथी, इन पैथीज को भी समझते हैं। साथ साथ भारत में सिद्ध, यूनानी, ऐसे अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं। अब इन सारी पद्धतियों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना, उसके जो भी तकलीफें हैं उसे कम करना। और जब वैद्य इस बात को करता है, जब लोगों के कष्ट का वो निवारण करता है, तो ये उक्ति भी सुनने को मिलती है कि वैद्यो नारायणो हरिः, यानी वैद्य को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, उसे स्वयं नारायण का स्वरूप माना जाता है। वैसे भी अंग्रेजी में कहा जाता है कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। भाव ये है कि स्वास्थ्य इतनी बड़ी पूंजी है कि अगर वो खो जाता है और उसे कोई व्यक्ति लौटा सकता है तो उसे ईश्वर के समान दर्जा देना, ये बताता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी पूंजी है हम सबके लिए। इस बात को समझकर उस स्वास्थ्य को खोने ही न देना, वो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहे, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, यही सहज स्वास्थ्य में हमारी चर्चा का विषय भी है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में एक ऐसे ही वैद्य जुड़े हैं जिन्होंने एलोपैथी की शिक्षाएं ग्रहण की हैं। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो आज चर्चा के विषय पर पहुंचे उससे पूर्व वैद्यों की या चिकित्सकों की जो ऊंचे दर्जे की बात कही जाए

0: ये गौर करने वाली बात नहीं है कि आरोग्य कितनी ऊंची स्थिति है कि एक व्यक्ति अगर आपको आरोग्य वापस लौटा सके तो उसके लिए तो भगवान का दर्जा देना तो स्वाभाविक है।
1: दैनिक हमें सुरक्षा देते हैं और चिकित्सक हमें स्वास्थ्य देते हैं। जो पुरानी परंपरा थी, अगर हम इसे वैद्य में दें तो एक नगर वैद्य या एक गांव वैद्य की उपाधि मिलती थी, जो आदमी को पूरे शहर या पूरे गांव के बारे में मालूम होता था। ये कहा जाता था कि उस वैद्य को हर घर में क्या बीमारी है, कैसे लोग हैं, क्या उसको दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ कहानियां भी हैं जिसमें वैद्य ये सुनता था, अच्छा उनके घर से आए हैं, ये बीमारी हुई होगी, उसको ये दवा दे दीजिए, बिना ये जाने, या ये औषधि दे दीजिए बिना ये जाने कि लक्षण क्या है। और यही चीज देखिए एलोपैथी में भी इस्तेमाल हुई, और वो शब्द इस्तेमाल हुआ फैमिली फिजिशियन। अब आप थोड़ी हमारी पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर देखेंगे कि कोई बीमार होता था तो एक सूटकेस या एक रेक्टेंगुलर लेदर का डब्बा लिए एक बैग डॉक्टर साहब घर आते थे, और वो एक बड़ी पुरानी लाइन बोलते थे, मैंने देख लिया है बुखार उतर जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुछ दवाइयां लिख दिया हूं ले आइए। आपने एक और चीज नोटिस की होगी इन पुरानी चीजों में, वो कहीं भी किसी टेस्ट की, या ये मैं जांचे लिख दिया हूं करा लीजिए, या मैं एक्सरे लिख दिया हूं करा लीजिए, इसके बारे में वो कोई बात नहीं करते थे। जो एक पुरानी पद्धति थी कि मरीज से बात किया जाए, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, हाँ, फिर उसके बारे में उससे बातचीत करके ही उस हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचे कि उसको क्या बीमारी है। फिर मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ तो हम छू कर तापमान देख, लालिमा है, टेंशन है, ये देखकर, और जब स्टेथोस्कोप बना तो लोगों ने आला रख के छाती पे देखा। हमारे पुराने वैद्य लोग तो इतने माहिर थे, हमारे यूनानी के जो जानकार थे वो इतने माहिर थे कि वो नब्ज देखकर बीमारी बताते थे। और मैंने यहां तक सुना है कि पुराने वैद्य जो महिलाओं को छूते नहीं थे, वो एक तागा बांधकर उसको छू के बता देते थे कि क्या है। ये कभी मैंने देखा नहीं, बट हाँ सुना है। एक इंग्लिश कहावत भी है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तो वो समथिंग को जो आपको वापस कर सकता है उसकी बड़ी इज्जत थी। और एक मजबूत शरीर ही सबसे लड़ सकता है, वो परिस्थितियों से लड़ सकता है, पर्यावरण में लड़ सकता है, एवं जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट है उनसे लड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य की। और अगर नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है ना, एक बीमार आदमी को गिराना बड़ा आसान है, तो इसीलिए अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो हमें अपने देश को स्वस्थ रखना है और बीमारियों से बचा के रखना है।
0: जब आप ये बात कहते हैं कि एक नागरिक के स्वस्थ रहने से देश स्वस्थ रहेगा, तो महात्मा गांधी की ये बात याद आती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होगा, तो शायद हम स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई अच्छी भागीदारी ले भी नहीं सकते, ना कुछ हम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही एक जागरूकता रही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर राष्ट्र के लोग स्वस्थ हैं तो वही राष्ट्र की ताकत है।
1: हेल्दी बॉडी एज हेल्दी माइंड, और हर बड़े से बड़ा डिसीजन पहले दिमाग से लिया जाता है। अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें टॉप 20 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में था, और मुझे जान के ये अच्छा लगा कि उन टॉप 20 में से 15 आर टेक कंपनीज, मतलब जो सिर्फ दिमाग दे रही हैं, वो कुछ गैजेट बना रही हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर बना रही हैं, वो कुछ प्रोसेसेस बना रही हैं, जो तो ये सोचिए दिमाग की कितनी वैल्यू है। और अच्छा दिमाग एक मजबूत शरीर में ही रहता है।
0: अब इस शरीर के स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए, ताकि हम

0: शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इन चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है, इस पर हम चिंता करते हुए आ रहे हैं। कई लोग इन चिंतनों को सुन रहे हैं तो हमारे इन चिंतन की धाराओं से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लिए ले रहे हैं। पिछले दिनों जब हम बातचीत कर रहे थे कि आहार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है शरीर को स्वस्थ रखने में, और अगर हमें यही ना पता हो कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो फिर हम अपने शरीर के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं और हम अपने ही स्वास्थ्य को खोने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये बात बताई थी कि विटामिन्स शरीर में कुछ ऐसा काम करती हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये भी आपने बताया था कि विटामिन्स बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, मगर वो कम मात्रा में भी अगर वो ना हो शरीर के अंदर, अगर वो ना मिले, तो स्वास्थ्य कितनी जल्दी बिगड़ सकता है, आप ये बात कह रहे थे। विटामिन ए के बारे में हमने जानकारियां हासिल की हैं। एक और विटामिन के बारे में आप आज हमें परिचय कराएं कि कौन सा ये विटामिन है जिसके बारे में हमें और ध्यान रखना है और समझना है।
1: हमारी विटामिन की श्रृंखला में हम लोग पहले उन विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं जो फैट सॉल्युबल है, जो वसा में घुल जाते हैं। तो हमने पहले विटामिन ए के बारे में बात की और ए को हम जोड़ते हैं हर नारंगी चीज से, और अगर हमारा ए गड़बड़ है तो हमारी नजर गड़बड़ हो जाएगी। और तो हमको कोशिश करना चाहिए कि विटामिन ए पूरा करने के लिए हमको जो भी नारंगी चीजें हैं और स्पेशली गाजर, उसका हमें सेवन करना चाहिए। इसी श्रृंखला में विटामिन नंबर दो विटामिन डी, और ये मैजिकल विटामिन है। ये सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल कम्युनिटी में, वो विटामिन डी है। और इसके बारे में इसलिए इतनी बात होती है क्योंकि ये मुफ्त में मिलता है और ये प्रकृति से मिलता है, और इसको अगर हम इसे धर्म से जोड़ के देखें तो ये सूर्य का आशीर्वाद है। इसकी कमी से जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं सिर्फ धूप सेकने से ठीक हो जाती है। विटामिन डी जो है, इसकी सिंथेसिस, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा कमी अगर किसी विटामिन की पूरी दुनिया में है तो वो विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसमें सूर्य का प्रकाश विटामिन डी नहीं है, मगर वो इसको बनाने में हमारा मदद करता है। जो सूर्य की किरणें हैं वही विटामिन डी को बनाने की शुरुआत करती हैं, और मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इन दिस होल वर्ल्ड इज डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी।
0: ये बड़ी मजेदार बात लग सकती है डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि भाई ये विटामिन मुफ्त है और ये विटामिन के लिए कोई पैसा खर्चना नहीं है, प्रकृति से मिलता है, सूर्य के किरणों से ये चीज बनता है। चलिए गाजर के बारे में आप कह रहे थे, विटामिन ए गाजर तो फिर भी खरीदना पड़ेगा ही, कभी तो सूरज की रोशनी खरीदने की नौबत तो नहीं आई। जब ये मुफ्त में मिल रहा है, सूरज हर दिन दुनिया के हर कोने में सूरज की रोशनी पहुंच रही है, तो ये बड़ी मजेदार बात लगती है कि अगर दुनिया की 60% आबादी, आधे से ज्यादा आबादी को अगर इस विटामिन की कमी है, तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है जो मुफ्त में मिलते हुए भी हम कोई चीज को नहीं ले रहे। वरना तो हम सबको तो आदत है, कोई चीज मुफ्त है तो लोग पहले से हथिया लेते हैं।
1: भैया मजाक में तो ये तक कहा जाता है कि अगर जहर मुफ्त में मिल रहा तो वो भी रख लो, पता नहीं किस दिन काम आ जाए। इसको दो भाग में बांट लेते हैं। जिन जगहों पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम मिलता है, स्पेशली ठंडे देश, मैं इंग्लैंड में भी रहा और विंटर्स इन इंग्लैंड वर वेरी डार्क, और ये होता था कि जो सूर्य का प्रकाश जो था वो करीब 9:30 बजे हमें मिलता था, और करीब 2:30 बजे दोपहर में ही वो थोड़ी सी धुंधलाहट शुरू हो जाती थी और एक ग्लूमी वेदर जिसे कहते हैं वो होता था। और वहीं गर्मियों के समय सुबेरे 4-4:30 बजे सूर्य उदय होता था और रात में करीब 10-10:30-11 बजे तक सूर्य का प्रकाश रहता था। तो सबसे बड़ा पहला जो कारण है कि इसकी दुनिया में कमी है, एक जिन देशों में सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे आर्कटिक सर्कल के पास जहां 6 महीने दिनों 6 महीने रात होती है, तो वहां इसकी कमी है। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण इसका ये है कि हम सब घर में बंद हो गए हैं, हमारी गाड़ी भी बंद है उसमें भी एसी है, हमारा घर भी बंद है उसमें भी एसी है, और हम जहां काम कर रहे हैं वो भी बंद है उसमें भी एसी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सन रेज की बात हो रही है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए, न कि एक कमरे में आप बैठे हैं और वो थोड़ा सा आपको उजाला दिख रहा है तो वो गलत है। इट इज डायरेक्ट सन रेस। तीसरी जो सबसे बड़ा कारण है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये प्रकाश कहां लगना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मेरे चेहरे तो थोड़े सूर्य का प्रकाश पड़ गया, मेरे हाथों के ऊपर पड़ गया और हमको सनलाइट मिल गई। नहीं, ये आपकी पीठ पे पड़ना चाहिए और खासकर ऊपरी पीठ तक। और अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट आपकी पीठ पे पड़ेगी तभी आपके विटामिन डी सिंथेसिस में ये आपका सहयोग करेगी। एक बात समझिए कि हम और आप धूप में घूमने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले टोपी लगाते हैं। अच्छा, महिलाएं तुरंत अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लेती हैं।
2: बिल्कुल।
1: और आजकल तो चुन्नी से वो अपने आप को ऐसे ढक लेती हैं कि जैसे जो हमारे पुराने जमाने में हम लोग डाफू दिखाते थे कि पूरा चेहरा ढका हुआ है। अच्छा, हाथों में सब ग्लव्स पहन लिया जाता है और हर आदमी इस होड़ में पड़ा हुआ है कि कैसे वो अपने शरीर को सूर्य के प्रकाश से बचा ले। हमने शाम को खेलना बंद कर दिया, हर बच्चा पहले दौड़ रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, जो कॉलोनी सिस्टम था हमारा वो खत्म हो गया। तो सूर्य का प्रकाश मिल ही नहीं रहा है लोगों को। मैं सबको एक सजेशन देता हूं जो मैं खुद करता हूं कि मैं सुबेरे जब सूर्य को जल चढ़ाता हूं तो चढ़ाने के बाद अपनी पीठ सूर्य की तरफ करके करीब 5-7 मिनट तक खड़ा हो जाता हूं और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो विटामिन डी का जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। अगर आप गोरे हैं तो आपकी विटामिन डी की जरूरत जल्दी पूरी होगी और अगर आप डार्क स्किन्ड हैं तो आपके त्वचा में मेलानिन जो एक पिगमेंट होता है जो आप हमें त्वचा का रंग देता है वो अगर ज्यादा है तो आपको सूर्य का प्रकाश आपकी जो त्वचा है वो कम एब्जॉर्ब करेगी। तो आपको ज्यादा देर सूरज की किरणों में रहना पड़ेगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सूरज सबसे अच्छा है, किस समय का सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश या तो सुबेरे 9 बजे के पहले है या शाम को 5 बजे के बाद का है गर्मियों के मौसम में। और ठंडक के मौसम में जब भी आपको प्रकाश मिले आप इसको जरूर लीजिए।
2: जब आप ये बात कहते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये तो एक कॉमन सी बात होनी चाहिए, ये तो एक सामान्य प्रज्ञा की बात है कि हर व्यक्ति कॉमन सेंस से समझ सकता है कि भाई ये सूरज की रोशनी मिल रही है तो उसको लेना चाहिए। मगर जैसे आपने कहा कि कमी होने के कारण क्या है, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, सूरज की रोशनी में खेल कूद नहीं रहे हैं, बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, हम एसी में हैं, बंद कमरों में हैं, बंद गाड़ियों में हैं, तो सूरज की रोशनी अगर पड़नी भी चाहिए तो हमारी त्वचा पूरी तरीके से ढकी हुई है। तो अब ये तो बात समझ में आती है कि हाँ, कम से कम 5-7 मिनट तो सूरज की रोशनी लेनी है सुबह शाम, का समय आपने बताया, साथ में ये भी बताएं कि किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये भी पता रहे।
1: सबसे जो जरूरी प्रिकॉशन है कि आपकी पीठ पूरी तरह से खुली रहनी चाहिए। कुछ माताएं बहने, कुछ लड़के ये बोलते हैं कि हमने पतली चुन्नी अपने पीठ पर डाल ली। मैं सबको बोलता हूं कि हमको सन लाइट चाहिए, सन की हीट नहीं चाहिए, हमें सूर्य की गर्मी नहीं महसूस होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए, हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी त्वचा चुनचुनाने लगे, आपको खुजली होने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे, तो प्लीज आप सूर्य के प्रकाश से हट जाइए। और तीसरा, आप करीब आधा गिलास पानी पी के सूर्य का प्रकाश लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा, क्योंकि जो पानी है वो पसीने के रूप में आपकी त्वचा को बचा के रखेगा और हल्का ठंडा करेगा, तो आप सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक ले पाएंगे। गर्मियों में दोपहर 12-1 बजे जब एकदम बुरी तरीके से सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, उसमें बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करना चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो सुबेरे का सूर्य और शाम का सूर्य का प्रकाश गर्मी के लिए, और ठंड में आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। हाँ, ठंड में जब आप सूर्य का प्रकाश ले रहे हो तो प्लीज अपना स्वेटर उतार दीजिए, अपनी पीठ को थोड़ा खोल दीजिए, और ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि थोड़ा हाथ पे पड़ गया तो मुझे मिल गया, थोड़ा चेहरे पे पड़ गया तो मुझे मिल गया, थोड़ा मेरे पैरों पे पड़ गया, ये नहीं है, उसको पीठ पे ही चाहिए। आप देखिए कितने विदेशी समुन्दर किनारे वो अपनी पीठ सूर्य की तरफ करके लेटे रहते हैं, किताब पढ़ते हैं और लेट जाते हैं रेत में। वो सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी विटामिन डी की पूर्ति कर लेते हैं, कि ठंडक के समय में वो अपने शरीर को बचा के रखेंगे। ये फैट सॉल्युबल है तो ये लिवर में आपके स्टोर हो सकता है, इसीलिए अगर आप सूर्य का प्रकाश लेते रहेंगे तो आपके शरीर में ये बना रहेगा।
2: वैसे विटामिन डी के बारे में बात करते हुए ये बात समझ में आ रही है कि ये फ्री में मिल रहा है, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और कैसे इसे लेना है ये बात समझ में आई है। दोस्तों, मेरे मन में प्रश्न तो ये है कि विटामिन डी के फायदे क्या हैं, क्यों जरूरी है, नहीं लोगे तो क्या होगा, ऐसे आपके मन में भी होंगे ऐसे मैं समझता हूं, मगर घड़ी इशारा करती है कि यहाँ रुकना होगा। तो मैं डॉक्टर साहब से इन प्रश्नों को अगली कड़ी में मैं जरूर पूछूंगा, मगर आज विटामिन डी के बारे में जो जानकारी मिली है उसे लेने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, ये भी हम सबको पता चला है, और मैं आशा करता हूं कि आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और अगर आपको फिर भी आप आगे पीछे सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, तो याद रखिए मुफ्त में मिल रहा है, तो जल्दी जाइए और सुबह शाम इस विटामिन को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है उसको लेने की शुरुआत करें। आज की बातचीत में इतना ही दोस्तों, आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, तो आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
2: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन डी की अहमियत को समझा, उसका स्रोत क्या है और कितना समय हमें ये सूर्य की रश्मि में खड़े होकर सुबह और शाम, या सर्दियों के दिनों में दिन भर कम से कम 5 से 7 मिनट हम अपनी पीठ पर सूरज की रोशनी गिरे, इस बात का ध्यान रखना है ताकि हमें ये विटामिन डी की कमी ना महसूस हो। आगे की कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत करते हैं। इस पूरी श्रृंखला में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, रोज की ये मुलाकात है, ऐसा लगता है कि हम और आप, हमारी जो जीवन है वो एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लेकिन बहुत से दर्शक जो नए जुड़ रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। जिंदगी अगर हम देखें तो कई बार बहुत सी ऐसी ऑब्स्टिकल्स लेकर आती है, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस लेकर आती है जो हमें लगता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं और हम उन्हें पार नहीं कर पाते। कई बार वो आसानी से हो जाती है, हमारा अपना मेंटल मेकअप ऐसा होता है, लेकिन कई बार वो बहुत हावी हो जाती हैं। तो ये जो आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी बातचीत का सिलसिला जिसमें बहुत से हम सिचुएशंस को देखेंगे, जिंदगी के उन पड़ावों को देखेंगे जहां हम कहीं रुकने लग जाते हैं या उन्हें पार करते करते हम बहुत थक जाते हैं। तो क्या कोई आसान तरीका है? क्या मेरे सोच में, मेरे थॉट प्रोसेस में कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है कि वो सिचुएशंस मुझ पर हावी ना हो? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। जिस तरह से अब लोग जुड़ते गए हैं अवेकनिंग के साथ और आप भी बहुत से लोगों के साथ मिलते गए हो, हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस?
1: लोगों का एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, बिकॉज जहाँ जहाँ भी आप जितने भी लोगों से मिलते तो वो नए नए अब अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज और कहीं ब्रह्मा कुमारीज परिवार का अब हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि परिवार वही होता है जहाँ हमारी सोच एक दूसरे के साथ मैच करती है। और इतने सारे भाई बहनें, लाखों की संख्या में कहें, जो रोज़ हमसे मिलते रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम द्वारा, वो सोच में परिवर्तन, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जोड़, जो आज तक परिवर्तन की बात सिर्फ सोच में थी, वो प्रैक्टिकल में आने लगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति भी मिलती गई। ज्ञान तो है, सभी के पास है, चाहते भी हैं परिवर्तन करना, लेकिन सिर्फ जो हिच आ रहा था वो कहाँ, कि मुझे मालूम है लेकिन होता नहीं है। लेकिन जहाँ परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा तो वो वाला भी जो स्टेप था वो क्रॉस हो गया, एंड देन लाइफ बिकम्स वेरी ब्यूटिफुल, बिकॉज यू आर एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ फीलिंग, यू नो। बाहर तो जो करना चाहते हैं वो हो जाता है, लेकिन अंदर जो फील करना चाहते हैं वो कई बार कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। लेकिन क्योंकि जिन भी भाई बहनों ने अपने ऊपर वो मेहनत की है, सिर्फ प्रोग्राम देखने से ये नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रोग्राम को एक स्टडी के रूप से लिया है, एंड आई हैव मेट मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो प्रोग्राम के साथ जैसे एक नोटबुक लेकर बैठते हैं और उसको नोट्स बनाते हैं, फिर उसको स्टडी करते हैं, और फिर तुरंत उसको नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, चाहे वो आपका ऑफिस है, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपके अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप उसको अप्लाई करते हो। एंड ज्ञान इतना ब्यूटीफुल है, क्योंकि जो परमात्मा ने डायरेक्ट नॉलेज दी, तो नॉलेज तो बहुत सिंप्लीफाई हो गई, लेकिन जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते तो हमें उसका बेनिफिट नहीं पता चलता। तो जिन्होंने उसको यूज़ करना शुरू किया तो उनको वो बेनिफिट मल्टीफोल्ड मिला है। एक है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है, नेचुरल है, परमात्मा की दी हुई बातें हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, समझ भी आ जाते हैं, लेकिन वंडर तब क्रिएट होता जब उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। सो अगेन आई वुड से टेक इट बैक टू योर लाइफ टुमारो, यू नो, नॉट दैट आप आधा घंटा टीवी देखते हैं, आप देखते देखते कहते हैं या इट्स वेरी गुड, इट सीम्स गुड, कई बातें लगती हैं नो बट इट्स नॉट पॉसिबल, कई बातें लगती हैं येस इट्स पॉसिबल, बट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट टुमारो, एंड ट्राई करने के बाद डिसाइड करें कि पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। सिर्फ सुनने से नहीं डिसाइड करें, क्योंकि जहाँ इतने लोग वो पॉसिबल कर पाए हैं लाखों की संख्या में, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? इट्स जस्ट दैट मेरा वो एक स्टेप बचा है, एंड दैट इज गोइंग टुमारो एंड ट्राइंग दिस आउट। जब हम कहते हैं नॉट पॉसिबल या वेरी डिफिकल्ट, तो कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को कह दिया लेट इट बी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये इनके लिए ठीक है, ये लोग जो बात कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता मेरे ऑफिस में क्या होता है, या इनको क्या पता मेरे घर में कैसे लोग हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उससे फिर हम अपनी ही प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा देते हैं। सो व्हाटएवर वी शेयर इट्स फॉर एवरीवन, टेक इट बैक विद यू टुमारो, अपने ऑफिस में इसको लेकर जाएं, अपने घर पर लेकर जाएं, देन द मैजिक स्टार्ट्स। सो देन आई हैव बीन मीटिंग सो मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनके लिए फिर ये मैजिक हुआ है, वो फील करते हैं, ये उनका अनुभव है कि उनकी पूरी सोच में परिवर्तन आया, क्योंकि परिवर्तन यही हुआ कि औरों को देखने की बजाय अपने को देख, बस वो एक ही तो स्टेप चाहिए था सिर्फ, लेकिन वो अंडरस्टैंड जब हो गया तो अपने को देखना शुरू किया, अपने को देखना शुरू किया तो अपने पर काम करना शुरू किया, और वो रियलाइज हुआ ये तो इजी है।
0: और सबसे बड़ी बात वो आहा मोमेंट ये थी कि ओ अच्छा, मैं अपने आप को देख सकता हूँ, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आपने आज जिस बात से हमने शुरू किया है कि बहुत से लोग हैं जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं अच्छा जरूर लगता है, लेकिन यही बात है कि मेरे लिए नहीं है। तो ये इतने सारे लोगों के एक्सपीरियंस आपको हम यही कहना चाहेंगे, जो नए लोग जुड़े हैं, जो बहुत वक्त से हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें भी कि ये जो आने वाली जो श्रृंखला हमारी रहेगी जिस पर हम बातचीत करेंगे, आप ही की समस्याओं को लेने वाले हैं, आप ही की वो सिचुएशंस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करते हुए, या अगर ज्ञान नहीं भी जान पा रहे हैं आप, नहीं जानते थे, तो इस पूरे बातचीत के दौरान आप तक वो बात ज़रूर पहुँचेगी। बात हम यही करते हैं सिस्टर शिवानी, यहीं से शुरू करते हैं कि
1: सिचुएशंस
0: समझ में आ गई थी, जिंदगी समझ में आई, बहुत सी बातें कि मैं जिम्मेदार हूँ अपने ऊपर, लेकिन अभी भी जब हम सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, और चैलेंजेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, आने वाला दौर चाहे हम ग्लोबली भी देखें और चाहे पर्सनल लेवल पर भी देखें, तो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हम तैयार ही नहीं होते हैं। और मतलब हमने अपने आपको बड़े मुश्किल से एक सिचुएशन के लिए तैयार किया होता है, वो तीसरी सिचुएशन इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी होती है कि हम फिर घबराने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो प्रिपरेशन है, क्या मेरी प्रिपरेशन उतनी है, या कैसे तैयारी करनी है?
1: वी कैन नॉट डिनाई कि चैलेंजेस आर गेटिंग बिगर डे बाई डे। कहीं ना कहीं हमने बहुत मेहनत करके अपने अंदर शक्ति लाई होती है वो जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसको क्रॉस करने के लिए, और अभी वो शक्ति उतनी भरी नहीं होती कि मेरे सामने एक उससे कई गुना बड़ी परिस्थिति खड़ी हो जाती है। लेट्स टेक अ लिटिल थिंग के व्हाट आर द सिचुएशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि फोकस बहुत ज़्यादा हमारा सिचुएशन पर होता है और सारा दिन माइंड में वो सिचुएशन की लिस्ट जैसे कि चलती ही जाती है। सिचुएशन जो हो चुकी हैं, परिस्थितियां जो वर्तमान समय मेरे जीवन में हैं, और कुछ परिस्थितियां जो मैं ऐसे ही क्रिएट करती हूँ जो मुझे लगता है हो जाएंगे,
0: हाँ, होने वाली है,
1: ये शायद मेरे साथ हो ना जाए, या जैसे जॉब इनसिक्योरिटी है, तो अभी जॉब है तो जॉब इज वेरी नाइसली देयर एवरी डे, बट द थॉट, सो आई एम ऑलरेडी क्रिएटिंग द सिचुएशन इवन दो द सिचुएशन इज नॉट देयर। तो knowing how to face the situation, लेकिन what are the situations we're talking about? Because हमारे जीवन के दो बहुत important पहलू हैं, एक है मेरी personal और family life, और दूसरी है मेरी work life, चाहे वो profession है, चाहे वो business है, चाहे एक बच्चे के लिए उसकी वो student life है, it's that life। तो अगर हम अपनी work life को देखें, now you answer, I will question you,
0: okay.
1: अगर हम अपनी work life कर्म उस क्षेत्र को देखें जहाँ हम रोज कार्य करने जाते हैं, what are the situations for you?
0: The top challenges or the situations?
1: Situations, challenge, उसको challenge बोले, problem बोले, situation बोले, whatever. Because situation तो वही है, आप उसको किस रूप से देखने वाले हो वो depend करता है।
0: See, अगर आप मुझसे personally पूछते, मतलब like you're asking me.
1: In general.
0: हाँ, मतलब generally, जो अगर एक media person के रूप में भी, तो ये कि I'm a freelancer. So recession का ये दौर, जहाँ already जिनकी fixed jobs हैं, उनको problem आने वाली है, तो I have this continuous thing that it's okay. Right now I have work, but what will happen next? Because how recession is going to hit, recession कैसे hit करेगा media को, हम नहीं जानते,
1: हमें नहीं पता। And it's not necessary media, it's for everybody. Like if you look at it even globally, शायद ही कोई ऐसा देश है अभी जो इससे hit नहीं हुआ है, शायद ही कोई ऐसा level है society में जो इससे हिट नहीं हुआ है, चाहे आप यू आर टॉकिंग अबाउट द टॉप लेवल ऑफ सोसाइटी और यू आर टॉकिंग एब्सोल्युटली द सिंपल लेबर, इवन द लेबर गोइंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क टुडे इज स्टक, यू नो। तो आप एक पूरे स्पेक्ट्रम को कवर कर रहे हैं जिसमें जॉब, रिसेशन, फॉर आर्थिक परिस्थिति,
0: बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात बहुत से लोगों के साथ ये है कि मैंने अपना कंफर्ट जोन उसके साथ कर लिया,
1: दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो गई, जॉब इनसिक्योरिटी हो गई,
0: और फिर मेरा जॉब जहाँ है वो बहुत कुछ मेरे बॉस पर डिपेंड कर रहा है,
1: तो माय बॉस, माय कोलीग्स, दीज आर ऑल द चैलेंजेस। देन ट्रांसफरेबल जॉब, चेंज ऑफ योर होल फील्ड, कई बार आपको एक जगह से उठाकर एकदम दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं, सो दीज आर चैलेंजेस एट वर्क, चैलेंजेस एट होम,
0: यू आस्किंग मी
1: नो एवरीवन
0: बेसिकली बहुत ज्यादा सिचुएशंस, अगर घर पे देखें तो बच्चों को क्या हम सही परवरिश दे
1: पाते हैं, वेरी बिग थिंग
0: मेजर
1: इन मेनी प्रोग्राम्स वेर एवर आई आस्क्ड पीपल व्हाट्स योर टॉप कंसर्न, कहते हैं पेरेंटिंग. ऐसे पेरेंटिंग जो कि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था, आज सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुका है.
0: लगा लिया हमने ऊपर, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इतनी सारी बातें हो रही होती हैं, पीयर प्रेशर बच्चे के ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है. बच्चे के करियर को लेकर फाइनेंशियल जो चीजें आएंगी वो एक बहुत प्रेशर लेके रखते हैं पेरेंट्स का, आजकल का जनरल जो ये है. मेरे लिए भी अगर मुझसे पूछो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे सामने. देन रिलेशनशिप्स, सिंगल पेरेंट, इफ यू आर यू नो इवन इफ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, कोई पेरेंट बाहर गया हुआ है विदेश में, मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो सिंगल पेरेंटिंग में
1: डिवोर्स केस भी बहुत बढ़ गए,
0: मैक्सिमम ये चीजें जो होती जा रही
1: है, डिवोर्स है, सेपरेशन है, डेथ है,
0: और उसका पेन,
1: तो वो तो फिर मेरा रिस्पॉन्स है. लेकिन सिचुएशन जब मेरे सामने आके खड़ी होती है, एन अनटाइमली डेथ, अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड किसी पेरेंट के लिए, या डेथ ऑफ एनी फैमिली मेंबर, एक डेथ तो एक डेथ है ही, विच कम्स एज अ वेरी बिग सेटबैक, जिसमें हमें लगता है कि ये परिस्थिति, मतलब मेजोरिटी पीपल आज कहते हैं, स्पेशली इफ इट इज डेथ ऑफ अ चाइल्ड और अ स्पाउस, अब मेरे जीवन जीने का तो कोई पर्पस ही नहीं रह गया, यू नो. सो दैट सिचुएशन इज नॉट अ सिचुएशन बट इट्स फॉर मेनी पीपल एंड ऑफ एवरीथिंग.
0: यस,
1: क्योंकि हम समझते कि वहां तो एंड हुआ ही हुआ उनके लिए, लेकिन ये मेरे लिए भी दी एंड है. इसके बाद मेरे जीवन जीने का कोई पर्पस नहीं है, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है. यू नो द वे पीपल से टू देमसेल्व्स, हाउ कैन आई बी हैप्पी, यू नो आई एम और आई एम नॉट बी हैप्पी, तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज मैं खुश हो ही कैसे सकता हूँ, मुझे खुश रहने. सो सिचुएशन, सो डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप क्राइसिस, पेरेंटिंग, कई बार चेंज ऑफ सिटी, आपको आप बहुत समय से यू नो एक जगह पर सेट हैं, एक कंट्री में सेट हैं, या आप एक सिटी में सेट हैं, एंड सडनली
0: यू हैव टू गो,
1: पीपल आर नॉट एबल टू टेक.
0: और वो एकदम से क्या होता है, सिचुएशन आती है तब तो आप हेड ऑन फेस करते हैं, लेकिन जो उसके बाद का डिप्रेशन सीप इन करता है, ये मेजर प्रॉब्लम बहुत लोगों को आ रही है.
1: तो सिचुएशन उस टाइम नहीं है ना सिर्फ, वो एक सिचुएशन अब
0: लंबा,
1: लंबा प्रोसेस है. तो अब अगर हम इन सारी परिस्थितियों को देखें, वर्क पे हमने देखा फाइनेंशियल, जॉब, बॉस, रिलेशनशिप्स, घर पर हमने देखा अगेन रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, डेथ, डिवोर्स, शिफ्टिंग, व्हाटएवर, इन सभी परिस्थितियों में, अब आप ध्यान से आंसर करना, आपके आंसर पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इन सभी परिस्थितियों में कौन सी एक चीज कॉमन है?
0: मैं
1: नहीं, मैं तो कॉमन है. क्या हो रहा है इस हर परिस्थिति में जो कॉमन है, हर परिस्थिति में है वो
0: चेंज.
1: चेंज, सी दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, परिवर्तन, परिवर्तन. एंड लाइक यू सेड, वी आर नॉट रेडी फॉर चेंज, क्योंकि हमारा हर परिस्थिति एक सिचुएशन, एक प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चेंज है. यू नो, द मिनट आई जस्ट लुक एट इट लाइक दैट, चेंज, चाहे चेंज इन रिलेशनशिप, चेंज चाहे, फॉर मी इट कुड बी कि यू हैव चेंज्ड एज अ पर्सन. मैं आपको जो जानती थी इतने इतने साल, यू नो मेनी पीपल विल से, अब तो आप वैसे रहे, तो चेंज, चेंज. या आप मेरे साथ इतने साल थे, आज सडनली आप मेरे साथ नहीं हैं, चेंज. मेरा एक जीवन जीने की एक शैली थी, एक लाइफस्टाइल था, सडनली मुझे वो क्रैश हो गया, चेंज. सडनली मुझे एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा, चेंज. सो एवरी स्टेप जो चीज मुझे हिट कर रही है वो है चेंज, एंड समवेयर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी आर Somehow, क्योंकि हमने अपने आप को उस दायरे के अंदर, चाहे वो मुश्किल वाला भी दायरा था, चाहे वो दर्द वाला भी दायरा था,
0: तभी हम एडजस्ट,
1: लेकिन हम एडजस्ट कर चुके थे, यू नो, हम एडजस्ट कर चुके थे, और हमें उसके साथ जीने की एक आदत पड़ गई थी. इट वॉज माई हैबिट, इट वॉज हैबिचुअल, वेदर इट वॉज प्लेजेंट और नो वी डोंट नो, बट इट वॉज हैबिचुअल. लेकिन जहां वो चेंज आया तो इट हैज हिट मी. अब जैसे ही चेंज आएगा, Let's look at yourself. You're standing that side.
0: लेकिन चेंज के लिए एक और चीज, जो अगर आप चेंज की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहेंगे कि चेंज फॉर गुड और चेंज फॉर बैड, यू नो, लाइक इज दिस चेंज फॉर गुड और इज दिस चेंज फॉर बैड.
1: चेंज इज चेंज, हाउ गुड और बैड आई विल मेक इट नाउ.
0: या, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जो यहाँ से चेंज आया, चेंज तो सिचुएशन से आ रहा है ना, चेंज बाहर है, या तो किसी व्यक्ति के अंदर या आपकी पोजिशन, चेंज बाहर से आ रहा है. गुड और बैड किस पे डिपेंड करता?
0: मुझ पे.
1: एट एवरी स्टेप जहां आपके सामने कुछ हिट करता है, इफ यू कैन जस्ट टेक आउट वन मिनट एंड जस्ट स्टॉप एंड सी, इस समय क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है. हमेशा कुछ एक बातें होती हैं जो मेरे कंट्रोल में हैं, कुछ एक चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है. डेथ, डिवोर्स, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, एनीथिंग. माई कंट्रोल?
0: नहीं.
1: वॉट इज इन माई कंट्रोल? चेक. फाइनेंशियल क्राइसिस, माई कंट्रोल? जॉब चला गया आज, माई कंट्रोल? नो. तो मेजोरिटी 95% से ज्यादा परिस्थितियां जो आपको मिलने वाली हैं, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप कंफर्टेबल ही हो जाते हैं ना, उसको आप कंट्रोल कर लेते हैं,
0: उसको हमें पता भी नहीं चलता कि वो चेंज हुआ है.
1: एक ट्रैफिक जैम में भी अटकना एक परिस्थिति आज, कहना आप कहते हैं इतनी मुश्किल, इतने हाईवेज बने बने, जब तक बने तब तक वी स्टिल अगेन स्टक. सो अगेन यू आर स्टक इन दैट, बट इन योर कंट्रोल? नॉट इन योर कंट्रोल. वॉट इज इन माई कंट्रोल इन एवरी केस? क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है.
0: Even my thought process, see, I would have said,
1: yes.
0: लेकिन वो भी तो कंट्रोल में नहीं होता.
1: हाँ.
0: क्योंकि वो जब हमें टेक ओवर कर जाता है, जैसे स्पेशली अगर किसी का जॉब छूटा, आई नो somebody, जिनको सडनली शी वॉज टोल्ड कि आपको 6 महीने पहले उन्हें टॉप का लीडर बनाया गया, मतलब कंट्री हेड, और विद इन 6 मंथ्स उन्हें बोला गया कि नहीं, यू नॉट डूइंग योर वर्क, आपको छोड़ना पड़ेगा. उसका सब कुछ उनका उस पर डिपेंड कर रहा था. वो डिप्रेशन सीप इन ऐसे करता है
1: बहन, तो एग्जैक्टली वही हुआ ना, ये सब कुछ आपका क्रैश कर गया. सपोज मेरे आसपास सब कुछ क्रैश कर गया, लेट मी लुक एट द वर्स्ट सिचुएशन दैट कैन हिट मी, एंड वो ये है कि एक पल में मेरा सब कुछ जो मैं समझती हूँ मेरा है, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार भी, लेट से एक मिनट में सब कुछ खत्म हो गया. अगेन नॉट इन माई कंट्रोल, बट वॉट इज इन माई कंट्रोल इवन नाउ?
0: कि मैं उसको कैसे लेती हूँ सिचुएशन,
1: बिकॉज फाइनली. लेकिन हम क्यों नहीं उस तरफ देख पाते कि वॉट इज इन माई कंट्रोल, क्योंकि हमारा सारा अटेंशन उन बातों के ऊपर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. आज फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, सब लोग लेकिन आपस में बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं? सारा जो एनर्जी लग रही है वो किस पर है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड. प्रॉब्लम ही ऐसे, सिचुएशन ही ऐसे, टॉक अबाउट सोल्यूशन. अच्छा ठीक है, फाइनेंशियल लॉस हो गया, हो गया, लेकिन हम डिप्रेशन में चले गए, कौन सा लॉस ज्यादा बड़ा?
0: हमारा.
1: ये किसने क्रिएट किया था?
0: हमने खुद.
1: ठीक है, दुनिया में जिन लोगों ने जो किया सो किया, जिसकी वजह से मेरा सारा धन चला गया, लेट्स से वर्स्ट केस कंडीशन, लेकिन ये जो लॉस किया ये किसने क्रिएट किया? तो एक लॉस तो हुआ, ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो ये लॉस हुआ कि आई गो इनटू डिप्रेशन, कल को इफ आई गो इनटू डिप्रेशन, सपोज इट गेट्स वर्स एंड मुझे हाइपरटेंशन या यू नो हार्ट की प्रॉब्लम या कुछ, अब ये लॉस किसने किया? मैंने किया. अगर मैं अपने दर्द से बाहर नहीं निकल के आ पाती और मैं घर के लोगों के साथ उस बात को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन या झगड़े और वो सब करते रहूं और हम आपस में दूर हो जाएं, ये लॉस किसने क्रिएट किया? अब ये सब लॉस के सामने वो आपका फाइनेंशियल लॉस कितना बड़ा बैठता है?
0: और इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट हैपेंस, कि जब मेरे साथ कुछ ऐसा लॉस होता है तो मैं ये चाहती हूँ कि एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि मेरा गुस्सा, मेरी फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है. मेरे को जो हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड टू मी.
1: फर्स्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड मायसेल्फ. If I can't understand myself, where is the question of you understanding me? And maybe you are in your own pain. You see, so for me to expect कि आप मुझे समझो, मैं खुद को ही नहीं समझ पा रही. तो इसलिए हर एक परिस्थिति में फिर भी yes, the situation is very big. Question is कि अभी भी मेरे control में क्या है, मैं सारी अपनी attention उस पर focus कर दूं. It's like मेरी एक चीज तो चली गई लेकिन तीन चीजें तो बची है ना. लेकिन क्योंकि मैं वो तीन चीजों का ध्यान न रख
0: कि वो तो है ही,
1: हाँ, फॉर ग्रांटेड उनको लगती हूँ. आज मेरा पैसा चला गया लेकिन मेरी मन की स्थिति अभी भी ठीक है, मेरा तन अभी भी ठीक है, मेरा परिवार अभी भी ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया तो ये तो गया गया, साथ में कितना और नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ? सिर्फ क्योंकि आई वॉज नॉट पेइंग अटेंशन देयर. सिर्फ बिकॉज आई वॉज मोर. क्यों हुआ, क्यों हुआ? नॉट इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, ओनली लुकिंग एंड चर्निंग ओवर द प्रॉब्लम. सोल्यूशन हर परिस्थिति में है. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली आपके सामने, कोई चैलेंज ही नहीं आने वाला जिसमें सोल्यूशन नहीं है. यस, इट जस्ट डिपेंड्स मुझे कितना टाइम लग जाता है उस सल्यूशन तक पहुंचने में. और सल्यूशन भी कब दिखाई देगा? सल्यूशन भी कब दिखाई देगा? जब माइंड थोड़ा सा
2: नहीं तो
1: मैं अपने दर्द में कौन सा सोल्यूशन दिखाई देगा? दर्द में तो सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगी. और जितना दर्द बढ़ता जाएगा, प्रॉब्लम इतनी भी होगी ना, तो वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी. और प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती जाएगी, उतना हम सोल्यूशन से दूर होते जाएंगे. परमात्मा का जो ज्ञान हमें मिलता है राजयोग के द्वारा, उसका पूरा पर्पज ही ये है कि जैसे ही आप अटेंशन आपके कंट्रोल में जो है, एंड दैट्स ओनली वन थिंग, माई स्टेट ऑफ बींग, उस पर जैसे ही जाता है, तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाते हैं. लेकिन अगर मैं कमजोर हो जाऊं, तो मेरे सामने, आफ्टर ऑल इट्स अ फाइट बिटवीन टू ना, प्रॉब्लम एंड मी, हम दोनों का आपस का संघर्ष है, ज्यादा शक्तिशाली कौन. लेकिन क्योंकि मैं इतनी कमजोर हो जाती हूँ, इतनी दर्द में चली जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं तो उसको देख के ही बैठ जाती हूँ.
2: इनफैक्ट यहाँ तो मुझे भी लग गया कि हमें प्रॉब्लम कहना ही नहीं चाहिए. The way you said, it's only a change.
1: It's the only a change. It's a situation, it's a challenge. उसको चैलेंज आप बोलो. बहुत बड़ी बात आ गई आपके सामने, आप उसको चैलेंज करके बोलो. प्रॉब्लम करके बोलते ही तो वो प्रॉब्लम ही एक लगने लगती है.
2: एक मुसीबत थोड़ी ना, हजारों मुसीबत.
1: यू नो, हमारी वोकैबुलरी भी ऐसे आ गई है. तो चेंज आएगा ही. There is only one thing, I had read this somewhere, very beautiful. There's only one thing that is constant, and that is change.
2: Yes.
1: So it's so beautiful. जब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि एक चीज है जो कभी रुकने वाली नहीं है, और वो है परिवर्तन. अब उसको मैं संघर्ष करूं उसके साथ, इट्स नो यूज. जस्ट बिकॉज आई थॉट जैसे चल रहा था वैसे बहुत अच्छा था, ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता ये? व्हाई डज दिस हैव टू चेंज? तो वो मेरे बोलने से या मेरे सोचने से रुकने वाला नहीं है. बट जैसे ही चेंज सामने आएगा, नाउ व्हाट डज इट डिमांड फ्रॉम यू? क्या चाहिए आपको?
2: मैं भी तो चेंज होनी चाहिए.
1: रिस्पॉन्स. एवरी चेंज, दिस चेंज कम्स फ्रॉम यू. रिएक्शन, राइट?
2: अच्छा, एक चीज मैंने और भी पढ़ी थी, जैसे आपने कहा कि दिस वन थिंग विच इज कॉन्स्टेंट इन लाइफ, दैट इज चेंज. एंड उसके आगे ही था, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड.
1: आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो. क्योंकि वही तो परमात्मा हमें रोज बताते हैं कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत बहुत अच्छा. अब इम्पोर्टेंट मेरे लिए सिर्फ ये है कि मुझे इस सेंटेंस को, क्योंकि परमात्मा के महावाक्य है, किसी मनुष्य आत्मा के नहीं, तो परमात्मा अगर ये स्टेटमेंट हमें दे रहे हैं, दैट मीन्स इट्स द ट्रूथ, दैट इज द फेथ. नाउ इफ आई रिजेक्ट द स्टेटमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ वो अच्छा, देन इट्स ओवर फॉर मी. मैं उसको उस दृष्टिकोण से लूंगी ही नहीं. लेकिन जहाँ ये फेथ है कि परमात्मा ने ये कहा है, और ये सेंटेंस ऐसा है जो मुझे लगता है हर एक को पता है. यू गो एनीवेयर, इट्स रिटन एवरीवेयर कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर द गुड. लेकिन इसको बिलीव कौन कर रहा?
2: कोई नहीं कर पा रहा है.
1: इसमें फेथ कितना है कि हाँ, जो हो रहा है वो अच्छा. तो लेकिन परमात्मा के महावाक्य है, अगर मैं उस समय, जिस समय मेरे सामने वो चैलेंज आता, मैं अगर वो महावाक्य को अपनी स्मृति में ले आऊं और उस

0: के बेसिस पे अब रिस्पॉन्स क्रिएट करूँ, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम ना लगकर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी कि अब इसमें मुझे क्या करना है. वी अग्री, एब्सोल्युटली अग्री कि जो भी सिचुएशन आज आ रही है ये छोटी नहीं है, ये बड़ी है, कल को और बड़ी भी आ सकती है. लेकिन डज दैट मीन कि आई विल कंटिन्यू टू लिव माय लाइफ इन पेन और इज देयर अनदर चॉइस?
1: दैट इज व्हाट इज फियर आल्सो. कंटिन्यूस डर. सिस्टर शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, सिचुएशंस हमारे सामने वो हैं जो हर व्यक्ति के जीवन की हैं, और कहीं ना कहीं एक ये परिवर्तन कि ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत, ये सरदर्द ना होकर एक चेंज, एक परिवर्तन है. आगे हम ज़रूर अपने आने वाली श्रृंखला में ज़रूर देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे है, कैसे इस चैलेंज में हमें देखना है कि ये शुभ के लिए कैसे हैं, क्योंकि परमात्मा का महावाक्य है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खरा और सच्चा है. सिस्टर शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: बिल्कुल, आज जहाँ शुरुआत हमने की थी, सिस्टर शिवानी ने यही हमसे रिक्वेस्ट की थी, आग्रह किया था कि हम इस जो पूरी बात हो रही है ये सिर्फ बात के लिए नहीं है, हमारे आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास ज़रूर करें. आज ही से, कल का भी क्यों इंतज़ार करें, आज ही से जो सिचुएशन अभी मुझे तंग कर रही है या जो सिचुएशन कल मेरे सामने आ सकती है, मेरी कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, मेरा कोई ऐसा इंटरव्यू हो सकता है मेरे बॉस के साथ जहाँ ये तय होना हो कि मैं किस तरफ जाऊंगा, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी बात हो सकती है जो डिसीजन लेना हो, अगर हम उसे एक चेंज के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में एक्सेप्ट कर लें. गुड और बैड हम बाद में देखेंगे, आने वाले एपिसोड्स जो हैं उसमें हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे कि उसमें गुडनेस क्या है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन रही हो, और उसको हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, ये बातें भी जानेंगे. लेकिन आज के लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसे अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. इम्प्लीमेंट करके जो आप अनुभव करते हैं वो हमारे साथ शेयर करें. उसके अलावा अगर आप के पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है, आप देश विदेश में फैले ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स पर जा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब तलाश सकते हैं. अगर आप नज़दीक के सेंटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन पर संपर्क करें या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर है 0999-344-666, 0983-666-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने आई है कि जीवन में कोई भी परेशानी है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मुसीबत जिसे हम अभी तक मानते आ रहे हैं, वो एक चैलेंज है, एक परिवर्तन है. इस थॉट को अपने साथ रखें, आने वाली कड़ियों में और बहुत सी बातें करेंगे. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

नमस्कार, मैं हूं सिंगर सायरा मैयर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। 23 जून 2026 आज का तारीख है और भारतीय समय के अनुसार राष्ट्रीय शके 1948 शके 2 गते 9 शुद्ध ज्येष्ठ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार हस्त आज है। इस्लामी हिजरी 1448 सात मरहम मंगल अवा आज है। इसके साथ ही महेश नवमी आज है और चंदी प्रसाद भट्ट इनका भी जन्मदिन है और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी आज है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी आज है और चलिए बहुत सारे दिन हैं आज, तो उन सभी के बारे में बातें करेंगे। त्योहारों का इस बंच आप सभी को मुबारक हो, ढेर सारी खुशियां आप सभी को आज मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ। आइए कार्यक्रम की एक बहुत ही सुंदर भजन के साथ हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे और इस बीच हमारे साथ गुड़ीलाल जी शायद होंगे और वो भी अपनी भावनाएँ विचार हमारे साथ साझा करते रहते हैं। हेलो जी।
1: अरे जी नमस्कार, मंगलवार की मंगल का शुभ कामना है।
0: जी जी जी।
1: हाँ तो एक भजन है सर।
0: हाँ।
1: दूध में थोड़ा।
0: हाँ?
1: क्रोध में थोड़ा, दूध में थोड़ा, क्रोध में थोड़ा, दूध ना दूध बोलना न छोड़ा, क्रोध बोलना न छोड़ा, राम रतन के छोड़ा। ये है सर भजन, ये हो जाएगा तो अच्छा लगेगा।
0: चलो, आप कौन सा गाना बता दिया मैंने तो अभी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं, है ना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। नई किरण इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, और दुख कभी ना आए, दुख भंजन हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। 8:24 हो रहे हैं और हनुमान जी का सुंदर भजन आपने सुना। चलिए बात करते हैं, आज महेश नवमी है, तो महेश नवमी ये विशेष तिथि के दिन मनाई जाती है और माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन माना जाता। तो माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति भगवान शिव की उत्पत्ति का या भगवान शिव के वरदान स्वरूप मानी जाती है। महेश नवमी माहेश्वरी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का मुख्य त्यौहार है। इस पावन पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और माहेश्वरी का कर्तव्य है और समाज उत्थान व एकता के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। महेश स्वरूप में आराध्य शिव पृथ्वी से भी ऊपर कोमल कमल पुष्प और बेल पत्ती त्रिपुण त्रिशूल डमरू के साथ लिंग रूप में शोभायमान होते हैं। भगवान शिव के इसी बोध चिन्ह के प्रतीक अपना महत्व होता है। तो माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को महेश नवमी या महेश जयंती का उत्सव माहेश्वरी समाज द्वारा मनाया जाता है। ये उत्सव महेश यानी शिव और माता पार्वती की आराधना को समर्पित है। महेश यानी शंकर जो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर में से एक है। ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन भगवान शंकर की कृपा से माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आते हैं। सुनते रहो, मुस्कराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे मधुबन 107.8 FM। चलिए, बहुत ही प्यारा सा कृष्ण भजन आपने सुना। आइए, जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे थे, महेश जयंती है, महेश्वरी समाज के लोग इस दिन को बहुत ही प्यार से मनाते हैं और ये शिव जी की आराधना करते हैं, शिव और पार्वती की आराधना करते हैं। और ऐसा बताया गया धर्म ग्रंथों के अनुसार, महेश्वरी समाज के पूर्वज पूर्वकाल में क्षत्रिय वंश के थे। शिकार के दौरान वो ऋषियों के श्राप से ग्रासित हुए, किंतु इस दिन भगवान शंकर ने अपनी कृपा से उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। केवल पूर्वजों की रक्षा की, बल्कि इस समाज को अपना नाम भी दिया, इसीलिए यह समुदाय माहेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें महेश यानी शंकर और वारी यानी समुदाय या वंश को कहा गया है। भगवान शंकर की आज्ञा से ही इस समाज के पूर्वजों के क्षत्रिय कर्म छोड़कर वैश्य या व्यापारिक कार्य में अपना समय लगाया। इसीलिए आज भी माहेश्वरी समाज वैश्य व्यापारिक समुदाय के रूप में पहचाना जाता है। माहेश्वरी समाज के 72 उपनामों या गोत्र का संबंध भी इसी प्रसंग से बताया जाता है। तो ये थी कुछ खास बातें माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताया। अब बात करते हैं बौद्ध चिन्ह के प्रतीक के बारे में। जी, कमलेश जी हमारे बीच आ गई हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप बौद्ध चिन्ह के बारे में ज़रूर बताइए।
1: जी नमस्कार, सुनने वालों को बहुत ही प्यार भरी सत्कार, ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: रमेश भाई जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम
0: जी।
1: तो बोध चिन्ह के चिन्ह व उसका प्रतीक जो है, महेश स्वरूप में आराध्य भगवान शिव पृथ्वी से ऊपर कोमल कमल पुष्प पर बेलपत्र त्रिपुंड त्रिशूल डमरू के साथ लिंग रूप में शोभायमान होते हैं
0: जी।
1: और भगवान शिव के इस बोध चिन्ह के प्रत्येक प्रतीक का आना
0: अपना
1: महत्व है ना?
0: जी, जी, जी।
1: तो पृथ्वी जो गोल प्रिधि में है, परंतु भगवान महेश ऊपर हैं, अर्थात पृथ्वी की प्रिधि भी जिन्हें नहीं बांध सकती, वह एक लिंग भगवान महेश संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है। त्रिपुंड का मतलब है इसमें तीन आड़ी रेखाएं हैं जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को समाये हुए हैं। एक खड़ी रेखा यानी भगवान शिव का ही तीसरा नेत्र है जो कि दुष्टों के दमन हेतु खुलता है। यह त्रिपुंड भस्म से ही लगाया जाता है जो कि देवाधेव महादेव की वैराग्य वृत्ति के साथ ही त्याग वृत्ति की ओर हमें दर्शाता है और आदेश देता है कि हम भी अपने जीवन में हमेशा त्याग व वैराग्य की भावना को समाहित कर समाज व देश का उत्थान करें, जैसे कि बाबा ने किया।
0: बिल्कुल।
1: और त्रिशूल विविध तापों को नष्ट करने वाला दुष्ट प्रवृत्ति का दमन कर सबके लिए शांति की स्थापना करता है। डमरू जो है स्वर संगीत की शिक्षा देकर कहता है,
0: उठो
1: जागो, जनमानस को जागृत कर समाज व देश की समस्याओं को दूर करो, परिवर्तन का डंका बजा दो। और कमल जो है जिसमें 9 पंखुड़ियां होती है जो कि 9 दुर्गा का प्रतीक है, नवमी ही हमारा उत्पत्ति दिवस है। कमल ही ऐसा पुष्प है जिसे भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से अंकुरित कर ब्रह्मा की उत्पत्ति की, और महालक्ष्मी कमल पर ही विराजमान है जो दोनों हाथों से कमल पुष्प लिए हुए हैं, और ज्ञान की देवी सरस्वती भी श्वेत कमल पर विराजमान होती हैं। इतना ही नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है, जल में रहता है, परंतु किसी भी में लिप्त नहीं होता। आप देखेंगे कि कमल के ऊपर आप कीचड़ डाल दीजिए, जल डाल दीजिए, वो एकदम फिसल के नीचे चला जाता है ना, यानी वो निर्लेप है सबसे। और यही भाव समाज का भी होना चाहिए, हम समाज में रहते हैं उसके लिए अच्छे कार्य करें, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्टेशन ना करके निर्लेप रहें, अपने आप में रहें, तो आपको दिल से सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, सत्कार मिलेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो माहेश्वरी समाज के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की, और उनके इस पर्व को अच्छी तरह से मनाएं, ऐसी शुभ आशा के साथ आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए शिव जी का सिमरन कर ले शिव को। अभी आपके लिए सांसों की माला वाला ये सुंदर गीत आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। सांसों की माला सिमरू मैं शिव के नाम, ये बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना। अंतरकरण से आप जब दिल से सुनते हैं तो दिल तक आपकी जो है आवाज़ भगवान तक पहुंचती है, निश्चित तौर पे आपको बड़ा अच्छा लगता है। और माहेश्वरी समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धार्मिक रूप से आज के दिन को विशेष रूप से इसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है और तैयारी करीब 3 दिन पूर्व ही शुरू हो जाती है, जिनमें धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और जय महेश के जनकारों की गूंज जो है ये नारा लगाते हैं और साथ चल समारोह में निकलते हैं। महेश नवमी के दिन भगवान शंकर और पार्वती जी की विशेष आराधना की जाती है और समस्त महेश्वरी समाज इस दिन भगवान शंकर और पार्वती के प्रति पूर्ण भक्ति और आस्था प्रकट करता है। और जगत कल्याण करने वाले भगवान शंकर के जिस तरह क्षत्रिय राजपूतों को शिकार छोड़कर व्यापार या वैश्य कर्म करने के लिए आज्ञा दी थी, यानी हिंसा को छोड़कर अहिंसा के साथ कर्म और कर्म का मार्ग बताया था, इससे महेश नवमी का ये उत्सव यही संदेश देता है कि मानव को यथासंभव हर प्रकार की हिंसा का त्याग करके जगत कल्याण, परोपकार और स्वार्थ से परे होकर कर्म करना चाहिए।
1: जी, बहुत बहुत मुबारक सुनने वालों को
0: जी।
1: और कोई भी ऐसे दिन, मेले या धार्मिक जगह जो चीजें मनाई जाती है वो हम सबके लिए ही होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उनमें त्याग की भावना सिखाई जाती है, जन कल्याण की और अपने आप को समझने की बात की जाती है। तो रमेश जी, आज गीत सुनाने का कोई या सुनने का आपका है मूड के नहीं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए आप।
1: मदन
0: अच्छा
1: भाई
0: से।
1: जी से पूछ लेते हैं कि वो सुनाने वाले हैं या
0: वो तो 9 बजे के बाद अभी उनकी तैयारी चल रही होंगी।
1: ठीक
0: जी, आप सुनाइए तब तक।
1: गीत है फिल्म अनपढ़ का
0: जी,
1: और ये गीत मदन मोहन साहब ने इसको संगीत दिया
0: जी,
1: और राजा मेहदी लिखान ने इसको लिखा और मदन मोहन साहब ने संगीत दिया
0: जी,
1: लता जी ने गाया। और ये गीत यूं है

0: जी
1: बहुत बहुत सुनने के लिए।
0: जी जी कमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया, आशा करूँगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को अच्छा लग रहा है। तो आइए बात कर रहे थे हम लोग माहेश्वरी समाज के बारे में। तो आज जितने भी लोग हमारे माहेश्वरी समाज के लोग सुन रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत उनको समर्पित ये सुंदर भजन अभी।

0: नमस्कार, माहेश्वरी की शान। ये सुंदर भजन आप सुन रहे थे। सभी माहेश्वरी समाज वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, हमारे साथ सुरेश जी जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार। हेलो, हेलो
1: जी, कट गया फोन, आवाज़
0: क्लियर
1: नहीं थी।
0: चलिए, इंतजार करते हैं, अभी आप सभी को ले चलते हैं। अब जैसे कि आज संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी है, तो इसके लिए बताया जाता है कि ये दिवस विधवा महिलाओं की समस्याओं के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिसमें पता चलता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार की अपेक्षा और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर नागरिक समाज संगठन की समाज के इस अपेक्षित वर्ग के अनदेखी करते हैं और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, सभी उम्र क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं की स्थिति को विशेष पहचान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 23 जून 2011 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की घोषणा हुई थी। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो,
0: हेलो,
2: आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन
0: जी। चलो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया याद करने के लिए।
1: विधवाओं और उनके बच्चों से दुर्व्यवहार मानव अधिकारों का सबसे गंभीर उल्लंघन माना गया है। राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में इसको जाना गया है।
0: जी जी जी, जी और हेलो जी, नमस्कार।
3: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते सुरेश जी, स्वागत है आपका। बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सुरेश जी, आप कैसे हैं?
3: आप आगे रहते हैं तो हम भी खुश रह जाते हैं और अच्छा गाना सुना देते हैं तो बात खुशी रहती है।
1: जी जी जी, कोशिश तो यही रहती है कि आपको खुशी दे।
3: गाना गाना इससे कई सारा फर्क है कि तो अब गाना जो सुनाते हैं तो एक खुशी और बढ़ जाती है कि हम भी जैसे हम भी कुछ न कुछ तो गा ही लेते हैं जैसे आप गाते हैं। तो बस हमको भी एक गाने का मौका तो मिल ही जाता है,
0: मिल ही जाता है।
3: हम आपसे कार्यक्रम सुनते हैं और एकदम मुस्कुर रहते रहते हैं और साथ साथ गाने भी गाते रहते हैं।
1: जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है।
3: मैं भी आपको 2-4 लाइन सुना दूं।
1: हाँ जी, हाँ जी, सुनाइए।
3: गाएगा गीत मिलन के तू अपने लगन के सजन घर जाना है। गाए

लूट न जाए जीवन का डेरा मुझको है ये गम, हम है अकेले जरा लूटे

0: पल के खिले थे फूले मन के कई, गाएगा गीत मिलन के तू अपने लगन के सजन घर जाना है। नमस्ते।
1: नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी सुरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीत सुनाने के लिए। बहुत ही प्यारा गीत, बहुत पुराना गीत। और हम विधवाओं की बात कर रहे थे, सामाजिक तौर पर विधवाओं को वो जगह नहीं दी जाती, उनकी मतलब उस नजरों से नहीं देखा जाता, उनकी गरीबी का और हिंसा उन पर होती है घरों में,
1: कई बार उनके बच्चों से भी दुर्व्यवहार करते हैं, मानव अधिकार का सबसे
2: बीमार हो जाए तो उनको देखने वाला नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी नमस्कार,
3: राम बोल रहा सर, रमेश भाई
1: बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
3: बस आपकी दया से बैठे हैं खाट पे।
1: जी जी जी, और बताइए आप
2: जी जी।
1: फोन कट जा रहा है मेरे ख्याल से।
2: जी जी जी, 40 मिलियन विधवाएं जो हैं भारत में हैं, और 15,000 विधवाएं जो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पवित्र शहर वृंदावन की सड़कों पर देखी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: तो ये देखिए स्थिति ये है, और शारीरिक शोषण इनका हो जाता है कई बार ना, तो इन चीजों के लिए, इन चीजों को सुधारने के लिए ये दिन मनाए जाते हैं, हमें जागरूक करने के लिए मनाए जाते हैं, तो उनकी जरूरतें

0: बल्कि अभी तो समय बहुत बदल गया। लोग जो हैं इस बात को समझने लगे हैं कि हर उम्र में आपको एक अच्छे सलाहकार, अच्छे साथी की जरूरत होती है। तो दोबारा शादी करने के लिए भी लोग इसके लिए आगे आने लगे हैं ना, उम्र के मुताबिक जैसे आपको ठीक लगे। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, चाहे विधवा हो या छोटे बच्चे जिनको कोई दिखता नहीं है, तो उनके साथ जितना आप अच्छा कर सकते हैं करने की कोशिश में रहें,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: तभी ये दिन जो है मनाने का फायदा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जीने का अधिकार है,
0: जी
1: तो
0: जी जी
1: सबको समान भाव से आप सम्मान दें और उनका केयर करें और उनका अनादर ना करें। अगर आप कुछ सहयोग नहीं कर सकते हैं,
0: जी जी
1: उनका
0: जी
1: भला नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ बुरा व्यवहार भी ना करें। उनको जो है आप अपने रास्ते रहें, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीते हैं। तो दुनिया में क्या हो जाता है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें, अवसर, लोग जो हैं मुफ्त के अवसर के ताक में रहते हैं और वही लोग इस तरह के काम करते हैं। तो ऐसे एक्चुअली में दूसरे का दुर्व्यवहार करने के बजाय वो खुद अपने अपने काम को अच्छे से
0: मेंटेलिटी जो
1: करें।
0: है ना, हाँ
1: हाँ
0: जी
1: हाँ
0: हाँ जी। अब
1: हाँ
0: देखिए कि सबसे बड़ी बात, जो एजुकेशन जो लेवल है ना, वो अगर बढ़ जाए तो अगर किसी स्थिति पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपना सफ़र जीवन का आप अच्छे से तय कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो आप
1: बिल्कुल
0: अच्छे कामों में लगा सकते हैं, है ना। आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। समाज में बहुत से ऐसे काम हैं जिनको आप लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि बेटियों को पढ़ाइए,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनको
1: पढ़ाई
0: शिक्षा
1: लिखाई
0: दीजिए।
1: आगे बढ़ाएं और उनको जो है,
0: बिल्कुल
1: और जिस
0: अच्छा।
1: भी तरह से हो, लेकिन अगर विधवा कोई बन जाती तो उनके प्रति आपकी सहानुभूति हो जाना
0: होना
1: चाहिए, उनको
0: चाहिए
1: सहयोग
0: एकदम।
1: देना चाहिए, ना कि उनका अनादर करना चाहिए। तो यहाँ पर विधवा संरक्षण विधायक भी पास हुआ है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक जी ने
0: जी
1: भारत में विधवाओं के रक्षा के लिए एक विधायक का मसौदा तैयार किया। संसद के बजट सत्र में वृंदावन में रहने वाली हजारों विधवाओं की सहायता के लिए एक विधवा संरक्षण विधायक को बनाने की इच्छा व्यक्त की गई थी।
0: जी जी जी बहुत
1: तो
0: अच्छी
1: ये
0: बात
1: बहुत ही
0: है।
1: अच्छा कदम है उनका।
0: वो ही
1: तो
0: समझेगा उनके
1: जी जी जी जी
0: मुश्किलों को।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी
1: चलिए आगे बढ़ते हुए वक्त हो गया है समाचारों का, और समाचार अभी डाउनलोड हो रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ अंकुश फिल्म का ये प्यारा सा सुबह का भजन
0: बहुत
1: आपके
0: बहुत
1: लिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण

0: लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैदाब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
5: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला

0: सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक बार समाचारों के बाद 9:20 हो रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बातें चल रही थी खास माहेश्वरी समाज के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में बातें हुई। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के बारे में। आप बात करते हैं, ये 23 जून को ही मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और ये दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवाओं को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। अब देखा जाए तो WHO अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2002 को 57/277 प्रस्ताव पारित करके 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवाओं की भूमिका की पहचान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। और इस दिन पर उन लोगों को भी सम्मानित किया जाता है जो मानवता की सेवा की जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा संस्थानों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से नवाचार के लिए जाना जाता है या उसके लिए योगदान देते हैं। और हर साल संयुक्त राष्ट्र जनसेवा पुरस्कार भी दिया जाता है। जो लोग समाज में अच्छा काम करते हैं, जिम्मेवारी लेते हैं, उनको यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया जाता है। और हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उत्कृष्ट कार्य करने वालों को, संस्थानों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2013 का ये पुरस्कार बहरीन की राजधानी मानमा में 24 जून से 27 जून 2013 के मध्य आयोजित समारोह में दिए गए। और 2014 में विषय था सतत विकास और लोगों की खुशहाली के लिए शासन का नवीनीकरण करना था। और 2013 का विषय रखा गया था परिवर्तनकारी ई गवर्नमेंट और अभिनव, सभी के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण। जी कमलेश जी, आप भी शायद रेडियो में थे तभी ऐसे नवाचार के लिए शायद कुछ विशेष जो
1: है जाते थे। और जनसेवा करना बहुत बड़ी बात होती है, हमें तो अपनी जिम्मेवारियां घर से निभाने की फुर्सत नहीं मिलती। तो जो लोग जनसेवा में आते हैं, समाज की सेवा करते हैं, उनका बहुत बड़ा फराग दिल होते हैं वो, और समय से समय निकाल कर ये काम करना पड़ता है। देखिए सरकार फिर यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड से प्रदान कर जो उनको सम्मानित करती है, और जो है सेवा जो है वो सेवा की भावना पैदा करना बहुत जरूरी है ना, इसीलिए हम आगे आएंगे। नहीं तो आप देखेंगे कि घरों में कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जो घर का काम या बाहर का काम करके बिल्कुल खुश नहीं होते, उनमें सुस्ती होती है, उनमें ना कहने की ज़्यादा ताकत होती है हर काम को ना। तो उसके लिए आपको समय के पाबंद होना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पूरा आपका जो चार्ट बनाना पड़ेगा समय का, जिसमें आपने क्या क्या घर के लिए करना, क्या क्या बाहर के लिए करना है ना।
0: तो हेलो जी, नमस्कार।
2: नमस्कार सर
0: जी। नमस्ते वंदना जी।
2: सर मैम बहुत अच्छा गाना गाती हैं, एक गाना सुनवा दीजिए उनसे प्लीज। के माने ना
1: सुरेश जी और रमेश जी भाई जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आप ही गाना गाते रहते हो, बाकी कब गाएंगे।
2: नहीं नहीं नहीं मैम, प्लीज मेरे लिए तो आप सुनाई दीजिए दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, प्लीज दो लाइन सुना दीजिए।
1: अच्छा दिल दीवाना, ये तो मुझे शायद पूरा याद नहीं होगा। दिल दीवाना
2: समझाए से समझे ना,
1: दिल दीवाना
2: सजे।

0: बहुत अच्छा गाना गाया, थैंक यू सो मच। और आपके आने से एक्चुअली स्टूडियो का माहौल बहुत अच्छा बन गया है। थैंक यू मैम।
1: आपकी भी आवाज बहुत अच्छी है, शुक्रिया आपने याद किया हमें। वैसे ये है कि देखिए, मैं तो कभी कभी आने का मौका मिलता है तो रमेश भाई तो ये सेवा जो 20 सालों से निभा रहे हैं तो वही मुझे मौका देते हैं इसमें आने का, है।
2: ये थे वंदना जी, जो खुद भी गाती हैं, तबला भी बजाती हैं, आप भी संगीत से जुड़े हुए हैं
1: जी,
2: तो बाबा की सेवा में लगे रहते हैं। अभी आर्ट एंड कल्चर विंग में उनके गुरुजी को भी लेकर आ रहे हैं
1: जी, जी, जी।
2: तो ज्ञान सरोवर में वो रहेंगे
1: जी।
2: तो चलिए, जैसे कि हम लोग आज संयुक्त राष्ट्र संघ लोक सेवा जो है पुरस्कार से सम्मानित करने वाला ये दिन आज है, तो जो लोग समाज में सेवाएं करते हैं, रेडियो मधुबन उन सभी को दिल से धन्यवाद करता है। और अगर आप कोई सामाजिक सेवा करते हैं तो ज़रूर हमें फ़ोन करके बताइए, हमें खुशी होगी आपके बारे में जानकर और आपकी सेवाओं के बारे में लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। तो जो लोग बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए या जो विधवाओं के लिए काम करते हो या समाज में ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हो या आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम करते हो, ऐसे समुदाय के लोगों को भी हम याद करना चाहेंगे। अगर आप कुछ ऐसी सेवाएं करते हैं तो फ़ोन करिए 9414151415 इस नंबर पर और हमें बताइए जी। तो कमलेश जी, अभी कौन से गीत की तरफ चलेंगे हम?
1: गीत आप सुनाइए, कंप्यूटर ही सुनाएगा ना नेक्स्ट गीत, तो या फिर हमारे मदन भाई आएंगे सुनने के लिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए, खास वंदना जी के लिए।

0: बहुत ही प्यारा गीत आनंद फिल्म का,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये जो पर फिल्माया गया ये गीत, और उनकी जीवन की एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म कही जा सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो अभी जो प्रोग्राम चल रहा है नई किरण
1: जी,
0: तो इसमें हमारे युगल भी, जो पता ही है सब सुनने वालों को, हमारे साथ ही आए हुए हैं और गाने का शौक रखते हैं वो भी। कल उनको मौका नहीं मिला तो पूरा दिन मेरे से नाराज रहे तो आज उनकी नाराजगी रमेश जी आपको दूर करनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी।
1: आइए गुलाटी जी सुनाइए गीत और जी कौन सा गीत सुनाएंगे आप?
2: गीत है जी अपना यहूदी फिल्म का,
1: हाँ
2: मुकेश जी ने बोला है।
1: अच्छा,
2: दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत है।
1: चलिए यहूदी का बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल,
2: गीत है ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर।
1: क्या बात है,

0: चलिए गुलाटी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही प्यारा सा यहूदी फिल्म का ये गीत आपने सुनाया, और ये गीत दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया था 1958 में, और मीना कुमारी दिलीप कुमार पर पिक्चराइज किया गया ये गीत मुकेश जी की आवाज़ में गाया गया था, मुकेश जी ने गाया था, शंकर जयकिशन ने इस संगीत से सजाया था, और शैलेंद्र जी ने इस गाने को लिखा था। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, बोलिए।
1: बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है।
0: जी जी जी, शुक्रिया आपका।
1: गाना सुना अभी जो चला था, ये मिले मेरा दीवाना बना, बहुत ही अच्छे सुर में गाया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया। आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, सुशील कुमार।
0: सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी हैं और उनके साथ उनके युगल गुलाटी सर भी हैं, दोनों बहुत अच्छे गाते हैं और अभी प्रोग्राम सेवा में रुके हुए हैं 27 तारीख तक।
1: बहुत सुंदर प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है।
0: शुक्रिया शुक्रिया सुशील भाई, बहुत बहुत
2: धन्यवाद। अकेला आदमी हंस नहीं सकता ना, तो अगर किसी के साथ बात करो, कोई बात चले, तभी तो हंसी आए है? तो इसीलिए प्रोग्राम अच्छा हो जाता है जब दो तीन
0: जी जी जी। शुक्रिया शुक्रिया, ओम शांति। चलिए नमस्ते, आगे बढ़ते हैं। सुशील कुमार जी भी रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और बड़े प्यार से, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग आज के दिन की विशेष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और माहेश्वरी नवमी आज है जिसके बारे में हमने जिक्र किया। इसके साथ मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार। अच्छा बुरा राम जी, स्वागत है, बोलिए। जी जी
3: अच्छा, वो मेरे मन बहन भाई को और सुरेश भाई और सब मदन भाई और सबको मेरा राम राम, और आपको और आप बहन को दोनों को
0: जी जी जी जी जी
2: राम जी।
3: सुनना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
3: वो ऐसा है, अच्छा है, फिल्म का तो नाम नहीं याद रहा, लेकिन वो हमसे का भूल हुई जो ऐसा करके गाना है,
2: हमसे का भूल हुई,
3: भूल हुई
0: जो सजाम को मिली,
3: ऐसा करके अच्छा गाना है, वो सुनाएंगे तो बहुत अच्छा।
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर गीत आपने याद कराया है। जनता हवलदार का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधु भी इस गाने को सुनते होंगे, और ये भी बहुत टाइम तक ये गीत जो है लोगों के जुबान पर रहा, जनता हवलदार का। आइए एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी नमस्ते। तो एक सैड सॉन्ग है ये, थोड़ी देर में सुनाते हैं। और वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन है जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह तीसरी, चौथी और पांचवी, सातवीं और पंद्रहवीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 28 मई 2009 को इस्पात मंत्री बनाए गए थे, और फिर उसके बाद राजनीति के अलावा वीरभद्र सिंह ने विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक निकायों के साथ भागीदारी भी की और सांस्कृतिक साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर भी रहे, और सोवियत संघ के मित्र भी हिमाचल शाखा के अध्यक्ष बने रहे। तो आइए इनके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं कुछ ही पलों में, लेकिन अभी आपको सीधे ले चलते हैं बुरा राम जी का ये गीत आपके लिए।

जो ये सजा हम का मिली अपना चारों तरफ बंद है दुनिया।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे जनता अवलदार इस एल्बम से, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा ये गीत, अनवर जी ने गाया था, राजेश रोशन और इन पर पिक्चराइज किया गया था, संगीतकार राजेश रोशन थे,
1: राजेश
0: खन्ना पर,
1: राजेश का रोशन जो संगीतकार
0: थे। जी जी,
1: जनता हवलदार का ये गीत।
0: जी जी जी, हेलो जी, नमस्कार। हेलो,
1: वाह वाह वाह, आइए आइए। हाँ जी मदन भाई, बोलिए।
2: हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू कमला जी।
1: जी जी,
2: कमलेश जैन, कमलेश
1: जी, जी जी, नमस्कार। बता जी, कैसे हैं?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ, और बस बस किसी बड़ी आवाज से काम कर रहा हूँ बड़ी, और बस ईश्वर को याद करता रहता हूँ, और समय को देखता हूँ, और सभी दोस्तों को याद कर रहा हूँ, अपने अपने बुद्धि ज्ञान से काम कर रहे हैं। भगवान ने सबसे बड़ा ज्ञान दिया है, सबकी बुद्धि अलग अलग है, मैं अगर वो नहीं कर सकता तो दूसरा कर सकता, हर एक भगवान ने बहुत अच्छा बुद्धि दी है। भगवान देखता है कि भाई कौन सी बुद्धि कहाँ दौड़ाती है, भगवान सभी को कल्याणकारी समझता है।
1: आप जैसे कोई नहीं है, आप जैसे कोई भी नहीं है मदन।
2: और आज मंगलवार है तो बस हमारे सभी दोस्तों को नमस्कार है, और रेडियो मधुबन को नमस्कार है, नवीन किरण को नमस्कार है, रमेश जी को नमस्कार है, कमलेश जी को नमस्कार है, और बहुत बहुत सबका दिन अच्छा जा रहा है, शुभकामना करते हैं। और जो वैसे शो सुन रहे हैं बहुत अच्छा लगे हैं, सुप्रभात हमारे ओम शांति की भैया जी को, डॉक्टर साहब को, बहुत इन दिनों बहुत अच्छे सुनाते हैं। अगर इन चीजों को पालन करें हम सब, जो हम तो कर रहे हैं, खैर हम सुनाते भी है, कर रहे भी है, मगर जो कुछ है वो अगर खान पीन का और एक दूसरे को बताते रहें तो थोड़ी बहुत डॉक्टर को भी थोड़ी समस्या, मतलब हैरान गती नहीं होगी, वरना डॉक्टर साहब को भी बैठने का टाइम नहीं होता है, कितने मरीज आते रहते हैं। तो नमस्कार करते हैं, और आज क्या गाएंगे? कौन किसी को बांध सका, कौन किसी को बांध सका, सही याद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा देखना एक दिन पंछी तोड़ जाना है। कह दो शिकारी को पंजा लगा के देखे, अब जिसमें हिम्मत है तू आगे बढ़ा के देखे, परशुराम गड़ा से भी बोले गो।
1: मल्टी टैलेंटेड है, गीत के साथ साथ म्यूजिक
0: म्यूजिक भी आ जाता साथ में। उड़े जाना है, बिल्कुल बिल्कुल।
2: लाल जी को हमने पिक्चर देखी थी, वो मुखेंद्र का सिकंदर, उसमें अमिताभ जी को कहते हैं हमें मियाँ, हम तो तुम्हें समुन्द्र में डुबाने के लिए लाए थे, उल्टा समुन्द्र को पी के चले।
0: समुंदर में डुबाने ले चले थे तुमसे, समुंदर को पी के चले।
2: ओम शांति,
0: ओम शांति।
2: नमस्कार, ओम शांति,
1: ओम शांति,
0: ओम शांति।
2: और आपको बहुत बहुत नमस्कार है, ओम शांति।
1: नमस्कार,
0: जी जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी के बारे में, वीरभद्रा सिंह के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग, और राजनी का इनका सफ़र जो है काफ़ी लंबा रहा है, 1962 से सफ़र शुरू होते होते सीधे 2012 तक जो है, 25 दिसंबर को वे 2012 को हिमाचल प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री बने, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा 1952 और 76 तक ये रहे मंत्री, और इस तरह से मुख्यमंत्री, और विशेष 8 जुलाई 2021 को दिन गुरुवार को इनका विशेष निधन हो गया। उन्होंने 87 साल की उम्र में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में सुबह 3:30 बजे इनका इन्होंने अंतिम सांसें ली और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कोरोना से ठीक होने के बाद ये 23 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी मिली और फिर शिमला आ गए थे। उसके कुछ दिन बाद इनको दिक्कतें होने लगी, जिसके बाद इन्होंने अपना पुराना देह को त्याग दिया। हेलो जी सुगना बहन, बोलिए, स्वागत है आपका।
3: नमस्ते, ओम शांति।
0: ओम शांति जी, ओम शांति,
1: ओम शांति।
3: कमलेश दीदी, आपको भी ओम शांति
1: जी। ओम शांति।
3: बहुत अच्छी अच्छी फरमाइश हमारे दोस्त जो देते हैं, तो अच्छे हमको बहुत मजा आता है। हमारे दोस्त जुड़ते हैं तो और ही मजा आता।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: हमारे दीदी जी की आवाज भी बहुत अच्छी है।
1: शुक्रिया,
3: आते रहिए हमारे मधुबन परिवार में आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्यार ही हमें खींच कर ले आता है यहाँ तक। पंजाब से है तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी हम आपको वहाँ भी आपको याद करते रहते हैं ना? तो हमेशा मन में
3: आपकी आवाज देखो, ऐसे भी यार जी सब होते हैं, रेडियो मधुबन ये सब परिवार है, सब की आवाज बहुत मीठी मीठी होती है। क्या क्या कुछ याद है, क्या आता है इतनी आवाज हमारे रमेश जी में तो आते हैं, उनकी
1: मिश्री खाते हैं, मिश्री मिश्री खाते हैं
3: परिवार की। हाँ, आवाज बहुत अच्छी
0: जी शुक्रिया मैम।
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: आप सुनाइए कुछ, आज क्या कहना चाहते हैं आप, कुछ खास कहना चाहते हैं? आपके पास तो बहुत कुछ होगा कहने के लिए।
3: हम तो देखो दीदी, क्या है कि 9:30 बजे तक तो हम रेडियो बंद रखते, ऐसे तो चालू होता है सुबह से, लेकिन हम देखो मुरली पढ़ते हैं सब शांति से, सब पूरा का मुरली सुन के बाद में घर का काम करते है, ये हमारा रोज का नियम है।
1: बहुत अच्छा, तो देखिए
3: बाबा का सम्मान भी रखते हैं। देखो आज तो हमने जगत अम्बा का सम्मान रखा है, 8 दिन का जो सम्मान होता है तो आज रखा है, देखो क्या होता है बाबा की याद में।
0: जी जी जी,
1: देखिए जीवन बदल गया ना, आपका जीवन बदल जाता है हर एक का। तो कोई चमत्कार नहीं होता, ये अपने अंदर से एक चेंज आती है जो बिल्कुल स्थापित हो जाती है जब चीज है ना।
3: अरे दीदी, चेंज तो इतनी आती है, देखो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसे हमारे जीवन में चेंज आती है, हमें धीमे धीमे पता ही नहीं चलता है हमको। बहुत अच्छा लगता है, हम तो मधुबन से जुड़े देखो कितने साल हो गए।
1: अभी आज भी बाबा मुरली में बोल रहे थे कि आत्मा का धर्म जो है वो प्रभु को याद रखना, बड़ी मीठी है वो, है ना, लेकिन इस दुनिया में आके हम भूल जाते हैं उसे।
3: ईश्वर से नहीं जुड़े होते कोई, हम अच्छे काम कार्य से नहीं जुड़ते तो हमारा जीवन ऐसे जीवन जीवन ही नहीं कहलाता है।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल। और आप जैसे जो सच्ची आत्माएं हैं, जो परमात्मा से बाबा से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी आत्मा को बचाने में और उनको आगे लेके आने में की ताकत रखती हैं, शक्ति देता है बाबा आपको, है ना। तो सहन शक्ति की बात की उन्होंने आज, वाणी जो है वो आपकी मीठी होनी चाहिए और दोनों चीजें होनी चाहिए, एक
3: तो
1: बैलेंस होना चाहिए।
3: हमारे अंदर कितनी शक्तियां भरी है लेकिन हमको पता ही नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
3: तो
0: बढ़िया।
3: हम ये शक्ति का यूज करते हैं ना थोड़ा थोड़ा, तो हम भी सीखते हैं, हमारे आर्य परिवार ने तो सीख लिया है, हम भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: बस एक बार आप दिन में एक बार बोल दीजिए बाबा के बच्चे हैं, है ना, शिव बाबा हमारा पिता है, तो बहुत सारी शक्तियां अपने आप जागृत होना शुरू हो जाती हैं। तो उनको समझना, उनको अमल में लाना, उनको कोशिश करना कि पूरा अमल में लाओ उसको, जब पूरा अमल में आ जाएंगे तो हम बाबा के जैसे।
3: ये तो हमारी पूरी कोशिश रहती है दीदी, ऐसे देखो पाठशाला में भी जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं, कोई काम होता तो नहीं जाते, लेकिन हम
0: सुनते जरूर है
3: हमने। तो सुबह में हमारे जो पति देव है वो चाय नाश्ता करके दुकान चले जाते हैं, फिर उनको सब काम करके फिर हम पहले मुरली पढ़ते, सब घर के काम शुरुआत फिर बाद में करते हैं, पहले मुरली सुनते हैं, क्योंकि मम्मा का भी है ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है।
1: देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको मैं ना, हम लोग पिछले साल यूके गए हुए थे, तो वहाँ पे तो आप इन चीजों को मिस करते हो ना, लेकिन आप बच्चों के पास होते हो आप खुश भी होते हो, तो छोटे बच्चे थे, उनको टीवी देखने की आदत थी, वो अपना रिमोट अपना संभाल के रख के जाते थे कि कोई और ना ले ले, है ना, आपस में उनका चलता रहता था। तो जब हम लोग गए तो मैंने मुरली सुनना होता था, तो मैंने मुरली सुनने को उनको बोला कि मुझे अब रिमोट चाहिए, तो थोड़ी उसने आनाकानी की, लेकिन जब उसने देखा कि दादी मानने वाली नहीं है, रोज ये मुरली सुनेगी, तो अपने आप मुझे रिमोट देके चला जाता था। मुझे हंसी भी आती थी और वो देखता था कि ये क्या सुनती है रोज, है ना। तो ये चीजें जो है ना, रूटीन आपको बनानी पड़ेगी ना, समय निकालना पड़ेगा। तो अगर आप
3: हमने बना लिए रोज की, रोज अभी देखो 15 दिन से ऊपर हुआ है, बस ये ठीक टाइम कर लिया है बस।
1: कभी कभी ये भी होता होगा, कभी कभी ये भी होता है कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है ना, तो उसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे दिन आप मुरली सुनोगे ना, पता नहीं क्या होता है चमत्कार उस मुरली में, आपको इतना स्टीक आवाज जो जवाब मिल जाता है कि आपका मन खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सुकना बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए मित्रों, अब वक्त हो गया है आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जन्मदिन आज है, और आज 23 जून हो गया है, तो 23 जून को जन्मे उन लोगों में से कुछ खास लोग हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। विशेष राजनीतिक संजीव कुमार बलियान, इनका जन्मदिन आज है, 1972 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही एक और शख्सियत है, पूर्व भारतीय फुटबॉल प्लेयर, और इनका भी जन्मदिन सैयद हकीम, इनका भी जन्मदिन आज है, 1939 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। और इसके साथ ही एन भास्कर राव, भारत के राजनीतिक रहे हैं जिनका संबंध तेलुगु देशम पार्टी से रहा, 1936 में इनका जन्म हुआ। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक प्रदीप कुमार बैनर्जी, 1936 में इनका जन्म हुआ। गांधीवादी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे चंदी प्रसाद भट्ट, इनका भी जन्मदिन आज है, 1934 में इनका जन्म हुआ। और 1934 में ही आज ही के दिन वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, इनका भी जन्मदिन आज है। और राजेंद्र नाथ लोहिया जी लाहिड़िया, 1901 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक और अंग्रेज गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग, 1912 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। चलिए, जिनका भी जन्मदिन आज है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलिए, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।
1: इन्होंने सभी ने बहुत अच्छे काम किए और
0: चलिए, आप जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को बहुत शुभकामनाएं, और एक और सुंदर संगीत आप सबके लिए, सुनते रहो मस्कराते रहो।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम, सुनेगा ये जहां मिलकर छुएंगे हम ये आसमां, मिलकर छुएंगे।

तो आज महेश नवमी है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और ये माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए महेश नवमी के रूप में इसको मनाया जाता है। स्वागत है उस पावन बेला का जो गौरव का संदेश लाती है। महेश जयंती की शुभ घड़ी हर हृदय में खुशियां जगाती है, हर हृदय में खुशियां जगाती है। तो महेश नवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा घणी सा। भक्ति करो तो ऐसी करिए कि जिसमें ईश्वर के दर्शन हो जाए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, ये हमारे हाथों की 10 उंगलियां है, इसका कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हाथों के द्वारा कि बहुत सारी बीमारियों पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज हाथों के सूक्ष्म व्यायाम आप सीखेंगे, और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, आज मैं अपनी पसंद की रेसिपी सिखाऊंगी। हमेशा आपकी पसंद पूछती हूँ, आप बताते नहीं हैं, तो आज मैं अपनी पसंद की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। उसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा इंतज़ार करिए, सुनिए कार्यक्रम, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आप सभी को महाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का सुंदर सा विचार है, भक्ति करो तो ऐसी करिए कि ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर के समीप पहुंच जाए। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गाँव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुँच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां

का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बस फिर बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब या 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे कह के चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने इष्ट पर, अपने शिव पर, कि वो ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी, देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया, और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वे बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे 6 महीना होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे पंडित जी, रात में मैं यही सो गया था, मैं कहीं गया ही नहीं। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ, तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रहे हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगछाल पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके, सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शंकर के दर्शन कर लिए हैं, उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया, यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है, हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि ईश्वर भक्ति करनी ही है तो सच्चे हृदय से करिए, ताकि हम ईश्वर के समीप पहुंच जाए। और अब फिर से सुन लेते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: Hi, this is Raveena Tandon, and I take this opportunity to wish Brahma Kumaris with all the success in their love that they've been giving to the world and the social service that they have been spreading all over our planet. I wish you all the best, and I wish that more and more people become aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना कार्यक्रम में बात करते हैं हमारे हाथों की पांचों उंगलियों और उनसे जुड़े पंच तत्वों के योग और एक्यूप्रेशर। परंपरा में माना जाता है कि हर उंगली एक विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, तो मैं आपको अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम सिखाने जा रही हूँ। देखिए, हमारे ऋषि मुनि भी क्या गजब के है, कथा कीर्तन करते हैं, बीच बीच में कहते हैं ताली बजाओ। कितने सारे फायदे, एक तो नींद नहीं आएगी जो भी सुना रहे, ध्यान से सुनेंगे, दूसरा है ताली बजाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां खत्म होगी। इसलिए ऋषि मुनियों को कम नहीं आंकना है। तो हाथों के सूक्ष्म व्यायाम में पहले तो ताली ही बजानी है, और ताली ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऐसे नहीं, कड़क दोनों हाथ रख करके इतने अच्छी तरह बजानी है कि हमारे हाथ के जो हथेलियों के जो भी ये नसें है, ये सब पॉइंट है, ये दबे, इसलिए जोर से बजानी है। ठीक है, तो आप कथा कीर्तन में भी जाओ या कोई भी प्रोग्राम देखो और ताली बजाओ, थोड़ी जोर से बजा देना। धीरे धीरे बजाओगे तो पॉइंट नहीं दबेंगे, ठीक है। इसलिए बजा ही रहे हो तो अच्छी तरह बजाइए, तो तालियां बजानी है पहले। एक्सरसाइज क्या फ़ायदा है वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी बाद में कि भाई कौन सी उंगली का कौन सा फ़ायदा है। तो पहले तो आप ताली बजाइए, दूसरा आप अपने अंगूठे को नीचे की ओर करिए और अच्छी तरह दूसरे हाथ से घुमाइए, उसको रगड़िए, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रगड़िए, ऐसे सभी उंगलियों को, ठीक है, दो दो मिनट सभी पर दीजिए। और तीसरा है एक्सरसाइज, अपने हथेलियों को खुला रखिए, उंगलियों को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, ठीक है, और एक उंगली के अंदर दूसरे हाथ की उंगली जाए, ऐसे आप करके दोनों जैसे ताली बजाते ऐसे अब इन पॉइंट को दबाइए, उंगलियां एक दूसरे में फंसनी चाहिए, और जोर जोर से करिए, ठीक है, इससे भी पॉइंट दबेगा। तो ये तीसरी हो गई। चौथी ये कि अब आप है ना, ये हथेली के पंजे उंगलियां है ना, उंगलियों के ऊपर का अग्रसर भाग है, तो दोनों हाथों को ऊपर से ताली बजाइए, मतलब ताली बजाते ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे पर भड़क गए, ठीक है, लेकिन ताली नहीं बजनी चाहिए। ये जो हथेलियों के फर्स्ट जो ये होते हैं टेरवे, इनको आप है ना जो ये एक दूसरे से दबने चाहिए, इस तरह बजाइए। फिर आगे के एक्सरसाइज है, ये हमारे हथेलियों के बीच चारों तरफ ये जो उभरे हुआ भाग है ना, इसको पर्वत भी कहते हैं, इन पर्वत को भड़के एक दूसरे पर, ताली नहीं बजानी है, उभरे हुए भाग को आप जोर जोर से दोनों हाथों से इस तरह भड़के, ठीक है। और अब नीचे की तरफ आइए, हथेलियों के नीचे की तरफ, नीचे की तरफ उभरा हुआ भाग है, क्योंकि ऊपर ताली बज गई है, ऊपर हमने पॉइंट दबा दिया एक दूसरे को भड़क करके, लेकिन नीचे का अभी अच्छी तरह नहीं भड़क पा रहे, तो अब नीचे की तरफ आइए और नीचे की तरफ आप एक दूसरे को इस तरह भड़केगा, ठीक है। तो और जैसे बुजुर्ग है वो तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, वो ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक हाथ को आप ऐसे उल्टा कर दीजिए, दूसरे हाथ के उंगलियों को उंगलियों में फंसा करके अब यहाँ घिसिए, नीचे इनको घिसिए, तो इससे भी पॉइंट दबेगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक होगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। फिर लास्ट का है, आप एक हाथ को अच्छी तरह पूरी तरह नीचे लटका दीजिए, दूसरे हाथ से आप हाथ के जॉइंट के यहाँ आप दबाइए और घिसिए, पूरे हथेली को, पूरी हथेली को आपको घिसना है, धीरे धीरे जॉइंट से आना है नीचे की ओर, फिर ये उंगलियों का जॉइंट एंड ये सब आप घिसिएगा, इस तरह दोनों हाथों को घिसना है, ठीक है। तो यह है सूक्ष्म व्यायाम। अब अंगूठा जिसका अग्नि तत्व का प्रतीक है, अंगुष्ठ कहते हैं इसको, तो ये पाचन शक्ति, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म से जुड़े माना जाता है। अग्नि तत्व संतुलित रहने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। ठीक है, वो कहते हैं ना हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, एक तत्व भी गड़बड़ करेगा तो बीमारी आनी है, स्वाभाविक है, इसलिए 5 तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। 5 तत्व का बैलेंस तभी रहेगा जब एक तो हम खान पीन का ध्यान रखेंगे, दूसरा व्यायाम का, तो अंगूठा इस तरह फायदा करता है। फिर दूसरी उंगली है अंगूठे के पास वाली तर्जनी। तर्जनी उंगली को वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। यह मन की चंचलता, जोड़ों और शरीर की गतिशीलता से जुड़ी हुई मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मन की चंचलता खत्म होगी, जोड़ों में लाभ मिलेगा और शरीर की मतलब शरीर भी गतिशील रहेगा। ठीक है, अब सबसे लंबी उंगली है जिसको कहते हैं मध्यमिका। यह आकाश तत्व का प्रतीक है, तो इससे फायदा यह है कि मानसिक संतुलन, एकाग्रता और आंतरिक शांति से संबंधित इस उंगली को माना जाता है। तो मानसिक संतुलन बना रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी और मन हमारा शांत रहेगा। अब है अनामिका जो मध्यमिका के पास वाली है। अनामिका यह पृथ्वी तत्व के प्रतीक है। यह शरीर की मजबूती, सहन शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। तो शरीर को मजबूत बनाता है, सहन शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है और हमारा मन स्थिर रहता है, इतना फायदा है। फिर है कनिष्ठा, चिट्टी उंगली जिसको कहते हैं कनिष्ठा। यह जल तत्व का प्रतीक है। यह शरीर में नमी बनाए रखती है, त्वचा और संतुलन से जुड़ा माना जाता है। त्वचा भी इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है ग्लोबली, और बॉडी का संतुलन बना रहता है। और कुछ लोकप्रिय मुद्राएं उनका लाभ भी है। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाइए, माना जाता है इससे एकाग्रता और मानसिक शांति भी बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारे हैं ध्यान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाइए जैसे मैंने आपको बताया था, तो इससे एकाग्रता और हाँ मानसिक शांति बढ़ती है। प्राण मुद्रा से स्फूर्ति आती है, वायु मुद्रा से संतुलन हमारा बना रहता है, पृथ्वी मुद्रा से शक्ति बढ़ती है। अंगूठा और अनामिका को मिलाइए, इस शरीर की स्थिरता और शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा माना जाता है। अंगूठा और तर्जनी उंगली को ऐसे ऐसे मिलाना है। तो कहते हैं ना कि भाई हमारे हाथ केवल कर्म के साधन नहीं, स्वास्थ्य के संकेत भी है। दिन में कुछ मिनट सही मुद्रा का अभ्यास करिए, सकारात्मक सोच रखिए और स्वस्थ जीवन के ओर कदम बढ़ाइए। तो ध्यान दीजिए, मुद्राएं और एक्यूप्रेशर पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियां हैं। यदि कोई बीमारी गंभीर हो या लगातार बनी रहती है तो आप योग्य चिकित्सक से सलाह लीजिएगा, बाकी आप व्यायाम जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको सिखाई है, जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की जरूर शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं
1: जी।
2: कैसे हो
1: दीदी? हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: बस हम भी अच्छे हैं। आज क्या
1: आज का प्रश्न है? आज महेश जयंती है, माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है?
2: अच्छा, वो तो मैं ऑफलाइन ठीक है
1: ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
2: विषय क्या है?
1: विषय अभी बहुत जल्दी रखेंगे, अभी नुस्खे पूरे हुए हैं। ठीक है
2: ठीक है,
1: हाँ जी, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आइए अब यहाँ पर एक गीत सुन करके चलिए प्रश्न वैसे सुरेश भाई को बताया, आपको भी बता देती हूँ, माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है, ये आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: महेश वंश की गौरव गाथा सदियों से जग में छाई है। संस्कार सेवा और समर्पण की यह अनुपम ज्योति जगाई है। संस्कार सेवा और समर्पण की यह अनुपम ज्योति जगाई है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महेश जयंती ही मनाते, हर समाज की उत्पत्ति दिवस को मनाते हैं हम, है ना। अपने अपने समाज के उत्पत्ति दिवस को सभी मनाते हैं। तो आज हम विषय यही लेंगे कि देखिए, हम समाज के उत्पत्ति दिवस को क्यों मनाते हैं, क्या मिलता है हमें, पूरा दिन हमारा इसमें जाता है। अरे, चार चार पाँच पाँच दिन, किसी किसी का तो एक एक सप्ताह भी जाता है। तो आप अपने समाज के अनुभव से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब वैसे एक है। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। तो कोई अलग नहीं है, सभी साथ में है, ठीक है। फिर भी जो समाज है वो तो है, उनको नकारा भी तो नहीं जा सकता ना। ब्राह्मण समाज, जैन समाज, बात तो करते ही है हम। तो समाज में भी देखिए बहुत सारे बातें होती रहती है। तो पूरा समाज इकट्ठा मिल करके उत्पत्ति दिवस क्यों मनाता है, और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है, और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है, यह आज का प्रश्न है। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए। अरे भाई, मैं ही मैं बोले जा रही हूँ, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। आप जुड़ेंगे तो बात होगी, नहीं तो फिर तो क्या होगा, आप जानते हैं ना। फिर तो हम अपने मन से तो बोलते ही है। चलिए ठीक है, आप नहीं जुड़ते हैं तो हम तो बैठे ही है। जब आपका मूड हो तो ज़रूर फ़ोन घुमा दीजिएगा। नंबर है 9414151415, ठीक है। तो देखिए, कोई सभी समाज की उत्पत्ति दिवस हो, पहले बात तो यह है कि इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाता है, सभी का मिलना हो जाता है। क्योंकि आजकल सभी व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। 5 मिनट के लिए कोई रुकना नहीं चाहते हैं। कहेंगे अच्छा, वो 5 मिनट बाद आपसे मिलेंगे, आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, तो इंतज़ार बड़ा भारी पड़ता है। 5 मिनट भी कोई इंतज़ार करना पसंद नहीं करते हैं। तो कहाँ समय है स्पेशल एक दूसरे से मिलने का। तो एक अच्छा सा स्नेह मिलन हो जाता है सभी के साथ, इसलिए समाज वाले सब इकट्ठे होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, समाज में अच्छाइयाँ भी होती है तो बुराइयाँ भी होती है। तो 8-8, 10-10 दिन पहले प्रोग्राम रखने का, आयोजन रखने का तात्पर्य यही है कि कुछ ऐसे कुरूतियाँ है जिस पर सभी तर्क वितर्क कर सके, अपने अपने विचार व्यक्त कर सके, और इस कुरूति को कैसे मिटा सके वो अपनी राय व्यक्त कर सके। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: हाँ जी नमस्ते, कैसे हो सुरेश भाई।
1: सर बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आज समाज के, जो समाज के बारे में सोचा आपने, सवाल बिल्कुल सही बात है दीदी। मैं बताऊँ तो समाज एक दर्पण है, और समाज एक कहते हैं कि माँ बाप भी है
0: जी।
1: तो समाज की जो आदमी बात है, तो समाज इसीलिए दीदी उत्पत्ति इसीलिए हुई कि समाज में हम जाए, कुछ नई बात सुने, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो समाज वाले इकट्ठा होकर इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। कोई बात है, कोई गांव की बात है, कोई समाज की बात है, कोई हमारे परिवार की बात है। तो दीदी समय जो कोई हम प्रॉब्लम है ना, तो ये हमारी जो सॉल्व कर देते हैं। कोई शादी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई घर परिवार में कोई ऐसा हो, तो समाज वाले आते हैं, समाज वाले बोलते हैं, समाज से हम कुछ न कुछ कह पाते हैं। क्योंकि समाज में कुछ हम बात करेंगे तो समाज वाले हमारी सुनता है, और इसलिए हम कोई भी देखो, हमारा के दीदी हमारा भी समाज बहुत बड़ा समाज है। तो हमारी कोई मीटिंग होती है, कोई शादी हो तो समूह लग्न होता है, कोई ऐसा फंक्शन रखते हैं, कोई नाम वितरण का कार्यक्रम होता है, तो हरदम हम जाते हैं। क्योंकि जाते हैं तो दीदी कुछ नहीं, इसी बहाने हम जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, सभी एक दूसरे मिलते हैं, कोई एक दूसरे की बातें को शेयर करते हैं, कोई शादी करनी हो किसी बेटी बेटा की तो भी इसमें एक दूसरे को बातचीत कर पाते हैं। इसीलिए समाज का इकट्ठा होना, समाज में जाना, समाज से जुड़ना, इसीलिए तो दीदी ये समाज बनाया है।
0: जी,
1: वरना हम अकेले तो किसी के साथ जा नहीं सकते, किसी के सबके घर नहीं जा सकते, लेकिन इसी बहाने हम इकट्ठे होते हैं और सबको वहाँ मिल जाते हैं, तो कई सारी बातें भी होती है, कई सारे एक दूसरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है इसमें। इसलिए समाज एक दर्पण कहलाता है, जिसे समाज से जुड़ना है, समाज में रहना है, समाज से अलग नहीं होना है। हम समाज से अलग हो गए तो समाज कोई हमारा जो हम अलग ही रह जाएंगे दीदी, समाज से जुड़कर नहीं रहेंगे
0: जी।
1: तो बस हम तो दीदी यही कहेंगे, समाज से जुड़ते रहना है, समाज में रहेंगे तो समाज से हमारा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है
0: जी।
1: बस दीदी नमस्ते।
0: ठीक है भैया, थैंक यू। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी बहुत ही अच्छी बात कही है कि भाई समाज एक दर्पण है, तो मिलेंगे तभी तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए इसी बहाने ये प्रोग्राम रखते हैं कि चलिए हर समाज का होता है, जिस तिथि को जिस समाज का मतलब जिस समाज की उत्पत्ति हुई, स्थापना हुई हो, उस दिन को मनाते हैं अच्छी तरह, क्योंकि भाई बर्थडे सेलिब्रेशन ही हो गया ना, तो धूमधाम से मनाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं और अच्छा सा प्रतिभोज भी रखते हैं। कहीं कहीं पर तो चार चार पाँच पाँच दिन लगातार भोजन रखते हैं, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं हर चीज़। और इस त्यौहार को भी मतलब त्यौहार ही है ना, पूरा समाज मिल करके देखे इसमें क्या होता है, 5 दिन पहले से प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती है, गेम्स वगैरह कहीं कहीं पर 8 दिन पहले से शुरू हो जाती है, क्रिकेट है, जिसको जो गेम आता हो, टेबल टेनिस और भी खो खो कबड्डी क्रिकेट, जिनको भी शौकीन है पहले से ही नाम लिखा देते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो महीना पहले ही नाम लिखवाना पड़ता है। हेलो,
2: बुरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम, बस आपकी जैसे खाल पे सोए है और आपकी तो सुन रहा हूँ कान लगा के, और अभी फोन भी पे बोला राम राम तो कर दू
0: जी जी।
2: सब मधुबन भाइयों को सबको मेरा राम राम हाथ जोड़ के,
0: थैंक यू। राम राम,
2: क्या आज क्या प्रश्न है?
0: आज का प्रश्न है, माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी को क्यों मनाते हैं, महेश जयंती इस त्योहार को क्यों मनाते हैं?
2: इतना तो इसमें अपने को तो माहेश्वरी का तो अपने को ज्ञान नहीं है,
0: आप अपने समाज के आधार पर बोल सकते हैं।
2: अपने समाज का तो ये बोलते हैं कि भाई देखो, पहली बात तो अपने जो समाज की जो उत्पत्ति हुई है, तो हमारे जो जितने भी लोग भाई है, तो वो हमारे एक चौपड़ा भाग आते हैं, बोले तो वो उनका पूरा लेखा जोखा होता है, कहाँ से उत्पत्ति हुई और कहाँ से आप आए और कहाँ पहुंचा आपका इष्ट देव, सब पूरा बताते और पूरा समाज को बुलाते, पूरे रीति के रिवाज से हमारे कहाँ से उत्पत्ति है, तो सब बैठ के सुनते है, और फिर बाद में उसके ऊपर फिर सब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे उत्पत्ति कहाँ से हुई और अपना कौन सा इष्ट देव है और क्या है, सब पूरा समाज फिर सत्संग को खाना वाना खिला के हम जीते। बाकी समाज में हमारे ऊपर बहुत ये होता है कि समाज का तो हमको मानना ही पड़ता है, कुछ गलतियां भी होती है तो समाज हमको दंडित करती है, तो समाज के भीतर चलते ही नहीं है, क्यों कि इतना समाज का ऊपर प्रतिबंध नहीं रहे तो लोग गलतियां कर देते हैं। अभी माहौल कोई किसी का कोई भी हो गया, कोई झगड़ा समझा या किसी का हार ना हो गया, बच्ची का कोई तलाक हो गया, तो उसका निवारण समाज आके करती है, तो समाज तो समाज ही है, समाज रहते ही अपने पूरे तो जीवन व्यापक होता है, बाकी तो क्या सुनना, इतना सुनाता हूँ
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई है। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे?
2: का?
0: बस यही है, समाज इकट्ठा होता है तो और आप क्या करते हो, खाना पीना तो होता है, कोई गलती करता है उसको तो सजा दी जाती है, और
2: तो सजा कमजोर जो समाज अपने ऊपर कुछ गलतियां होती है तो समाज उसके ऊपर ये दंडित करती है, फिर उनको वो अपने घर पे उनको बुला मतलब उसको हमारी भाषा में बोलते ओरबा देते हैं।
0: हाँ।
2: तो ओरबा मिटाने के लिए समाज को बुलाते हैं और समाज आके फिर उसका निवारण करती है, दंडित करती है, भाई ये गलती आपकी है या दूसरों की है, तो वो भी अपने ऊपर जो कि भाई अपनी गलती नहीं है, तो फिर जिसकी गलती आगे वाले की होती तो उसके ऊपर दंडित करेंगे, अपने को छोड़ देंगे, खाना वाना खाकर जाके समाज उसका निवारण करके जाती है। मतलब समाज का हमारा बहुत ये होता है, प्रतिबंध बहुत होता है
0: जी।
2: तो ऐसा है, समाज तो समाज में ही रहना पड़ता है
0: जी।
2: और इतना प्रतिबंध नहीं होगा तो बिल्कुल बोले तो अपन बोले तो फिर कोई ये नहीं रहता, फिर किधर भी जाओ किधर फिरो कोई मतलब नहीं है।
0: सही बात है, अंकुश होना बहुत जरूरी है,
2: अंकुश होना जरूरी है मैडम
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार भूरा राम जी, बहुत सुंदर बातें आपने बताई है।
2: ओके
0: जी, तो ये थे भूरा राम जी ओर से, और आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते एक गीत। अगर आप जुड़ रहे तो तुरंत जुड़िएगा, नहीं तो एक ब्रेक के बाद जरूर जुड़िएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, महेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी को क्यों मनाई जाता है। ठीक है, तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15, और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आज की जय।
1: आज सजा है खुशियों का द्वार, आज सजा है खुशियों का द्वार, गूंज रहा है मंगलाचार, महेश जयंती का शुभ अवसर आया लेकर प्रेम संस्कार और सत्कार। पुनः आप सभी को महेश जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम बात भी इसी पर कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हम समाज के स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं। स्थापना हो गई, जैसे इंसान का जन्म होता है हर साल जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे समाज की बात है। समाज की स्थापना होती है, जन्म होता है, फिर हर साल मनाते हैं, और कौन मनाएंगे, समाज वाले ही मनाएंगे। सब इकट्ठे होते हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं, आपके भी देखे, हर एक इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में घर परिवार में ही रहना पसंद करता है। नहीं तो भाई ये सब कुछ पसंद नहीं है तो जा कर के जंगल में ना रहे। भाई कोई ना कोई समाज से तो सभी जुड़े ही होते हैं, संस्था से जुड़े रहते हैं, है ना, कहीं कहीं से तो हम जुड़े ही रहते हैं। अकेला इंसान तो कहीं पर नहीं देखा होगा कि वो बिल्कुल नितांत अकेला जंगल में रहता है, पहाड़ों पर। हाँ, कौन रहते हैं, तपस्वी, तपस्या करते, वो भी ईश्वर के संग रहते हैं, अकेले नहीं रहते, कोई भी अकेला नहीं रहता। प्राणी प्राणी के साथ बैठना पसंद करेंगे, इंसान इंसान के साथ बैठना पसंद करेगा, तो घर परिवार समाज गाँव मोहल्ला शहर यहीं पर रहते हैं। लेकिन समाज के उत्पत्ति दिवस का एक आनंद ही अलग होता है। एक तो स्वयं का पर्सनल जन्मदिन मनाओ, एक समाज का एक साथ मिलकर के मनाओ, कितना फर्क है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े हैं, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें बताई है, आप भी जुड़िएगा। हर एक श्रोता बंधु समाज से ही जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक नॉलेज तो सभी के पास होगा, ज़रूर आप जुड़ करके बताइएगा कि समाज में रहना क्यों ज़रूरी है। देखिए ये समाज का उत्पत्ति दिवस हम मनाते हैं कि इसी बहाने सब इकट्ठे हुए, तो कैसे मनाते वो भी थोड़ा जान लीजिए। पहले से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, क्योंकि समाज के होनहार बच्चे वो भी तो आगे आने चाहिए ना, वो भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ हमारे समाज के होनहार बच्चे कौन कौन है, जो पढ़ने में टॉप है, फलाने गेम्स में टॉप है, उसमें टॉप है, किसी ने किसी का भला किया हो, मतलब टू मच, भला तो सभी करते हैं लेकिन बड़ा सा सहयोग किया हो, तो इस तरह के लोगों को सामने आने का अवसर मिलता है। समाज के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो सारे खबर रखते हैं और उन बच्चों का नाम भी लिखते हैं, पहले से अनाउंस कर देते हैं कि भाई जो होनहार बच्चे हैं जिनको 80% से या 90% से जो ऊपर लेके आए हैं नंबर रिजल्ट, वो नाम लिखाइएगा। जो टॉप 10 में आए हैं उनका नाम लिखाइएगा, जो फर्स्ट डिवीजन में आए हैं उनके नाम लिखाइएगा। हरे खरे क्लास के अलग होते हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम के अलग होते हैं, 10th 12th वालों के रिजल्ट अलग देखा जाता है, कॉलेज वालों का अलग देखा जाता है, तो अन्य क्लासों वालों का अलग देखा जाता है। उस आधार पर बच्चों को समाज के मंच पर बुलाकर उनका सम्मान भी किया जाता है और उनको मोटिवेट भी किया जाता है। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार।
2: क्या है विषय?
1: विषय यही है, आप जैसे भाई गहलोत समाज से है, तो आप ये अपने अपने समाज के स्थापना दिवस को क्यों मनाते हैं और क्या फायदे हैं?
2: एक्चुअल में देखिए, स्थापना दिवस मनाने के पीछे ये है कि अपने समाज में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो किसी और को भी उससे मोटिवेशन, मतलब उनको कुछ जानकारी मिले, अपन अच्छा कार्य करते तो उनको भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकते
1: जी।
2: तो और मतलब अपने समाज की पूरी जानकारी अपन मतलब वो मनाते हैं तो अच्छे कार्य सभी के सामने रखते हैं, तो वो भी उससे कुछ सीखते हैं, इसलिए बनाते हैं ना
1: जी।
2: हाँ
1: बिल्कुल,
2: और बाकी तो हमारे और भी दोस्त जुड़ेंगे, इसलिए शॉर्ट में ही जाए तो बात करता हूँ।
1: अच्छा चलिए, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो हम बात कर रहे थे, देखिए समाज के स्थापना दिवस को सभी धूमधाम से मनाते हैं। तो पहले ये सारी प्रतियोगिता होती है, होनहार बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, लिस्ट में कौन कितना परसेंटेज लाया है, सारे नाम बच्चों के अलग अलग लिखे जाते हैं, और किसी ने कुछ स्पेशल किया हो जो सभी के दिलो दिमाग में छाए हुए हो उनका भी नाम लिखा जाता है। फिर समाज में किनकी परिस्थिति कम है उनको भी देखा जाता है। अच्छी बात है, मैं तो कहूँ उनका जरूर मदद मिलनी चाहिए। हेलो,
2: हाँ बुराराम बोल रहा हूँ मैं, सुभता बहन जी।
1: हाँ जी बुराराम जी, बोलिए।
2: और मैं एक, आपने बहुत अच्छा दिलाया मेरे को, ये बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं तो हमारे समाज का सब हर साल इधर मानपुर ग्राउंड में बोले तो हमारा ये मतलब सम्मान निधि, सम्मान के लिए बच्चों को जो जो अच्छे डिविजन पास करते है यार अच्छा जो आते हैं तो उनका प्रोग्राम रखते हैं इधर मानपुर में
1: जी।
2: तो सबको बच्चों को उधर उत्साहित करके उनको सम्मान देते और पूरा समाज मिल के बोले तो खाना परोसना और सब एकता हो, सब भाई लोग सब मिल के खाना परोसना और समाज में क्या बुराई है क्या गलतियां है वो भी पढ़े लोग लिखे सब उसमें सब पढ़े लिखे लोग आते हैं और नेता लोग भी आते हैं और सब भाषण करते हैं तो उसमें बहुत परिवर्तन होता है हमारा। तो ये भी आपने अच्छा मेरे को याद नहीं था, लेकिन बच्चों को हर साल बोले तो उधर जो जो दसवीं पास होता है बारहवीं पास होता है या किसी अच्छे पोस्ट में लगाते उसको सम्मानित करते हमारे इधर
1: जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
2: ओके
1: सर। हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बिल्कुल भुराराम जी ने सही बताया है, इस तरह का होता ही है प्रोग्राम। तो फिर ये सारी लिस्टें तैयार होती है, गेम्स में जो जीतते हैं बच्चे उनके नाम लिखे जाते हैं, जो टीम जीतती है उस टीम का नाम लिखा जाता है। हेलो, जिसका फोन कट जाता है वो फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, फिर भाई समाज मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा चंदा सबसे लिया जाता है ना, क्योंकि भोजन भी रख रहे, दो दो तीन तीन दिन इस त्यौहार को मनाते हैं आजकल, तो तीन तीन चार चार दिन सब जब मिलते हैं तब नाश्ता भी रखते हैं, चाय पानी सब रखते हैं, तो चंदा भी इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा समाज के पैसे होते हैं, थोड़ा फिर चंदा लिया जाता है, और फिर एक दिन पहले ये सारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है एक दिन पहले, ठीक है। और पहले गेम्स वगैरह तो पहले ही हो जाता है, फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है उस दिन, कल्चरल होता है, जो भी जिसको भी गीत गाना हो, कविता है, डांस वगैरह करना हो करते हैं। फिर जैसे कि आज महेश नवमी है, ठीक है, तो सुबह टाइम दे दिया जाता है कि इतने बजे शोभा यात्रा निकलेगी, तो सभी शोभा यात्रा में जाएंगे, और इसमें ज़रूर कहेंगे क्योंकि महेश्वरी समाज में मैंने देखा है केसरिया कलर बहुत ही फेमस है, तो सभी को केसरिया कलर के कपड़े पहनने का ही कहते हैं, विशेष करके बहनों को। भाई लोग भी ज़्यादातर धोती जब्बा का बोलते हैं कि भाई धोती जब्बा आज की जनरेशन तो पहनती नहीं है, लेकिन केसरिया कलर का दुपट्टा ज़रूर लगा के आना है, भले आप कपड़े कोई से भी पहनो, केसरिया कलर का दुपट्टा ज़रूर आपको गले में टाक के आना है। और जिसके पास नहीं होता है, वैसे आजकल ऐसा होता है कि जहाँ से शुरुआत होती है शोभा यात्रा की, वहीं पर सबको पट्टा पहना दिया जाता है ताकि सबके एक जैसा पट्टा हो, और तिलक लगा दिया जाता है, फिर बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा नाचते गाते पूरे शहर में निकलती है। बहुत सारे लोग, कोई अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, तो कोई आइसक्रीम, तो कोई क्या नाश्ता, कोई ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग तरह की चीज़ें देते हैं, कहीं पानी की व्यवस्था होती है, ठंडे पानी की, सबको ठंडा पानी पिलाया जाता है, इस तरह जगह जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर भी जिन्होंने नाश्ता रखा है, माहेश्वरी समाज के बहुत सारे लोग जिनका बीच में घर पड़ता हो, वो इस तरह उनको आने वाले सभी समाज के लोगों का स्वागत करते हैं और अच्छा सा उनको तृप्त करके भेजते हैं, ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, नाश्ते गाते जाते हैं, भजन कीर्तन होते रहते हैं, और ऐसे पूरी शोभा यात्रा घूम के आती है। गांवों में तो दो घंटा में आ जाती होगी, शहरों में जितना बड़ा शहर उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। खैर बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, लेकिन कस्बों में तो पूरा कस्बा मतलब लगभग कवर कर लेते हैं, मेन रास्ते तो 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, इसलिए 6 बजे ये शोभा यात्रा निकाल दी जाती है ताकि 9-10 बजे तक वापस आ जाए एक जगह अपने जहाँ समाज की समिति होती है वहाँ पर, क्योंकि भाई दूसरे कार्यक्रम भी है, फिर भोजन भी करना है सभी को, तो ऐसे 10 बजे तक आ जाएंगे। अब नाश्ता पानी तो बहुत हो गया, फिर भी आते ही सबको नाश्ता दिया जाएगा, ठीक है। और फिर पहले तो ईश्वरी वंदना होती है, ईश्वरी वंदना के बाद फिर सभी को पारितोषिक देना शुरू करते हैं। इसमें बहुत समय जाता है, कौन किस में फर्स्ट आया, कौन कौन सी क्लास का क्या है, सभी को गेम्स में कौन जीते, कौन इस तरह सभी का नाम लेकर के सभी को वहाँ पारितोषिक दिया जाता है। डांस में कौन आए हैं, सबका पारितोषिक देते देते 12:30-1 बज जाती है और फिर सभी का भोजन होता है। जो कार्यक्रम होना होता है पहले हो जाता है। आज के दिन मतलब जिस दिन मना रहे हैं उस दिन बस ये इसी में समय जाता है, सब भोजन करते हैं और ये पारितोषिक लेने में थोड़ा स्पीच समाज की कोई कुरुति हो तो वैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम में ये सब हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई बोलना चाहते हैं तो उनको अवसर जरूर देते, कुछ हटके बोलना चाहते हैं उनको वो भी लिमिटेड। और फिर बहुत ही बड़ा मतलब बड़े से भोजन का आयोजन रखा जाता है तो सभी को अच्छे अच्छे वैरायटी खाना खिलाते हैं और जो बुज़ुर्ग लोग हैं नहीं आ सकते उनका टिफ़िन पहले से कह दिया जाता है। आजकल तो समाज में टिफ़िन भी रखने लगे तो भाई टिफ़िन ले जाओ, खाली कर दो, वापस शाम को आओ तब लेते आना साफ सुथरा, क्योंकि दोनों टाइम भोजन रहता है। फिर दिन में भी अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, दिन में जैसे कुछ प्रोग्राम बाकी रह गए, रंगोली प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, डेकोरेशन प्रतियोगिता है या फिर पैकिंग प्रतियोगिता है, ये जो बाकी रह गई वो पूरे दिन चलता है। फिर शाम को 6-7 बजे से वापस कार्यक्रम शुरू होता है तो पहले तो भोजन कर लेते हैं कि भाई जिसको भोजन करना पहले एक बार भोजन कर लो, ठीक है। भोजन करते करते 8 बज जाते, उस दिन कह देते हैं कि जल्दी करेंगे भोजन क्योंकि वापस बाकी है कार्यक्रम, 8 बजे तक फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वापस प्रोग्राम चलते हैं जिसको बोला, क्योंकि लगभग सभी को अवसर देते हैं, छोटे बड़े कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं तो अब समाज में नहीं बोलेंगे तो वो कहाँ जा करके बोलेंगे, दूसरे समाज वाले तो चांस नहीं देंगे ना। तो बहुत सारे समझदार लोग हैं तो यही कहते हैं कि नहीं, चांस सबको, भले 2 दिन मनाओ इसको, 3 दिन मनाओ, लेकिन सभी को चांस मिलना चाहिए, जो भी बोलने के इच्छुक है आओ मंच पर बोलो। और कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि कंपटीशन नहीं रखा जाता कल्चरल कार्यक्रम में, जो बोलेगा उसको सभी को यथा योग्य पारितोषिक दिया जाएगा क्योंकि उनका भी प्रोत्साहन बना रहे और उनको लगे कि हम स्टेज पर गए हैं, क्योंकि स्टेज पर आकर खड़े रहना यह भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, बोलना तो अभी दूर है, स्टेज पर जा कर के खड़े रहना यह भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और फिर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो भाई हिम्मत हो वही तो स्टेज तक पहुँचते हैं ना, मंच तक पहुँचते हैं। तो बहुत सारी जगह पर तो ऐसे होता है, सबको दिया जाता है पारितोषिक, और बहुत सारी जगह ऐसे कि जो अच्छा बोलेगा उन्हीं को दिया जाएगा। तो सभी के अलग अलग मत मतांतर है, कुरुतियों के बारे में भी बताते हैं कि भाई ये कुरुति है, कैसे इसको बंद की जाए, वहाँ पर भी राय ली जाती है। फिर कोई समाज के गरीब घर है, ठीक है, सभी तो एक जैसे नहीं है ना, सभी पैसे वाले नहीं होते या सभी मध्यम नहीं होते, बहुत जने ऐसे कि 2 वक्त का खाना उनके लिए भारी पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो भामाशाह होते हैं उनको आगे करते हैं, कहते हैं कि भैया इनके ये तकलीफ है अब इनकी मदद कौन करना चाहेगा, तो फिर जो भामाशाह होते हैं वो आगे आते और कहते हैं कि भाई हाँ मैं इतने तक की इनकी मदद कर सकता हूँ। तो इस तरह मदद के लिए भी गुहार लगाई जाती है, मतलब समाज वाले नोटिस में रखते हैं और इस तरह किसी को तैयार भी करते हैं, और वो भी कहीं कहीं पर, हर जगह ये कार्यक्रम नहीं होता है, हर जगह इस तरह की बातें नहीं होती, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन गरीब की तरफ ध्यान रखने वाला कहीं कहीं पर ही ऐसा होता है, बाकी गरीबियों की तो बात ही नहीं उठती है। इसलिए मैं तो रेडियो के जरिए कहना चाहूँगी कि अगर आप इतना भव्य कार्यक्रम रख रहे हैं तो उसमें गरीबों को भी ज़रूर लीजिए और उनके प्रति भी दयावान होइए। समाज में बहुत सारे ऐसे भामाशाह हैं जिनके पास बहुत संपत्ति रहती है, कुछ अंश वो गरीबों के लिए निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुआएं ही मिलेगी। इसलिए भामाशाह बन करके अपने समाज का कल्याण करिए। कोई कोई समाज ऐसे होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वो गरीबी सहन कर लेंगे लेकिन हाथ नहीं फैला सकते किसी के सामने, अरे अरे नाक कट जाएगी, हाथ कैसे फैलाए। और कोई कोई स्वाभिमानी भी होते, खुददार भी होते कि नहीं भूखे मर जाएंगे लेकिन हाथ तो बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, खुददारी की बात है। अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि अहंकार कहाँ है, गरीबी है, अहंकार तो है ही नहीं है। खुददारी की बात है कि मेहनत करेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, आप सभी जानते हैं, मनाते हैं इस त्यौहार को।

0: बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आप आशियाना के किचन में। आज भाई स्पेशल आपको सिखा देते हैं त्यौहार। आज का महेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस है, महेश जयंती है, तो स्पेशली आपको खिलाएंगे। क्या खाना पसंद करेंगे? चलिए मैं अपनी पसंद का रेसिपी सिखा रही हूँ, फालूदा। ठीक है, फालूदा बनाना सिखा रही हूँ। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैं सामग्री आपको लिख पा रही हूँ। दो ग्लास ठंडा दूध ले लीजिए, दो बड़े चम्मच फालूदा सेव लेनी है, ठीक है, दो बड़े चम्मच सब्जा जिसको तुकमरिया भी कहते हैं, तुकमरिया के बीज ये ले लीजिए, काले आते हैं, छोटे छोटे से दाने आते हैं ये, तीन बड़े चम्मच गुलाब शरबत लीजिएगा और स्वाद के अनुसार चीनी ले लीजिएगा। फिर आप लीजिएगा एक स्कूप वनीला या कुल्फी आइसक्रीम, ठीक है, कटे हुए आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, बादाम पिस्ता, और थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े लेना है। तो ये हो गया फालूदा बनाने के लिए सामग्री, जिसको मैं फिर से दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठंडा दूध, फालूदा सेव, सब्जा जिसको तुकमरिया भी कहते हैं, गुलाब शरबत, चीनी, कुल्फी या आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम जो भी, और कटे हुए बादाम पिस्ता और बर्फ के टुकड़े। अब बनाने की विधि भी जान लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सब्जे के बीज जो है ना, सब्जा के बीज लिए है, उनको 15-20 मिनट तक पानी में भिगो के रखिएगा। फालूदा सेव को उबालिएगा, पानी में 4-5 मिनट पकाना है, फिर ठंडे पानी से इसको धो लेना है। अब दूध में चीनी मिला करके अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए। अब एक लंबे गिलास में सबसे पहले गुलाब शरबत डालिएगा, इसके ऊपर भीगे हुए सब्जा बीज डालिएगा, फिर फालूदा सेव की परत लगाइएगा। अब ठंडा दूध डालिएगा, ऊपर से आइसक्रीम रखे हुए डालिएगा, मतलब आइसक्रीम के टुकड़े डालिएगा, और फिर ड्राई फ्रूट के कटे हुए ड्राई फ्रूट डालिएगा, और आप थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल करके आप रख सकते हैं, दे सकते हैं अपने मेहमानों को। तो इस तरह फालूदा बनाया जाता है। और देखिए, इकट्ठा बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, बड़ा सा भगोना ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बनाना हो तो भगोना ले लीजिए, और फिर उसमें सब्जा के बीज डालिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पानी में। फिर अब आप ये जो फालूदा की सेव ली है इसको उबालिए, 4-5 मिनट उबालने के बाद ठंडे पानी से इसकी धुलाई कर लेनी है। तो ये भी पतीले में डाल दीजिएगा। अब दूध में चीनी मिलाकर अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए, ठंडा हो जाए तो फिर मिलाना है, ठीक है। फिर आप ये सब्जा भी डाल रखा है, अब आप ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए, आइसक्रीम भी डाल दीजिए, और बर्फ़ के टुकड़े भी डाल करके अच्छी तरह हिला करके बस ये फालूदा बन गया है हमारा, तैयार हो गया है। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन देखिए, सात्विक जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, तो अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही लीजिएगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। अगर बच्चों के बर्थडे है या ऐसे कुछ पिकनिक विकनिक पार्टी वार्टी मना रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बना कर दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं कि गर्मी की दोपहर हो या शाम सुहानी, एक गिलास फालूदा कर दे मौसम को रूहानी। तो आइए प्यारे श्रोताओं, अगर आप फालूदा को और भी खास बनाना चाहते हैं, तो इसमें रबड़ी या कुल्फी के छोटे टुकड़े भी मिला सकते हैं। स्वाद ऐसा कि मेहमान बार बार पूछे आखिर बनाया कैसे है, ऐसे पूछना चाहिए, ठीक है। तो भोग लगाने के बाद आप स्वीकार करिएगा और आइए फिर से अल्प विराम लेकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, कैसे आप हाथों के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा बीमारियों को भगाओगे। और फिर रेसिपी में भी आपको बहुत ही स्वादिष्ट फालूदा बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, माहेश्वरी समाज के इष्ट कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है। तो जवाब दिया है सुरेश भाई झोटाना से, दीपा सोमानी कपासन से, भूरा राम जी और से। सुरेश भाई ने जवाब नहीं दिया है, बाकी आपका जवाब सही है, महेश्वरी समाज के इष्ट देव है। संगीता जी लावटी का भी फोन आया है कपासन से, उनका भी सही जवाब है। तो माहेश्वरी समाज के इष्ट है भगवान महेश, जिनको शिव के रूप में पूजा जाता है, उनके आराध्य शिव भोलेनाथ है। और भाई नवमी के दिन, ये जो जेठ महीने की नवमी के दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति होती है, इसलिए इस दिन महेश जयंती मनाते हैं। तो आप सभी के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है उन सबके लिए ढेर सारी तालियां। जो भी विषय में जुड़े हैं उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती है संयम, संतुलन और संतुष्टता का गुण अपनाने से महान बन जाएंगे। और लास्ट में कहना चाहूंगी, शब्द अगर मुस्कान बन जाए तो बात ही कुछ और है, ज्ञान अगर सबके काम आ जाए तो सौगात ही कुछ और है। बांटते रहिए खुशियाँ, बांटते रहिए प्यार, यही है जीवन का सबसे सुंदर उपहार। मुस्कान से महके हर आंगन और द्वार, मुस्कान से महके हर आंगन और द्वार, यही है हमारी दुआ बारंबार, यही दुआ है हमारी बारंबार। अब मैं आपको समाज के ऊपर एक प्यारा सा थोड़ा सा कटाक्ष करता हुआ गीत है कि देखिए समाज में किस तरह की कुरूतियाँ है। तो आप लेंगे, मतलब कविता सुनाऊंगी स्वरचित, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। देखिए माहेश्वरी समाज में क्या आजकल विदेशियों की होड़ लग रही है कि हमारे बच्चे विदेश जाए पढ़ने के लिए, तो उनके लिए सुनिएगा। मारो छोरो परदेश पढ़न चालियो, माँ बाप रा नैना भर आया, डिग्री तो ले आवे दुनिया भर की पर संस्कार रो दीप न बुझाया। क्रिसमस री रंगीन गलियां में आपनो पर्व न भूले रे लाल, क्रिसमस री रंगीन गलियां में आपनो पर्व न भूले रे लाल, महेश वंश रो मान बढ़ावे यही है घर परिवार रो ढाल, महेश वंश रो मान बढ़ावे यही है घर परिवार रो ढाल। रिश्तों की मर्यादा रखना भी बहुत जरूरी है, कैसे तो आइए सुनेंगे। आजकल प्रेम री आंधी एड़ी कई बार सोच बिना बहजावे, आजकल प्रेम री आंधी एड़ी कई बार सोच बिना बहजावे, माँ बाप रा अरमान ने छोड़ घर आंगना रो चैन घंवावे, माँ बाप रा अरमान ने छोड़ घर आंगन रो चैन घंवावे, प्रेम करो तो मर्यादा संग बड़ो रो आशीष साथ निभाए, महेश समाज री रीति रिवाज सम्मान सहित आगे बढ़ाए। देखे बेटे की डेथ हो जाती है तो बहू और पोते पोती के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, जब तक बेटो घर में रहवे बहू सबकी लाडली कहवावे, जब तक बेटो घर में रहवे बहू सबकी लाडली कहवावे, किस्मत को खेल बदल जावे तो क्यों अपनोपन ने दूर भगावे, बहू भी तो बेटी जेड़ी है, बहू भी तो बेटी जेड़ी है, पोतो कुल रो उजियारो है, दुख में जो परिवार संभाले वही साचो घर वालो है। तो यहाँ कहना चाहूंगी महेश जयंती रो संदेश यही, महेश जयंती रो संदेश यही, प्रेम संस्कार सम्मान रहे, बुजुर्ग बहू बेटी हर बालक सब पर सम्मान ध्यान रहे, बुजुर्ग बहू बेटी पर हर बालक सब पर सबका सम्मान रहे। मारो समाज तभी बढ़सी जब मन में मानवता जागे, मारो समाज आगे तभी बढ़सी जब मन में मानवता जागे। महाराजा महेश रा वंशज हम, महाराजा महेश रा वंशज हम, एकता रो दीप सदा ही लागे, एकता रो दीप सदा ही लागे। महेश जयंती की पुनः पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। समाज की शक्ति केवल धन में नहीं, संस्कार और संवेदना में होती है। जय महेश।
1: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
2: जी आई माँ जी।
1: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
2: जी माँ जी आ गई, चलिए।
1: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
3: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
1: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
3: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
1: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
3: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
2: जी वो
1: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
3: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
4: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: जान जाऊं ऐसी कोई दवा है क्या? खुद को जान जाऊं ऐसी कोई दवा है क्या? दूसरों से मिलने की तो की थी, मगर मुझको मुझसे मिलाने की कोई दुआ है क्या? रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और लव यू जिंदगी में खुद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं हम मिलकर। और कैसे जान जाएंगे आप? अगर आप पिछले कार्यक्रम में जुड़े थे, पुरानी कड़ियां सुनी है, तो वो जर्नी आगे बढ़ेगी। और अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, तो समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है जिंदगी को आसान बनाने का। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट कल्पना जी, जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल से, जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। साथ साथ श्रीनिधि जी जुड़ गए हैं, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
2: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी में आके। और खुद को जानना और खुद के मिलने के बारे में आपने जो शुरुआत में चीजें कही, मैं सोच रहा था क्या कभी हम भी सोचते हैं कि कभी हम अपने आप से मिलेंगे। और लव यू जिंदगी में शायद मैं समझता हूँ अगर हम अपनी मुलाकात अपने आप से करवा दें तो फिर तो क्या कहने।
0: हाँ, ये मुलाकात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि बहुत देर लग गई, इतने साल लग गए खुद से मिलने में, दूसरों से तो जल्दी मिल लिए, खुद से मिलने में इतना समय बिता दिया। और पिछले जो कड़ी थी उसमें आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था सेल्फ अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, खुद के एटीट्यूड को, फीलिंग्स को समझना, उसके कारण को समझना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। एक और शब्द आता है, बड़ा भारी लगता है और ऐसा लगता है वो बंधन भी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी वो एक्चुअली क्या है, और वो है सेल्फ रेगुलेशन। क्या ये उतना ही भारी और उतना ही बंधन में बांधता है, या इसका मतलब कुछ ऐसा है जो शायद अभी तक हमको समझ में नहीं आया, क्या अर्थ है इसका, ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: सबसे पहले तो जब सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है तो एक शब्द जो हमेशा इसके साथ जुड़ा हुआ आता है वो है संयम।
0: ओके।
2: हालांकि संयम के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है, भारतीय दर्शन में जब हम चीजें देखते हैं, पारंपरिक रूप से ऐसे लोग जो जीवन में संयमी होते हैं तो उनकी बहुत तारीफें की गई है। और साथ ही साथ हर व्यक्ति जब जल्दीबाजी करता है या किसी भी चीज का अति करता है, अति चीज किसी भी चीज में अधिकता या अत्यधिक लिप्त होता है तो उसे हिदायत के रूप में यही चीज कहा जाता है कि भाई थोड़ा समझ बूझ के साथ करो, थोड़े संयम के साथ बरतो चीजों, ये चीज कहा जाता है। अब जब ये रेगुलेशन की बात कही जाती है तो ये संयम आवश्यक है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्सर मान्यताओं में ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति संन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं, जैन मुनि या जैन साधु साध्वी बन जाते हैं, तो लोग अक्सर उनके लिए कहते हैं ये संयम पथ के राही बन गए, मतलब जीवन में एक डिसिप्लिन है, एक संयम उन्होंने धारण किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्हें छोड़कर जो मुमुक्षु हैं, जो घरों में रह रहे हैं और अपने गृहस्थ जीवन को रहते हैं, अनेक चीजें करते हुए भी कार्य व्यवहार में भी वो एक अलग प्रकार के संयम को बरत जरूर रहे हैं। तो जब मैं संयम की बात समझता हूँ तो हर चीज में ये संयम या रेगुलेशन की बात कही जाती है। अपने आप को नियंत्रण करने के लिए आप कह सकते हो, इसे आत्मनियंत्रण आप कह सकते हैं। अपने आप को रेगुलेट करने की जब हम बात करते हैं तो आप अक्सर डॉक्टरों से सुन सकते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए आपको कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, इन चीजों से आपको बचना है, थोड़ा सा सोच समझ कर खाना है, सही समय पर सोना, उठना बैठना, अनेक ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं है, हर चीज के लिए कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ जब हम इस प्रकार से इस रेगुलेशन को समझते हैं, पूर्णतया किसी चीज को यकायक त्यागने की बात नहीं है, मगर कभी भी जब हम किसी भी चीज का अति करने लगते हैं या बिना सोच समझ के बस हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो फिर वो चीजें हद से बाहर चली जाती हैं और नुकसानदायक होते हैं।
0: ओके। तो संयम की आपने बात की, लेकिन रेगुलेशन जब ये शब्द सुनते हैं तो सबके लिए बहुत अलग अलग इसकी डेफिनेशन होती है। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी लिमिट है या ये मेरा रेगुलेशन है, किसी को कुछ और लग सकता है, किसी को कुछ और लग सकता है, तो क्या इसकी कोई डेफिनेट कोई एक मतलब एक डेफिनेशन कही जा सकती है, या मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे रेगुलेशन बताया वो रेगुलेशन है, या मैं जिस सोसाइटी का पार्ट हूँ वो जो रेगुलेशन बता रहे हैं वो रेगुलेशन है, या मैं जिस देश का पार्ट हूँ वो रेगुलेशन है, या मेरा अपना कुछ और मैंने बना लिया वो मेरा रेगुलेशन है, एग्जैक्टली क्या है? कल्पना जी आपसे भी जानना चाहूंगा।
1: जी, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ में, जब हम सेल्फ शब्द को लेते हैं तो सेल्फ में आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरह का सेल्फ इंक्लूडेड है। जब आप पर्सनल लेवल पर आते हो, फिजिकल सेल्फ को रेगुलेट करना, उस पर नियंत्रण रखना, इसका मतलब है कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है और अपनी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को कैसे जीना है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन में पहला पड़ाव ये हो सकता है कि मैं फिजिकल सेल्फ को मैनेज करती हूँ, उसका प्रबंधन करती हूँ, उसके स्वस्थ रहने का मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाती हूँ। तो ये है फिजिकल सेल्फ का रेगुलेशन।
0: ओके,
1: देन आता है हमारा मेंटल सेल्फ। मेंटल सेल्फ रेगुलेशन क्या है? मैं जो आया जैसा आया सोचते जा रही, बस वेस्ट और नेगेटिव मैं सोचते जा रही, अरे भाई मेरे मन में विचार आ रहे हैं तो वो जरूरी भी है, कहीं मैं नेगेटिव साइड में तो नहीं जा रही हूँ। ये समझ कर समय पर अपने आप को चेंज करना, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, जो लास्ट कुछ एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे हैं, कि मेरा एक पैटर्न बन जाता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है तो वो मेरे लिए बहुत हानिकारक है। इस समझ के साथ उसको पॉजिटिव में बदलना, ये है मेंटल सेल्फ रेगुलेशन।
0: ओके,
1: एंड देन इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन क्या है? इंटेलेक्ट माना बुद्धि। हम सबको भगवान ने बुद्धि दी है। मैं ये आपसे नहीं पूछ सकती हूँ अरुषि आप में बुद्धि है कि नहीं।
0: सबके पास है।
1: सबके पास है।
0: मेरे पास भी होगी।
1: बुद्धि का काम है समझना, हर बात को समझना और डिसीजन लेना, अपने लाइफ के सही डिसीजन लेना। अगर हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करें तो मैं किसी भी बात को सही मायनों में समझकर अपने लिए सही डिसीजन ले सकती हूँ तो मैं स्वयं का प्रबंधन कर रही, खुद को मैनेज कर रही। कई बार हम अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं और फिर हम दूसरों को पूछते हैं क्या हम ऐसा करें, छोटी छोटी बात में पूछते हैं, क्योंकि हम खुद के लिए डिसीजन लेने का शक्ति नहीं रखते हैं। तो दूसरे हमें कितना जानते हैं, वो हमें जो डिसीजन देंगे वो शायद हमारे लिए सही हो सकता है, चाहे गलत भी हो सकता है। तो मैं अपने लाइफ के निर्णय खुद अच्छी तरह से समझ कर ले सकूं, ये है बुद्धि का इंटेलेक्चुअल रेगुलेशन।
0: ओके,
1: देन फिर हमारे संस्कार आते हैं, हमारी आदतें आती हैं। अगर मेरी आदत में कुछ गलत चीजों को कंज्यूम करना, जैसे आजकल के युवा फ्रेंड्स के साथ पार्टी आदि करते समय नशे का सेवन करते हैं और मुझे पता चलता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है, इससे मुझे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, बट अब मेरी आदत में आ गया है, दोस्तों ने तो एक बार फ्री में मुझे ऑफर किया और बाद में मैंने उसको आदत के रूप में बदला, अब ये मेरी ऐसी आदत हो गई जिसे मैं बदल ही नहीं सकता। अब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? मुझे उस आदत को बदलने के लिए हर संभव प्रयास खुद करना है।
0: अच्छा,
1: कोई मेरी फैमिली मुझे बदलने की कोशिश करती है, बट मेरी विल पावर, मैं खुद अपनी विल पावर से अपने आप को बदलने का प्रयास करूं, पॉजिटिव चेंज। सो ये सेल्फ स्व प्रबंधन है। तो स्व में फिर मेरा समय, मेरा श्वास, मेरा संकल्प,
0: सब कुछ आ गया,
1: सब कुछ आ जाता।
0: ओके,
1: दोस्त, उनको चुनने का मेरा अधिकार,
0: मुझसे जुड़ा हुआ भी जो कुछ है वो भी आ गया और मेरे अंदर जो भी है वो भी आ गया।
1: जी,
0: तो श्रीनिधि जी मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, रेगुलेशन की जब बात आती है तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि हमें लगता है कि मैं क्यों खुद को रेगुलेट करूं, मैंने जब तक अनुभव ही नहीं किया है सब कुछ तो मुझे रेगुलेशंस तो जो चले आ रहे हैं, जो सही लगता आ रहा है वो ही ठीक लगेंगे। मैं एक्सपीरियंस तो करूँ, एक ही बार लाइफ मिली है, एक ही बार ये एज है, एज निकल जाएगी, उसके बाद तो भाई आप सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अभी ये एज है मेरी मस्ती करने की, इंजॉय करने की, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो मैं इसमें भी रेगुलेशन लगा दूं, बाउंडेशन लगा दूं, तो फिर मैं लाइफ कब जियूं? तो क्यों मैं दूसरे की एक रेगुलेशन, अरे ये सही है ये गलत है, ये क्यों लेके चलूं?
2: जब आपने ये बात कही ना तो मुझे याद आता है ये जो आप कह रहे थे कि एक ही तो लाइफ है, तो ऑफन पॉपुलरली जो हम युवा इसका एक जार्गन अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, इसे योलो कहा जाता है।
0: okay.
2: यानी यू लिव ओनली वंस, YOLO, योलो, यानी यू ओनली लिव वंस। यानी ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये एक ही जीवन है, उसमें ही सब कुछ कर लेना है, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। और प्रायः इस योलो की फिलॉसफी को ये भी कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि हमारा कैसा भी बिहेवियर ठीक है, हमारा रिस्की बिहेवियर, या फिर हम नियम के खिलाफ जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है। और ये बात समझी जाती है कि भाई आज का दिन है तो आज के दिन में ही हमको सब कुछ करना है,
0: कल किसने देखा,
2: कल किसने देखा है, ये बात कही जाती है। और खास तौर पर इसको लोग
0: ये भी लगता है कि रेगुलेशंस के साथ जो रह लिए उनका क्या भला हो गया, वो लोग बड़े कौन से खुश है तो फिर हम क्यों इतना खुद को रेगुलेट करें, ये नहीं करना, ये करना है, टफ क्यों बनाया और लाइफ को, ऑलरेडी बहुत टफ है।
2: मैं समझता हूँ ये सब कुछ एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग से आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट बहुत सारी चीजें ये पश्चिम के देशों से आती है, जो पश्चिम के संस्कृतियां हैं वहां पर। एक और मैं समझता हूँ ये लैटिन के शब्द होंगे, कार्पे डीम, बहुत सारी जगह आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, यानी सीज द डे या सीज द मोमेंट, मतलब इस मोमेंट को आप सीज कर लो, मतलब ये पूरी तरह से जी लो,
0: पूरी तरह से जियो।
2: हाँ, तो बहुत बार इसके सही और डीपर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को नहीं समझा जाता कि जब कार्पे डीम कहा जाता है कि इस दिन को पूरी तरह जियो, तो लोग उसे सीज करने के बारे में कहते हैं। इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द यूज किया जाता है, सीज द मोमेंट या सीज द डे, इफ नॉट नाउ व्हेन, अभी नहीं तो फिर कभी। तो उसके चलते हम ये सोच लेते हैं कि हमें एक छोटी सी जिंदगी मिली है और उसमें मुझे सब कुछ कर लेना है, और ये अंडरस्टैंडिंग ही हमें ट्रबल में डाल देती है।
0: ओके।
2: और इसकी वजह से जैसे आप रेगुलेशन की बात अगर आप साइड में दरकिनार कर दें, अगर आप ये देख लें कि हमारे पास एक जीवन है और हमें सब कुछ करना है, और हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे वो कष्ट देने लगता है, क्योंकि मैं कंपेयर करने लगता हूँ कि वो 22 साल का है, मैं भी 22 साल का हूँ, उसके पास तो ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है, ऐसा है, वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है या जा रही है, उसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, उसके इतने दोस्त हैं, तो मैं कंपेयर करने लग जाता हूँ, और उसकी वजह से जो मुझे करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूँ, और मैं उस कंपैरिजन की वजह से अपने आप को हीन समझने लगता हूँ, अपने आप को कमजोर या अपने आप को नालायक या अनवर्दी फील करने लगता हूँ। तो ये फिलॉसफी आपको मोटिवेट करने से ज्यादा यंगर जनरेशन में ये आपको नीचे की ओर ले जाती है, व्यक्ति के मनोदशा को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बजाय ये उसके कॉन्फिडेंस को और कम करने का काम कर रही है। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि सब कुछ आप आज नहीं कर सकते, सब कुछ आप आज नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपके पास धन नहीं है, हो सकता है आज आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है आज आपके पास नौकरी नहीं है, हो सकता है आज सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप ये सोच लें कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज जवानी है मेरे पास और आज ही मेरे को दोस्तों के साथ घूमना है और 3 दिन बाद एग्जाम है, तो अगर आप ये समझ के जाएंगे, अगर आप अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे, वो हालांकि आपके मन में अर्ज ही है, कई लोग आपको ये कह भी रहे हैं, यार अभी तो हमारे ये कॉलेज का ईयर समाप्त हो जाएगा, फिर हम कब करेंगे, हालांकि कॉलेज के लिए फीस देना, ट्यूशन जाना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो पढ़ाई के लिए ना, बेसिक तो उस चीज के लिए कि आप उस डिग्री को हासिल करें या वो एजुकेशन पूरा करें। अगर आप वही चीज ना करके आप हर चीज उसी लाइफ में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो फिर शायद आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, या जो चीज बेहतर होनी चाहिए थी वो चीज हम बेहतर नहीं कर पाते,
0: नहीं हो पाते।
2: इसलिए समय के अनुसार चीजों के करने के ऊपर भी लोगों को ध्यान खिंचवाया गया है। कहा गया है कि हर चीज के लिए एक समय है, तो जीवन में बहुत कुछ मिलता जाएगा और ये चीज समझना है कि जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल किया जा सकता है। और इसी चीज को अगर हम देखें तो हम बचपन से जो कहानियां पढ़ते आए हैं उनमें ये चीज बताई गई है कि भाई संयम से चलना है आपको। मैं फिर से संयम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्टोरी आपको कहूंगा कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और हम बहुत ही मशहूर कहानी है कि कछुआ और खरगोश की कहानी, और कहा गया कि भाई आप

0: जानते हैं इंग्लिश में कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप स्लोली धीरे धीरे करते करते एक एक चीज हासिल करते हुए जा सकते हैं। और जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस संयम, इस पेशेंस और इसी लेसन को देख कर उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है और आगे उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए देने वाले एग्जाम्पल्स भी बने। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी चीज है कि उस चीज को जब हम समझ कर करते हैं तो तब हम लंबी रेस के घोड़े बनते हैं।
1: मतलब तो वो परमानेंट है या लंबा है ज्यादा?
0: तो एक परमानेंट सी चीज है वो। और क्योंकि आप अभी ये सब कुछ कर लेना चाहते हैं, आप हो सकता है आपके माता पिता के पास पैसा हो, वो आपके कहने पर आपको एक फैंसी बाइक दिला दें या कार दिला दें, मगर आप क्योंकि आपने खुद उस चीज को कमाया नहीं है तो आप शायद इर्रेस्पॉन्सिबली रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, इसकी वजह से आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस। तो आपको लगता है ये थ्रिल महसूस कर लेना चाहिए, गाड़ी फुल स्पीड पर चला लेनी चाहिए, बट इसके कारण डैमेज होगा। अगर आपने खुद ही अपने पैसे से वो चीज कमाई हो तो शायद आप कभी भी ऐसा रेकलेस बिहेवियर नहीं करेंगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो गाड़ी चलाएंगे क्योंकि यू नो वॉट इट मीन्स टू अर्न दैट मच मनी, वो कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो इसलिए ये सारी चीजें संचित करने से आती है, धीरे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठे करते करते वो एक परमानेंट और लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस करने की बात की जाती है। और इसलिए भारतीय दर्शन में जब भी हम लोगों को जीवन के लिए आशीर्वाद देने की बात कही जाती है तब भी यही बात कही जाती है आयुष्मान भव। सबसे पहले ये चीज कहा जाता है कि लंबी आयु जियो ताकि तुम सब कुछ देख सको जीवन में,
1: समय पर सब कुछ देख सको,
0: समय पर सब कुछ जी सको। और विवाह पर भी जब आयुष्मान, तो तभी एक प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति आयु बड़ी होने पर ही विवाह होता है, तो उस समय पर भी जब आशीर्वाद किया जाता है तब कहा जाता है जीवितम शरदम शतम, यानी तुम 100 शरद ऋतु देख सको, तुम 100 वसंत देखो ये नहीं कहा जाता, कहा जाता है कि तुम 100 शरद ऋतु देखो, यानी जीवन के हर ऋतु को देखो, हर चीज का आनंद ले सको, पर वो आनंद धीरे धीरे लेना है, बिट्स एंड पार्ट्स में, पोर्शंस में लेना है, एक साथ अगर तुम सब कुछ लेना चाहोगे तो संभव नहीं है, वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ।
1: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ये समझ में आया कि समय पे और क्यों जरूरी हैं चीजें, और एकदम से एक सब कुछ संभव भी नहीं है और शायद अच्छा भी नहीं लगेगा, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं कल्पना जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर मुझे ये दिख रहा है जो आपने डेफिनेशन बताई इंटेलेक्चुअल रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन में कितना कुछ आता है, और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे से ज्यादा व्यक्ति वो खुश है जो इन रेगुलेशंस से परे होके जीवन जी रहा है, उसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, और मैं इतना सोच रही हूँ, रेगुलेट कर रही हूँ और मैं कम खुश हूँ, तो फिर इसके मायने समझ में नहीं आते। ये तो ऐसा लगता है कि रेगुलेशन इसलिए बनाए गए हैं कि मैं रिस्क ना लूं और कॉन्सिक्वेंसेस के डर में जीती रहूं, तो डर में जीना तो अच्छा जीना है ही नहीं, तो कहीं वो रेगुलेशन डरा तो नहीं रहे।
2: एक शब्द अगर हम जीवन में सीख ले तो सभी चीजों का निचोड़ उसमें आ सकता है, वो है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे सब कुछ करना है, लेकिन वेटेज किस चीज को कितना देना है, मेरे टाइम का, मेरी एनर्जी का, ये मुझे तय करना है।
1: ओके,
2: अगर मैं स्टूडेंट्स के कॉस्ट्यूम में हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे जाहिर है कि पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देना होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी मेरे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, उसके लिए भी मुझे समय देना ही पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, और फिर उसके अलावा अगर मुझे स्पीचेस देने में मेरी कला है, माहिर है, या मैं डिबेट कर सकता हूँ, या मैं कोई कंपटीशन दे सकता हूँ, तो वो भी। मतलब मैं अपने लाइफ में एक ही चीज एक तरह से ही ना करूं, लेकिन सभी चीजों में अपना हिस्सा बैलेंस रखूं, तो मुझे सभी चीजों का आनंद भी आएगा, बोरियत भी नहीं होगी, और खुद को मैं रेगुलेट भी कर सकूंगा।
1: ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं तो ऐसा हो रहा है कि एकदम बहुत एक्साइटेड या एकदम ही बोर्ड हूं मैं लाइफ से, कहीं पे बैलेंस ही नहीं मिल रहा है। ओके,
2: तो जो व्यक्ति दिखता है ना कि ये बहुत रिलैक्स है, कुछ भी रेगुलेशन नहीं करता है, किसी बारे में सोचता नहीं है, वो एक्चुअली उसका दिखाने का स्वरूप होता है, लेकिन अंदर से वो काफी कनेक्टेड होता है और इसीलिए वो खुश रह पाता है.
1: ओके मतलब उसका रीजन कुछ और होता है खुशी का, हमें जो रीजन लग रहा है एक्चुअली वो रीजन से हटके कुछ रीजन है.
2: अगर कोई इंसान सॉर्टेड आउट है अपनी लाइफ में, उसने सॉर्ट आउट किया हुआ है सब कुछ, तो वो नेचुरली निश्चिंत रहेगा. समझो एग्जाम है, मैंने साल भर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, बैलेंस रखा है, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खेलना, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा आउटिंग, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रोज किया हुआ है. तो एग्जाम के टाइम पर अचानक मुझे ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं देना पड़ेगा और तब भी मैं बैलेंस करके चल पाऊंगी और मुझे स्ट्रेस भी नहीं होगा क्योंकि मैंने रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है.
1: ओके इंटरेस्टिंग. तो बहुत सारी चीजें अभी मुझे समझ में आई कि रेगुलेशन, संयम ऐसे तो बहुत बड़ा और बहुत ना टफ साउंड करता है. जैसे श्रीनिधि जी ने कहा कि कोई संन्यास ले रहा है तो बड़ा संयम है, वो फॉलो कर रहे हैं और बाकी जीवन में ऐसा टफ लगता है. लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर चीज एक साथ नहीं की जा सकती, वो इंजॉयबल ही नहीं है लाइफ में, और किस तरीके से अगर आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं तो एक बैलेंस लाइफ में क्रिएट करते हैं ताकि ऐसा नहीं है पेंडुलम की तरह कभी एकदम चले गए इधर और कभी एकदम उधर चले गए और बीच में तो है ही नहीं. ओके सो इस बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी ये एपिसोड हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है समय कि यहीं तक बातें की जाएं. तो क्या हम कुछ अनुभव कर सकते हैं इस आधार पर, कोई मेडिटेशन या कुछ अफर्मेशंस?
2: जी बिल्कुल, कुछ अफर्मेशंस के साथ हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और रिफ्लेक्शन के साथ सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. तो फिर से एक बार मैं अनुरोध करूंगी अपने सभी श्रोताओं को कि जहां कहीं भी है एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, खुद के शरीर को रिलैक्स मोड में ले आएं, गहरी और लंबी सांस लेते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें. भीतर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश होते हुए महसूस करें. बाहर जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर छोड़ दें. अपनी आंखों को बंद करके अपने संपूर्ण शरीर को एक बार अच्छी तरह से महसूस करें. कोशिश करें अपने ही चेहरे को अपने मन के आईने में देखने की. गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को महसूस करते हुए ये सोचिए कि मैं कितने ही सालों से इस शरीर का, अपने मन का, अपने बुद्धि और अपने संस्कारों का पहचान के साथ प्रबंधन करते आ रही हूं. जो मेरे भीतर है उसे समझना ही मेरी ताकत है. जो मेरे भीतर है, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, उसे समझना ही मेरी असली ताकत है. गहरी लंबी सांस ले, अपने आप को याद दिलाए, मेरी भावनाएं मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी मार्गदर्शक है. स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, लेकिन उन्हें समझकर सही प्रतिक्रिया को चुनना है. गहरी लंबी सांस लें. इस समय अपनी भावनाओं को समझें, फीलिंग्स का एहसास करें. इस समय मेरे विचार, मेरी भावनाएं शांत हैं, स्थिर हैं. ऐसी स्थिति मुझे अच्छी लगती है. मैं कोशिश करके सारे दिन में अपनी इसी स्थिति को बनाए रखने का अपने आप से वादा करती हूँ। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज पता चली। मुझे लगता है जो आप लोगों ने आज बताया उसको बैठ के और रिफ्लेक्ट करेंगे तो और समझ में आएगा और इसे जिंदगी में शामिल भी कर पाएंगे। अब थोड़ा उतना भारी शब्द साउंड नहीं कर रहा है रेगुलेशन, अब समझ में आ रहा है जैसा आपने मेडिटेशन के दौरान भी अनुभव कराया कि ये दबाना नहीं है भावनाओं को, तो ये क्लैरिटी मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में और जानेंगे कि कैसे रेगुलेट करें कि हमें फोमो ना हो जाए, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी ना हो और रेगुलेशन भी लाइफ में लेकर आ सके अपने अनुसार। फिलहाल लेते हैं इजाजत। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहिए लव यू जिंदगी,
2: लव यू जिंदगी।

0: आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: हाँ अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए हैं।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी। अच्छा, भाई छोटे थे।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माता जी भी कुछ करते थे?
1: माता जी ने घर काम, माता जी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी वो तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ,
0: आपके माता जी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: हाँ। अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आई, तो माना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया।
1: हाँ।
0: और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी।
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल के।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे। पुणे में
1: कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चियां सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। माना हमारा पेशवेकालीन वाड़ा था 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़ा नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहां पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, माना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था। प्रिंसिपल स्कूल में तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी मैं। मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में माना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़े सी भी पढ़ाई करो जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल भी, पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे? गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम।
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते।

0: करने का उसको शौक था, और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
1: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था।
0: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई, पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे, ऐसे।
1: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर।

0: इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है। जी माँ जी आ गई। चलिए नमस्ते डॉक्टरनी जी।
1: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
1: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
1: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
0: जी वो ना। अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
1: देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है। इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
2: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
3: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपके बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
4: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
3: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
4: हाँ, बहुत एक्टिविटी थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
3: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
4: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना,
1: हाँ,
0: और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है, इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना, इसीलिए
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था, और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे, उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे।
1: था। हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छे अच्छे आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक, उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे, केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी, पूरन
0: अच्छा,
1: पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं, रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी, उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: थे। 2 बरस तक की,
0: अच्छा,
1: पगार
0: और
1: 400 रुपये था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपये?
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना? क्योंकि आपके बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद। तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी, सोना 140 रुपये तोला। तोला
0: जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी? जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का।
1: तो छोड़ के बम्बई में आई, उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बम्बई में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन गया।
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको।
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: हाँ, बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चे उनको भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी, और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी उस माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बम्बई में आई, और उसका एजुकेशन बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई, और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो
1: बचपन से। ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी जी जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी दो बच्चे है।
0: जी जी जी, आपके दो बेटियां है और एक बेटी हो, तीन बेटियां आपके। और फिर जैसे कि आपके देवरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे, बाकी सब
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैडम आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
3: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
2: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इन सब का भी शौक है ना? तो आप क्या क्या करते थे घर में?
3: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
2: सिलाई का।
3: हाँ,
2: कहा, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
3: पुणे में किया था।
2: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप? और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
3: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
2: अच्छा, कभी आपने मोल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
3: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
2: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
3: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
2: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
3: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
2: तो पूरे आपका ग्रुप था?
3: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना, भजन गीत सिखाते थे हमको।
2: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
3: सत्संग नहीं इतना किया हम।
2: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
3: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
2: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
3: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
2: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
3: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
2: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
3: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, 1 घंटा होता था तब भी जाती थी।
2: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
3: 1-2 बरस तक गई।
2: 1-2 साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
3: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
2: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन, जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
3: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
2: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
3: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
2: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
3: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
2: अच्छा, पर सारे मराठी में।
3: हाँ,
2: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने 2 लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
3: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
2: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
3: नहीं,
2: कभी कोशिश नहीं की?
3: नहीं, याद भी नहीं आया।
2: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
3: ज्वेल एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
2: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
3: हाँ।
2: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
3: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
3: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
3: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज

0: भी सीखी है।
1: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
0: हाँ,
1: और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
0: अच्छा,
1: और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
0: नहीं, उसने नहीं किया।
1: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
0: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मैंने शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो। तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया, उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पुणे से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
1: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
0: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
1: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
0: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस देसील, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहे।

0: का कार्यक्रम वंदे मातरम और वंदे मातरम में शरावती महाजन, इनसे हमने सुने हैं इनके काफी जीवन के अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन इनके बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी।
0: आपका शुभ नाम?
1: तेजश्री।
0: तेजश्री जी, आप जैसे कि माता जी ने बताया है कि आप दो बहने हैं, है ना, तो आप बड़े वाले?
1: जी हम बड़े हैं।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की और आपको किस तरह के विशेष आपकी रुचि है?
1: हमने पढ़ा है बीकॉम, ग्रेजुएशन पूरा किया और मेरा रुचि हमेशा ये रहा कि कोई भी जो पॉजिटिव काम होता है उसमें आगे बढ़ना है। तो बीकॉम पूरा करके साथ में मैंने और भी बहुत कुछ सीखा भी, जैसे टाइपिंग सीखा, गाना भी सीखा, जरूरी जितना सिलाई सीखा ताकि हम अपना खुद का काम खुद कर सके। उसके साथ में हम टेलीग्राम उस समय होता था, टेलीप्रिंटर वगैरह, उसके भी कोर्सेस किए। तो केक का मुझे शौक था तो केक के भी क्लासेस किए। तो ऐसे हर प्रकार से शौक था, तो जितना मेरी कैपेसिटी थी उतने में क्लास पूरा करके लाइफ में अपनाने का मैंने प्रयत्न किया।
0: बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीजें सीखना भी जरूरी है। तो कभी किसी चीज में आप आगे बढ़ पाए जो आपने प्रोफेशन बनाया हो उसको?
1: हाँ जी, जैसे देखो पढ़ाई तो होती है, वो तो हमको हर व्यवहार में काम आती है। पढ़ना ये जरूरी है, ये मेरे लाइफ का एक मकसद था एकदम। और मेरे मदर फादर जो है, माता पिता, वो भी यही मेरे को शुरू से बचपन से हम सुनते आए कि पढ़ना है बच्ची, पढ़ना है, पढ़ने से अपना जीवन खुद भी हम बना सकते हैं और दूसरों को भी हम मदद कर सकते, राह दिखा सकते हैं। इसलिए वो पढ़ाई तो एक तो मुझे बहुत काम आई। दूसरी चीज है केक का जो मुझे शौक था, तो आज के लाइफ में भी मैं अनेकों को अपने जन्मदिन के लिए केक बना के देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो केक जो है वो एक मेरा ये हॉबी होने के कारण, बेकरी आइटम, मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
0: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहने हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
1: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
0: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
1: जी देखो, ये शादी ये एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं

0: रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
0: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए, और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
0: एक समाज

0: समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा। इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है, है ना। तो ये मेरी सदिच्छा है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
2: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी, इसीलिए हम उसके साथ आए।
1: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए?
2: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
1: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
2: 2 साल हुए।
1: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
2: आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
1: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?
2: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मतलब द्वंद्व नहीं रखते।
1: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ये भाषा सब जगह चलती है।
2: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मना।
1: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
2: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
1: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृ शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

songs that cannot be erased from your heart. इसलिए लौट आई हूँ फिर से कार्यक्रम गुलदस्ता में, जो गीत हमारे दिलो दिमाग पर बरसों से हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते, उन्हीं गीतों को नए अनोखे अंदाज में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर से आपका मनपसंद दिल पसंद कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं स्वर्णलता। हमेशा नए अनोखे अंदाज में उड़ती रहती हूँ आपकी खातिर। तो रेडी है ना आज के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुनते हुए मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अद्भुत सुनने के लिए आपको ट्यून करना होगा रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और मैं हूं स्वर्णलता। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट कार्यक्रम गुलदस्ता। आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम हैं बिल्कुल बेफिक्र मोड में। आप भी बेफिक्र हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पुराने गीतों के नए रूप को देखने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में, डोंट मिस द शो। वन एंड ओनली स्वर्णलता के साथ आप बिताएंगे पूरा एक घंटा। इस एक घंटे के सफर को यादगार करते हैं हम दोनों मिलकर। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आप सुन रहे हैं नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। वैसे हमारे पुकारने पर आप चले आते हो रेडियो मधुबन पर, ट्यून इन करते हो और फौरन हाजिर हो जाते हो। इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपसे आज एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं और मन ही मन मैं इसे पढ़ भी लूंगी, क्योंकि आपके भाव रीच हो जाते हैं, शब्दों से पहले भावनाएं पहुंच जाती हैं, है ना। तो ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आज एक अनोखे अंदाज में सिंगर पेश कर रहे हैं, उसे एक री इमेजिन्ड तरीका दिया जा रहा है, उसे नव कल्पना का रूप दिया जा रहा है। तो इस नव कल्पना को आप कैसे स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आपको किसी भी गीत का ओरिजिनल वर्शन ही पसंद है, क्या ख्याल है आपका? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने गीतों को अगर कोई अपने स्टाइल में अपने अंदाज में गाए या उसमें कोई चेंजेस लाए म्यूजिक में, क्या आपको पसंद है? आपको पसंद है ऐसे चेंज्ड वर्शन को सुनना? तो आज के कार्यक्रम में उन लोगों को शामिल होना ही पड़ेगा जो ऐसे स्टाइल को पसंद करते हैं, अपना लेते हैं तुरंत। किसी की क्रिएटिविटी को तुरंत जो अपना लेते हैं वह सहज ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई एक ही वस्तु के साथ लगाव लगाए बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद वह पीछे अपने आप को पाता है, वह कतार में अपने आप को पीछे पाता है क्योंकि वह आगे बढ़ ही नहीं पाता। हमें कई बार ऐसे चेंजेस को अपनाने पड़ते हैं

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: बॉलीवुड ओल्ड म्यूजिक को, ओल्ड मेलोडीज को सदाबहार गीत भी कहे जाते हैं। अब इन सदाबहार गीतों के जो ओरिजिनल वर्शन है उनका न्यू वर्शन आ चुका है। सभी अपने अपने अंदाज में इसे गाते हैं। ओरिजिनल वर्शन का एक अनोखा अंदाज भी है जो अपने अनोखेपन को दर्शाते हैं इन गीतों के नए वर्शन में। तो आप सब इन्हें सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारा तो इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य रहता है कि कुछ ना कुछ नया आपको दें और उस नएपन को आप दिल से कबूल कर लें। तो बने रहिएगा अंत तक आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह, क्योंकि आपका वादा है हमारा साथ हमेशा निभाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

साथियों, संगीत प्रेमियों का कहना है कि ओल्ड मेलोडीज का अपना ही एक दौर था, वह दौर कभी वापस आ नहीं सकता। पर हम कहते हैं कि आज की जनरेशन भी ओल्ड मेलोडीज गा रही है, और आज की जो जनरेशन है उसमें कुछ जो म्यूजिक लवर्स हैं, इन पुराने गीतों को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं, वह भी सही है। इससे नयापन आ जाता है, और नयापन कौन नहीं चाहता साथियों, है ना? हर चीज में तो नयापन हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें भी सही। री इमेजिन्ड न्यू वर्शन आज आप सुन रहे हैं इन सदाबहार गीतों के। तो आप बताइएगा, आपको ये गीत कैसे लग रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे भी हमें बता सकते हो। आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक के आधुनिक वर्शन आपके लिए रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो अभी बैक टू बैक दो गीत हम सुनने वाले हैं।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम पुराने गीतों के, पुराने दौर के जो सदाबहार गीत हैं, उन गीतों के नए वर्षन हम सुन रहे हैं, जिसको रीमेक वर्षन भी कहा जाता है। और अभी हमने दो गीत बैक टू बैक सुने। फर्स्ट सॉन्ग किशोर कुमार का था ओ मेरे दिल के चैन, और सेकंड सॉन्ग एक ड्यूएट सॉन्ग रहा इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। अब साथियों, आपने देखा कि दूसरे गीत में इसके शब्द भी बदल दिए गए और उसको अपने तरीके से पेश किया गया, और वह भी बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में, खूबसूरत लग रहा था, है ना। तो ऐसे ही गीतों को आज आप सुन रहे हैं जिसमें नवीनता है। बने रहिए और सुनिए अगला गीत।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मामा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? बोला, यस। तो मामा को बिल देता है, तो मामा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मामा, इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मामा, आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मामा, आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मामा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है अपने क्यूट बॉय को देखकर। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इंडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।
2: 4 दिन की जिंदगी है, हंसते गाते चलता चल, 4 दिन की जिंदगी है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे चलता चल, 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराते हुए हर लम्हा बिताते हुए आगे बढ़ता चल। फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम के सारे गीत बहुत पसंद आए होंगे, और ऐसे ही गीतों को हम लेकर आएंगे। और जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगी कि इमेजिनेशन इज द मदर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशन। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्पना शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कंप्लीट एकांत की स्थिति एक आनंददायक स्थिति है, जब कुछ नया अपने आप दौड़े चला आता है, और इस कल्पना शक्ति के लिए एकांत की स्थिति की भी बहुत आवश्यकता है। तो आनंद लेंगे हम बॉलीवुड हिंदी क्लासिक्स का हमेशा, क्योंकि ये सदाबहार गीत ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह सदाबहार गीतों के साथ, नए नए गीतों के साथ। अब कौन से गीत पेश करने वाली हूँ, जरा देखते हैं। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: अभी बजे हैं दोपहर के 2। एक मिनट का यह समय स्वयं को और परमपिता परमात्मा को दो।

0: नमस्ते दोस्तों, पता है मीना की बहन जी एक हफ्ते के लिए किसी जरूरी काम से शहर गई हुई है और उनकी जगह सब बच्चों को पढ़ा रही हैं रजनी बहन जी। और फिर मीना के स्कूल में अगले हफ्ते से छुट्टियां भी तो होने वाली हैं, इसलिए जल्दी से चलते हैं मीना की क्लास में।
1: माफ करना बच्चों, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं तो समय पे ही पहुंच जाती, लेकिन एक तो मेरे सर में थोड़ा दर्द भी था और ऊपर से घर में अचानक कुछ मेहमान भी आ गए, बस उसी वजह से मुझे आने में देर हो गई।
2: बहन जी, आज आपने हमें छुट्टियों का काम भी देना है।
1: मुझे याद है दीपू।
3: बहन जी, आपने कहा था कि अगले शनिवार स्कूल में एक नाटक भी करेंगे।
1: अरे हाँ मीना, ये तो मैं भूल ही गई थी। एक काम करना, आज छुट्टी के बाद तुम और तुम्हारी नाटक मंडली के दोस्त मेरे कमरे में आ जाना। हम सब साथ में बैठ के सोचेंगे कि इस बार कौन सा नाटक किया जाए। चलो बच्चों, निकालो अपनी अपनी किताबें।
0: और स्कूल की छुट्टी के बाद
3: रजनी बहन जी।
1: अरे मीना, दीपू, कृष्णा, सुमी, छुट्टी तो हो भी गई, तुम सब अभी तक घर नहीं गए।
3: बहन जी, आपने ही तो कहा था छुट्टी के बाद यहाँ आने के लिए नाटक की तैयारी।
1: ओ हाँ बच्चों, एक काम करें, नाटक के बारे में कल बात करें। वो क्या है ना, आज मुझे ये सारी कॉपी चेक करनी है।
3: इतनी सारी कॉपी? ये सारी कॉपी आपको आज ही चेक करनी है?
1: हाँ मीना, जितना काम यहाँ हो गया हो गया, उसके बाद ये सारी कॉपी घर ले जाऊंगी, रात में आराम से सब कॉपी चेक कर लूंगी।
3: ठीक है बहन जी, हम चलते हैं।
4: चलते हैं, कल स्कूल में मिलते हैं।
0: उस रात रजनी बहन जी ने बहुत देर तक जाग के सब कॉपी चेक की और अगले दिन मीना की क्लास में।
2: बहन जी, मेरी कॉपी तो है ही नहीं।
5: मेरी कॉपी भी नहीं मिल रही है।
1: ओहो दीपू, सुनील, लगता है जल्दी जल्दी में तुम दोनों की कॉपी मैं घर पे ही भूल आई।
4: जल्दी में स्कूल आई।
3: मिठू चुप।
2: कोई बात नहीं बहन जी, हम अभी भाग के आपके घर से अपनी कॉपी ले आते हैं।
1: ठीक है जाओ।
0: सुनील और दीपू भाग के रजनी बहन जी के घर गए, लेकिन जब वो अपनी कॉपी लेके वापस क्लास में पहुँचे तो
2: ना, रजनी बहन जी कहाँ है?
3: पता नहीं दीपू, थोड़ी देर पहले बोल के गई थी कि अभी आ रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं आई।
6: मीना, दीपू, वो देखो पोंगरहम चाचा।
2: अरे ये तो हमारी क्लास की तरफ ही आ रहे हैं।
7: नमस्ते पोंगरहम चाचा।
8: नमस्ते नमस्ते। बच्चों, बहन जी कहाँ है?
3: चाचा जी, बहन जी थोड़ी देर में आने का बोल के गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आई।
4: इसका मतलब आज छुट्टी?
8: नहीं दीपू बेटे, अगर बहन जी आने का बोल के गई हैं, तो वो जरूर आएंगी।
4: जरूर आएंगी, सबको पढ़ाएंगी।
2: लेकिन तब तक हम क्या करें चाचा जी?
8: तब तक मैं तुम सबको कुछ सिखाऊंगा। क्यों, क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता?
9: वो बात नहीं है चाचा जी, लेकिन हम सब यही सोच रहे हैं कि आप हमें कौन सा विषय पढ़ाएंगे।
4: कौन सा विषय पढ़ाएंगे? क्या खाना पीना सिखाएंगे?
8: चलो आज मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार खेल खिलाता हूँ। इस खेल का नाम है शब्द झटक नहीं अटक। सबसे पहले शुरू करते हैं कृष्णा से। यहाँ आओ कृष्णा। हाँ, अब तुम ये पंक्ति बोल के दिखाओ। लाल रेल नीली रेल।
9: लाल रेल नीली रेल।
8: मजा आया बच्चों?
10: नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आया।
9: चाचा जी।
8: अच्छा अच्छा, अभी देखना मजा आता है या नहीं। कृष्णा, अब तुम यही पंक्ति फिर से बोलो, जल्दी जल्दी 5 बार, लेकिन याद रहे कहीं भी अटकना नहीं। बोलो, लाल रेल नीली रेल।
9: लाल रेल नीली रेल। लाल रेल नीली रेल। लाल लेर लीली लेर।
8: क्यों, अटक गए ना? अब कौन बोल के दिखाएगा?
7: मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं,
8: अब बोलेगी हाँ सुमी।
11: लाल रेल नीली रेल, लाल रेल नीली रेल, लाल रेल नीली रेल।
8: मीना अब तुम बोल के दिखाओ।
11: लाल रेल नीली रेल।
8: ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी 5 बार बिना अटके।
11: लाल रेल नीली रेल, लाल रेल नीली रेल, लाल नीली रेल लेल लेल।
0: पोंगाराम चाचा के इस खेल ने तो बच्चों को हंसा हंसा के लोटपोट कर दिया।
2: पोंगाराम चाचा, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ?
8: हाँ हाँ दीपू जाओ, लेकिन लाल रेल नीली रेल बोलते हुए जाना।
4: बोलते हुए जाना, अटक नहीं जाना।
0: पोंगाराम चाचा सब बच्चों से बारी बारी लाल रेल नीली रेल बुलवा ही रहे थे कि इतने में मीना के पिताजी वहाँ आ गए।
12: पोंगाराम भैया, आप बहन जी कहाँ है?
8: भाई साहब, वो दरअसल हुआ यूं कि जब मैं यहाँ आया तो
5: चाचा जी, चाचा जी, रजनी बहन जी।
13: क्या हुआ दीपू?
5: रामू काका ने बताया है कि थोड़ी देर पहले बहन जी बेहोश होके गिर पड़ी।
13: क्या बेहोश होके गिर पड़ी?
5: बेहोश हो गई।
13: क्या हुआ?
12: अब कहाँ है रजनी बहन जी?
5: रामू काका उन्हें नर्स बहन जी के पास ले गए थे। नर्स बहन जी ने रजनी बहन जी को 1 हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है।
3: अब हमें पढ़ाएगा कौन? और छुट्टियों से पहले होने वाला हमारा

0: दे देगी।
1: बिल्कुल, देखो स्कूल प्रबंधक कमेटी सबसे पहले बाहर से किसी टीचर को बुलाने का प्रयास करेगी।
2: लेकिन इस काम में तो थोड़ा समय लग सकता है।
1: मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक किसी नए टीचर का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक गांव के पढ़े लिखे लोगों को स्कूल में आकर पढ़ाने का पूरा अधिकार है।
2: ये तो अच्छी बात है। मैं भी प्रबंधक कमेटी से निवेदन करूंगा कि मुझे भी इन प्यारे बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दें और फिर हम मिलके सीखेंगे।
3: लाले नीले, लाले नीले, लाले नीले।
4: क्यों दोस्तों, मजा आया ना मीना से मिलके? चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
5: बहुत ही अच्छा अधिनियम है शिक्षा का अधिकार।
6: अभिभावक भी स्कूल में हिस्सा लेने को तैयार।
4: भाई वाह, दो पंक्तियों की कविता में क्या पते की बात बता जाते हैं अपनी मीना और मिट्ठू। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गाना।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया। अब चलना है खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ
2: शब्द बनाओ।
1: हाँ, मैं आप सबको एक शब्द बताऊंगी और आपको शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है?
2: मुहावरा।
1: हाँ, तो आज का शब्द है कमल।
3: बहन जी, कमल का पहला अक्षर है क और क से होते हैं कान।
1: शाबाश गोलू। और कान से जुड़ा मुहावरा?
4: एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, मतलब दी हुई सीख पे अमल ना करना।
1: शाबाश सोमा, बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अगले अक्षर से शब्द कौन बताएगा?
5: क के बाद कमल में आता है म और म से होता है महल।
1: बिल्कुल ठीक कृष्णा। और महल से जुड़ा मुहावरा?
5: हवा में महल बनाना, मतलब बहुत मुश्किल काम करने के सपने देखना।
1: शाबाश।
3: बहन जी, अगला शब्द मैं बताऊं?
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: क और म के बाद कमल में आता है ल और ल से लड्डू।
1: और लड्डू से जुड़ा मुहावरा?
3: मन में लड्डू।

0: फूटना मतलब बहुत खुश होना।
1: शाबाश मीना। तो बच्चों मजा आया ना?
2: बहुत
3: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
0: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
1: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो आप। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार.
1: हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप त्रिवेदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एट्थ पॉइंट विच इज वुड. एज यू ऑल नो दैट वी आर स्टिंग मॉडल्स एंड द लेसन इज लेसन नंबर फिफ्थ अ हीरो फ्रॉम द बुक गोल्डन रेस फॉर क्लास टेंथ RBSE. तो बच्चों अभी हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे हैं, ग्रामर का ये टॉपिक है और अब आठवां हमारा टॉपिक है आज वुड. तो वुड कक्षा 10 के लिए गोल्डन रेस बुक का नाम है, लेसन का नाम है अ हीरो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वुड. ठीक है, जाहिर सी बात है वुड जो है विल का पास्ट टेंस है. यूज्ड एज पास्ट टेंस ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच. He told me that he would play कबड्डी. उसने मुझे बताया कि वो कबड्डी खेलेगा. अब ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में he said to me, I will play कबड्डी. डायरेक्ट स्पीच हो गया. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा पॉइंट है टू एक्सप्रेस अ पास्ट हैबिट. जो हमारी पुरानी कोई आदत हो वो बताने के लिए आई वुड गो अप द हिल डेली इन माई चाइल्डहुड. अपने बचपन में मैं रोज पहाड़ पे जाया करता था. हियर वुड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय यूज्ड टू. और देखिए वुड का इस्तेमाल अगर नहीं करना चाहे तो यहां पर यूज्ड टू का यूज भी किया जा सकता है. वेन एवर आई वेंट देयर आई वुड सी द शॉप क्लोज्ड. जब भी मैं वहां गया मुझे दुकान बंद मिली, ये इसका अर्थ हो सकता है. सी टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर. ऑफर यानी प्रस्ताव. कोई जैसे आप किसी को कुछ सुझाना चाह रहे हैं, वुड यू प्लीज सिट डाउन, रिक्वेस्ट, ये हो गई रिक्वेस्ट. वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी. अपने कॉफी चाय का कप जो है किसी को ऑफर किया तो ये ऑफर हो गया, प्रस्ताव एक तरह से. वुड इज मोर पोलाइट देन विल. जाहिर सी बात है वही कैन कुड वाला मामला है. जैसे कुड ज्यादा पोलाइट है ऐसे ही वुड भी ज्यादा पोलाइट है. टू आस्क फॉर समथिंग मोर पोलाइटली. आई वुड लाइक योर सपोर्ट इन दिस इलेक्शन. इस चुनाव में मुझे आपका समर्थन चाहिए. आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस टिकट प्लीज. फिफ्थ नंबर पे है टू एक्सप्रेस वंस प्रेफरेंस. हमारी जो चयन है हमारा वो बताने के लिए आई वुड प्रेफर टू स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ यू. आपके साथ जाने से ज्यादा अच्छा है मैं घर पर रहूंगा. ही वुड रादर स्टडी इंग्लिश देन मैथमेटिक्स. वो इंग्लिश पढ़ेगा या He would rather study English than वो गणित से ज्यादा अंग्रेजी को पढ़ना ठीक समझेगा. नाइन्थ टॉपिक है अब हमारा शेल. विल वुड की बात हो गई, अब शेल की बात करते हैं. मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शेल और विल दोनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर में. टू इंडिकेट फ्यूचर टाइम विद फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन जो है उसका फ्यूचर बताने के लिए आई शेल प्ले टेनिस इन द इवनिंग. ये सिंपल बिल्कुल फ्यूचर हो गया. फ्यूचर सिंपल, मैं शाम को टेनिस खेलूंगा. वी शैल गो टू अजमेर टुमारो. हम कल अजमेर जाएंगे. नोट, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश हाउएवर देयर इज अ ग्रोइंग टेंडेंसी टू यूज विल इन ऑल पर्सन. आजकल जो है हर जगह विल का इस्तेमाल हो रहा है. टू इंडिकेट, दूसरा पॉइंट है टू इंडिकेट अ कमांड, प्रोमिस और थ्रेट. अगर धमकी देनी हो, कोई प्रॉमिस किया है या कोई कमांड आदेश देना है तो शेल का यूज करेंगे. देखिए आप CPT, इसको आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट. यू शैल कम हियर एट वंस, कमांड हो गई तुरंत यहां आओ. यू शैल गेट अ प्राइज इफ शी सिक्योर्स फर्स्ट डिवीजन इन एग्जाम. एग्जाम में अगर पहला डिवीजन आया तो आपको पुरस्कार मिलेगा, ये वादा हो गया. यू शैल बी पनिश्ड If you don't obey the rules, threat, धमकी. नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी. We often use shall I or shall we. अक्सर हम shall I, shall we का question tag के रूप में use करते हैं when we are asking or suggesting what to do. क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जब किसी को सुझाव देना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. Shall I make a cup of tea for you? क्या मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाऊं? Shall I buy this book? क्या मैं ये किताब खरीदूं? Shall we go and see this movie? क्या हम जाएं? आजकल तो सिनेमा हॉल बंद है इसलिए कोई सोचना भी मत. Then should, shall का should ये past tense है, used as past tense of shall. In indirect speech, he said, I shall come tomorrow. उसने कहा वो कल आएगा. He said that he should come the next day. Tomorrow का the next day हो जाता है indirect speech में. Okay. Second point है, to express duty or obligation, D-O. We should keep our word. हमें हमारे बात पर कायम रहना चाहिए. To express suggestion, an advice or a thing to do. You should take bath daily. यानी आप सलाह दे रहे हैं, एडवाइस, रोज नहाना चाहिए. You should see the doctor. तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए. We should obey our parents. हमें हमारे माँ बाप की बातों को ध्यान में रखना चाहिए. Fourth है after lest. Lest के बाद भी इसका उपयोग होता है. Expressing fear. डर बताने के लिए. Work hard lest you should fail. कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे. पांचवा है टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, शायद. डीमोनेटाइजेशन शुड प्रिवेंट करप्शन इन फ्यूचर. हो सकता है भविष्य में विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई थी उससे भ्रष्टाचार रुक जाए. एक्सरसाइज फिल, इसमें ए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट मॉडल्स choosing from the box given below. Okay, देखिए, could, will, can, must, not, would, could not, may, should not, might, need not. यानी कि could, will, can ये तो हैं affirmative और would, may, might और negative में कौन कौन से हैं, must not, could not, should not और need not. Okay, इन्हीं में से हमें भरने हैं. थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाए, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई डिड नॉट फील वेरी वेल यस्टरडे. आई फिर ब्रैकेट है ब्लैंक. ईट एनी थिंग, मुझे कल अच्छा नहीं लग रहा था तो ठीक से कुछ खा नहीं सके. तो आई थिंक आई कुड नॉट आना चाहिए. I could not eat anything. और anything आ गया उससे भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं. दूसरा, if you work hard, you खाली जगह have to repeat the course next year. अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो अगले साल तुम्हें दोबारा नहीं पढ़ना होगा. यानी कि नेगेटिव का ही कुछ आएगा. तो देखते हैं हम इनमें से क्या आना चाहिए. मेरे ख्याल से इसमें नीड नॉट, यू नीड नॉट हैव टू रिपीट द कोर्स नेक्स्ट ईयर. थर्ड क्वेश्चन, एट द एज ऑफ 10 शीला कुड प्ले द पियानो ब्यूटीफुली. कुड आएगा खाली जगह. आई टेक अ फोटोग्राफ ऑफ यू. पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप. वुड आई टेक अ फोटोग्राफ खाली जगह. यू स्पीक फ्रेंच. कैन यू स्पीक फ्रेंच ओनली अ फ्यू वर्ड्स. कैन आएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, वी ब्लैंक ईट सो मच चॉकलेट. आई थिंक शुड नॉट. इट इज नॉट गुड फॉर मोरल ऑब्लिगेशन. सेवेंथ, वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो. वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुमारो. You must not be late. Must not आएगा खाली जगह. I खाली जगह be able to help you. But I am not sure. I might be, or last, नहीं, ninth, you do me a favor, will you? Do me a favor, please. You, khali jagah, worry about it. I have managed it. I think last mein, you should not worry about it. Yeah, you need not worry about it. I have managed it. तो ये इसकी एक एक्सरसाइज भी कर ली हमने मॉडल्स की, और कुछ हमने आज मॉडल्स थे उनको भी पूरा किया, समझा? ओके, एक एक्सरसाइज है सी में, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसमें ब्रैकेट में जो हिंट्स हैं वो दिए हुए हैं, उसके आधार पे मॉडल बनना है। सी में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मॉडल्स expressing the notions given in brackets. When the national anthem is played, all khali jagah stand in attention. Command mein kya sakta hai? Should. He said it khali jagah rain, possibility it may rain. Okay, may aayega. Teesra hai, khali jagah you give me your vehicle, request. So रिक्वेस्ट के लिए कुड आ सकता है, कुड यू। यू खाली जगह रिमेन ऑन लीव टुमारो, परमिशन। तो मे, द क्लाउड्स आर लो, बादल बहुत नीचे हैं। इट खाली जगह रेन, ये प्रोबेबिलिटी हो गया, इट माइट रेन, ज्यादा संभावना है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, शी खाली जगह दी इन द लाइब्रेरी, वीक पॉसिबिलिटी कहाँ आया था, इसको देखते हैं। ये आज तो हमने जो पढ़ा है उसमें से तो नहीं है, इसको देखते हैं जरा, कल वालों में कहीं हो सकता है। आई थिंक विल आना चाहिए, विल। ओके, सेवन्थ, शी खाली जगह बी इन द लाइब्रेरी, सेवन्थ हो गया। द ट्रेटर खाली जगह बी इमीजिएटली हैंग, शुड आएगा यार। नाइन्थ क्वेश्चन है, खाली जगह आई मेक अ कॉल फॉर यू, कुड आई मेक। तो इस प्रकार हमारे मॉडल्स कंप्लीट हुए, और छोटा सा ही टॉपिक था आज, थोड़ा बहुत ही बचा हुआ था। नेक्स्ट लेसन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब हम कल, व्हाट इज अमिस विद अस। तो आप लोग पढ़िएगा और फीडबैक दीजिएगा, एंड देखते हैं, और हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे से कर सकें, लेकिन सभी को मेहनत बहुत करनी है। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो ओके, आज के लिए इतना।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार। बहुत पुराने विचार, बासी विचार अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। तो उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।

0: गुड मॉर्निंग बोना।
1: गुड मॉर्निंग भैया।
0: ये मेरे गालों पे रंग किसने लगाया सुबह सुबह?
1: मैंने भैया।
0: तुमने? क्यों?
1: होली पे एग्जाम्स थे ना, इसलिए मैंने आपके साथ होली नहीं खेली, इसलिए आप खेल रही हूँ।
0: ओ, तो आज तुमने होली की कमी पूरी कर दी।
1: हाँ।
2: अरे बच्चों, क्या हो रहा है ये?
0: भुवना मेरे साथ होली खेल रही है दीदी।
2: लगता है तुम लोग को होली का जो त्योहार है वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्यों?
1: हाँ दीदी।
2: अच्छा, होली फेवरेट फेस्टिवल किसका है यहाँ पे?
3: मेरा दीदी।
2: सैंडी का? अच्छा, तुम्हें होली बहुत पसंद है?
3: बहुत।
2: होली क्यों बहुत पसंद है?
3: कि मजा आता है होली, सबके साथ खेलते है ना, रंग लगाना, फिर अलग अलग कलर्स, सात रंग, अच्छा लगता है बहुत।
2: होली खेलना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तक की जितनी भी होली तुमने खेली है, तुम्हारी सबसे फेवरेट होली कौन सी थी?
3: सबसे फेवरेट होली 2 साल पहले।
2: 2 साल पहले? और उसमें ऐसा क्या स्पेशल हुआ?
3: मम्मी पापा मैं भैया सब साथ में खेले थे, और ज्यादातर मैंने होली पापा के साथ खेली थी।
2: मतलब पापा के खूब रंग लगाया था?
3: पापा ने मुझे उठा के ना टब में डाल दिया था।
2: अच्छा,
0: पानी के टब में या रंग वाले टब में?
3: पहले पानी वाले टब में डाला, फिर रंग डाल दिया ऊपर से।
2: मतलब सैंडी का पूरा कलर चेंज हो गया। होली की स्पेशलिटी ये होती है। क्या होती है होली की स्पेशलिटी?
3: अलग अलग रंग।
2: बिल्कुल, रंग का ही तो त्योहार है होली। तो जब तक रंग बिरंगे ना हो तब तक मजा कैसे आएगा?
0: इस दिन तो दुश्मन भी इतने प्यार से होली खेलते, इतने प्यार से रंग लगाते कि ऐसा लगता है कि वो भी अपने ही
2: है। हाँ, बात तो सही है, कहते हैं कि इस दिन दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं।
3: हाँ दीदी।
2: तो क्या कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको होली का, जो आपके दोस्तों के साथ आपने होली खेली हो, या कुछ ऐसा हुआ हो जो आप हमें बताना चाहे?
3: फिर हम लोग थोड़ा केफ्री केफ्री में आ गए, फिर हम लोगों ने फोटो खींची, फिर उसको अभी पे अपलोड करा।
0: दीदी आपको पता मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं है।
2: होली बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हें पंकज?
0: हाँ दीदी।
2: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि लोग होली को होली के तरीके से नहीं खेलते।
3: हाँ।
2: अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है किस तरीके से होली खेलनी चाहिए?
0: होली खेलनी चाहिए मतलब होली रंगों का त्योहार है, और इसमें जितना रंग लगावे उतना अच्छा है, लेकिन इस त्योहार का लोग अलग ही तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कोई कीचड़ में किसी को पटक देता है, तो कोई कपड़े फाड़ देता है, और एक दूसरे को नाराज कर लेते हैं ऐसे त्योहार पे।
2: बात तो सही है, होली हमेशा हमें लोगों को खुश करने के लिए खेलनी चाहिए, और अगर किसी को परेशानी हो तो हमें वो चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, है ना? और किसी को जबरदस्ती रंग लगाना, कीचड़ में डालना, परेशान करना, ये सब तो हमें ना करना चाहिए और ना होने देना चाहिए।
0: इसलिए मुझे सिर्फ होली देखना ही अच्छा लगता है, लेकिन खेलने के लिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती।

0: आकाश आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है?
1: दीदी मेरा फेवरेट फेस्टिवल है रक्षाबंधन।
0: अच्छा, और रक्षाबंधन क्यों?
1: क्योंकि दीदी रक्षाबंधन में ये होता है कि जब कोई सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो राखी बांधने के साथ साथ वो इतने सारे स्वीट्स मेरे मुंह में ठूस देती है कि खाते खाते मेरे को बहुत मजा आता है। और वो इतने टेस्टी होते हैं ना, मन करता है पूरा प्लेट ही में चटका।
0: और आपकी सिस्टर्स, आपको कितनी सिस्टर्स राखी बांधती है?
1: ऐसे तो मेरे कजिन्स में 21 सिस्टर हैं, लेकिन राखियां मेरे पास सिर्फ 8 आती हैं। मुझे रक्षाबंधन इसीलिए पसंद है क्योंकि मेरी कोई सगी बहन नहीं है, और जब भी कोई मेरी कजिन सिस्टर मुझे राखी बांधती है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरी भी कोई बहन होती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को भी एक तो बहन दे।
0: ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही,
2: बहनें
0: इतनी प्यारी होती है ना।
2: हाँ दीदी,
3: हाँ, लेकिन कजन सिस्टर भी तो अपनी अच्छी बहन होती है।
2: हाँ,
0: ये बात पंकज ने बिल्कुल सही कही। आपकी बहन नहीं है ऐसा दोबारा नहीं सोचना, क्योंकि वो सभी आपकी बहन है ना। तो रक्षाबंधन पे वो आपसे मिलने आती है?
3: नहीं, वो मेरे लिए राखी भेज देते हैं।

0: रक्षाबंधन पे तो बहन की याद आती होगी।
1: बहुत।
0: और भुवना, आपको रक्षाबंधन अच्छा लगता है?
2: हाँ।
0: क्यों?
2: मैं भी मेरे भाई लोगों को राखी बेचती हूँ।
0: आप भी राखी बेचते हो अपने भाई लोगों को? तो आपको रक्षाबंधन में और सबसे अच्छी चीज क्या लगती है बताओ?
2: मुझे सबसे अच्छी चीज कुछ नहीं लगती है, लेकिन बुरा लगता है एक भाई नहीं है। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल हो जाता है।
3: हम है ना भुवना, हमें कैसे भूल गई तुम?
0: हाँ, मतलब
4: हमारा हाथ सदैव आगे है।
0: मतलब अब कुछ और राखियाँ बढ़ने वाली हैं जो भुवना को भेजनी होंगी, है ना? बच्चों, भाई बहन का रिश्ता हमारे इमोशन से होता है, तो अगर मेरी सगी बहन या सगा भाई नहीं है, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए।
1: ओके दीदी।
0: कोई भी हमारे आसपास है जिसे हम बहन या भाई मानते हैं, कजिन हो या ना हो, तो भी हम रक्षाबंधन मना सकते हैं।
1: हाँ दीदी,
0: है ना?
1: हाँ
3: दीदी।
0: क्या आप लोग मुझे ये बताओ, कभी अपने भाई बहन या उसको लेटर्स लिखते हो कि नहीं?
2: हाँ दीदी, मैं लिखती हूँ।
0: लिखते हो? और पंकज और सैंडी?
1: मैंने एक बार लिखा था।
3: और दीदी, मैंने कभी नहीं लिखा।
0: और आकाश? आजकल ईमेल और एसएमएस का जो जमाना है, लेकिन लेटर्स लिखने का भी अपना अलग मजा है।
1: मैंने ग्रीटिंग कार्ड लिखा था।
0: ग्रीटिंग कार्ड? जब रक्षाबंधन होता है तो अपने भाई बहन को हम लेटर्स या फिर ग्रीटिंग कार्ड्स लिख के भी भेज सकते हैं, उन्हें हमारी प्रेजेंस फील हो जाएगी, है ना?
1: हाँ दीदी।
0: तो अगली बार से कौन कौन लेटर्स भेजेगा?
1: मैं।
0: बस सैंडी?
2: मैं भी।
0: और आकाश?
4: मेरे लिए तो पहले से दीदियां राखी में चिट्ठी भर के भेज देती हैं।
0: चिट्ठी भर के भेज देती
4: हैं।
0: अच्छा, यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप सबसे फिर से मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, है ना, क्योंकि रोज हमारा एक त्योहार की तरह बीत सकता है अगर हम वापस उस सेलिब्रेशन के मूड में रहें और सबसे प्यार से बात करें तो रोज ही एक फेस्टिवल हो सकता है।
1: हाँ दीदी,
0: है कि नहीं। तो अभी हमने होली की बात की और रक्षाबंधन की बात की, पंकज तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा फेस्टिवल कौन सा अच्छा लगता है?
2: मुझे भी भूना की तरह दिवाली पसंद है।
0: दिवाली पसंद है, और दिवाली तुम्हें क्यों अच्छी लगती है?
2: दिवाली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही किसी से बहस होती है। हम अपने घर पे उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुशी खुशी सेलिब्रेट करते।
0: अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा और नहीं होता इसलिए आपको दिवाली पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और दिवाली में सबसे स्पेशल चीज क्या करते हो तुम?
2: स्पेशल चीज तो हम दिवाली को हम सबसे स्पेशल ये करते हैं कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को मिलते हैं और उनके घर पे जाते हैं और उनके घर पे जो लक्ष्मी पूजा होती है उसकी मिठाइयाँ खाते हैं।
0: अच्छा, लक्ष्मी पूजा के बाद जो मिठाइयाँ मिलती हैं इसीलिए पसंद है।
2: हाँ दीदी।
0: और पटाखे नहीं जलाते?
2: पटाखे तो बहुत जलाते
0: हैं।
2: हाँ।
1: फोड़ते हैं।
0: अच्छा, और फेवरेट पटाखा कौन सा है?
1: सुतली बॉम्ब।
0: अच्छा, ये तो सैंडी का फेवरेट हुआ, पंकज का फेवरेट कौन सा है?
2: लक्ष्मी बॉम्ब।
0: और भूपना, दिवाली तो तुम्हें भी बहुत पसंद है ना?
3: हाँ।
0: और तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
2: टिकड़ी।
3: चक्री।
0: चक्री देखना अच्छा लगता है और सबसे मिलना भी अच्छा लगता है। दिवाली के दिन तो हम सबसे मिलते हैं।
1: हाँ दीदी।
0: और लाइट्स और दिए जलाना किसे अच्छा लगता है?
4: मुझे।
0: आकाश को?
4: हाँ,
0: क्योंकि
5: मुझे थोड़ी थोड़ी रंगोली बनानी आती है।
0: अरे वाह, रंगोली बनानी आती है?
5: थोड़ी थोड़ी।
0: अच्छा, क्या बनाते हो रंगोली में?
5: जैसे दिए टाइप, मतलब दीदी है ना हमारे पास में रहती है, उन्हें बहुत अच्छी तरह से आता है तो वो थोड़ा उनकी हेल्प कर देता हूँ मैं, रंग ला के देना वो सब करना। अरे तो थोड़ा तो आता है ना।
0: और आकाश को रंगोली बनानी आती है, दिए जलाते हैं?
4: हाँ, रंगोली बनानी आती है।
0: कभी रंगोली बनाई है आपने? क्या बनाते हो?
4: रंगोली में एक चक्री जैसा गोल सा बनाता हूँ। हर दिवाली में अलग अलग तरह की बनाता हूँ।
0: तो लास्ट दिवाली में आपने क्या बनाया था?
4: लास्ट दिवाली में मैंने बनाया था एक बड़ा सा सर्कल बनाया था, उसके अंदर फ्लावर था, फिर फ्लावर में व्हाइट कलर से मैंने लिखा था हैप्पी दिवाली।
0: अरे वाह,
5: नाइस।
0: ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था।
5: अच्छा, तो मेरी तरह नहीं बनाते हो।
0: और आकाश, क्या क्या करते हो दिवाली पे?
4: दिवाली में घर में सबसे पहले जो दिए खरीद के लाता हूँ, दिए भी मैं ही चूज करता हूँ, दिए को धोता हूँ, दिए में डालने के लिए बत्ती बनाता हूँ, सबसे रात में घर पे मैं ही दिए सब जगह में लगाता हूँ, और जब सब जगह दिए लग जाते हैं तो सारे घर की लाइट ऑफ कर दो, ताकि मतलब बाहर से जाने से इतना अच्छा चमकता है ना घर, बहुत सुंदर लगता है।
0: बात तो सही है, देवों की रोशनी से जब घर जगमगाता है तो वो दूर से बहुत ही सुंदर नजर आता है ना। और आजकल तो इलेक्ट्रिक दिए और इलेक्ट्रिकल कैंडल्स भी आ गई हैं।
5: हाँ दीदी, बहुत
0: है ना,
2: लेकिन तो हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए।
0: हाँ, हमें ओरिजिनल दिए और ओरिजिनल कैंडल्स यूज करने चाहिए।
5: हाँ,
4: आखिर भारत की परंपरा
5: है
0: और हम बच्चे ही तो उसे आगे लेके जाएंगे। हाँ, और फिर ओरिजिनल में जो मजा है
5: वो लेटेस्ट में नहीं है।
0: हाँ, सही बात है
4: कि ओरिजिनल में मजा आता है ना, जैसे कोई बड़ा सा बम फोड़ दिया हमने, जैसे सुतली बम फोड़ दिया, भाड़ करके आवाज आई तो दिए बुझ जाते,
5: फिर वापस जलाना उसे।
4: हाँ,
0: उसमें भी मजा आता है।
5: और ज्यादातर दिए हम ही बुझाते हैं, बम फोड़ते दिए लेके जाते हैं।
2: हाँ, मैंने भी दियो के नीचे बम रख के बहुत फोड़े।
4: हाँ,
5: मैंने भी बहुत।
4: एक दिन मैंने क्या किया था, छोटी दिवाली थी तो बीच में सुतली बम रख दिया था, चारों तरफ से रेत ढक दी थी, फिर उसको जला दिया था, फट करके फूटा, सारा रेत आजू बाजू फैल गया।
0: लेकिन हमें पटाखे जलाते वक्त बहुत सावधानी बरतनी चाहिए।
2: हाँ दीदी, एक बार मेरा हाथ जल गया था।
0: कहाँ जल गया था?
5: मेरा
0: कैसे?
5: भी मेरा तो जो अनार होता है ना तो वो फूटता तो है नहीं, तो मुझे लगा ये फूटता नहीं, मैंने अनार धरा लिया जला के, फिर हाथ में ले कैसे कर रहा था, फिर वो फूट गया तो थोड़ा हाथ में चोट लग गया था।
0: हाथ में चोट लग गई थी। हाँ। ये कितनी पुरानी बात है सैंडी?
5: ये पुरानी बात 3 साल पुरानी बात है।
0: तो अभी आपका हाथ फिर ठीक हो गया?
5: हाँ, ज्यादा चोट नहीं लगा था, तब से मैं तो अनार को भी जला के दूर भाग जाता हूँ।
0: हाँ, हम एक लंबे से अखबार का या किसी लंबी सी चीज का प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम उस पटाखे से दूर रहें, और कभी भी जब तक वो पूरी तरीके से बुझ ना जाए, उसको देर ना हो जाए, तब तक उसे हाथ में ना लें और ना ही उसके पास जाएं।
2: हाँ दीदी, मैंने नोटिस किया कि बहुत बार ऐसा होता है कि अनार में, पता नहीं आजकल ऐसा क्यों होता है कि अनार फूट जाते हैं।
5: हाँ दीदी, आजकल ऐसे अनार अच्छे नहीं आ रहे।
4: करीब जब मैं 5 साल का था तो मेरे पापा ने करीब 2000 के पटाखे लेकर आए थे, उसके अंदर करीब 30 अनार थे। तो हमने पहला बॉक्स खोला, तो बॉक्स में से जब अनार जलाना चालू किया ना, तो अनार करीब मेरे से 2 कदम सामने था। मैं और पापा अनार को जला के देख रहे थे। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतनी जोर से फूटा, आँख में उसका जो चूरा होता है ना वो घुस गया था। चारों तरफ से धुंधला धुंधला कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, धुआं धुआं दिखाई दे रहा। काफी चेहरे पे छींटा मारा, तब जाके आँख की रोशनी साफ हुई, तब ठीक तरह से देख पाया।
0: आजकल पटाखे भी ऐसे आ जाते हैं, और साथ ही साथ हम जब दिवाली के बाद अखबार पढ़ते हैं तो कई ऐसी दुर्घटनाएं हमें सुनने को और पढ़ने को मिलती हैं जो कि फेस्टिवल का सारा मजा तो खत्म कर ही देती हैं, बल्कि उनसे हमें सबक भी लेना चाहिए।
5: हाँ, आजकल के पटाखे काफी खराब आ रहे हैं।
0: पटाखों को कम जलाने में हमारे पर्यावरण की भी भलाई है और हमारी भी।
5: हाँ, वायु प्रदूषण बहुत होते हैं।
0: और भुवना, आप क्या क्या करते हो दिवाली में?
3: मैं भी बहुत सारी पटाखे जलाती हूँ।
2: लेकिन तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है तो कुछ स्पेशल करती होगी तुम?
3: हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्नेक्स को जलाती हूँ।
0: स्नेक्स?
5: हाँ, मस्त आते, जलाओ अंदर सांप निकलते हैं।
4: छोटे छोटे
5: छोटे छोटे आते, पीछे से आते हैं।
0: अच्छा, वो छोटी छोटी जो ब्राउन कलर की गोलियां आती हैं,
5: ब्लैक
0: कलर की गोलियां आती हैं, वो आपको बहुत पसंद है भुवना? और क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिवाली के बारे में?
3: हर दिवाली में सारी फैमिली हमारे घर आ जाती है, तो इतना फुल घर इतना अच्छा लगता है। मुझे फैमिली बहुत पसंद है।
0: फैमिली बहुत पसंद है क्योंकि सब लोग मिलते हैं और साथ में इकट्ठा होते हैं, इसलिए आपको दिवाली बहुत अच्छा लगता है?
3: हाँ दीदी।
0: ओके।
3: और इस फेस्टिवल पे इतना पसंद क्योंकि मेरे पापा भी खेलते हैं।
0: आपके पापा भी आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए आपको दिवाली अच्छी लगती है?
3: हाँ दीदी। कोई भी फेस्टिवल मेरे पापा नीचे नहीं आते, लेकिन जब दिवाली होती है सारी फैमिली नीचे आती है और इंजॉय करते हैं, और लास्ट पे आइसक्रीम।

0: हाँ दीदी,
1: क्या कोई ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी हैं जो आपके घर पे या फिर आपके आसपास बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं, या आपको कुछ खास पसंद है?
0: हाँ दीदी, मुझे मकर संक्रांति भी बहुत पसंद।
2: मुझे भी बहुत पसंद
1: मकर संक्रांति।
3: हाँ दीदी, उसके अंदर अलग अलग तरीके के मंजे लेकर आते हैं और ना पतंगों को काटने में बड़ा मजा आता है।
4: मुझे भी संक्रांति बहुत पसंद है दीदी, लेकिन मुझे पतंग उड़ाना नहीं।
1: तो फिर क्या अच्छा लगता है भूमनाथ में?
4: पतंग देखना उड़ते हुए।
1: पतंग उड़ते देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, बात तो बिल्कुल सही है। और पंकज को क्या अच्छा लगता है मकर संक्रांति में?
0: मुझे मकर संक्रांति पे उस बंदे की पतंग काटना अच्छा लगता है जो अपने आसपास के सारे पतंगों को काट कर अकेले मजे में उड़ रहा हो।
1: अच्छा, मतलब जो सबकी पतंग काट रहा हो आप उसकी पतंग को काटना चाहते हैं?
0: हाँ दीदी, और मैं काट भी देता हूँ।
2: सिखा आखिर मैंने, है ना?
1: अच्छा, मतलब सैंडी आपकी पतंग टीचर है?
2: हाँ।
0: सिर्फ यहाँ बोल रहा है, नहीं।
2: हाँ, सिखाया मैंने।
1: और आकाश को क्या अच्छा लगता है?
3: मुझे पतंग जब उड़ाते हैं ना, तो एक बार मैं और मेरे पापा ने क्या किया था, एक पिंक कलर की पतंग थी जो हमारे इलाके में करीब जितनी भी पतंगें उड़ रही थी ना, खच खच खच खच उसको काट रही थी। तो पापा ने पतंग नीचे उतारी, दो घिरियां लेकर आए, दोनों को एक पतंग में बांध दी, दो मंजे से उड़ाना चालू कर दिया। दो मंजे से उड़ा रहे थे, वो हमसे आया टक्कर लेने, ऐसे आया अड़ती चली गई। ओ वहां से चिल्ला रहा, ओ भैया क्या किया, हमने बोला दो तो मंजे से उड़ा रहे हैं।
2: ये तो आइडिया पहली बार सुना हम लोगों ने,
0: लेकिन ये चीटिंग है।
3: तो क्या हुआ, जीत तो जाते हैं ना।
1: नहीं, कोई भी फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए मनाया जाता है कि नहीं? जीते या हारे मजा आना चाहिए बस, है ना? अब पतंग उड़ाना तो हम सबको अच्छा लगता है, बस
4: आना चाहिए दीदी।
1: तो कौन उड़ाता है भूपना तुम्हारे घर में पतंग?
4: कोई नहीं दीदी।
1: आप बस छत पे जाके देखते हो?
4: हाँ।
1: और एंजॉय करते हो ना? बस वही तो इम्पोर्टेंट है।
0: लेकिन पतंग देखने में भी अच्छा लगता है।
4: हाँ
1: हाँ, पतंग आसमान में जब उड़ती है रंग बिरंगी तो बहुत सुंदर लगती है।
2: और पतंग उड़ाने के बाद जो भूख लगती है ना, उसके बाद खाने में और मजा आता है।
1: और फेस्टिवल्स की सबसे खास बात कि खाने को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर।

0: इंसिडेंट आप लोगों को याद है जो किसी त्योहार के दिन हुआ हो और अभी तक आपको याद है?
1: हाँ दीदी, मेरे साथ एक बार हुआ है। हमारे घर में जब भी नवरात्रि की पूजा हो रही थी ना, तो 3 साल तक क्या हुआ था कि जब भी नवरात्रि का जिस दिन 9वां दिन होता था ना, जिस दिन हमारे घर में हवन होता था, कुछ ऐसा बात हो जाता था ना कि पापा को मेरे पे गुस्सा आ जाता था और मेरे आँख से टप टप आँसू। 3 सालों से ऐसा हो रहा था और पिछले साल मैंने नोटिस किया मेरे आँख से एक बूंद भी आँसू नहीं गिरा।
0: और ये चेंज कैसे आया?
1: ये चेंज आया कि पापा के सामने मैं बहुत कम आ रहा था।
0: मतलब पापा अगर डांटते हैं तो आप उनके सामने कम जाते हैं?
1: हाँ।
0: अच्छा, नहीं ठीक है, बच्चों अगर कोई चेंज लाना है तो कोई भी तरीका अपना के आप उस चेंज को ला सकते हैं।
2: दीदी, मुझे नवरात्रि भी अच्छी लगती है क्योंकि गरबे खेलते हैं ना 9 दिन।
0: हाँ।
2: और मुझे खेलना भी आता है
3: और मुझे थोड़ा थोड़ा आता है और लोग मुझे देख के हंसते हैं, इसलिए मुझे और मजा आता है।
2: और गरबे मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने सिखाया, ये तो बात तो झूठ बोलना ही मत।
0: अरे वाह, मतलब सैंडी गरबा खेलते हैं, तो फिर सैंडी को तो हम सबको गरबा सिखाना पड़ेगा।
2: ठीक है।
3: सैंडी को बस अपनी वाह वाह ही चाहिए।
2: गरबा खेलना मुझे बहुत अच्छे से आता है और मुझे ये, हमारे पास में एक फ्रेंड है गुजरात से बिलोंग करता है, उससे आता, उसने मुझे सिखाया।
0: हाँ, गुजरात में तो गरबा बहुत खेला जाता है, आखिर वो वहाँ की तो डांस है।
2: हाँ दीदी,
0: है ना। और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? सब लोग मिलके ऐसे कर सकते हैं,
2: मिलके खेलते हैं, वो मजा आता
0: है ना। और डांस करना गरबा करना किसको अच्छा लगता है?
1: मुझे भी
0: सबको अच्छा लगता है।
4: हाँ दीदी।
0: भुवना, आपको गरबा आता है कि नहीं?
4: हाँ आता है।
1: लेकिन मुझे नहीं आता। मेरे को सिर्फ गरबा में एक स्टेप आता है, एम बनाना, वो भी ढंग से नहीं कर पाता। जहाँ गोल गोल घूमते वहाँ जाके बस हाथ हिला के आ जाता हूँ, बोले मैंने गरबा खेल लिया।
2: इसमें भी मजा है।
1: हाँ,
2: जब अपने को नहीं आता, नहीं कोई देखता है ना, फिर हंसता है तो मजा आता है।
1: किसी के हंसी का हम कारण बने, उसको खुशी मिलती है तो हमको भी अच्छा लगेगा।
0: ये बात तो आपने,
2: और गरबा तो मेरे घर के आगे होता है।
0: खुशी मिलनी चाहिए, डांस अच्छा हो नहीं हो, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है।

0: अच्छा यहाँ पे गणेश चतुर्थी किस किस को अच्छी लगती
1: मेरी
0: है?
1: मेरी फेवरेट है,
2: मुझे भी पसंद है।
1: क्योंकि हम विसर्जन में जाते हैं ना, जो विसर्जन में डांस करते हैं सबसे मजा आता है।
0: और गणेश जी की घर में स्थापना होती है,
2: विसर्जन में डांस करने का मजा इसलिए आता है क्योंकि उसमें डांस करने का कोई तरीका नहीं होता,
1: जैसा आए वैसा करो।
0: बिल्कुल, जैसा मन करे वैसा करो।
2: हाँ दीदी।
0: और शुरुआत कैसे होती है गणेश चतुर्थी की?
1: गणेश चतुर्थी की शुरुआत तो हमारे कॉलोनी में मेरे घर के आगे रखते हैं, तो थोड़ा बहुत मुझे पता है कि हमारे कॉलोनी में तो पहले की गणेश जी की मतलब आज स्थापना करनी है, तो दो दिन एक दिन पहले जाएंगे गणेश जी की मूर्ति अच्छी सेलेक्ट करेंगे, फिर वहाँ से हम क्या ढोल नगाड़े की मूर्ति लेके आते हैं, ढोल नगाड़े से लेके आते हैं, फिर पंडित जी को बुलाते हैं, फिर मुहूर्त देते कि हाँ किस मुहूर्त में स्थापना करनी है, फिर उस मुहूर्त में स्थापना करते, फिर हमारे कॉलोनी में से कोई भैया मतलब बैठते पूजा के लिए, फिर स्थापना करके उसके बाद से फिर शाम को प्रोग्राम रखते हैं, मतलब आरती का, गणेश जी की आरती सुबह शाम करनी पड़ती है, तो शाम को हमारे यहाँ मतलब आरती की बोली भी लगती है।
0: आरती की बोली?
1: हाँ, तो मतलब इसमें कि जो मतलब अच्छी बोली लगाता है वो मतलब शाम की आरती करता है।
2: अच्छा, मतलब गणेश जी की पहली आरती उसे मिलती है?
1: हाँ, पहली आरती उसे मिलती है, फिर ऐसे मतलब जितना दिन रखना हो मतलब उतना गणेश जी को रखते हैं। हमारे यहाँ पे मतलब सब मूर्तियाँ साथ में निकलती है, तो कम से कम 250 मूर्ति साथ में निकलती है, फिर ट्रैक्टर पे मतलब जो ट्रक होता है उस गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते हैं, फिर साथ में डीजे वजे होता है, फिर जाते साथ में, फिर मस्त कपड़े पहन के मतलब गणेश जी का मतलब ड्रेस लाते हैं सबका एक जैसा,
3: ब्लैक ब्लैक जीन्स और ऑरेंज कलर का,
1: हाँ मतलब जैसा अच्छा लगे, मतलब कि थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सबका एक जैसा लाते हैं, फिर डीजे लगाते हैं, फिर साथ में यहाँ से डांस करते हुए लेके जाते हैं,
0: डांस करते हुए,
1: हाँ गुलाल फेंकते हुए और डांस करते हुए ले जाते हैं, बहुत मजा आता है,
0: खूब मजा आता होगा, फ्रेंड्स और फैमिली हर कोई होता है ना।
1: हाँ,
0: और आप लोग ये बताओ कि कोई फेस्टिवल्स की ऐसी चीज भी है जो आपको अच्छी नहीं लगती?
1: नहीं, हमें सारी फेस्टिवल अच्छे लगते।
0: तो आज हमने फेस्टिवल्स के बारे में खूब रंग बिरंगी मीठी खट्टी बहुत ढेर सारी बातें की और हमें बहुत मजा भी आया और हमें ये भी पता चला कि कैसे हम मनाते हैं और क्या क्या सावधानियां हमें इन फेस्टिवल्स के दौरान बरतनी चाहिए।
4: हाँ दीदी।
0: अगली बार हम सब फिर मिलेंगे और फिर से करेंगे कुछ ऐसे ही बातें, लेकिन उससे पहले क्योंकि फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे तो फेस्टिवल्स पे तो खूब गाना बजाना और डांस होता है, तो हो जाए एक गाना।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: दोस्तों, ये गीत तो आप लोगों ने सुना होगा।
1: क्या आप जानते हैं कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है?
0: इसीलिए अपनी बच्चे की कम उम्र में शादी ना कराएं।
1: उनके स्वास्थ्य और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन्हें खूब पढ़ाएं। बेटी कुदरत का है उपहार, नहीं करो उसका तिरस्कार। जो बेटी को दे पहचान, माता पिता।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में रहते समय ज्ञान योग विषय पर कुछ प्रवचन दिए थे। उनकी शिष्या कुमारी वाल्डो ने उन प्रवचनों को लिपिबद्ध कर लिया था। स्वामी जी के गुरु भाई स्वामी शारदानंद सन 1896 में जब वेदांत प्रचार के लिए अमेरिका गए थे, तब उन्होंने ये प्रवचन कुमारी वाल्डो की नोटबुक से लिख लिए थे।
1: स्वामी जी ने ज्ञान योग का विवेचन उपनिषद तथा भगवत गीता के आधार पर किया है और इस प्रकार इन प्रवचनों में उन्होंने स्पष्ट दर्शाया है कि ज्ञान योग साधक को किस प्रकार मुक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी बड़े सरल ढंग से बतला दिया है कि ज्ञान योग के मार्ग में सफल होने के लिए किन गुणों तथा साधना की आवश्यकता है।
0: इस ज्ञान योग का अनुसरण कर आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होकर किस तरह शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है, इसका मार्गदर्शन भी स्वामी जी ने बड़े सुंदर एवं युक्तिपूर्ण रूप से किया है।
2: योग का अर्थ है मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने की पद्धति। इतना समझ लेने के बाद आप ईश्वर और मनुष्य की अपनी परिभाषाओं के अनुसार चल सकते हैं और आप देखेंगे कि योग शब्द हर परिभाषा के साथ ठीक बैठ जाता है। सदा याद रखिए कि विभिन्न मानसों के लिए विभिन्न योग है और यदि एक आपके अनुकूल नहीं होता तो दूसरा हो सकता है। सभी धर्म सिद्धांत और व्यवहार दो भागों में विभक्त हैं। पाश्चात्य मानस ने सिद्धांत पक्ष को छोड़ दिया है और वो शुभ कर्म के रूप में धर्म के केवल व्यवहारिक भाग को ही ग्रहण करता है। योग धर्म का व्यवहारिक भाग है और यह प्रदर्शित करता है कि धर्म शुभ कर्मों के अतिरिक्त एक व्यवहारिक शक्ति भी है।
1: इसके बाद स्वामी जी ने समझाया कि जो भी कार्य करते हैं सुख प्राप्ति के लिए आनंद प्राप्ति के लिए करते हैं।
2: सुख और दुख दोनों ही जंजीरें हैं, एक स्वर्णिम और दूसरी लौह, किंतु दोनों ही हमें बांधने के लिए एक समान दृढ़ है और अपने वास्तविक स्वरूप के साक्षात्कार करने से हमें रोकती है। आत्मा दुख या सुख नहीं जानती, ये तो केवल स्थितियां हैं और स्थितियां अवश्य सदैव बदलती रहती हैं। आत्मा का स्वभाव आनंद और अपरिवर्तनीय शांति है, हमें इसे पाना नहीं है, वो हमें प्राप्त है। आओ हम अपनी आंखों से कीचड़ खो डालें और उसे देखें। हमें आत्मा में सदैव प्रतिष्ठित रहकर पूर्ण शांति के साथ संसार की दृश्यावली को देखना चाहिए।
0: स्वामी जी ने समझाया, आनंद बाहरी वस्तु से नहीं अंदर से आना चाहिए।
2: इंद्रियों के या मन के भी सभी आनंद क्षणभंगुर हैं, किंतु हमारे अंदर में एक सच्चा असंबद्ध आनंद है जो किसी बाह्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। यह आत्मा का आनंद ही है जिसे संसार धर्म कहता है। जितना ही अधिक हमारा आनंद हमारे अंतर में होगा उतने ही अधिक हम आध्यात्मिक होंगे। हम आनंद के लिए संसार पर निर्भर ना हो।
1: उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया।
2: कुछ दीन मछुआ स्त्रियों ने भीषण तूफान में फंसकर एक संपन्न व्यक्ति के बगीचे में शरण पाई। उसने उनका दयापूर्वक स्वागत किया, उन्हें भोजन दिया और जिनके सुवास से वायुमंडल परिपूर्ण था ऐसे पुष्पों से घिरे हुए एक सुंदर ग्रीष्मवास में विश्राम करने के लिए छोड़ दिया। स्त्रियां इस सुगंधित स्वर्ग में लेटी तो किंतु सो न सकी। उन्हें अपने जीवन से कुछ खोया हुआ सा जान पड़ा और उसके बिना वे सुखी ना हो सकी। अंत में एक स्त्री उठी और उस स्थान को गई जहां की वे अपनी मछलियों की टोकरियां छोड़ आई थी। वे उन्हें ग्रीष्मवास में ले आई और तब एक बार फिर परिचित गंध से सुखी होकर वे सब शीघ्र ही गहरी नींद में सो गई।
0: उन्होंने कहा, सभी मनुष्यों में सत्व रज और तमोगुण होते हैं। हाँ, उनके अनुपात अलग अलग होते हैं।
2: संसार मछली की हमारी वो टोकरी बन जाए जिस पर हमें आनंद के लिए निर्भर होना पड़े। ये तामसिक या तीनों गुणों में से निम्नतम द्वारा बंधना है। इसके बाद वे अहमवादी आते हैं जो सदैव मैं की बातें करते हैं। कभी कभी वे अच्छा काम करते हैं और आध्यात्मिक बन सकते हैं। ये राजसिक या सक्रिय हैं। सर्वोच्च अंतर्मुख स्वभाव वाले सात्विक हैं, जो आत्मा में ही रहते हैं। ये तीन गुण हर मनुष्य में भिन्न अनुपात में हैं और विभिन्न गुण विभिन्न अवसरों पर प्रधानता प्राप्त करते हैं। हमें तमस और रजस को जीतने का और तब उन दोनों को सत्व में मिला देने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए।
1: उन्होंने समझाया, हम अपनी ही आत्मा की पूजा ईश्वर पूजन के रूप में करते हैं।
2: जब हम किसी ईश्वर को मानते हैं तो वास्तव में वो हमारी अपनी आत्मा ही होती है, जिसे हम अपने से पृथक कर देते हैं और उसकी इस प्रकार पूजा करते हैं जैसे कि वो हमसे बाहर हो, किंतु वो सदैव हमारी अपनी आत्मा ही होती है तथा वही एक और अद्वितीय ईश्वर है। पशु का स्वभाव जहां वो है वहीं रहने का है, मनुष्य का शुभ खोजने और अशुभ से बचने का, और ईश्वर का न तो खोजने का और न बचने का, अपितु सदैव आनंदमय रहने का है।
0: ईश्वर सभी में विद्यमान है, हम उन्हें बाहर ढूंढते हैं, भटकते रहते हैं।
2: आओ हम ईश्वर बने, हम अपने हृदय महासागर जैसे बनाए, ताकि हम संसार की छोटी छोटी बातों से परे जा सके और उसे केवल एक चित्र की भांति देखें। तब हम इससे बिना किसी प्रकार प्रभावित हुए इसका आनंद ले सकें। संसार में शुभ को क्यों खोजें? हम वहां क्या पा सकते हैं? सर्वोच्च वस्तुएं जो वो दे सकता है उन कांच की गोलियों के समान है जो बच्चे कीचड़ के पोखरे में खेलते हुए पा जाते हैं। वे उन्हें फिर खो देते हैं और तब नए सिरे से उन्हें अपनी खोज प्रारंभ करनी होती है। असीम शक्ति ही धर्म और ईश्वर है। यदि हम मुक्त हों तभी हम आत्मा हैं। अमरता केवल तभी है जब तक कि हम मुक्त हों, ईश्वर तभी है जब वो मुक्त हो।
1: अहम ही हमें स्वर्गीय आनंद से वंचित करता है, स्वामी जी ने कहा।
2: जब तक हम अहम भाव द्वारा निर्मित संसार का त्याग नहीं करते, हम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रविष्ट नहीं हो सकते। न तो कोई कभी प्रविष्ट हुआ, न कोई कभी होगा। संसार के त्याग का अर्थ है अहम भाव को पूर्णतया भूल जाना, उसे बिल्कुल न जानना, शरीर में रहना पर उसके द्वारा शासित न होना। इस दुष्ट अहम भाव को अवश्य ही मिटाना होगा,
0: अपने मैं को हटाना होगा, अहम को त्यागना होगा, तभी ईश्वर मिलेंगे।
2: मनुष्य जाति की सहायता करने की शक्ति उन शांत व्यक्तियों के हाथ में है जो केवल जीवित हैं और प्रेम करते हैं तथा जो अपना व्यक्तित्व पूर्णतः पीछे हटा लेते हैं। वे मेरा या मुझे कभी नहीं कहते। वे दूसरों की सहायता करने में उपकरण बनने में ही धन्य हैं। वे पूर्णतया ईश्वर से अभिन्न हैं, न तो कुछ मांगते हैं और न सचेतन रूप से कोई काम करते हैं। वे सच्चे जीवन मुक्त हैं, पूर्णतः स्वार्थ रहित। उसका छोटा व्यक्तित्व पूर्णतया उड़ गया होता है, महत्वाकांक्षा का अस्तित्व नहीं रहता। वे व्यक्तित्व रहित पूर्णतया तत्व मात्र हैं। जितना अधिक हम छोटे से अहम को डुबाते हैं उतना ही अधिक ईश्वर आता है। आओ हम इस छोटे से अहम से छुटकारा दें और केवल बड़े अहम को अपने में रहने दें।
1: स्वामी जी ने कहा, अपने आप को मिटाकर ही मुक्ति मिलती है।
2: जब हम अपने को नाम और रूप से मुक्त कर लेते हैं, विशेषतया जब हमें अच्छे बुरे सूक्ष्म या स्थूल किसी भी प्रकार के शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, तभी हम बंधन से छुटकारा पाते हैं।

0: शाश्वत प्रगति, शाश्वत बंधन होगी। हमें समस्त विभेदीकरण से परे होना ही होगा और शाश्वत एकत्व या एक रूपता अथवा ब्रह्म तक पहुंचना ही होगा। आत्मा सभी व्यक्तियों की एक है और अपरिवर्तनीय है, एक और अद्वितीय है। वो जीवन नहीं है अपितु वो जीवन में रूपांतरित कर दी जाती है। वो जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ से परे है। वो निरपेक्ष एकता है।
1: दूसरों को ठेस पहुंचाकर अपनी मुक्ति ढूंढने को स्वामी जी पाप मानते थे। वे कहते थे,
0: नरक के बीच भी सत्य को खोजने का साहस करो। नाम और रूप की सापेक्ष की मुक्ति कभी यथार्थ नहीं हो सकती। कोई रूप नहीं कह सकता मैं रूप मुक्त हूं। जब तक रूप का संपूर्ण भाव नष्ट नहीं होता, मुक्ति नहीं आती। यदि हमारी मुक्ति दूसरों पर आघात करती है तो हम मुक्त नहीं हैं। हमें दूसरों को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। वास्तविक अनुभव केवल एक होता है, किंतु सापेक्ष अनुभव अवश्य ही अनेक होते हैं।
2: सब कुछ हमारे सामने है, हम उसे बाहर क्यों ढूंढने जाते हैं?
0: समस्त ज्ञान का स्रोत हम में से प्रत्येक में है, चींटी में तथा सर्वोच्च देवदूत में। वास्तविक धर्म एक है। सारा झगड़ा रूपों का, प्रतीकों का और दृष्टांतों का है। सत्युग खोज लेने वालों के लिए सत्युग पहले से ही विद्यमान है। सत्य ये है कि हमने अपने को खो दिया है और संसार को खोया हुआ समझते हैं। मूर्ख, क्या तू ही सुनता है? तेरे अपने ही हृदय में रात दिन को शाश्वत संगीत हो रहा है, सच्चिदानंद सोहम सोहम सोहम सोहम।
1: प्रतिमा पूजा की परंपरा पर वे बोले,
0: भारत में प्रतिमाओं का प्रारंभ हुआ बुद्ध द्वारा एक वैयक्तिक ईश्वर के विरुद्ध किए गए अनवरत प्रचार का परिणाम है। वेदों में प्रतिमाओं की चर्चा भी नहीं है, किंतु सृष्टा और सखा के रूप में ईश्वर के लोप की प्रतिक्रिया ने महान धर्मोपदेशकों की प्रतिमाएं निर्मित करने का मार्ग दिखलाया और बुद्ध स्वयं मूर्ति बन गए, जिनकी करोड़ों लोग पूजा करते हैं। सुधार के कठिन प्रयत्नों का अंत सदैव सच्चे सुधार को अवरुद्ध करने में होता है।
2: साधारण लोगों के लिए अमूर्त की पूजा करना कठिन है, इसीलिए उसे कोई न कोई मूर्त रूप की जरूरत पड़ती है।
0: उपासना करना हर मनुष्य के स्वभाव में अंतर्निहित है। केवल उच्चतम दर्शन शास्त्र ही विशुद्ध अमूर्त विचार तक पहुंच सकता है। इसलिए अपने ईश्वर की पूजा करने के लिए मनुष्य उसे सदैव एक व्यक्ति का रूप देता रहेगा। जब तक प्रतीक की पूजा, वो चाहे जो कुछ हो, उसके पीछे स्थित ईश्वर के प्रतीक के रूप में होती है। सर्वोपरि हमें अपने को किसी बात पर केवल इसलिए कि वो ग्रंथों में है, विश्वास करने के अंधविश्वास से मुक्त करने की आवश्यकता है। हर वस्तु, विज्ञान, धर्म, दर्शन तथा अन्य सब को जो किसी पुस्तक में लिखा हो उसके समरूप बनाना एक भीषणतम अत्याचार है। ग्रंथ पूजा मूर्ति पूजा के निकृष्टतम रूप है।
1: उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,
0: एक बारहसिंगा था, गर्वीला और स्वतंत्र। एक राजा के सदृश उसने अपने बच्चे से कहा, मेरी ओर देखो, मेरे शक्तिशाली सींग देखो, एक चोट से मैं आदमी मार सकता हूं। बारहसिंगा होना कितना अच्छा है। ठीक तभी आखेटक के बिगुल की ध्वनि दूर सुनाई पड़ी और बारहसिंगा अपने चकित बच्चे को लेकर एकदम भाग पड़ा। जब वे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो बच्चे ने पूछा, हे मेरे पिता, जब तुम इतने बलवान और वीर हो तो तुम मनुष्य के सामने से क्यों भागते हो? बारहसिंगे ने उत्तर दिया, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि मैं बलवान और शक्तिशाली हूं, किंतु जब मैं वो ध्वनि सुनता हूं तो मुझ पर कुछ ऐसा छा जाता है जो मुझे भगाता है, मैं चाहूं या ना चाहूं। ऐसा ही हमारे साथ है। हम ग्रंथों में वर्णित नियमों के बिगुल की ध्वनि सुनते हैं। आदतें और पुराने अंधविश्वास हमें जकड़े रहते हैं। इसका ज्ञान होने के पूर्व ही हम दृढ़ता से बंध जाते हैं और अपने वास्तविक रूप को भूल जाते हैं, जो कि मुक्ति है।
2: स्वामी जी ने कहा, ईश्वर प्राप्ति के लिए पवित्र हृदय का होना जरूरी है, क्योंकि
0: ज्ञान का अस्तित्व शाश्वत है। जो व्यक्ति किसी आध्यात्मिक सत्य को खोज लेता है, उसे हम ईश्वर प्रेरित कहते हैं, और जो कुछ वो संसार में लाता है, वो दिव्य ज्ञान या श्रुति है। किंतु श्रुति भी शाश्वत है, और उसका अंतिम रूप निर्धारित करके उसका अंधानुकरण नहीं किया जा सकता। दिव्य ज्ञान की उपलब्धि ऐसे हर व्यक्ति को हो सकती है जिसने अपने को उसे पाने के योग्य बना लिया हो। पूर्ण पवित्रता सबसे आवश्यक बात है, क्योंकि पवित्र हृदय वाला ही ईश्वर के दर्शन पा सकेगा।
1: उपासना करने के लिए हम ईश्वर के जिस रूप की कल्पना करते हैं, जिन गुणों से उन्हें सजाते हैं, वे मानवीय रूप और गुण हैं। एक खास ऊंचाई पर पहुंच जाने पर हम ईश्वर के निर्गुण रूप और स्वरूप को पहचान पाते हैं।
0: समस्त प्राणियों में मनुष्य सर्वोच्च है, और ये जगत सबसे महान, क्योंकि यहां मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की जो सर्वोच्च कल्पना हम कर सकते हैं, वो मानवीय है। जो भी गुण हम उसमें आरोपित करते हैं, वे मनुष्य में केवल अल्प परिमाण में। जब हम ऊंचे उठते हैं और ईश्वर की इस कल्पना से निकलना चाहते हैं, हमें शरीर, मन और कल्पना के बाहर निकलना पड़ता है और इस जगत को दृष्टि से परे करना होता है।
2: ईश्वर के समीप पहुंचने पर हम तुच्छ सांसारिक घटना या वस्तु से विचलित नहीं होते, उन्होंने समझाया है।
0: जब हम ब्रह्म होने के लिए ऊंचे उठते हैं, हम संसार में नहीं रह जाते। सभी कुछ विषय रहित विषय ही हो जाता है। जिस एकमात्र संसार को हम जान सकते हैं, मनुष्य उसका शिखर है। जिन्होंने एकत्व या पूर्णता प्राप्त कर ली है, उनको ईश्वर में निवास करने वाला कहा जाता है। समस्त घृणा स्वयं का स्वयं द्वारा हनन है, अतः प्रेम ही जीवन का धर्म है। इस भूमिका तक उठना पूर्ण होना है, किंतु जितने ही अधिक पूर्ण हम होंगे, उतना ही कम काम हम कर सकेंगे। सात्विक जानते हैं कि यह संसार केवल बच्चों का खेल है और उसके विषय में चिंता नहीं करते। जब हम दो बिल्लों को लड़ते और एक दूसरे को काटते हुए देखते हैं, तो हम उद्विग्न नहीं होते। हम जानते हैं ये कोई गंभीर बात नहीं है। पूर्ण व्यक्ति जानता है ये संसार माया है।
1: आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त है। हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमानंद हैं। स्वामी जी ने कहा है,
0: जीवन को ही संसार कहा जाता है। वो हम पर क्रिया करने वाली परस्पर विरोधी शक्तियों का परिणाम है। भौतिकवाद कहता है मुक्ति की ध्वनि एक भ्रम मात्र है। आदर्शवाद कहता है जो ध्वनि बंधन के विषय में कहती है, स्वप्न मात्र है। वेदांत कहता है हम ही साथ मुक्त हैं और मुक्त नहीं भी। इसका अर्थ ये होता है कि हम पार्थिव स्तर पर कभी मुक्त नहीं होते, किंतु आध्यात्मिक पक्ष में सदैव मुक्त हैं। आत्मा मुक्ति और बंधन दोनों से परे है। हम ब्रह्म हैं, हम अमर ज्ञान हैं, इंद्रियों से परे हैं, हम पूर्ण परमानंद हैं।
2: परम ब्रह्म हमारे अंदर ही निहित है। जरूरत है उन्हें अपने में महसूस करने की शक्ति की।
0: मनोकल्पना को वर्जित करके विचार करना असंभव को संभव बनाना है। हर विचार के दो भाग होते हैं, विचार और शब्द। हमें दोनों की आवश्यकता है। जगत की व्याख्या न तो आदर्शवादी कर पाते हैं न भौतिकवादी। इसके लिए हमें विचार और अभिव्यक्ति दोनों को लेना होगा। समस्त ज्ञान प्रतिबिंबित का ज्ञान है। जैसे हम अपने ही मुख को एक दर्पण में प्रतिबिंबित देखती है। अतः कोई अपनी आत्मा या ब्रह्म को नहीं जान सकता, किंतु प्रत्येक वही आत्मा है और उसे ज्ञान का विषय बनाने के लिए उसे उसको प्रतिबिंबित देखना आवश्यक है। अदृश्य तत्व के चित्रों का यह दर्शन ही तथा कथित मूर्ति पूजा की ओर ले जाता है। मूर्तियों या प्रतिमाओं का क्षेत्र जितना समझा जाता है उससे कहीं अधिक विस्तृत है। लकड़ी और पत्थर से लेकर वे ईसा बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों तक फैली है।
1: सृष्टि बनती है, बिगड़ती है, ये संतुलन प्राप्त करने की एक क्रिया मात्र है। स्वामी जी कहते हैं,
0: सृष्टि कुछ बना देना नहीं है, वो तो सम संतुलन को पुनः प्राप्त करने का एक संघर्ष है। जैसे किसी कार के परमाणु एक जल पात्र की पेंदी में डाल दिए जाने पर वे पृथक पृथक और गुच्छों में ऊपर की ओर झपटते हैं, और जब सब ऊपर आ जाते हैं और सब संतुलन पुनः प्राप्त हो जाता है तो समस्त गति या जीवन एक हो जाता है। यही बात सृष्टि की है। यदि सम संतुलन प्राप्त हो जाए तो सब परिवर्तन रुक जाएंगे। जीवन नामधारी वस्तु समाप्त हो जाएगी। जीवन के साथ अशुभ अवश्य रहेगा, क्योंकि संतुलन पुनः प्राप्त हो जाने पर संसार अवश्य समाप्त हो जाएगा, क्योंकि समत्व और नाश एक ही बात है। सदैव बिना दुख के आनंद ही पाने की कोई संभावना नहीं है, या बिना अशुभ के शुभ पाने की, क्योंकि जीवन स्वयं ही तो खोया हुआ समसंतुलन है। जो हम चाहते हैं वो मुक्ति है, जीवन आनंद या शुभ नहीं।
2: जीवन और मृत्यु ये एक तांता है, चलता ही रहता है, केवल आत्मा अनंत है।
0: सृष्टि शाश्वत है, अनादि अनंत, एक असीम सरोवर में सदैव गतिशील है। उसमें अब भी ऐसी गहराइयां हैं जहां कोई नहीं पहुंचा, और जहां वैसी निस्पंदता पुनः स्थापित हो गई है, किंतु लहर सदैव प्रगति कर रही है। संतुलन पुनः स्थापित करने का संघर्ष शाश्वत है। जीवन और मृत्यु उसी तथ्य के विभिन्न नाम हैं। वे एक सिक्के के दो पक्ष हैं, दोनों ही माया है। एक बिंदु पर जीवित रहने के प्रयत्न की अगम्य स्थिति और एक क्षण बाद मृत्यु, इस सबसे परे सच्चा स्वरूप है आत्मा। हम सृष्टि में प्रविष्ट होते हैं और तब वो हमारे लिए जीवंत हो जाती है। वस्तुएं स्वयं तो मृत हैं, केवल हम उन्हें जीवन देते हैं, और तब मूर्खों के सदृश हम घूमते हैं और या तो इतने डरते हैं या उनका उपभोग करते हैं। संसार ना तो सत्य है ना असत्य, वो सत्य की छाया है।
1: सत्य तो शाश्वत है, पर समय के अनुसार उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, नए रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है।
0: सत्य सदैव अपरिवर्तित रहता है, किंतु उसे एक आकार में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए समय समय पर सत्य को एक ऐसा रूप या अभिव्यक्ति दी जाती है जिससे मानव जाति अपनी प्रगति की फल स्वरूप ग्रहण करने में समर्थ होती है। प्रत्येक महान धर्मोपदेशक ये जानता है और उससे सावधान रहने का प्रयत्न करता है, किंतु साधारणतया मानव अदृष्ट की अपेक्षा दृष्ट की पूजा करने को अधिक उन्मुख रहता है। इसलिए व्यक्तित्व को पीछे निहित तत्व की ओर बारंबार इंगित करके और उसे समय के अनुरूप एक नया आवरण देने के लिए पैगंबरों की परंपरा संसार में चली आई है।
2: निंदा से डरो मत, वो हमारे अहम को दूर करता है। तभी स्वामी जी कहते हैं,
0: हमारा सर्वोच्च कार्य और प्रभाव तब होता है जब हम अहम के विचार मात्र से रहित हो जाते हैं। केवल निष्काम लोग ही बड़े बड़े परिणाम घटित करते हैं। जब लोग तुम्हारी निंदा करें तो उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो तो, वे झूठे अहम को निकाल बाहर करने में सहायता देकर कितनी भलाई कर रही है। यथार्थ आत्मा में दृढ़ता से स्थिर हो, केवल शुद्ध विचार रखो और तुम उपदेशकों की पूरी सेना से अधिक काम कर सकोगे। पवित्रता और मौन से शक्ति की वाणी निकलती है।
1: अंत में स्वामी जी ज्ञान योग को सहज भाव से समझाकर कहते हैं,
0: पहले ध्यान निषेधात्मक प्रकार का होना चाहिए। हर वस्तु को विचारों से निकाल बाहर करो। मन में आने वाली हर वस्तु का मात्र इच्छा की क्रिया द्वारा विश्लेषण करो। तदुपरांत आग्रह पूर्वक उसकी स्थापना करो। जो हम वस्तुता हैं, सत, चित, आनंद और प्रेम, विषय और विषयी के एकीकरण का साधन है ध्यान करो।
2: स्वामी जी धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। कोई भी सांसारिक लीला उन्हें विचलित नहीं कर सकती।
0: ऊपर वो मुझसे परिपूर्ण है, नीचे वो मुझसे परिपूर्ण है, मध्य में वो मुझसे परिपूर्ण है। मैं सब प्राणियों में हूं और सब प्राणी मुझ में है। ओम तत् सत्, मैं वो हूं। मैं सत के ऊपर की सत्ता हूं। मैं मन के ऊपर की सत्ता हूं। मैं विश्व की एकात्मा हूं। मैं ना सुख हूं ना दुख। शरीर खाता है पीता है, मैं शरीर नहीं हूं। मैं मन नहीं हूं, मैं वो हूं। मैं द्रव्य हूं, मैं देखता जाता हूं। जब स्वास्थ्य आता है तब मैं दृष्टा होता हूं, जब रोग आता है तब भी मैं दृष्टा होता हूं। मैं ज्ञान का अमृत और सार तत्व हूं। चिरंतन काल तक मैं परिवर्तित नहीं होता। मैं शांत, दैदीप्यमान और अपरिवर्तनीय हूं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मैं गीत सागर रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मन रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है। He's planning all his lessons. जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, ओ गॉड लेट नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन कम फ्रॉम द 10th चैप्टर, टक फर्स्ट प्रोग्रामिंग। और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल। एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is a question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये question from the 10th chapter दिखाई देता है। एक महीने से क्या programming कर रहा है? If there is any question from the 10th chapter, I'll be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. Automatically he is in trouble. और इतना stressed up हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है। Why? Because it's the way we have programmed ourselves. Thoughts are the software. एक और उदाहरण देता हूं। तो जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स है, राइट फ्रॉम 8:30 to 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत, दे सो डैम टायर्ड। किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट, और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे। 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही सो टायर्ड। और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है, क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, he will run at the fastest of fast speed, if not the 100 meters world record, lekin 100 meters indian record to usko todna hi tha. What I'm trying to communicate is, aisa nahi hai ki uske paas energy nahi tha, energy tha, but he kept on programming, I'm tired. Automatically the body manifested itself in the same way. Jaise hi usne us kutte ko dekha to kya kiya, ek switch off kiya, dusra switch on kiya, he had energy and he could run at the fastest of fast speed. जैसे ही घर में पहुंचा, द फर्स्ट थिंग दैट इट डज इट, स्विच ऑन द टेलीविजन। राइट देयर फ्रॉम 7 o'clock टू लेट 10 o'clock ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। 10 बजे वो रियलाइज करता है, ओ माय गॉड, टुमारो मुझे इतने सारे असाइनमेंट सबमिट करने हैं। और 10 बजे वो लिखना आरंभ करता है। सोते सोते 12 बज जाते हैं, 6 बजे का अलार्म रखता है और उसका मन में यही विचार आता कि मैं कैसे उठ पाऊंगा। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म बजता, 10 मिनट सोता हूं, और 10 मिनट का कितना, 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है। एवरी डे ही इज देयर इन द कैंपस लेट एंड ही हैज टू हियर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड द प्रोफेसर्स। एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर, द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन, एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली, टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला, प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. As usual, television till 10 o'clock, he's there in front of television. Suddenly at 10 o'clock he realizes, my God, tomorrow trip to Khandala, मुझे बहुत practice करनी होगी, क्या क्या करना होगा। और 10 बजे वो practice करना आरंभ करता है। हर दिन वो 12 बजे सोता है, लेकिन उस दिन वो 1 बजे सो रहा है। He has to reach the campus 7 AM. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. लेकिन 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा। एंड बिफोर द अलार्म कैन रिंग, दिस जेंटलमैन इज सो फ्रेश। इट्स अ वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। अ सारा दिन ही इज देयर इन खंडाला एंजॉयिंग हिमसेल्फ, प्लेइंग इन द घाट्स, एंजॉयिंग विद हिज फ्रेंड्स। ही हैड हार्डली हैड 3 to 3.5 आवर्स ऑफ स्लीप, बट नो फॉर्म ऑफ टायर्डनेस। इट इज द वे वी प्रोग्राम आवरसेल्फ्स। और ऐसा नहीं है कि हम छोटे या स्टूडेंट्स ही प्रोग्राम करते हैं, हम बड़े भी बहुत अक्सर करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं, सेल्फ प्रोग्रामिंग। इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोग्राम।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे। एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन। हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन, मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति।

आइए इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। संगीत सुमन के अभिनंदन से सुकर्मों का आधार धरें।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता

0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वैसे तो आप जानते हैं कार्यक्रम है युवा मंच और युवाओं के इस मंच पर अनेक विषयों पर बातचीत होती रहती है। जब बात आती है बदलाव की तब याद आते हैं युवा, क्योंकि युवा चेंज मेकर्स होते हैं। युवा वो होते हैं जो किसी देश का भविष्य बदल सकते हैं। युवा वो होते हैं जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया तक राहत पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं। और हम जानते हैं कि भारत एक युवा देश है। आज दोस्तों हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पे शायद चर्चा कम होती है। हेल्थ केयर की बात आती है तो हम जानते हैं गांव-गांव में हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए कितने प्रयास हो रहे हैं। आबू में भी आप वाकिफ हैं दोस्तों, इसके अलावा भी आप वाकिफ हैं। लेकिन हम आज एक स्पेशल गेस्ट से आपका आज आमना सामना करवाने पाने हैं, आपको मिलवाने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्य, और लक्ष्य जो है वो पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल है, एक रिसर्चर भी हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने अकेडमिक ट्रेनिंग ली है एम्स से, और साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई से भी उन्होंने ट्रेनिंग ली है, और पिछले 7 वर्षों का उनका अनुभव है पब्लिक हेल्थ केयर में। वो काफ़ी काम कर रहे हैं। मित्र क्लिनिक्स जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और साथ साथ LGBTQIA कम्युनिटी के लिए भी, वो भारत के 4 जोन्स में उस पर काम चल रहा है, कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। लक्ष्य को फाउंडर भी हैं LI एक NGO के, और वो क्या काम कर रही है वो भी उन्हीं से जानेंगे। पर सबसे पहले आइए वेलकम करते हैं लक्ष्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज।
1: थैंक यू फॉर दैट वॉर्म वेलकम। मुझे आशा है कि आज का सेशन हमारा काफ़ी इंटरेक्टिव रहने वाला है, लोगों को नई नई जानकारियाँ मिलने वाली है। और जब LGBTQIA+ कम्युनिटी की बात आती है या ट्रांसजेंडर पर्सन्स की बात आती है तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकता की ही कमी है इन टॉपिक्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना इन चीज़ों के बारे में, और मुझे लगता है कि आपका FM इस चीज़ में बहुत अच्छी मुहिम और पहल कर रहा है, तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं इस चीज के लिए।
0: थैंक यू सो मच लक्ष्य, बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो भी लोगों तक पहुंचे, आप क्या कर रहे हैं और अवेयरनेस इससे बढ़ेगी, साथ साथ क्या काम हो रहा है। एक जहाँ पे डर बैठ जाता है या फिक्र बैठ जाती है कि क्या करें हम, कैसे होगा, समझ नहीं आता, वहाँ जानकारी बहुत मदद करती है। और आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले, आपके NGO के बारे में बात करने से पहले, मैं चाहूँगी कि एक बार आप थोड़ा सा हमारे जो दोस्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें जेंडर अफर्मेटिव हेल्थ केयर होता क्या है, थोड़ा इस बारे में कुछ बताएं।
1: तो जेंडर अफर्मेटिव हेल्थ केयर जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि जेंडर क्या होता है। एक्चुअली अगर आप आसपास भी देखोगे, कभी कोई स्कूल का फॉर्म भर रहे हो, आप रेशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई हॉस्पिटल में फॉर्म भर रहे हो या कोई कॉलेज में फॉर्म भर रहे हो, तो सेक्स और जेंडर हमेशा इंटरचेंजेबली लिखा जाता है कि जैसे सेक्स और जेंडर एक ही चीज है, मान लो अंग्रेजी में। लेकिन अगर आप है ना हिंदी में अनुवाद भी करने की कोशिश करो, जो ट्रांसलेटर होता है गूगल में, कि हिंदी में ट्रांसलेट करो इंग्लिश के शब्द को, तो सेक्स के लिए भी ट्रांसलेशन लिंग ही आता है और जेंडर के लिए भी ट्रांसलेशन लिंग ही आता है। तो हिंदी भाषा में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जो अंग्रेजी, जिसको सेक्स और जेंडर अलग अलग कह रही है, और हिंदी उसको लिंग और लिंग ही कह रही है। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में काम कर रहा था तो उस समय मुझे मराठी भाषा में एक अच्छा शब्द मिला सेक्स और जेंडर को अलग अलग करने के लिए, ताकि लोगों को समझ आए कि सेक्स और जेंडर एक ही चीज नहीं है, सेक्स और जेंडर अलग अलग चीज होती है। तो वो शब्द था, सेक्स होता है लिंग भेद और जेंडर होता है लिंग भाव। तो जैसा कि आप शब्दावली से समझ पा रहे हैं, लिंग भेद और लिंग भाव। तो सेक्स यानी लिंग भेद का मतलब है कि जो आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जो आपकी बायोलॉजी में है, ह्यूमन बॉडी में है जो चीज, और जेंडर वो चीज है जो कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, वो लिंग का भाव है, वो आपकी अभिव्यक्ति है, भावना है, ना कि आपकी बायोलॉजी है। तो ये सबसे पहले हमारे बीच क्लियर कट ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है कि सेक्स और जेंडर एक ही चीज है या लिंग ही कहते हैं उनको, ये मिस इन्फॉर्मेशन दूर होना बहुत जरूरी है। तो अब क्या होता है कि जनरली जब हम ट्रांसजेंडर पर्सन की भी बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि उनकी बायोलॉजी में कुछ होगा, कि जैसे समझो उनके जननांगों में कुछ दिक्कत होगी शायद से, और लोगों को बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि वो जेंडर है, ट्रांस के आगे हम जेंडर लगा रहे हैं, सेक्स नहीं लगा रहे हैं।
0: करेक्ट,
1: तो जो भी सेक्स जहां पर भी लगेगा शब्द, वहां पर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, जहां पे भी जेंडर लगेगा शब्द

0: ओवरऑल एलजीबीटी के लोगों को देखा है जो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाते होंगे, बहुत ही रेयर। मैं 4-5 साल एम्स में ही था और मेरे टोटल 5 साल एम्स में मैंने देखा कि रेयरली एक या दो या ज्यादा 3 लोग मुझे दिखे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से थे और हमारे डिपार्टमेंट में इलाज कराने के लिए आए अपना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उनको हेल्थ केयर के कोई इश्यूज ही नहीं होते हैं या उनको हेल्थ केयर या स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत ही नहीं होती है। तो ऐसा क्या है कि एम्स जैसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो कि देश का जाना माना सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां भी ट्रांसजेंडर लोग या LGBTQI लोग इतना आसानी से दिख नहीं रहे हैं। तो बाकी हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़ दो फिर। तो वहां पर जब ये चीजें मैंने जानकारी लेने की कोशिश करी तो मैंने कुछ हिजड़ा पर्सन से जाकर बातचीत करी, अपना रिसर्च किया, उनके रिसर्च इंटरव्यूज लिए कुछ। तो वन ऑफ द रिसर्च इंटरव्यूज में एक बहुत अच्छी बात निकलकर सामने आई। एक हिजड़ा गुरु ने मुझसे कहा कि लक्ष्य, ये जो हॉस्पिटल वाले लोग होते हैं, एनजीओ वाले लोग होते हैं या गवर्नमेंट वाले लोग होते हैं, ये हमको आके कॉन्डम्स बांट देते हैं, लेकिन अच्छा। कभी इन्होंने हमें आकर पैरासिटामोल नहीं बांटी। कि मतलब इनके दिमाग में ही बैठा हुआ है कि अगर हमें हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई दिक्कत होगी तो सीधा HIV और AIDS ही होगा
1: और कुछ ऐसी परेशानी होगी ही नहीं,
0: हो ही नहीं सकता है टाइप। तो वही से ये शब्दावली निकल कर आती है जेंडर अफर्मेटिव हेल्थ केयर, कि जहां पर हम केवल एक व्यक्ति को एक हेल्थ केयर की केवल एक स्थिति पर उसको टारगेट नहीं कर देते हैं, जबकि उसकी होलिस्टिक परिपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं पर उसका ध्यान देते हैं। और WHO भी हेल्थ केयर को डिफाइन करता है, आपको पता हो तो, कि हेल्थ केयर केवल फिजिकल डिजीजेस का ना होना नहीं होता। हेल्थ केयर असल में होता है आपका फिजिकल वेलबींग भी, मेंटल वेलबींग भी, सोशल वेलबींग भी, और आज के टाइम अगर बात करी जाए तो स्पिरिचुअल वेलबींग भी। तो ये चारों कंपोनेंट्स हेल्थ केयर के बहुत जरूरी कंपोनेंट्स है। तो जब भी हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, इवन जेंडर अफर्मेटिव हेल्थ केयर में भी, हम केवल फिजिकल हेल्थ की भी बात नहीं कर रहे, हम पूरी तरीके से एक होलिस्टिक परिपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। तो ये हुआ जेंडर अफर्मेटिव हेल्थ केयर।
1: दैट्स वंडरफुल लक्ष्य। बहुत दुखद है ये बात कि सच में हम किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को हेल्थ केयर जैसी बेसिक नीड नहीं पहुंच पा रही है। हम किसी अपने के बारे में ऐसा सोच नहीं सकते कि वो बीमार हो और वो डॉक्टर के पास ना जा पाए या फिर वो दवा ना पहुंच पाए। तो बहुत बहुत गंभीर विषय है ये। और इस पे क्या जब आपने काम करना शुरू किया तो यहीं से आपके मन में ये संकल्प आया था जब आपने इस प्रकार की चीजें ऑब्जर्व की?
0: एक्चुअली जैसा मैंने आपको बताया कि रिसर्च के दौरान ही मुझे काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, एक जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताई थी, तो उससे मेरी आंखें समाज को देखने के लिए और समाज का नजरिया, देखने का नजरिया खुलने लगा। और ऐसी ही काफी और चीजें भी थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बताया कि जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो पहली बात तो हॉस्पिटल का जो गार्ड है वही हमें कई बार अंदर नहीं आने देता है। अगर हम गार्ड से बच के अंदर आ जाएं तो रिसेप्शन पे हॉस्पिटल के हमारे पास भरने के लिए फॉर्म्स ही नहीं होते हैं, क्योंकि जेंडर ही सही नहीं है वहां पर, मेल या फीमेल ही पूछते हैं वो, तो रिसेप्शन पे फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। एक बार अगर कोई रिसेप्शन से पास हो गया तो आगे वेटिंग एरिया में जाके बैठना पड़ता है हॉस्पिटल में। वेटिंग एरिया में सारे लोग हमें देख देख कर हंसते हैं या घूर के देखते हैं, कुछ लोग तो गालियां तक देने लग जाते हैं। और इसके बाद भी अगर कोई, समझो कोई इतना लकी या भाग्यवान या भाग्यवती निकली जो कि डॉक्टर तक पहुंच गई, तो हमारे डॉक्टर्स के पास नॉलेज ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर होते क्या है, क्योंकि डॉक्टर भी उसी समाज में पले बड़े हैं जिसमें हम और आप पले बड़े हैं। तो डॉक्टर्स को न मेडिकल के एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, ना MBBS में पढ़ाया जाता है कि ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर की बॉडीज को कैसे देखना है। तो डॉक्टर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास जब कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति आता है तो वो क्यूरियस महसूस करते हैं डॉक्टर्स काफी। मेरे पास ऐसे कुछ इंसिडेंट आए रिसर्च के दौरान कि जैसे फॉर एग्जाम्पल भले ही कई डॉक्टर एक्सप्लिसिटली आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, आपके साथ भेदभाव आपको महसूस हो ऐसा नहीं करवाएंगे, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनके मन में जो सामाजिक पूर्वाग्रह बसे हुए हैं उनको देखकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति उनके जब कैबिन में आए तो कुछ नहीं किया, लेकिन जब

0: जैसे ही उनका ट्रीटमेंट चालू हुआ उनसे बोले कि आप सामने वाली कुर्सी पर बैठिए, मेरे पास मत आइए। वो
1: अच्छा
0: व्यक्ति अपना पेट दिखाने आई थी और डॉक्टर ने उसका पेट छूके तक नहीं देखा। जब छूने की बारी आई तो डॉक्टर ने 3 ग्लव्स पहने और उसके बाद छुआ। और केवल डॉक्टर्स की भी बात नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम केवल डॉक्टर से नहीं बनता है, नर्सेस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वार्ड बॉयज हैं। अगर एक
1: बिल्कुल
0: व्यक्ति, समझो डॉक्टर को भी हम जागरूक करते हैं, डॉक्टर को भी पढ़ाते हैं इन चीजों के बारे में, लेकिन सब लोग तो जागरूक नहीं है हॉस्पिटल सिस्टम में। उसके बाद अगली चीज आ जाती है, हॉस्पिटल या अस्पतालों में क्या है, सारी चीजें बाइनरीज में है कि मतलब दो चीजों में बटी हुई है, या तो मेल या फीमेल। जैसे कल को मुझे अगर यूरिन टेस्ट कराना हो ना, तो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति यूरिन टेस्ट के लिए वॉशरूम तक नहीं जा सकता, टॉयलेट तक नहीं जा सकता हॉस्पिटल में, उसको अपने घर जाना पड़ा जस्ट टॉयलेट का सैंपल लाने के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल वॉशरूम में या टॉयलेट्स में उसको जाने की अनुमति ही नहीं दे रहे थे कोई, या जब वो जा रहे थे वो खुद घबरा रहे थे मेल वाले वॉशरूम में जाने से, तो और फीमेल वाले वॉशरूम में जाते तो फीमेल्स घबरा रही थी उनसे। सेम चीज हो रही थी वार्ड्स में, हॉस्पिटल में वार्ड्स भी जो होते हैं वो मेल और फीमेल वार्ड्स होते हैं। या कल को समझो हमें कोई लाइन भी लगानी होती है ना, जैसे फार्मेसी के लिए हमें लाइन लगानी है कोई, तो एक मेल की लाइन लगेगी, एक फीमेल की लाइन लगेगी। तो ऐसे केस में पूरे सिस्टम में ही, और ओवरऑल देखा जाए तो सामाजिक सिस्टम्स में ही ये सारी बाइनरी सिस्टम्स में बसे हुए हैं। क्योंकि हमारा क्या है, बचपन से हमने वही देखा है, हमें वही पढ़ाया गया है कि जेंडर केवल मेल और फीमेल होता है, उसके अलावा जैसे कुछ होता ही नहीं है। तो हमने एक कम्युनिटी को पूरी के पूरी, अभी मैं जेंडर डाइवर्स कम्युनिटीज पे तो आ ही नहीं रहा हूँ, केवल ट्रांसजेंडर की बात करी जाए ना, तो हमने पूरा अदृश्य कर दिया है एक कम्युनिटी को,
1: जैसे वो है ही नहीं।
0: है ही नहीं। और इसके बाद अगर किसी को सचमुच में कोई बीमारी हो, कोई हेल्थ की या स्वास्थ्य की सुविधाएं लेनी हो, तो वो क्या करें। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि ऐसे केस में क्या होता है, कि मैं एक दूर के घराना में गया था उस समय, वो एक समझिए झारखंड छत्तीसगढ़ साइड के एक गांव में था समझो। तो वहां पर वैसे ही आपको पता है हेल्थ केयर की सुविधाएं जनरल पॉपुलेशन के लिए ही बहुत कम है, एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर, तो एक ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए तो और मुश्किल हो जाता है। तो उनको जब अपनी सर्जरी करानी थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास ना तो पैसे थे सर्जरी कराने के लिए, और ना ही डॉक्टर से कोई कांटेक्ट था, मुझे पता भी नहीं था कि कौन से डॉक्टर से जाके मिले जो मुझे जज नहीं करेगा मेरी आइडेंटिटी पर और मेरी डिजीज को ट्रीट करेगा, ना कि मेरी पहचान को जज करेगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि उनको महिला बनने का मन में इतना ज्यादा भाव था, भावनाएं थी, कि एब्सेंस ऑफ सर्जरीज में, कि डॉक्टर ना मिलने के कारण उन्होंने अपने घराने में क्या किया कि दो जग लिए और उनको गरम किया, लाल हॉट आयरन की तरह, लोहे की तरह गरम किया, फिर आटा गूंद के अपने सीने पर आटा लगाया, और ताकि आटा क्या है पूरा सीने से चिपक गया, और फिर उन्होंने जग लेकर, वो गरम गरम जग लेकर चिपका दिए आटे के ऊपर, उससे क्या है वैक्यूम बन गया। तो वैक्यूम बनने के बाद जग के हैंडल से खींचा तो चेस्ट के साथ साथ अंदर का मांस और मांसपेशियां भी खिंचकर बाहर आए, तो बहुत कड़ाई वो उस चीज के कारण। लेकिन एक जेंडर बदलने की, जो एक महिला जैसे दिखने की उनकी भावना या अभिव्यक्ति इतनी स्ट्रांग थी, इतनी सजग थी, कि वो दर्द को भी सहने को तैयार थी। और ऐसे केस में जब उनको निप्पल्स निकालने थे अपने चेस्ट के बाहर, उन्होंने एक रुई की बत्ती को गर्म किया और रुई की बत्ती को अपने निप्पल्स पर लगाकर जोर से खींचा और जला दिया निप्पल्स को, ताकि वो फुंसी जैसे फूटे और बाहर निकले निप्पल। तो एक समझिए,
1: बहुत
0: एक पुरुष से
1: पेनफुल,
0: स्त्री का बहुत ही पेनफुल, और
1: बहुत ही
0: ऐसे केस में क्या है,
1: पेनफुल।
0: अगर मेडिकल लैंग्वेज में देखा जाए ना, अगर आपका मास थोड़ा सा भी इंक्रीज हो गया या कुछ भी हो गया, तो कैंसर तक के चांसेस बढ़ सकते हैं
1: बढ़
0: आपको।
1: सकते हैं तो
0: तो हेल्थ केयर की
1: कमी के
0: सुविधाओं की कमी
1: कारण
0: के
1: ये
0: कारण या पहुंच के कारण, हेल्थ केयर, सही हेल्थ केयर जिसको हम जेंडर अफर्मेटिव हेल्थ केयर कह रहे हैं, तो एक व्यक्ति को क्या क्या नहीं सहना पड़ता। इवन ये तो मैंने
1: लक्ष्य
0: बहुत बड़ी चीज बता दी सर्जरी वाली, तो अगर सिंपल सा बुखार या खांसी जुकाम भी होता है ना,
1: तो भी डॉक्टर
0: उसके लिए भी डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं वो। और एक भी व्यक्ति का अगर डॉक्टर के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाए, कोई नकारात्मक हो जाए, तो अपने घराने में सबको बता देते हैं कि नहीं डॉक्टर के पास मत जाना,
1: वो
0: हम देखते हैं। तो एक व्यक्ति के एक्सपीरियंस के कारण सारे लोगों का हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी ही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है।
1: तो जो आप मित्र क्लिनिक्स की बात कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा कि आप जिस पे काम कर रहे हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। जैसे आपने बताया अभी कि किस प्रकार से सुविधाएं नहीं है, हैं तो पहुंचना मुश्किल है, और पहुंचना भी कितने स्टेप्स में मुश्किल है वो भी समझ में आया। केवल डॉक्टर्स की बात नहीं है, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम की बात है। तो इतना बड़ा सिस्टम बदलने के लिए, इतना कुछ करने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए, ये भी एक बड़ा प्रश्न होता। तो आपने कैसे शुरुआत की, या मित्र क्लिनिक का कॉन्सेप्ट कैसे आपके मन में आया, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: तो एक्चुअली क्या है कि शुरुआत होती है हमेशा एक किशोरावस्था वाले फेस से, क्योंकि किसी व्यक्ति को कि वो ट्रांसजेंडर है या LGBTQIA+ कम्युनिटी से है, वो पता चलता है किशोरावस्था में आकर ही। एक्चुअली इसके लिए है ना, सबसे पहले हमें वो डिफरेंस पता करना जरूरी है जो हम सेक्स और जेंडर का डिफरेंस कर रहे थे, ताकि लोगों को ट्रांसजेंडर और बाकी की चीजों में फर्क थोड़ा सा समझ आए पहले। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो आपको जन्म से समय मिला हुआ लिंग होता है, समझिए आप एक आपके पास एक शिशन है या पीनिस है, आपके पास XY क्रोमोसोम्स हैं जब आप पैदा हुए, और तो डॉक्टर या नर्स आपको कह देंगे कि बधाई हो आपके घर लड़का पैदा हुआ है या एक मेल या पुरुष का जन्म हुआ है। ऐसे ही समझिए अगर आपके पास डॉक्टर नर्स को दिखता है कि वजाइना है, योनि है और XX क्रोमोसोम्स हैं आपके पास, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि बधाई हो आपके घर लड़की हुई है। कोई इस चीज के अलावा कौन से माता पिता या अभिभावक हैं जो तैयार होते होंगे कि हमारे घर लड़का या लड़की के अलावा कुछ हो जाए, क्योंकि भारतीय समाज में अगर आप देखोगे तो यही होता है कि हम बहुत टाइम पहले से ही तैयारियां चालू कर देते हैं कि घर में या तो लड़का आएगा या लड़की आएगी, ऐसे कपड़े खरीदेंगे, ऐसे खिलौने खरीदेंगे। और अगर एकदम से समझिए कोई बच्चा आपके यहाँ पर ऐसा पैदा होता है जिसको हम कहते हैं जिसके एम्बिग्यूनस जेनिटीलियाज हैं, कहने का मतलब उसके शिशन और योनि का या तो कुछ मिक्स है या क्रोमोसोम्स में कुछ अंतर है, XY की जगह XXY क्रोमोसोम्स हैं या X0 क्रोमोसोम्स है, तो ऐसे व्यक्ति को है ना इंटरसेक्स व्यक्ति कहते हैं जो जन्म से ऐसा पैदा होता है। ये मिसकंसेप्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है कि जन्म से के समय ऐसे व्यक्ति जो पैदा होते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर नहीं कहा जाता, वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति नहीं होते, वो असल में इंटरसेक्स व्यक्ति होते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया सेक्स और जेंडर में अंतर है, क्योंकि बायोलॉजी की चीज है ये, शिशन और योनि आ रहे हैं जो बायोलॉजी है आपकी बॉडी की, तो यहाँ पे जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो इंटरसेक्स है। हाल ही में 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इंटरसेक्स व्यक्तियों पर सर्जरी करना, जन्म होते ही सर्जरी करना एक कानूनन अपराध है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके घर समझिए एक इंटरसेक्स व्यक्ति पैदा हुआ, अब है ना डॉक्टर जाके पेरेंट्स को बताएंगे तो अभिभावक जो है वो काफी ज्यादा दुख मनाने लग जाएंगे, वो डॉक्टर से ही जाकर पूछेंगे कि आप बताइए कि हम ऐसे बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी डॉक्टर को ज्यादा नॉलेज नहीं होगी तो कह देगा आप इसको हिजड़ों में दे दो, एक कल्चरल ग्रुप हिजड़ा में दे दो, वो जो हम कहते हैं कि बचपन से हिजड़ा पैदा हो गया समझो, तो वो गलत टर्मिनोलॉजी है। बचपन से एक इंटरसेक्स व्यक्ति पैदा हुआ जिसको क्योंकि डॉक्टर के समझ नहीं आया तो उन्होंने उसको ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जो हिजरा कल्चर में थे उनको दे दिया। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या उपाय होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि या तो हम इसका शिशन बड़ा करके इसको पूरी तरीके से सर्जरी करके मेल बना देते हैं, या फिर इसका शिशन हटा के इसकी योनि को डिफाइन करके हम इसे पूरी तरीके से फीमेल बना देते हैं। आप सोचो डॉक्टर ये कब सोच रहा है, जब पैदा हुआ है, जस्ट बच्चा
1: जन्म हुआ है बच्चे का,
0: जन्म होते ही सर्जरी करने की सोच रहे हैं डॉक्टर उसके ऊपर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसी के ऊपर बहुत तगड़ा स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, आप भारतीय समाज में खुद भी रहते हो और आप खुद भी स्त्री हो, आपको भी पता होगा कि हमारे समाज में स्त्री होने के क्या मायने होते हैं। अगर आज आपके घर में भारतीय समाज में कोई बच्चा पैदा हो और अगर आपके पास डॉक्टर ऐसे ऑप्शन दे आके कि बताइए आपके बच्चे को मेल बनाना है कि फीमेल बनाना है, तो कितने ऐसे लोग हैं कि उसको फीमेल बनाएंगे? 99% लोग उसको मेल ही बनाते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि समझिए, बाहर से तो आपने शिशन बना दिया, पीनिस बना दिया, लेकिन प्यूबर्टी जब आई, उसको किशोरावस्था आई, उसको पीरियड्स आने चालू हो गए, समझो अंदर उसके यूट्रस था, डॉक्टर ने कोई अल्ट्रासोनोग्राफी तो की नहीं थी बच्चे की, जस्ट सर्जरी करके उसका पीनिस बना दिया था। तो अब एक बच्चे को किशोरावस्था में पहुंचकर कितना दर्द होगा। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ऐसा ही हुआ, क्योंकि अंदर उसके यूट्रस था, बच्चादानी थी, ओवरीज थी, और बाहर उसके शिशन बना दिया गया, वो इंटरसेक्स व्यक्ति था। तो काफी टाइम तक तो घरेलू नुस्खे चलाए घर वालों ने, लेकिन जब दर्द बढ़ता गया तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासोनोग्राफी करी तो पता चला कि उसका सारा मीनस का, महावरी का ब्लड जो है ना, उसको निकलने की जगह ही नहीं मिल रही थी, वो सारा पेट में जमा हो रहा था, क्योंकि अंदर तो उसके बच्चादानी थी। तो मतलब हमने एक समाज को ये बाइनरी ढांचों में डालने के चक्कर में ऐसा कर दिया है कि या तो आप मेल होगे तभी आप परफेक्टली जी सकते हो, या फीमेल होगे तभी परफेक्टली जी सकते हो, अगर उसके अलावा कुछ भी आपने जन्म तक ले लिया ना तो हम उसको भी बदल डालेंगे टाइप, ये वो वाली स्थिति हो गई। इसलिए कोर्ट्स को बीच में आके इंटरवीन करना पड़ा ऐसी चीजों पर। लेकिन आपको भी पता है जो लीगल चीजें आती है इंडिया में और सामाजिक चीजें, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। लीगल चीजें तो आज भी कहते हैं कि जन्म से पहले लिंग का निर्धारण करना, पता करना एक कानूनन अपराध है, लेकिन आज भी हमें पता है कि डॉक्टर आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि आपको मेल है या फीमेल है बच्चा आपके सोनोग्राफी देखने पर। डॉक्टर क्या कहेगा, वो मेल हुआ बच्चा तो फिर शिवजी को प्रणाम कर देगा, फीमेल हुई लड़की तो माता जी को प्रणाम कर देगा। तो बिना कहे वो बता देगा जन्म से पहले कि आपके बेटे का जेंडर, बच्चे का जेंडर क्या है। और अगर माता जी को प्रणाम कर दिया डॉक्टर ने तो बेचारी स्त्री के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया जाएगा कि उसको अबॉर्शन के टेबल तक ले जाया जाएगा।
1: आज भी है ये धारणाएं, आज भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं लक्ष्य। और जहां हम बात करते हैं बदलाव की, वो उस स्पीड से नहीं आ रहा है, उस गति से नहीं आ रहा है जिससे आना चाहिए, पर आ रहा है कहीं कहीं। और जैसे आप जैसे लोग हैं जो एफर्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, ऐसे कुछ एनजीओज हैं, है ना, ऐसे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो खुल के आ रहे हैं, जो शायद हम पीछे या पीछे जनरेशंस में नहीं देख पाते थे, आज हम देख पा रहे हैं। ऐसे यूथ हैं जो चेंज मेकर्स बन के सोसाइटी को अवेयर भी कर रहे हैं और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ आपने बताया किस प्रकार की बहुत बड़ी समस्या है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, लेकिन बदलाव की शुरुआत जो आपने की है वो कैसे की है, वो क्या गाइडलाइंस आपको मिले, या किसी ने आपको हेल्प किया, या आपने वो इनिशिएट किया, वो कैसे किया, या बदलाव की शुरुआत कैसे की, वो भी जरूर बताएं।
0: तो वो भी मैं बता रहा हूँ। जस्ट मैं अब इंटरसेक्स व्यक्ति का पहले डिफरेंस बता देता हूँ ट्रांसजेंडर व्यक्ति से। तो जैसा मैंने बताया, इंटरसेक्स एक सेक्स है जबकि ट्रांसजेंडर एक जेंडर है। जेंडर होने का मतलब है एक्चुअली क्या है, अगर ये शब्द देखा जाए ना, ट्रांसजेंडर शब्द, ये असल में आया है केमिस्ट्री से। काफी लोगों को ये बहुत अचंभा होगा सुनकर, अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी है, मतलब 10th क्लास तक भी, अगर 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसके, कि कुछ कंपाउंड्स को हम सिस कंपाउंड्स बोलते हैं और कुछ कंपाउंड्स को हम ट्रांस कंपाउंड्स बोलते हैं। जिन कंपाउंड्स का जो अलाइनमेंट है वो सेम होता है उनको सिस बोला जाता है, और जिनका अलाइनमेंट ऑपोजिट होता है उनको ट्रांस कंपाउंड्स बोला जाता है केमिस्ट्री में। तो वही से सोशियोलॉजी में ये शब्द आया है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर व्यक्ति का मतलब समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले खुद को समझे। सबसे पहले आप सोचिए, अगर आपके पास एक शिशन है, जन्म के समय मिला हुआ लिंग आपका पुरुष का है, और आप अपने आप को दिमाग से भी पुरुष की तरह ही महसूस करते हैं, तो यानी आप एक मेल हुए। ऐसे ही समझिए, अगर आपके पास जन्म से मिला हुआ लिंग एक योनि है और आप खुद को दिमाग से भी एक महिला ही महसूस करते हैं, तो आप एक महिला हैं। लेकिन अगर इसमें ऑपोजिट अलाइनमेंट हो जाए, आपका जन्म तो पुरुष की तरह हुआ है लेकिन अंदर से आप खुद को महिला की तरह महसूस करते हैं, कि मेरा शरीर तो पुरुष का है लेकिन आत्मा मेरी महिला की है, अगर ऐसा भाव आता है तो आप असल में एक ट्रांस महिला हैं। ऐसे ही सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका जन्म तो स्त्री की तरह हुआ है लेकिन अंदर से उनको भाव पुरुषों वाला आता है कि मेरा शरीर तो स्त्री का है लेकिन अंदर से आत्मा पुरुषों वाली है, तो उसको हम ट्रांस मैन या ट्रांस पुरुष कहते हैं। तो यानी ये सोसाइटी में एक और मिसकंसेप्शन आता है यहाँ पे कि मेल और फीमेल के बीच में ट्रांसजेंडर आता है, या तो मेल होगा फीमेल होगा नहीं तो ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल का ऑपोजिट नहीं है, ट्रांसजेंडर असल में सिस जेंडर का ऑपोजिट है। जैसे ट्रांसजेंडर मेल और ट्रांसजेंडर फीमेल होते हैं वैसे ही सिस जेंडर मेल और सिस जेंडर फीमेल भी होते हैं। तो असल में ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल के बीच में नहीं है, वो असल में सिस जेंडर का ऑपोजिट है। तो ये समझ पाना बहुत जरूरी है और काफी लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार सुन रहे होंगे तो शायद बहुत कंफ्यूजिंग भी होगा ये वाली चीज। तो असल में होता क्या है,
1: बदलाव की समझा ही नहीं इस बात को बिल्कुल।
0: बदलाव की अगर बात करी जाए ना, तो बदलाव सबसे पहले जैसे मैंने कहा प्यूबर्टी से आता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब एंटर कर रहा है प्यूबर्टी में तभी उसको पहली बार महसूस होना चालू हो रहा है कि क्या मैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ या क्या मेरा आकर्षण सेम जेंडर वाले व्यक्तियों की तरफ होता है, यानी मैं गे या लेस्बियन हूँ क्या। तो ऐसी चीजें 11-12 साल की उम्र में जाकर ही बच्चे को पता लगना चालू
1: होती समझ में आती है।
0: और ऐसे केस में आप सोचिए हमारे देश में सेक्स एजुकेशन तक नहीं है, मतलब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को तो स्किप करा देते हैं टीचर्स। तो ऐसे केस में जब
1: की कमी है लक्ष्य, और साथ साथ जब बच्चों के मन में सवाल आते हैं तो वो किसको पूछें, उनके पास वो भी व्यक्ति नहीं होता है कई बार, और इस कारण बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं।
0: और ऐसे में समझिए अगर बच्चा माँ बाप से जाके बात करने की कोशिश करे, पहली बात तो बच्चे बहुत डरते हैं ऐसी चीजों के बारे में माँ बाप से भी बात करने में। अब जो माँ बाप से बात करने जाते भी हैं जो बच्चे, तो माँ बाप क्या करेंगे, सबसे पहले वो या तो डॉक्टर के पास जाएंगे इन चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए, या मे बी स्कूल टीचर के पास जाएंगे ऐसी चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो आपको भी पता है समाज में न तो डॉक्टर सेंसिटाइज है न टीचर सेंसिटाइज है, और ये दोनों ही पिलर्स हैं सोसाइटी के जो एजुकेशन और हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेंसिटाइजेशन तो इन दो तबकों का होना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स खुद भी एक्सेप्ट कर पाएंगे अगर डॉक्टर और टीचर से ही गाइड कर देंगे पेरेंट्स को। तो सबसे पहला बदलाव की शुरुआत ही टीचर्स और डॉक्टर से होनी चाहिए। और उसके बाद समझिए कि अगर आज के समाज में अगर नहीं एक्सेप्ट करा जाता बच्चे को, तो 11-12 साल की उम्र के बच्चे को, मैं काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको सीधा घर से बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे समय में बच्चे को ना उसके पास एजुकेशन पूरी हुई है, ना उसके पास पैसे हैं, बहुत छोटी उम्र है, 15-17 साल तक की उम्र भी, मतलब इतनी छोटी उम्र में बच्चा को क्या चाहिए, एक सामाजिक समावेश चाहिए या फिर एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, क्योंकि माँ बाप तो अब साथ नहीं दे रहे तो कौन सपोर्ट करेगा। इसीलिए भारत में बने कल्चरल सिस्टम्स जैसे कि हिजड़ा कल्चर, किन्नर कल्चर, जोगती कल्चर, अराधी कल्चर, अरवानी कल्चर, तो अलग अलग जो राज्य हैं भारत के, तो हर राज्य के अपने अलग अलग कल्चर इजाद हुए। जैसे फॉर एग्जांपल कि जब भारत में चल रहा था अपना मुगल काल या दिल्ली सल्तनत का टाइम, तो उस समय क्या है, फारसी भाषा भारत में काफी ज्यादा प्रचलित थी। तो फारसी भाषा जब प्रचलित थी तो फारसी से आया हुआ शब्द है हिजरा। तो हिजरे का असल में अगर फारसी ट्रांसलेशन आप देखोगे ना, तो वो होता है छोड़ा हुआ, एक तरीके से जिसने अपना घरबार छोड़ दिया है, मतलब उसका मेनली ट्रांसलेशन तो सूफिज्म में आगे इस तरीके से आता है कि जैसे हमने लीन होने के लिए सब छोड़ दिया है टाइप। लेकिन वहां से हिजरा शब्द का इजाद हुआ और ये कल्चर फॉर्म होना चालू हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को छोड़ दिया था टाइप। और जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था भारत में, उस समय संस्कृत भाषा काफी ज्यादा प्रचलन में थी। तो संस्कृत भाषा में क्या होता था कि जब लोगों को समझ नहीं आता था कि एक व्यक्ति नर है या मादा है, तो असल में उससे संस्कृत में पूछा करते थे कि किम नर, तो वहां से ये शब्द आया, क्या तुम नर हो, किन नर।
1: तो उत्पत्ति वहां से हुई उस शब्द,
0: उत्पत्ति वहां से हुई। तो अब मित्र क्लिनिक की बात पे आते हैं कि अब मित्र क्लिनिक या और ऐसे बाकी मॉडल्स का इजाद कैसे हुआ। जैसा मैंने बताया कि काफी ज्यादा गवर्नमेंट का काम एचआईवी सेक्टर्स में ही चल रहा है, जबकि कम्युनिटी को बाकी सारी हेल्थ केयर नीड्स की भी जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे केस में एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जहां उनको जज नहीं किया जाए, जहां डॉक्टर उनको समझे, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए ऐसी जो उनकी चीजों को समझ पाए। अगर समझिए आज एक

0: ट्रांसजेंडर व्यक्ति आके किसी डॉक्टर को कहती है कि मैं सेक्स वर्क कर रही हूं, तो क्या डॉक्टर पहली बात तो वो सुनने के लिए भी तैयार है या नहीं है? तो हमें डॉक्टर्स भी ऐसे चाहिए जो है ना इन चीजों को समझ पाए और पहले इन चीजों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे पहली कम्युनिकेशन की क्वालिटी होती है लिसनिंग, सुनना। बोलना तो बहुत बात
1: ये
0: की चीज
1: आपने
0: है।
1: जैसे बताया लक्ष्य कि डॉक्टर मतलब अवेलेबल नहीं है, जनरल खांसी बुखार के लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो जो आप सेटअप डेवलप कर रहे हैं क्या उसमें सिर्फ डॉक्टर्स पे काम ना करके पूरे सिस्टम पे काम कर रहे हैं या सिर्फ डॉक्टर्स पे काम कर रहे हैं?
0: नहीं, हम दोनों साइड काम कर रहे हैं, कम्युनिटी सिस्टम्स पे भी और डॉक्टर हेल्थ केयर सिस्टम्स पर भी। तो होता क्या है कि आपको उस हिसाब से पहले तो आर्किटेक्ट बनाना जरूरी है अपने क्लिनिक्स का, कि मतलब कोई भी वहां आने से डरे ना। तो वहां पे आपका वेलकमिंग स्पेस होना जरूरी है। वेलकमिंग स्पेस से मतलब है कि आप समझिए कुछ रेनबो लगा दिया आपने वहां पर, तो लोगों को देखते ही पता लगे कि यानी ये डॉक्टर या ये जगह सपोर्टिव है, यहाँ मैं खुलकर बातचीत कर सकता हूँ अपने बारे में या सकती हूँ। फिर आपने फॉर्म्स में भी ऐसी ऐसी चीजें पूछना चालू किया कि जेंडर न्यूट्रल टर्मिनोलॉजी रखी। जैसे अगर हम फॉर्म्स में पूछते हैं कि सेक्स और जेंडर भी पूछ रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ऑप्शंस देना चालू किया, या अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता है कौन कौन से हो सकते हैं, तो एटलीस्ट अदर्स तो लिख ही सकते हो आप, कि अदर्स स्पेसिफाई, कि वो खुद ही बता दें। और नाम में भी आपने है ना केवल नाम नहीं पूछा, आपने नाम में पूछा कि आपका डॉक्यूमेंट्स में नाम क्या है और आप खुद को किस नाम से बुलवाने में ज्यादा अच्छा महसूस करते हो। तो दो नाम पूछे आपने। फिर आपने उनके प्रोनाउंस के बारे में यानी सर्वनाम या क्रिया के बारे में पूछा कि मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ, कि रहता हूँ, रहती हूँ या रहते हूँ, आप किस तरीके से कंफर्टेबल महसूस करोगे, कि लड़के की तरह बुलाने में या लड़की की तरह बुलाने में। फिर आपने एक और चीज देखी होगी फॉर्म्स में, हम पूछते हैं जैसे रिलेशनशिप मैरिज स्टेटस, उसकी जगह हम पूछ सकते हैं रिलेशनशिप स्टेटस इंस्टेड ऑफ मैरिज स्टेटस, ताकि लेस्बियन और गे कपल जैसे लोग भी अपने बारे में खुलकर बता पाए।
1: बोल पाए।
0: और ऐसे केस में रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। आज समझिए कि अगर है ना मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं और सामने मुझे दिख रहा है कि कोई रिलीजियस कोनोटेशन लगा हुआ है, या तो कोई मतलब हिंदुइज्म में भी समझिए किसी भगवान की मूर्ति वगैरह या फोटो वगैरह है, या फिर समझिए क्रिश्चियन, या फिर समझिए काफी ट्रस्ट हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम रन हॉस्पिटल्स होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अगर उन्होंने रिलीजियस कोनोटेशन लगा रखा है, तो जनरली LGBTQ कम्युनिटी वहां जाने से बहुत डरती है, क्योंकि जनरली आपको भी पता है मुस्लिम कल्चर में LGBT होना एक तरीके से हराम माना जाता है, और इस्लाम और साथ में क्रिश्चियनिटी में सिन माना जाता है। हिंदुइज्म में थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस और स्टोरीज देखने को जरूर मिलती हैं, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं कि कोई भी रिलीजियस व्यक्ति हो सकता है उनको उस तरीके से एक्सेप्ट ना कर पाए जिस तरीके से वो अपने आप को समझवाना या स्वीकृति दिलवाना चाहते हैं। अगली चीज डॉक्टर्स पे काम करना होती है, कि डॉक्टर्स की रेगुलर ट्रेनिंग्स होगी, उनको बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर और किस तरीके के चैलेंजेस एक LGBT कम्युनिटी वाला पर्सन फेस करता है, और सेम डिजीजेस के लिए उसको ट्रीटमेंट करने का तरीका किस तरीके से अलग हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, अगर LGBT कम्युनिटी का आ रहा है ना, तो वो केवल है ना अपना हेल्थ केयर इशू लेकर नहीं आ रहा, मेडिकल साइंस का इशू लेकर नहीं आ रहा, वो अपना पूरा सामाजिक इशू लेकर आपके सामने आ रहा है। तो आपका हिस्ट्री टेकिंग तक वैसा होना चाहिए कि आप एक एक चीज को आप पता लगा पाओ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, बिहार में एक गांव था, वहां पर प्रसव के दौरान काफी महिलाओं की मृत्यु हो रही थी। तो हॉस्पिटल वहां का बहुत अच्छा था, डॉक्टर भी टाइम पर आते थे, क्वालिटी सर्विसेज भी मिलती थी, सब कुछ अच्छा था, फिर भी महिलाओं की मृत्यु हो रही थी प्रसव के दौरान पर। तो रिसर्चर की एक टीम गई और उन्होंने पता लगाने की कोशिश करी कि प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु क्यों हो रही है। तो उनको पता चला कि असल में जब प्रसव के दौरान महिलाओं को हॉस्पिटल तक लेकर जाया जाता है, तो वहां की सड़कें खराब है, सड़कें पे गड्ढे बहुत है, ऊबड़ खाबड़ है, तो कई बार मिसकैरेज हो जाता है वहां पर। दूसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन की कमी है, कि वहां पर पूरे गांव में एक ही बस चलती है जो सुबह आएगी और शाम को वापस जाएगी, और सब लोगों के पास कोई जीप और ट्रैक्टर भी नहीं है कि वो उनको हॉस्पिटल तक ले जा पाए। तो हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, नो डाउट डॉक्टर्स भी अच्छे थे, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी का मेजर इशू कहाँ से आया, क्यों मृत्यु हो रही थी? ट्रांसपोर्टेशन और रोड सिस्टम के कारण। तो आज तक हमने हेल्थ केयर को उस तरीके से देखना चालू ही नहीं किया है। आज
1: एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं आप,
0: डायबिटीज के भी पेशेंट्स आते हैं ना, आपको पता है, तो हम सीधा डायबिटीज की दवाई लिख के दे देते हैं, शुगर हो गया ये दवाई खा लो। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि डायबिटीज होने के पीछे ऐसे क्या कारण रहे होंगे, क्या कोई सोशल कारण है, कोई मेंटल कारण है, क्या कारण है, जो हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं। तो वैसा सिस्टम डेवलप करना हमने चालू किया। अगली चीज है कि HIV नो डाउट एक बहुत बड़ा पॉइंट था। HIV का इलाज मिलना बहुत जरूरी है जिन लोगों को भगवान ना करे ऐसा डिजीज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम बाकी हेल्थ केयर की चीजों को नेग्लेक्ट कर दें। तो क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें उनकी जो रियल में डिमांड है उसके लिए क्या है, वही मैंने कहा सुनना बहुत जरूरी है कि हमें कम्युनिटी से जाकर ही पूछना पड़ेगा। पूछने से हम छोटे नहीं हो जाते कि आपकी डिमांड क्या है, आपको असल में चाहिए क्या, हाँ आप बताइए आपको क्या जरूरत है। तो जब उन्होंने बताना चालू किया कि हाँ हमें हॉर्मोन्स की जरूरत है, हमें कई बार सर्जरी के बाद पेशाब आने में दिक्कत होती है उसकी जरूरत है, हमें कई बार समझिए कि कुछ फोड़ी फुंसी हो जाते हैं मुंह पे उसकी जरूरत है, या सिंपल एक बुखार भी आ रहा है तो उसकी भी जरूरत है। तो हमें पता चल गया कि हेल्थ केयर में काफी सारी चीजों की उनको जरूरत है लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं हॉस्पिटल।
1: ये आपने रिसर्च की या आपने क्या मतलब कुछ लोगों के संगठन से बात किया या क्या देश भर में रिसर्च किया, कहाँ आपका फोकस रहा इसका?
0: एक्चुअली मतलब देश भर में हमने कम्युनिटी कंसल्टेशंस किए थे। मित्र क्लिनिक तो जस्ट वन ऑफ द मॉडल्स हैं, उसके बाद हमने सहयोग क्लिनिक्स भी एक NGO के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट किए। इवन अभी जो हमारा अलाई वाला जो जिसका मैं co-founder हूँ उसमें भी मैंने यही किया कि हमने अराउंड 74 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में जाकर अलग अलग स्टेट्स के वहां पर एक्सपीरियंस लिया और वहां के अलग अलग ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और इवन LGBTQIA+ कम्युनिटी के लोगों की क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे। और इवन हमने जो जॉब भी दी है ना अभी अपने स्टार्टअप में, तो हमने जॉब भी कम्युनिटी के लोगों को ही दी है, क्योंकि आज एक कम्युनिटी का मेंबर किसी और के पास हो सकता है जाके ट्रीटमेंट कराने में डरे, लेकिन अगर उसको दिखता है सामने कि हाँ मेरे ही समुदाय का एक व्यक्ति बैठा या बैठी है जो खुद भी इन परिस्थितियों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं, जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में या सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस, कि उन्होंने खुद ने झेला हुआ है वो चीजें, तो वो जो हमें सलाह देंगे जिस डॉक्टर से हमें मिलवाएंगे वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। तो एक कम्युनिटी सिस्टम में एंट्री का सबसे अच्छा तरीका है जैसा आपका रेडियो भी कर रहा है, असल में कम्युनिटीज में जाकर ही उनकी बातचीत, उनको क्या इश्यूज हो रहे हैं वो पता करें और कम्युनिटी से ही उसका समाधान निकलवाए। हम क्यों बीच में आए किसी चीज के जब हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो प्लानिंग और पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना वो जैसा बहुत पुरानी कहावत है भारत में कि वो AC कमरों में बैठ के कुछ भी पॉलिसीज और कागजों में बना देते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होता है ना तब हमें पता लगता है कि बहुत गैप है पॉलिसी या लीगल स्ट्रक्चर और असल में जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो क्यों ना इम्प्लीमेंटेशन ही उन लोगों से कराया जाए जो खुद इस सिचुएशन को फेस कर चुके हैं या गुजर रहे हैं इन सिचुएशन से। तो यही इन मॉडल्स का बेसिक स्ट्रक्चर बना।
1: और एक वाइड रेंज थी आपने 78 डिस्ट्रिक्ट मतलब बहुत आपने ट्रैवल किया, मिले लोगों से, बहुत वास्ट अनुभव आपने गेन किया। उसके बाद आप कह रहे हैं मित्र क्लिनिक और सहयोग क्लिनिक्स की भी आप बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी, ग्रेट। और वन स्टॉप सेंटर्स भी इसी तरीके से तो अब है ना इस चीज में ये सारे चीजें तो क्या है गवर्नमेंट या NGO सेक्टर में थी। इसके बाद हमें एक और रियलाइजेशन हुआ, आज कोई भी जनरल पॉपुलेशन का अगर पेशेंट या क्लाइंट अगर उसको कुछ हेल्थ केयर की समस्या होती है तो उसके पास ऑप्शन है जाने के लिए। वो चाहे तो सरकारी अस्पताल भी जा सकता है, कोई ट्रस्ट वाले अस्पताल में भी जा सकता है और प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकता है। लेकिन LGBTQ कम्युनिटी के लिए जितने सारे मॉडल्स बने हैं ना वो या तो NGOs के थ्रू बने हैं या फिर गवर्नमेंट के थ्रू बने हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्या कोई प्राइवेट सिस्टम नहीं होना चाहिए जो भले ही थोड़े से पैसे भी ले लेकिन क्वालिटी सर्विस दे उसके बदले में, क्योंकि सारे लोग जरूरी नहीं है। अब जैसे मेरे काफी सारे ऐसे दोस्त बने LGBTQ कम्युनिटी के जो लोग है ना हेल्थ केयर लेना तो चाहते हैं लेकिन वो एनजीओ और सरकारी सिस्टम में जाने से ही डरते हैं। एक मिडिल क्लास का व्यक्ति, आपको भी पता है कितने ही लोग हैं सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाते हैं आज के टाइम पर। सबको चाहिए कि ज्यादा लंबी लाइन में ना खड़ा होना
1: क्वालिटी,
0: पड़े,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो कहीं ना कहीं।
1: सर्विसेज
0: और
1: अच्छी हो, फैसिलिटीज अच्छी हो, कमरा अच्छा हो, सबको रिक्वायरमेंट होते हैं।
0: एनजीओ के केस में क्या हो जाता है कि एनजीओ पहले से ही उन पे टैग लग गया है कि यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी के लोग जाते हैं, वो उनकी हेल्थ केयर होती है। तो उससे क्या होता है, काफी बार लोग डर जाते हैं कि कहीं हमारे परिवार को ना पता लग जाए, क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस हैं जहां डॉक्टर्स ने ब्लैकमेल करना चालू कर दिया है कि हम आपकी आइडेंटिटी के बारे में आपके पेरेंट्स को बता देंगे अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो। और कुछ लोगों ने तो उनसे पैसे तक लूटे हैं, इस मामले में लाखों लाखों रुपए तक लूट लिए हैं पूरे के पूरे। तो ऐसे केस में बंदा बहुत डरता है कि हॉस्पिटल या एनजीओ सेक्टर्स में जाने से भी कोई आसपास देख ना ले, कि उसको पता ना लग जाए मैं उस जगह पर जा रहा हूं। तो इस एक्सेसिबिलिटी इशू को सॉल्व करने का हमारे माइंड में सबसे अच्छा तरीका आया इन रिसर्च और कम्युनिटी कंसल्टेशन करने के बाद, कि क्यों ना कुछ डिजिटल सिस्टम अपनाया जाए, क्योंकि आज के टाइम है ना डिजिटल सिस्टम सबसे ज्यादा प्रेवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी देते हैं। आज मैं अपने फोन पर घर बैठा बैठा भी डॉक्टर से बातचीत कर सकता हूँ टेली मेडिसिन या टेली कम्युनिकेशन के थ्रू। मुझे हॉस्पिटल हर चीज के लिए, हर छोटी छोटी चीज के लिए जाने की जरूरत भी नहीं है। और जितने भी डॉक्टर्स हैं, आपको भी पता है आज जितने भी बहुत ही अनुभवी और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं ना, वो सारे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ही जाके बैठे हुए हैं। कोई गांव गांव जाके इलाज नहीं कर रहे हैं डॉक्टर्स भी, जो अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं,
1: ऑनलाइन
0: क्योंकि वो
1: कंसल्टेशंस दे रहे हैं काफी सारे
0: हाँ।
1: लोग।
0: लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो वहीं से हमें आइडिया आया और उसी में हमने नया इजाद जो अभी AI का हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसका इन सामाजिक मुद्दों को सॉल्व करने के लिए यूज करने का सोचा। तो हमने एक व्हाट्सएप चैटबॉट बनाया, क्योंकि हमें पता था कि व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है जो है ना सबको यूज करना आता है आज के टाइम पे। अगर किसी को नहीं भी आता है तो अपने आसपास दोस्त को पूछ के व्हाट्सएप पे हाय हेलो तो कर ही सकता है। तो हमने एक ऐसा व्हाट्सएप सिस्टम बनाया जिसमें बस आपको हाय या हेलो लिखना है और उसके बाद व्हाट्सएप ही आपसे आगे से आगे बात करना चालू करेगा। और जैसे ही व्हाट्सएप को लगेगा कि आपको क्या समस्या है, किस तरीके के डॉक्टर चाहिए, और उसको लगेगा व्हाट्सएप को कि हाँ अब आपको किसी डॉक्टर से कनेक्ट करने की जरूरत है, या आपके ही जैसे LGBTQ मेंबर एक काउंसलर से कनेक्ट करने की जरूरत है जो आपको समझाए बैठकर, तो वो सारे कनेक्शंस ह्यूमन कनेक्शन बैठा देता है वो। तो हाउ AI और ह्यूमन मिलकर, दोनों मिलकर एक सिस्टम को किस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वो हमने अपना AI बेस्ड ये व्हाट्सएप चैटबॉट बनाकर सीखा। और क्या है कि एनजीओज में काम करते करते एक और चीज भी समझ आई कि हर चीज जब हम फ्री में देना भी चालू कर देते हैं ना, उसकी भी काफी लोगों को कदर नहीं रहती है।
1: वैल्यू नहीं
0: तो
1: होती
0: भले ही हम सब्सिडाइज कॉस्ट पर दें लेकिन कुछ चार्ज करें ना उस चीज का, तो लोगों को असल में उसकी अहमियत पता चलती है। और उनके लिए अगर है ना किसी को हेल्थ केयर सर्विस या कोई सर्जरी वगैरह या हॉर्मोन्स भी लेने होंगे ना, तो एक चीज आप सोचिए कि आज हमारे लिए कोई बहुत ही जरूरी चीज होती है ना, तो आज भले ही हम किसी दोस्त से उधार लें, पेरेंट्स से लें या कहीं से भी लें, लेकिन हम 100, 200, 500, 1000 रुपए इकट्ठा कर ही लेते हैं अगर हमें वो सर्विस लेनी है तो। और ऐसे सिस्टम्स को है ना सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाना इजी हो जाता है,
1: बहुत बहुत जरूरी
0: क्योंकि
1: भी है उसको
0: जरूरी भी है।
1: सस्टेनेबल
0: आज के टाइम पर क्या है कि जहां एनजीओ सेक्टर्स में 6-6 महीने में प्रोजेक्ट्स खत्म करने पड़ जाते हैं, काफी एनजीओस बंद हो जाते हैं क्योंकि फंडिंग का
1: बनाना
0: ही इतना क्रंच है। ऊपर से इकोनॉमी, हमारी हालत आज के टाइम ऐसी चल रही है कि एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबल सिस्टम्स बनाना बहुत मुश्किल है। इवन मित्र क्लिनिक जैसा सिस्टम भी, इनको फंडिंग मिली थी USAID से, लेकिन जैसे ही ट्रंप सरकार आई तो हाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, और ट्रंप के विचार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लेकर बहुत अच्छे नहीं थे और उन्होंने नई नई पॉलिसी बनाई और इंडिया से मित्र क्लिनिक की फंडिंग भी खींच ली उन्होंने पूरी के पूरी।
1: तो आप सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, आप एक्सेसिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, और जहां तक मैं समझ पाती हूँ आपके पास इसकी टीम भी होगी जो काम कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि तो मुझे लगता है अकेले ये करना तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत
0: तो
1: मुश्किल
0: जैसा
1: है। तो
0: जैसा मैंने
1: आपकी
0: बताया इनडायरेक्टली,
1: आपकी टीम के बारे में भी अगर कुछ बताएं तो।
0: अभी अलाये में हमने क्या किया है, ऑल ओवर इंडिया से 80+ डॉक्टर्स के साथ फॉर्मल MOU साइन किए हैं और कोलैबोरेशन किया है। ये डॉक्टर्स अलग अलग स्पेशलिटीज के हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, जनरल फिजिशियंस भी हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट भी हैं, ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, इवन मतलब अलग अलग स्पेशलिटी, जितनी भी स्पेशलिटीज होती हैं, और जिसको जिस तरीके की सुविधा की चाहिए होती है, जरूरत होती है, उनको हम वैसे डॉक्टर से कनेक्ट कर देते हैं। और ऐसा हमें ये डॉक्टर्स को हमने फाइंड आउट किया है दो तीन तरीकों से। एक तो हमने अपनी टीम में ऐसे डॉक्टर्स को जोड़ा है जो पिछले 10-20 साल से एचआईवी सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि एचआईवी सेक्टर में काम करते हुए उनको कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति या एलजीबीटी व्यक्ति के साथ कभी ना कभी संपर्क हुआ है, तो इसलिए वो ज्यादा जज नहीं करते, ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी काम करने में। तो पहले डॉक्टर्स तो ऐसे हो गए। दूसरे डॉक्टर्स हमने ऐसे अपनी टीम में लिए हैं जो खुद ही कम्युनिटी से हैं, खुद जो गे है, लेस्बियन है, या ट्रांसजेंडर व्यक्ति भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, तो वो कम्युनिटी को, क्योंकि उनके खुद के लिव्ड एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तीसरे डॉक्टर्स हमारी टीम में ऐसे हैं जो हमने अपनी रिसर्चेस में ढूंढे, जो लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं हम, कोई रिसर्च वगैरह करते हैं, तो अलग अलग जो रिसर्च के प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनपे अगर किसी भी डॉक्टर ने ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यू टॉपिक्स पर कोई रिसर्च करी है, तो अगर उन्हें रिसर्च करी है, यानी उन्होंने ऐसे लोगों से इंटरेक्शन किया ही किया है,
1: किया अपने रिसर्च ऑलरेडी किया है,
0: ऑलरेडी किया है, तो वहां से हमने ऐसे डॉक्टर्स के ईमेल आईडीज निकाले, उनको ईमेल्स लिखे और फिर फाइनली उनको अपनी टीम में लिया। और चौथे टाइप के डॉक्टर्स हमने ऐसे अपनी टीम में लिए जो कि स्नोबॉल सैंपलिंग जिसको कहते हैं, कि मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड से, कि अगर समझिए एक डॉक्टर अच्छे हैं, हमने उनसे पूछा आपकी जानकारी में और कोई दोस्त भी हैं जो आपके जैसे अंडरस्टैंडिंग हो इतने और कम्युनिटीज में काम किया हो, तो उन्होंने बताया कि हाँ हाँ उस टाइम पे एक डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, उस बैच का है, मैं जानता हूँ, तो आप उनको अप्रोच कर सकते हो। या हमने किसी कम्युनिटी मेंबर से पूछा, क्या तुम किसी हॉस्पिटल में गए हो और कोई डॉक्टर अच्छा लगा है तुमको जिसने अच्छे से ट्रीटमेंट दिया हो, तो कुछ कम्युनिटी मेंबर खुश होके बताते हैं हाँ वो उस शहर का वो वाला हॉस्पिटल था, उसका वो वाला डॉक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। तो कम्युनिटी फीडबैक से ही हमें पता लगा कि कुछ वो डॉक्टर,
1: वैसे ही आपने वो टीम बनाई,
0: हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की टीम बनाई है, और ऐसे ही कम्युनिटी की टीम भी बनाई है, कि जैसा मैंने बताया हम कम्युनिटी मेंबर्स को भी जॉब्स दे रहे हैं अपने साथ, तो बेसिक इंटरेक्शन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, या इवन उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से, कि अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जैसे एमबीए टाइप भी किए हुए हैं, ऐसे कम्युनिटी मेंबर्स भी हैं, तो उनको हम मार्केटिंग की जॉब दे देते हैं। और अगर किसी व्यक्ति ने, समझिए कि 10th पास ही है, ज्यादा पढ़ाई वगैरह नहीं कर पाया है जो, तो उसको हम लॉजिस्टिक असिस्टेंट टाइप वाली जॉब्स या बेसिक ऑफिस वर्क्स वाली जॉब भी दे देते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कम्युनिटी, एक कम्युनिटी स्पेस में काम करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे भी खुश हो रही है। अगर हम उनको टिपिकल अगर गवर्नमेंट सिस्टम्स के हिसाब से बस स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग दे दे के अगर एक अलग से लाइवलीहुड सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश करे, जो ऑलरेडी हम हजारों लोगों जनरल पॉपुलेशन में भी कर रहे हैं, तो नॉट वन सॉल्यूशन फिट्स ऑल, ये वो वाली बात है, हमें अलग टाइप की कम्युनिटीज के लिए अलग टाइप के सॉल्यूशन सोचने की जरूरत है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट।
1: इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, दैट्स वंडरफुल। और लक्ष्य, बिल्कुल समय हमारे पास कम बचा है, तो जाते जाते मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर वो कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, तो क्या कोई वेबसाइट है या फिर क्या कनेक्शन है, कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं?
0: तो आप हमारे अलाय हार्ट के पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जो अलाय हार्ट LGBTQ का इंस्टाग्राम पर पेज है, या फिर हमारा नंबर बहुत इजी है याद रखने के लिए कंपनी का, 888-296-7676, 888-296-7676। तो जनरली हमारे टीम में से कोई ना कोई LGBTQ+ मेंबर ही, या तो या कोई ना कोई स्टाफ मेंबर ही ये कॉल को रिसीव करते हैं। इस पे व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, तो उस पे मैसेज भी किया जा सकता है। बाकी अगर ईमेल करना है, अगर आपको कोई फॉर्मल कोलैबोरेशन या कुछ रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमारा कंपनी का ईमेल आईडी है info@alayhart.in, तो उस पे ईमेल भी किया जा सकता है।
1: ओके, दैट्स वंडरफुल। तो आपने फोन भी बता दिया, वेबसाइट भी बता दी, ईमेल भी बता दिया, तो जहाँ पे लोग जुड़ना चाहते हैं या कोलैब करना चाहते हैं या हेल्प लेना चाहते हैं या किसी भी तरह से आप बात करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों। और बहुत वंडरफुल काम कर रहे हैं आप लक्ष्य, और बहुत कम एज में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगी। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम किसी अपने को देखें उसको वो हेल्थ केयर फैसिलिटी, खास तौर से हेल्थ केयर फैसिलिटी, बहुत सी फैसिलिटीज हैं जिनकी ज़रूरत होती है ज़िंदगी में, लेकिन अगर हेल्थ केयर नहीं मिल पाए, टाइम पे दवा नहीं मिल पाए, तो वो पीड़ा हम नहीं चाहेंगे कोई भी सहन करे। तो क्यों एक समुदाय से वंचित रह जाए, वो भी इस बेसिस पे कि एक भेदभाव होता है बस। तो हमें मानसिकता बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, और बहुत स्पीड से चेंज लाने की ज़रूरत है। आप उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं एंड हमें बहुत खुशी है कि आपने आज ज्वाइन किया और इतना कुछ शेयर किया, एंड हमें भी बहुत कुछ जानने को मिला जो शायद हमें पहले नहीं पता था। तो हमारे लिए भी वो बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव ये सेशन रहा। थैंक यू सो मच लक्ष्य, आपको और भी काम है लेकिन आपने टाइम निकाला, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
0: और एंड में बस मैं यही कहना चाहूंगा, पहला सुख निरोगी काया।
1: पहला सुख निरोगी काया। तो दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का आप सभी से, और ऐसी और जानकारियों के लिए या किसी भी मुद्दे पर बातचीत आपको करनी हो तो रेडियो मधुबन से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 94-14-15-14-15, यानी कि 9414-1514।
2: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
3: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: गुड इवनिंग नमस्ते रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़े हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम
1: उड़ान के साथ।
0: मैं हूँ आपकी दोस्त मोना। मेरे साथ है आज
1: रूहानी।
0: हम दोनों ब्राह्मण और केकड़े की कहानी जरूर लेकर आते हैं, वहीं पर आज पूछेंगे आपसे सवाल भी जिसका जवाब आप देंगे
1: 9414151415 पर।
0: जी हाँ दोस्तों, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में। किसानों के अथक परिश्रम, त्याग और संघर्ष को समर्पित ये खूबसूरत कविता। सिर पर पगड़ी, तन पर वस्त्र है सामान्य, धरती के इस लाल को मेरा शत शत है प्रणाम।
1: गर्म गर्म लू चलते जब तपता है अंग अंग, तब भी करता काम खेत में बिना किए कोई हुड़दंग।
0: सर्दी हो या मूसलाधार बारिश, सर्दी हो या मूसलाधार बारिश, परवाह नहीं करता वो जरा, कड़ाके की ठंड में भी सींचता है खेत की हर क्यारी वो खरा।
1: चिड़ियों के जगने से पहले खटखट बजता उसका हल, पसीना बहाकर अपनी मेहनत का उगाता है वह कल।
0: कोई छुट्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार भी नहीं, उसका जीवन संघर्षों का मेला है। सबको अन्न खिलाने वाला जग में क्यों रहता अकेला है।
1: उगाता है

न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, काहे एक ना कहो एक ना तो कहा जाय का करी। तुलसीदास के द्वारा ये रचित है। जब किसान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक गीत और आपके लिए है।

भारत जिसके हर गांव, हर शहर, हर खेत और हर दिल की धड़कन से आपके लिए आदर और सम्मान की भावना झलकती है, उस मेहनत और अतुलनीय प्रयास को मोज़ेक सलाम करता है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए। बोधिसत्व पद्मपाणी नामक प्रसिद्ध अजंता गुफा में मौजूद चित्रकला किस चीज को पकड़े हुए दिखाया गया है? बोधिसत्व पद्मपाणी नामक प्रसिद्ध अजंता गुफा में जो चित्रकला है, उसमें क्या चीज पकड़े हुए उस कला को दिखाई गई है? ए कमल, बी गदा, सी वज्र। सही जवाब जरूर देना। नंबर है हमारा
1: 9414151415।
0: सुनते रहो,
1: मुस्कुराते रहो।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मोहब्बत।
1: वेल दोस्तों, आज का होमवर्क आप दोस्तों के लिए विशेष है, सांवले सपनों की याद।
2: सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत के खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है।
1: इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से
2: भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो।
1: कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मुझे नहीं पता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
2: वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने की उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है।
1: एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सलीम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारत का निशाना बनाया, कब माखन भरे भाड़े फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह में भरे थे,
2: कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी।
1: चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ आज का सवाल दोहरा देते। बोधिसत्व पद्म पाणी नामक जो प्रसिद्ध अजंता गुफा में चित्रकला है, वो कौन सी चीज पकड़े हुए दिखाई गई है? उस चित्रकला में एक चीज पकड़ी हुई है, वो कौन सी चीज है? ए
2: कमल, ऑप्शन बी है गदा, ऑप्शन सी है वज्र।
1: तीनों में से सिर्फ एक सही जवाब है, झटपट दीजिए 9414151415 पर दीजिए। सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए।

0: हेलो रे, चलिए दोस्तों, ब्राह्मण और केकड़े की कहानी। किसी समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी।
1: बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी और ब्राह्मण पुत्र भी अपनी माँ की हर बात मानता था।
0: एक दिन ब्राह्मण को पूजा पाठ कराने के पास के ही गांव में जाना पड़ा। ब्राह्मण ने ये बात अपनी मम्मी को बतलाई। बूढ़ी माँ ने बोला, बेटा बाहर जा रहे हो, अकेले मत जाना।
1: किसी को अपने साथ ले जाना। ब्राह्मण अपनी माँ से बोला, माँ मैं हमेशा ही उस गांव में जाता रहता हूँ और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो, घबराओ नहीं, मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगा।
0: ब्राह्मण पुत्र जाना तो अकेले चाहता था, परंतु वह अपनी माँ की बात की अवहेलना भी नहीं करना चाहता था। घर से निकल गया और जैसे ही गांव में लगी नदी के पास पहुंचा, एक केकड़ा
1: उसके पैर के नीचे दबते दबते बच गया। ब्राह्मण को लगा, अगर यह केकड़ा रास्ते में यूं ही घूमता रहा तो किसी और के पैर के नीचे आ जाएगा। ब्राह्मण को अपनी माँ की बात याद आई और कि अकेले मत जाना। ब्राह्मण ने सोचा, इस केकड़े को अपने साथ ही ले चलता हूँ।
0: उसने अपनी पोटरी में एक खाली डिबिया निकाली और उस केकड़े को डिबिया में रख दिया। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी माँ की बात भी रख ली। अब वो एक से दो हो गए। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते ब्राह्मण थक गया तो आराम करने के लिए पुराने बड़े पेड़ के नीचे
1: लेट गया। उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। उसी पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता था। ब्राह्मण की पोटरी में पूजा पाठ की सामग्री थी, जिससे सुगंधित पूजन सामग्री की खुशबू आ रही थी।
0: काला सर्प अपने कोटरे से निकल पोटरी के अंदर घुसा और उसमें रखी सामग्री में खाने की सामग्री ढूंढने लगा, जिससे पोटरी में रखा सामान गिर गया और केकड़े की डिबिया खुल गई। सांप जैसे ही केकड़े को खाने के लिए
1: आगे बढ़ा, केकड़े ने अपने नुकीले डंक सांप की गर्दन में फंसाकर गड़ा दिए। केकड़े के द्वारा अचानक किए हमले से सांप संभल नहीं पाया और वहीं मर गया।
0: कुछ देर बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने अपने आसपास सामान बिखरा हुआ पाया। पास में उसे एक मृत सांप दिखलाई दिया,
1: जिसकी गर्दन ने डंक से निशान थे और पास ही में केकड़ा घूम रहा था।
0: ब्राह्मण समझ गया कि इस सांप को केकड़े ने मारा है और केकड़े के कारण आज उसकी जान बच गई। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि अकेले कभी मत जाना।
1: ब्राह्मण ने अपनी जान बचाने के लिए केकड़े का धन्यवाद दिया और वापस जाते समय नदी के पास उसे छोड़ दिया।
0: चलिए दोस्तों, जब दोस्ती की बात आई तो एक गीत भी और आपके लिए आ गया।

0: जिंदगी की यही रीत है। बोधिसत्व पद्मपाणी नामक प्रसिद्ध अजंता गुफा चित्रकला में, वो चित्रकला जो है जिसमें क्या चीज पकड़े हुए दिखाया गया है आपके सामने, ऑप्शन है ए
1: कमल, ऑप्शन बी है गदा और सी है वज्र।
0: सही जवाब दोस्तों झटपट दे दो 9414151415 पर दो। और कहते हैं पद्म पाणी, पद्म किस चीज को कहते होंगे संस्कृत में?
1: पैरों को?
0: नहीं, पद्म कमल को भी, लोटस को भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कहानी आज आपके लिए लेकर आते हैं।
2: हरिपुर के किसानों की। हरिपुर के किसान लोग कड़ी मेहनत करके फसल उगाते थे और शिवपुर के किसान उसी फसल की आमदनी करके जीविका निर्वाह करते थे। एक दिन हरिपुर के किसानों का धैर्य का बांध टूट गया और अब उन सब लोगों ने मिलकर कुछ निर्णय लिया। उसी से पूरी तरह हिल चुके थे शिवपुर के किसान।
3: अरे भाई, आखिर ये कैसी बात हुई भला? उस हरिपुर के किसान वो लोग कह रहे हैं कि अब से वो लोग इस गांव में फसल नहीं भेजेंगे।
4: तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा?
3: दरअसल बात ऐसी है कि हम ये जो आराम से सोकर दिन बिताते हैं वो अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
4: उन्हें तो एकदम अच्छे से सबक सिखाना होगा। हाँ,
5: फसल ना भेज कर हम सबको मेहनत करने पर मजबूर करेंगे क्या वो लोग?
3: अच्छा, इस विषय पर गुरु विष्णु वर्मा की राय ली जाए तो कैसा रहेगा?
4: हाँ, इस अत्याचार के बारे में उनसे बात कर सकते हैं हम।
5: चलो सब मिलकर वहीं पर चलते हैं। चलो चलो चलो,

0: गुरुजी आंखें खोलिए गुरुजी।
1: जी हम वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इसलिए आपके पास आए हैं।
2: गुरुजी इससे हमें आप ही बचा सकते हैं।
3: आहा, तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? बोलो बोलो तुम लोगों की समस्या क्या है?
0: हमारी कोई भी ऐसी समस्या नहीं थी, पर ये समस्या पैदा की हरिपुर के उस किसानों ने।
1: दरअसल हम जरा आराम से सोकर दिन बिता रहे थे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए।
2: कहते हैं कि खुद फसल उगाओ और खुद ही खाओ, हम और नहीं दे सकते हैं।
1: असल में बात यह है कि सही वक्त पर बारिश होने की वजह से उनकी फसल पैदावार अच्छी हो रही है और संपत्ति भी बढ़ रही है।
3: ओह, तो बारिश तुम्हारे गांव में नहीं होती क्या?
2: होती तो है, पर उस बारिश में भीग भीग कर हम खेती कैसे करेंगे गुरुजी? इतनी मेहनत हम कैसे कर पाएंगे बताइए?
3: सही कहा। तो फिर अब तुम लोग क्या चाहते हो कि उनके गांव में बारिश होनी बंद हो जाए?
0: आपने तो हमारी मन की बात जान ली गुरुजी।
3: ठीक है, तो फिर मैं अपनी आंखें बंद करके बैठता हूँ। मैं जब तक आंखें नहीं खोलूंगा तब तक उस गांव में बारिश नहीं होगी।
1: बस बस, अब उन्हें अच्छा सबक मिलेगा। आप इसी तरह आंखें बंद करके बैठे रहिए, हम लोग चलते हैं।
2: जय हो गुरु विष्णु वर्मा की जय हो।
3: हाय रे बेवकूफ कहीं के।
0: आखिर बात क्या है समझ नहीं आ रहा, बारिश के मौसम में बारिश क्यों नहीं आ रही है?
4: वही तो बात है, बहुत चिंता हो रही है भाई।
3: सोच कर भी तुम लोग क्या कर लोगे बेटा? तुम लोग अपनी कड़ी मेहनत पर ही भरोसा रखो। याद रखना, बुद्धि और परिश्रम है जिसका, किस्मत चमकेगा उसी का।
1: कीमत की बात मत ही कीजिए काका, हम अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं। हाँ, पड़ोसी गांव के किसान बड़ी ही खुशी से सबको कह रहे हैं। हाँ, अभी हमारी सारी अकड़ है ना चूर चूर हो जाएगी।
4: उनके गुरुजी ने आंखें बंद कर ली है, जब तक वो आंखें नहीं खोलेंगे हमारे गांव में बारिश नहीं होगी।
0: तो अब हम क्या करें? क्या हम लोग उनसे बात करके समझौता कर ले?
1: उन्होंने मेहनत करके फसल उगाकर अपने पैरों पे खड़े होने को कहा है, इसलिए क्या अब हमें ये सब भोगना पड़ेगा क्या? हाँ,
4: हमने तो उनकी भलाई का ही सोचा था, पर उन्हें समझ ही नहीं आया। अच्छा तो अब क्या होगा?
3: मुसीबत के वक्त दिमाग ठंडा रखना ही तो समझदारी का परिचय है। सुनो सुनो, तुम लोग सब एक काम करो। तो तुम लोग समझ गए ना कि क्या करना होगा?

0: वो देखो गुरुजी ध्यान में बैठे हैं।
1: हम भी तैयार हैं। अरबी के पत्ते में लपेट कर लाए हैं उनको।
2: तो फिर दे दे दे दे मेंढक बाबा जी को छोड़ दे। अब ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है।
0: ये देखो मेंढक ने बुलाया। अब तो गुरुजी बस आंखें खोलने ही वाले हैं।
3: ये क्या मेंढक कहाँ से आ गया? ऐसा तो बारिश होने से होता है।
0: ये देखो भाई बारिश फिर से शुरू हो गई है। बूढ़े काका का दिमाग काम आ गया।
4: अरे बारिश को तो आना ही था भाई, गुरुदेव ने आंखें जो खोली है।
3: बहुत तेज दिमाग है तुम लोगों का, तुम सबका बुरा करेगा, ऐसी हिम्मत किसके पास है।
5: उधर हरिपुर में तो सब लोग ने बड़ी खुशी से हल चलाना शुरू भी कर दिया है।
2: वो तो थी ही, लेकिन बारिश शुरू कैसे हो गई भला?
4: लगता है उन लोगों ने जरूर कोई छल कपट किया होगा।
0: वो लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, उनकी सारी मेहनत पर हम पानी फेर देंगे।
2: बिल्कुल सही कहा, हमसे कहते हैं कि खुद की फसल खुद ही उगा लो। हाँ
4: अभी मजा चखाएंगे, हम भी छोड़।

0: करने वालों में से नहीं है।
1: अरे ये क्या तुम लोग फिर से आ गए?
0: नहाते तो क्या करते गुरुजी, हरिपुर में तो बारिश हो रही है
2: और किसान बीज भी बो रहे हैं गुरुदेव।
3: कुछ दिन में देखेंगे कि खेतों में फसल लहरा रही है।
0: गुरुजी अब आप कुछ तो कीजिए।
1: ऐसे उन्हें कैसे रोक पाएंगे?
2: आप मदद करेंगे तो जरूर रोक पाएंगे।
1: तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मैं फिर से उनकी परीक्षा लेता हूँ। तो फिर सुनो, मैं एक ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि उनके एक गोला में 10 बोरी से ज्यादा धान नहीं फलेगा।
0: बस बस बस बस, तभी उन सबको उचित शिक्षा मिलेगी गुरुजी। हाँ
3: देखो, अब इस बार भी अच्छी फसल हुई है ना?
0: अभी सिर्फ सही समय पर फसल काट कर गोला भरना होगा।
4: सारी उम्मीदें पानी में जाएगी। आगे आगे देखो होता है क्या।
2: तुम लोग फिर से यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, किस बात की इतनी खुशी है बताओ?
5: खुशी तुमने अब तक देखी ही कहाँ है।
2: असली खुशी तो हमें कुछ दिनों के बाद मिलेगी।
0: चाहे कितनी भी मेहनत कर लो पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक गोले में 10 बोरी से ज्यादा धान तो होगा ही नहीं।
4: गुरु जी का मंत्र कभी खाली नहीं जाता है। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ।
6: देखा ना आपने कैसे हमारी थाली में छेद करने आया था वो?
1: मुझे लगता है कि उनकी बात सुनकर तुम घबरा गए हो। ऐसा मत करो, तुम लोग एक काम करो, मेरे कहे अनुसार एक गोला बनाओ।
6: घबराने से काम नहीं चलेगा भाई, जैसे काका ने कहा हमें वैसे ही शुरू करना होगा।
0: तभी तो मैंने तय किया कि एक जगह हम 10-10 गोला बनाएंगे।
2: हम सबका ज्ञान और टोटका इस बार भी बहुत रंग लाएगा भाई, देखना।
6: अजीब बात है, लगता है घबराने की बजाय वो लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं।
5: अरे एक गोली में कम मना जाएगा, इसलिए गोली की संख्या ही बढ़ा दी है इन लोगों ने।
0: चलो हम लोग फिर से गुरुजी के पास चलते हैं।
6: ठीक है ठीक है। अरे ये क्या गुरुजी, आप यहाँ?
0: आप यहाँ आ गए हैं तो अपनी आँखों से ही देख लीजिए।
6: अरे पहले तो फिर भी एक गोले में 30 बोरी अनाज आता था, अब आपकी बात के अनुसार हर गोले में 10 बोरी अनाज के हिसाब से 10-10 गोला बनाने की वजह से 100-100 बोरी अनाज होगा।
1: यही तो होना था। मेहनत और दिमाग इस्तेमाल करने से सोना तो जरूर उगेगा ना।
6: इसका मतलब आप सब कुछ जानते हुए भी हमारी परीक्षा ले रहे थे।
1: बिल्कुल सही समझे। जो लोग तुम्हारी बर्बादी के लिए मेरे पास दौड़ कर आए थे, उन्हें भी तो सबक सिखाना जरूरी था ना।
6: अब हमारी आंखें खुल चुकी है गुरुजी।
2: सिर्फ हमारी मेहनत से ही हम अपनी जिंदगी में सुख और खुशियाँ ला सकते हैं। हाँ
1: वो कहावत है ना, अभाव में लोगों का पता चलता है, पाप में मजा आता है धर्म का, दुख में अपनों का पता चलता है, आलस में मजा आता है काम का।

0: हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंदा। इस खूबसूरत गीत को पेश करने के बाद आज का सवाल दोहराते हुए सही जवाब भी जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बोधिसत्व पद्मपाणी नामक प्रसिद्ध अजंता गुफा चित्रकला में किस विषय को या इनमें से कौन सी चीज पकड़े हुए वो चित्रकला दिखाई गई है? आपके सामने ऑप्शन था ए कमल, बी गदा, सी वज्र। सही जवाब
1: ऑप्शन ए है, कमल।
0: जी हाँ दोस्तों, कमल पकड़े हुए वो अजंता की गुफाओं में वो चित्रकला दिखाई गई है। सचमुच बहुत सुंदर चित्रकला है और अभी नहीं, कितनी प्राचीन वो कला है। और कभी भी अजंता के गुफाओं में जाने पर आपको इस चित्रकला का रूबरू दर्शन जरूर होगा। जरूर जाइए, भारत के ऐसे इतिहास को करीब से देखिए और इनका सुख जरूर लीजिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी प्रकार की संस्कृति को देखने का मौका, पहचानने का मौका, सीखने का उनसे कुछ ना कुछ मौका जरूर मिलता है। तो आप अजंता की गुफाओं को देखने जाएंगे तो कौन से राज्य में जाएंगे? महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
1: 6 बजे।
0: तब तक के लिए उड़ान से कहेंगे गुड बाय, सुनते रहो
1: मुस्कुराते रहो
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: ये तंबाकू क्या हो, ये तंबाकू क्या होता है?
3: अरे तिकुनी पता क्या इसमें पता है ना।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: साई।
1: नमस्कार, मैं हूँ अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूँ, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूँ। मैया मोरी मैं नहीं मां खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है। आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माई विलेज माई एरिया और कह सकते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल ढाणी में जाते, मगरा में जाते, नरगा में जाते, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते, सभी से मिलते हैं, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो है सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए, ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है हमारा गांव में जो रीति रिवाज संस्कृति है जो कला है जन जन तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा एक मंच देती है। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर आबू रोड से रेडियो मधुबन स्टेशन से बहुत दूर पिंडवाड़ा ब्लॉक में काछोली जगह में पहुंचे, हमें खुशी है। आज भजन संध्या में अपना दिल का बात परमात्मा तक पहुंचे, इसमें खुशी और सुख मिलता है, सुकून मिलता है और हमारा आस्था विश्वास और भक्ति भावना में ओतप्रोत होते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं, खासकर नरगा में जो माताएं बहन काम करते हैं और रोजगार तो साथ साथ मन को शक्ति बनाने के लिए, बुद्धि को तेज करने के लिए ईश्वर को याद करते, परमात्मा को याद करते, सभी को

0: धन्यवाद देते हैं। पहला प्रस्तुति सुनेंगे, श्रोता मित्र की तरफ से धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ सबसे कम उम्र, सबसे कम उम्र लगते हैं देखने में कम उम्र नहीं है लेकिन बहुत अच्छा सुनाएंगे भजन, और उनको साथ देने के लिए हमारा मैट, मैट का क्या नाम है,
1: मीना देवी।
0: मीना देवी के लिए ताली बजाओ जोर से भाई, जोर से ताली बजाओ। आज तो सभी खुशी है क्योंकि ताली बजाने में कुछ पैसा नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, और चेहरा में गुलाब फूल जैसे खिलता है कि नहीं? ऐसे होना चाहिए, खुश रहो और खुशी बांटो। आज तो खुशी बांटने के लिए रेडियो मधुबन पूरा मगरा, मगरा क्या पूरा इसको क्या बोलते, नाड़ी में पहुंचा है। तो सुनते हैं पहला प्रस्तुति, और ग्रामवासियों की तरफ से, सरपंच की तरफ से, वीडियो की तरफ से सभी माताओं को धन्यवाद देते हैं, राम राम करते हैं और वंदे मातरम कहते हैं, माताओं का जय हो। चले पहला प्रस्तुति सुनेंगे। माता जी आप नाम बताओ, आप तुम्हारा नाम?
2: कमला बाई।
0: अरे कमला बाई के लिए जोर से ताली बजा, हमारा पूरा लीडर है। मैं बोलती बच्ची है लेकिन ये बच्ची जैसी आवाज है, लेकिन उम्र आज उनका 60-70 के 80 होगा, फिर भी बच्ची का आवाज आज सुनो, 80 साल का बच्ची अच्छा क्या उम्र है। चलो शुरू करते गीत सुनाओ, भजन
2: गीत गाओ।

0: बोलो महादेव की
1: जय,
0: आज की आनंद की
1: जय,
0: सभी का खुशी की
1: जय,
0: गांव की खुशी की
1: जय,
0: हम सब का खुशी की
1: जय।
0: और क्या बोलेंगे, जय माँ आशापुरी की
1: जय।
0: बस सबका जय हो, जय जय के साथ आज का कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए कमला देवी। मैं तो छोटी बच्ची सोच रही थी, लेकिन उसका आवाज से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका आवाज सबको फेल कर दिए। बोले कान आग कुछ जरूरत नहीं, लेकिन आपका बुद्धि तेज है और गाना में बहुत मजबूत है। बोला बाबा पार करेगा, अच्छा गीत गाए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, आस्था विश्वास भक्ति भावना और महादेव का गीत थे थे करते। और सब माताएं अपना मन बुद्धि से नाच रहे, और एक माता कमला माता तो पूरा अपना पैर को हाथ को रोक नहीं पाई, थे थे मैं पूरा नाची। कोई बात नहीं, हमारा रेडियो कार्यक्रम है, वीडियो कार्यक्रम नहीं है, रेडियो कार्यक्रम में आवाज ही जाएगा, आवाज ही उनका पहचान होगा, और उनका शरीर का हमारा जो डांस वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा। ये वीडियो का प्रोग्राम नहीं, ऑडियो प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति होगी वंस मोर, क्योंकि आवाज को रोक नहीं पाएगी कमला देवी, और एक गीत होगी भजन। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, ये था खासकर काचोली का आवाज। माताएं बहन आज अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे, दिल का तार परमात्मा महादेव तो पहुंच रहा है और वो भी खुश हो रहे, और हमारा गांव का उन्नति के लिए महादेव का कृपा भी जरूरी है। और कमला नाम ही कितना सुंदर है ना। तो सुनते कमला देवी से और एक प्रस्तुति, और साथ देने के लिए हमारा साथ सभी बहन भी पूरे थे आज राजपुरे थे और क्या राजपुरे थे ब्राह्मण है और क्या सुनते अगर एक गीत राजपुरोहित के पास तो गीत रहते हैं है कि नहीं, गीत बहुत होशियार होते हैं। शुरू करें और एक गीत मीराबाई। मीराबाई, अरे वाह क्या बात है, मीराबाई पीछे से बोल रहे हैं हमारा भाई साहब, मीराबाई का गीत हो जाएगा भजन। वाह चलो।

0: बहुत बहुत धन्यवाद कमला देवी, माता नहीं अभी देवी बन गए, क्योंकि गीत में कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई ट्रैक नहीं, फिर भी कितना शुद्धता में। माता जी कहाँ से सीखे आप, इतना सुंदर रूप में गीत गाए हैं, सबको पूरा मनमुग्ध कर दिया। मीरा बाई नाम सुनते पूरा विश्व विख्यात है राजस्थान में मीरा का, तो कहाँ से सीखती थी आप गीत?
1: गीत अच्छा सीखे, इसका इसका कौन चलता बेटा गाता
0: जी,
1: उसका मैं ही किया नाड़ी में डबावा नाड़ी में गाता था, मैं ही किया
2: माधव जी गाता,
0: हाँ तब सुन जाते हैं
2: माधव जी,
0: हाँ तब गीत गाते हैं, मंदिर में सीखते हैं गाना में सीख जाते, एक को देखकर आपको देखकर भी लोग भी सीख गए, बहुत अच्छा बात है, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमारा कुछ भी बोले लेकिन हमारा भावना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना आवाज को रोक नहीं पा रहे हमारा कमला देवी तब खूब हंस रहे और हमें खुशी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अगला प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमें बहुत खुशी है। माताओं का जो आवाज, सही में जो बुलंद आवाज, और कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, और अपना दिल का बात को रख रहे हैं। और मीरा भाई का गीत सुन रहे थे ब्रेक का पहले, और मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई गीत में, जैसे हम एक तो मेरा शिव बाबा, दूसरा न कोई कहते ना, मेरा तो एक गिरधर गोपाल। मीरा का भक्ति भावना कितना था, और आज माता उसको याद लाए।
4: और एक गीत सुनेंगे तुम।

0: मोतन सोहरा अर जगरू मर बेगी कर जो हार गुलाबो दोरो से। बोलो बापसी जय।
1: जय बापसी की जय हो और सबका जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो गांव और अंचल में जाते हैं, जो शुद्धता, जो भोलापन और माताएं बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और भक्ति भावना आस्था विश्वास में जो शुद्धता है, जो प्राप्ति है, जो शक्ति ऊर्जा प्राप्त होती है, कहीं में नहीं मिलता, पैसा देने से भी नहीं मिलता है। लेकिन सही में जो गांव और अंचल का भावना आज हमारा श्रोता मित्र को सुनाए, क्योंकि रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रसारण होता है। सरकार का जो मंचा है, माताएं बहन घर में रहते हैं चार दीवार में, लेकिन जब इस तरह संगठन में आते हैं अपना दिल का बात खोल के बात कर सकते हैं, अपना भावना को भगवान तक पहुंचा पाते हैं। इस तरह मौका रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी संस्था तरफ से आज मिला, खासकर काछोली गाँव के मनरेगा माताएं बहन अपना बात को रखे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाने के लिए मन तो नहीं करता है, लेकिन और एक प्रस्तुति होगा, अंतिम प्रस्तुति। सभी को धन्यवाद देते हैं, लेकिन लेते हैं अल्प विराम का बाद। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रस्तुति अंतिम प्रस्तुति होगा और हमारा कार्यक्रम को सुंदर रूप में कमला जी और सभी को नाम का साथ स्वागत करते हैं। कमला का ही नाम आ रहा है मुझे बार बार, किंतु कमला मीन्स कमल पुष्प दिशे। तो चलिए लास्ट प्रस्तुति सुनेंगे, सभी नाम बता
1: कृष्ण,
0: उनका नाम तो बता दिया था, क्या बताया था?
1: रेखा,
0: भाग्य का रेखा चमकेगा आज। चलिए शुरू करते हैं।

0: できぜ
1: 油
0: 油
2: आबू राज में रहते हैं और सभी तीर्थ बार बार आबू तीर्थ एक बार आबू राज जो परिक्रमा करता है उनका भाग्य खोलता है और देव भूमि कहते हैं तपस्या भूमि कहते हैं आबू राज को आबू पर्वत को और जिस अंचल जिस ढाणी में हम रहते हैं पले बड़े वो देश और वो ढाणी कितना महान है और अब महान है। चलिए इस कार्यक्रम को सुंदर में सजाए सभी को नाम का साथ धन्यवाद आभार। इस तरह कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर माताएं जब लेते हमें बहुत खुशी मिलता है। अचानक जाते हैं कोई सूचना नहीं कोई फोन नहीं फिर भी माताएं बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं और अपना कार्यक्रम को सुंदर रूप में बनाते क्योंकि कार्यक्रम आपका है आपका रेडियो है और आपका आवाज है और आपका हम सब है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी गांव का किसी ढाणी का किसी स्कूल के किसी मनरेगा का माताओं का आवाज आप तक पहुंचाने के लिए क्योंकि सरकार कम्युनिटी रेडियो कम्युनिटी के लिए दिया आपका रेडियो है। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत फिर मिलेंगे सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं गीता चिकारा करनाल से। आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की कैन हो। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त, आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूँ केवल, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो खुशी के नगमे दिल की बातें और रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जून का ये खूबसूरत सा शाम, सूरज धीरे धीरे अपनी लालिमा बिखेरते हुए विदा ले रहा है, विदा ले चुका है ऑलरेडी, शाम तो अंधेरा तो हो ही चुका है और ठंडी हवाएं अरावली की पहाड़ियों से उतरकर हमारे दिल को छू रही है। साल 2026 का आधा सफ़र तय हो चुका है और आज 23 जून की सुहानी शाम को क्यों ना हम अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें और कुछ पल सिर्फ अपने दिल की सुने। जहाँ दोस्तों ये वक्त है ऐसा जहाँ रेडियो पे हम आते हैं, अपने दिल के उन नगमों को सुनते हैं, अपने दिल के अरमानों को बाहर निकालते हैं और शब्दों को, गानों के शब्दों के बोल के रूप में हम उसमें झूम उठते हैं, खुश हो जाते हैं कुछ पल के लिए, पूरी दिन भर की थकान को दूर कर देते हैं, है ना। दोस्तों एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई थी कि कल जब हम बात कर रहे थे पर्यावरण के बारे में, जल के बारे में, कि जल को हमें

0: बचाना है, पानी को हमें बचाना है, काफ़ी सारी चीज़ें हम बता रहे थे। और हम जानते भी हैं इन सब चीज़ों के लिए सरकार भी बहुत से प्रयोग कर रही है, बहुत सी चीज़ों को आगे एडवर्टाइज़ कर रही है कि कैसे हम पानी को बचाया जा सकता है, पर्यावरण को बचाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ मेरे बस आज ऐसे ही दिमाग में आई, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ और इसका जवाब भी आप मुझे कॉल करके मुझे बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं इस बारे में कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो ठीक है या क्या है। क्योंकि देखिए, कल जब हमने पानी के बारे में इतनी सारी बातें की, लोग ने हमें सुना भी है और हम भी कईयों को ये बातें बताते हैं कि किस तरह से हमें चीज़ों को बचाना है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। लेकिन जैसे हम जल दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कई ऐसे दिवस है, योगा दिवस, जैसे कि अभी आप सब जानते हैं 21 जून विश्व योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग आकर के अपने शरीर के लिए योग करते हैं, योगा करते हैं और स्वस्थ रखने की बातें करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही थी कि ये सब हम दिन मनाते हैं और उस एक पर्टिकुलर डे के दिन ही हम पानी को बचाने की बात करते हैं, पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं, या खुद को स्वस्थ रखने की बात करते हैं, या जैसे फादर्स डे बनाया, मदर्स डे बनाया, कई लोग कहते हैं कि फादर्स डे के दिन ही अपने पिताजी को याद करते हैं, बाकी दिन तो कोई याद ही नहीं करता है, मदर्स डे के दिन ही मदर्स की पिक्चर्स हम व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देते हैं, बाकी दिन मदर्स को कोई याद ही नहीं करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि क्या हमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर उसी दिन याद आनी चाहिए, या इसे हमारे जहन में हर वक्त एक अलार्म की तरह बजना चाहिए कि बस हमें ये चीज़ें करनी है, हमें हमारे पर्यावरण को बचाना है, हमें हमारे जल स्रोतों को बचाना है, पानी को बचाना है, जहाँ जल स्रोत कम है वहाँ जल स्रोत को बढ़ाना है। क्या ऐसा फील होता है आपको भी कहीं? बिकॉज हर एक दिन अगर हम जल दिवस मनाए तो कैसा रहे, हर एक दिन को हम अपने पर्यावरण को बचाए तो कैसा रहे। कि देखिए, इस साल जून महीना आधा हो चुका है, आधा ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया, 23 तारीख हो चुकी है आज, और अभी तक बारिश ने कई जगहों पे नाम तक नहीं लिया, दस्तक नहीं डाली है जहाँ पे अभी तक बारिश शुरू हो जानी चाहिए। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम पर्यावरण की बात करते हैं, पेड़ कटने की बात करते हैं, आज अभी कुछ दिन पहले मैं आपसे बात करूँ कि मैं कुछ दिन पहले ही माउंट आबू ऐसे बाइक से जा रहा था, और जैसे हम आरना हनुमान जी क्रॉस करते हैं और वहाँ के बाद से हनुमान मंदिर और माउंट आबू तक के बीच के जो रास्ते हैं वहाँ पे मैं ऐसे देख रहा था, तो जब हम पहले जाते थे तो बहुत से पेड़ हुआ करते थे, झाड़ियाँ हुआ करती थी, पेड़ हुआ करते थे। अभी रास्ते बनाने के लिए, ट्रैक्स करने के लिए, रास्ते बनाने के लिए वहाँ पे पेड़ को काट दिया गया है, रास्ते बना दिए गए हैं, और अब जब बारिश होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी, तो वहाँ की जो मिट्टी है पूरी ढल करके नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं है उसको रोकने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है कि चीज़ों को हम बर्बाद कर रहे हैं, चीज़ तरक्की करने के लिए बर्बाद हो रही है, चीज़ों को तरक्की के नाम पर किया जा रहा है। चलिए इस बार पे हम हमारे कॉलर हमसे जुड़े, बात करते हैं उनसे। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बात मुझे बहुत ही आनंद में है, मंगलाचरण में है।
0: क्या बात है, मंगलाचरण में आप है तो हमें इतनी खुशी हो रही है।
1: और वापस आप मिल गए तो क्या करें, प्रभु मिल गए हमारे को।
0: शुक्रिया।
1: प्रभु के परमात्मा की आत्मा तो आप है, आपके साथ में मिलकर के हमारे को इतनी खुशियाँ बढ़ जाती है। बात मत पूछो,
0: अरे बस हम आपकी जब आवाज सुनते ना, जब आप कहते हो बड़ा मजा आता है।
1: अरे आपकी आवाज सुन करके हमारे को ऐसा लगता है जब दिल के अंदर परमात्मा आ गए, वही आत्मा है हमारे सामने।
0: थैंक यू सो मच भूरीलाल जी।
1: दर्शन तो नहीं कर सकते लेकिन आवाज सुन करके आत्मा में संतुष्टि कर,
0: बस यही खुशी होती है, इसलिए तो हम रोज भागे दौड़े चले आ जाते हैं।
1: अरे परमात्मा भी नजर नहीं आता लेकिन उनकी खुशियों को सुन करके, उनके नाम सुन करके भी अपने खुशियाँ भर दिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसी प्रकार के हमारे गाने हम नाच करके गाने नहीं कह सकते लेकिन गाने की आवाज सुन करके हम तो खुश हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ, इसलिए ऐसा आनंद भरा गाया है
0: जी,
1: तो उन गाने को सुन करके सभी साथियों को पुलकित हो जाएंगे और आनंद दे जाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: बहुत मजेदार गाना है, कह दो उसका बोल।
0: बिल्कुल सुना दीजिए।
1: हाँ, चाहे बाहर उठे या बाहर उठे, चाहे मार उठे या बाहर बाप रूठे,
0: चाहे मार उठे चाहे बाप रूठे।
1: हाँ, मैंने हाथ ली, मैंने तेरी बात पकड़ ली।
0: अच्छा,
1: क्या कह रहा है क्या गाने से बोल है, मेरे बाप भी रूठ जाता था, मैं उसको सुनता हूँ और मेरी माँ भी रूठ जाए और औरत भी चलेगी, ऐसे ऐसे गाने सुन करके आनंद ले लेता हूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना आपने आज चुना है। चलिए कोशिश करते हैं।

0: ये गाना आपको सुना है?
1: हमारे क्या दिल की किताब है ना, खोपड़ी के अंदर खोपड़ी की झोपड़ी में आगे भी बड़े गाने ऐसे, जब ऐसे गाने ऐसे मिलेंगे हमको, नए नए गाने मिलेंगे और अच्छे अच्छे पुराने गाने और खुशी वाले गाने होते।
0: चलिए बिल्कुल, आज ही आपका खुशी वाला गाना हम आपको सुनाते हैं, कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर जी। कल आपने सुना था आपका नागिन वाला गाना?
1: हम तो सुनने के लिए तैयार है सर।
0: चलिए बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
1: सभी साथियों को मेरा प्यार सा नमस्कार।
0: बिल्कुल, जो सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको नमस्कार। तो ये थे हमारे बुरीलाल जी, हमेशा हसमुख, हमारे हमेशा दिल से बातें करने वाले। चलिए दोस्तों, वक्त है आगे गाना सुनने का, बातें तो होती रहेगी और ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जो चीज़ हमने आपसे अभी बात की, हमने आपसे शेयर की, अगर आपको सही लगता है या आप इस पर कुछ भी कहना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए 9414151415 पर और अपनी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, गाना सुनते हैं, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों। जरा सोचिए, वो सावली सी सूरत, मलमल का कुर्ता और उस पर पान की वो सुर्खियाँ, जैसे कि हमारे सामने अभी हमने जो गाना सुना, खूबसूरत से गाने के बोल भी, पान का ये सैया हमारो, सावली सूरत या होट लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे छीट लाल लाल। जी दोस्तों, कवि शैलेंद्र साहब ने क्या मलमल के बोल लिखे थे, और महान संगीतकार शंकर जयकिशन जी ने इसे ऐसा पिरोया कि आशा भोसले जी की आवाज़ में यह गाना अमर हो गया। फिर तीसरी कसम का यह गाना सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि दिल का वो मासूम बातें है जो एक पत्नी अपने पति के साथ की बड़े अंदाज को देखकर बयां करती। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे कॉलर से। हेलो
3: जी सर, नमस्ते, कैसे हो सर?
2: बढ़िया, नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
3: बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, और बहुत अच्छी शुरुआत की है सर आपने।
2: बिल्कुल,
3: जब पानी की बात की थी, लेकिन आज जब सड़क की बात की तो बिल्कुल सही बात है सर। मैं बताऊँ तो जब हम छोटे थे तो हम पहले जाते थे तो रोड के दो साइड इतने पेड़ थे सारे कि कहीं भी धूप नहीं आती थी
2: जी।
3: और क्या था, पहले जो वन वे रोड था, एक सिंगल रोड था, तो सिंगल रोड के दोनों साइड इतने पेड़ थे
2: जी
3: कि कोई जगह पे देखो कहीं हम पैदल जाते थे, कहीं कोई साधन पे बाइक के जाते थे, तो पूरी कोई जगह पे धूप नहीं दिखती थी।
2: बिल्कुल।
3: लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो रोड चौड़ा हो रहा है तो पेट कट रहे हैं
2: जी।
3: जो रोड थे, रोड के हिसाब से ही पेट कट रहे हैं सर
2: जी।
3: धीरे धीरे रोड चौड़ा हो रहा है और पेट कट रहे हैं। तो पहले तो सिंगल हुआ था, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, और हुआ, तो धीरे धीरे जो पेड़ बनता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं नाश्ता हो। जैसे आपने माउंट आबू की बात, बिल्कुल सही बात है सर, हम छोटे थे तब आए थे
2: जी।
3: तो कितने सारे पेड़ थे, तो जब लास्ट बार आए तो
2: जी
3: देखा कि कितने सारे पेड़ कट गए हैं और इतनी धूप है, इतना क्योंकि कहीं ना क्या होता है जो पेड़ नहीं होते हैं तो सर कहीं ना कहीं बारिश का नहीं आना है, ऐसा है कि जो वहाँ पेड़ नहीं कट गए इसलिए बारिश भी नहीं आती है, धूप ज्यादा बढ़ गई है
2: जी। बिल्कुल।
3: तो हमको सोचना है हम पेड़ उगाए तो कितने उगाए, क्योंकि उगाने से ज्यादा कट रहे हैं
2: जी,
3: तो कैसे पेड़ बढ़ेगा
2: जी।
3: क्योंकि हमारी सुविधा लेने के लिए कि पेड़ कट रहे हैं, जितना रोड चौड़ा हो रहा है, इतना सड़क, इतना जो पेड़ कट रहे हैं
2: जी,
3: एक रोड बना, दूसरा बना, तीसरा बना, धीरे धीरे पेड़
2: बिल्कुल। और ये चीज़ भी है ना सुरेश जी कि हम, चलिए रोड बनाना है, हम तरक्कियाँ कर रहे हैं, रोड बड़े ज़रूरत है, गाड़ियाँ इतनी हो रही है, लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं, चलो ठीक है हम समझते हैं ज़रूरत है, लेकिन एक पेड़ जब कटता है उसे कम से कम 15-20 साल लगते हैं, 25 साल लगते हैं उतना बड़ा होने में, फिर जब हम आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसे बड़ा होने में कितना समय लगेगा।
3: ये तो बात है, इसीलिए तो पेड़ आज छोटी हम आज पेड़ उगाए उस कम से कम 10-15 साल होगा
2: जी
3: उसको बड़े होने में।
2: बिल्कुल।
3: तो इसीलिए और एक सेकंड में पट कर वो कट जाता है।
2: बिल्कुल।
3: तो ऐसा हिसाब से आज वही हालत हो रही है सर, क्या करें।
2: चलिए ये तो बात है कि अभी हमें आने वाली पीढ़ी को ये चीज समझानी है, क्योंकि आज अगर हम पेड़ लगाएंगे, हमारे सामने पेड़ लगाएंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसे देखेगी। बिल्कुल, जो उसे देखेगी वो आगे बढ़ेगी।

0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है सर
1: जी। बताइए आज अपनी फरमाइश क्या है गाने की?
0: बस फरमाइश तो एक गाना है, बहुत कल मैंने अच्छा गाना सुना था लेकिन आज भी एक गाना मुझे याद आ रहा है
1: जी,
0: वो शायद आशा फिल्मा का गाना है।
1: ओके।
0: शीशा हो या दिल आपके छोटे जाता है, ऐसा कुछ गाना है
1: जी। शीशा हो या दिल हो
0: आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, बस वही गाना। चलिए लाइन याद नहीं आ रही है जल्दी जल्दी में।
1: कोई बात नहीं, यही गाने के बोले शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। चलिए कोशिश करते हैं आपके लिए ये गाना प्ले करें और आज आपको ये सुनाएं। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे हमारे सुरेश जी और सही कहा, और बात भी यही है कि हम कितने पेड़ लगाते हैं और कितनी हम चीज़ों को आगे बढ़ाए, लेकिन ये सभी के अंदर दिल से चीज़ें आएगी तो ये मुमकिन है करना, वरना थोड़ा सा मुश्किल है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले गाने के लिए, क्योंकि अगला जो गाना था ये थी हमारी फरमाइश भूरीलाल जी की तरफ से, क्योंकि आज इन्होंने तो मन बना लिया है, चाहे रूठे माँ चाहे रूठे बाबा, मैंने तो कर दी तुमसे हाँ। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें।

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, नमस्कार
1: भूरा राम बोल रहा हूँ।
0: जी भूरा राम जी, कैसे हैं आप?
1: आपके लिए आज बेटा थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए फिर भी आपके ये प्रोग्राम सुन रहा हूँ। और मैं बोला राम राम तो करो, और सब मधुबन भाइयों को और सबको मेरा राम राम हाथ जोड़ के।
0: चलो, सभी जो सुन रहे हैं उन सभी की तरफ से, मेरी तरफ से आपको भी राम राम। और आप सभी, मतलब हम सब पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत, जैसे कि आपने कहा ठीक नहीं है, तो क्या आप सब मतलब ठीक है अभी, कैसा है?
1: अभी अभी ठीक है, थोड़ी दवाई चालू है।
0: अच्छा,
1: अभी ठीक है। अच्छा, और मेरी एक फरमाइश है
0: जी, बिल्कुल
1: गाने की, वो समंदम साबदम संसार की सावन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना, जग वालो हो जाऊं कर मैं दीवाना संदम सब। ये गाना सुनने की फरमाइश है सर।
0: बिल्कुल, चले आज आपको ये गाना हम आपको सुना देते हैं, बने रहिए रेडियो के साथ इसी तरह से, और हम आपको सुनाते हैं आपका पसंदीदा शो, आपका पसंदीदा गाना।
1: ओके सर,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, धन्यवाद। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जो हमने गाना सुना कुछ समय पहले, चाहे मार उठे या बाबा, चाहे कोई भी रूठे, जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्यार पर, अपने यार पर पूरा हक जता देता है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, जब दिल ने चुन लिया तो बस चुन लिया। डाग मूवी का ये गाना 1973 में आया था। हाँ, इसे किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर साहब ने अपनी आवाज़ से सजाया था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपना म्यूज़िक दिया था, और साहिल लुधियानवी जी के इसके पोल थे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले नगमे की ओर। अगला नगमा जो है यह भी बहुत ही प्यारा है, और सुनते हैं, ये रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने जो गाना सुना, तीसरी मंजिल का ये गाना, आशा भोसले जी की आवाज़, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, राहुल देव जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, आरडी बर्मन साहब, और मजरूल सुल्तानपुरी जी ने इसे लिखा था। जी हाँ दोस्तों, कभी जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, या फिर कई भी बार ऐसा होता है कि हम किसी को पहचान नहीं पाते, या कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि हाँ इसे पहचानने में हमने गलती कर दी, तो ये गाना हमेशा हमारे जुबान पे आता है और हर बार हम यही कहते हैं, अरे ओ मेरी सोना, मैं दे दूंगा जान, मुझसे खफा नहीं होना, तुझे ज़रा देर से जाना हुआ कसूर, खफा नहीं होना। या दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गाना है। उस वक्त के ये जो बोल होते थे ना, इतने आसानी से लोगों को समझ में आते थे, इतने आसानी से समझा देते थे अपने दिल की बातों को, कि कहीं ना कहीं वो समझ ही जाता था, इंसान सामने वाला इंसान समझ ही जाता था। चलिए ये जब हमने समझने की बात हो गई, खफा को रूठे को मनाने की बात हो गई, तो अब बढ़ते अगले नगमे की ओर, जो है कि शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। ये थी हमारे सुरेश जी की आज की फरमाइश। चले सुनते हैं ये उनका प्यारा सा नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

0: मैं हूँ सुनील खरे, मैं ग्लोबल हॉस्पिटल आबू रोड में काम करता हूँ। अब सुनिए आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन को 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: जी हाँ मदन लाल जी, चलिए आप इस वक्त लाइव पे है, मदन लाल जी हमारे साथ है और उन्होंने बहुत ही प्यारा अभी हमें गाना फरमाइश के रूप में कहा कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। जी मदन लाल जी, आपको सभी सुन रहे हैं।
2: गाड़ी आ रही है और गाना भी गा रहे थे
1: जी।
2: देखो गाड़ी जा रही है
1: जी।
2: तो एक मिनट, आवाज गाड़ी की बहुत है। हाँ तो हम हमारे सभी दोस्तों को सुनने वाले को प्रचार करते हैं, हमारे प्यारे प्यारे और सभी शो को। और हम गाना गा रहे थे कुली पीछे का, बड़ा अच्छा था सभी कुमार की आवाज में। और थोड़े से बोल रह गए थे तो हम वो गाने लाइन रह गई थी बाकी। थोड़ा पानी पिया याद रब को किया, प्यास भी बुझ गई भूख भी मिट गई। थोड़ा पानी पिया याद रब को किया, प्यास भी बुझ गई भूख भी मिट गई। प्यास भी बुझ गई ईद की छुट्टी मनाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। नमस्कार सर, गाड़ी आने के बाद में थोड़ा
1: कोई बात नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यार से कॉल करके पूरा गाना सुनाया और शुक्रिया बहुत बहुत मदला।
2: थैंक यू सर, फिर मिलते हैं कल।
1: बिल्कुल कल फिर मिलेंगे, कल फिर आपके गाने के लिए वेट करेंगे। थैंक यू,
2: शुभ रात्रि
1: जी। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे मदन लाल जी। और अभी जो हमने इससे पहले जो हमने गाना सुना, गाने के बोल तो जैसे ओ मेरे सोना रे सोना के बाद जब हम ऐसा कोई ये गाना सुनते हैं जहाँ पे जिंदगी का एक ऐसे मोड पर खड़े हो जाके जहाँ कभी कभी सब कुछ बिखर जाता है। दोस्तों हमारे शो का नाम है खुशी के नगमे दिल की बातें, और दिल की बातें हमेशा सिर्फ मुस्कराने वाली नहीं होती, कभी कभी दिल की गहराइयों में छुपा हुआ दर्द भी शब्दों के ज़रिए बाहर आ जाता है। ज़िंदगी में कई बार हम जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा संजा कर रखते हैं, या कई बार हम ऐसा होता है कि संजा कर रखते हैं वही हमारे हाथों से फिसल जाती है। उम्मीदें और ख्वाब सब कांच की तरह भी करते हैं, तो उसी की गुण सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसका दिल टूटा हो। जी हाँ दोस्तों, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है। कितनी बड़ी और गहरी बात आनंद बख्शी साहब ने इन दो लाइनों में कह दी। साल 1980 की सुपरहिट फिल्म आशा का ये सदाबहार नगमा, जिसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के संगीत निर्देशन में सशक्त सुरों को देवी लता मंगेशकर जी ने गाया था, जब वो गाती है तब लगता है जैसे हाथों से कोई सागर छूट ना जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। हमारे ओर से बुराराम जी ने हमें बहुत ही प्यारा सा एक नगमा पेश किया था, चंदन सा बदन। सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

हाय, मैं हूँ शबाब साबरी और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने सरस्वती चंद्रा मूवी का ये गाना सुना, कल्याण जी आनंद जी इसके जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे और गायक इसके मुकेश जी, लिखा था इसे इंद्रवर जी ने। जी हाँ दोस्तों, ये दो गायकियों में है, एक मेल वॉइस में है और एक फीमेल वॉइस में भी है ये गाना। जी हाँ दोस्तों, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कुराना, मुझे दोष न देना ए जगवाला हो जाऊँ अगर मैं दीवाना। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त किसी की मुस्कुराहट को देख करके भी लोग इतने दीवाने हो जाते थे कि यहाँ तक ही हो जाता कि मुझे दोष ना देना जगवालो अगर मैं हो जाऊँ दीवाना। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने के जो बोल होते थे, उन बोल में इतनी सच्चाई, इतनी सादगी, इतनी सफाई हुआ करती थी कि सामने वाले को अगर प्यार से ये दो शब्द बोल दे तो वो बिल्कुल से वहीं दीवाना हो जाते थे उन बोलों के। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जो हमारी फरमाइश थी हमारे मदन लाल जी की तरफ से, जो कह रहे थे कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। कूली मूवी का ये गाना शब्बीर कुमार जी की आवाज में। जी हाँ दोस्तों, शब्बीर कुमार जी उस वक्त उस समय में अमिताभ बच्चन जी के लिए बहुत से गाने उन्होंने गाए। उनकी आवाज़ भी उसी तरह की बुलंद जैसे अमिताभ जी की आवाज़ थी, और उसी तरह की बुलंद आवाज़ के लिए शब्बीर कुमार जी को कई गाने उन्होंने गाए हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की म्यूज़िक, आनंद बख्शीश साहब का लिखावट, और इस गाने की बहुत ही खूबसूरत बोल सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं कई बार। जी हाँ, ऐसी चीज़ें होती है जब हम कई बार कहते हैं कि हम लोगों का बोझ उठाते हैं, दुनिया का बोझ उठाते हैं। ये सिर्फ कूली तक की बात नहीं है कि उस वक्त कूली के लिए गाया था, लेकिन कूली तक की बात नहीं है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर ये गाना सूट होता है। जी हाँ दोस्तों, और एक चीज़ आपको ये भी बता दूँ कि एक समय था अमिताभ बच्चन जी जब रेडियो के लिए इंटरव्यू देने गए थे, उन्होंने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि उनकी आवाज़ रेडियो के लिए नहीं है, रेडियो की सूटेबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इसी आवाज़ ने आज पूरे बॉलीवुड में ही नहीं पूरी दुनिया में जादू मचा रखा है। बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, बैकग्राउंड में डबिंग हो, कुछ भी हो, अमिताभ जी की आवाज़, अमिताभ जी गाने भी काफ़ी गाए उन्होंने अपनी आवाज़ में। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि मेरा आवाज़ भी तो इतना मोटा है ना, क्या हो सकता है मेरे आवाज़ के लिए। बट देखिए, रेडियो में है और रेडियो में आप सभी को सुना रहे अपनी आवाज़। चलिए, आप सभी से लेते हैं इसी नोट पर विदा, फिर कल मिलने का वादा करते हैं। कल बुधवार है, हम कल फिर मिलेंगे ठीक 8 बजे इसी समय पर। तब तक आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो को। अगला जो कार्यक्रम है सहज स्वास्थ्य, बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। हम आपसे लेते हैं विदा। गुड नाइट, ओम शांति, शबा खैर, सायोनारा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। दोस्तों, सहज स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो आज यह चीज देखने को मिलती है कि स्वास्थ्य के बारे में अनेकों लोग अनेक प्रकार की राय रखते हैं। स्वास्थ्य के लिए अनेक पद्धतियां आज विश्व भर में व्यापक हैं। भारत में ही अगर हम देखते हैं तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद सबसे शिखर पर जाना जाता है। विश्व भर में आयुर्वेद की पहुंच है, उसका नाम है। आज हम एलोपैथी, होम्योपैथी, इन पैथीज को भी समझते हैं। साथ साथ भारत में सिद्ध, यूनानी, ऐसे अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं। अब इन सारी पद्धतियों का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ देना, उसके जो भी तकलीफें हैं उसे कम करना। और जब वैद्य इस बात को करता है, जब लोगों के कष्ट का वो निवारण करता है, तो यह उक्ति भी सुनने को मिलती है कि वैद्यो नारायणो हरिः, यानी वैद्य को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, उसे स्वयं नारायण का स्वरूप माना जाता है। वैसे भी अंग्रेजी में कहा जाता है कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड। भाव ये है कि स्वास्थ्य इतनी बड़ी पूंजी है कि अगर वो खो जाता है और उसे कोई व्यक्ति लौटा सकता है तो उसे ईश्वर के समान दर्जा देना, ये बताता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी पूंजी है हम सबके लिए। इस बात को समझकर उस स्वास्थ्य को खोने ही न देना, वो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहे, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, यही सहज स्वास्थ्य में हमारी चर्चा का विषय भी है। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में एक ऐसे ही वैद्य जुड़े हैं जिन्होंने एलोपैथी की शिक्षाएं ग्रहण की हैं। भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है। डॉक्टर राहुल मोदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो आज चर्चा के विषय पर पहुंचे उससे पूर्व वैद्यों की या चिकित्सकों की जो ऊंचे दर्जे की बात कही जाए या उन्हें ऊंची नजरों से जो समाज देखता है, वो शायद ही किसी और प्रोफेशन में देखने को मिले। हालांकि हम देखते हैं कि सैनिक भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, पुलिस वाले समाज की व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए मदद करते हैं। हर एक प्रोफेशन, भले वो शिक्षक का हो या किसी भी प्रोफेशन की अगर हम बात करें, तो हर एक को एक सम्मान जरूर है, मगर चिकित्सकों के लिए खास तौर पर उन्हें ईश्वर के नजदीक की उपाधि दी जाना, कभी कभार तो मरीज डॉक्टर को कह ही देते हैं, डॉक्टर साहब आप ही हमारे लिए भगवान हैं, ये कह देते हैं, तो क्या ये गौर करने वाली बात नहीं है कि आरोग्य कितनी ऊंची स्थिति है कि एक व्यक्ति अगर आपको आरोग्य वापस लौटा सके तो उसके लिए तो भगवान का दर्जा देना तो स्वाभाविक है।
1: सैनिक हमें सुरक्षा देते हैं और चिकित्सक हमें स्वास्थ्य देते हैं। जो पुरानी परंपरा थी, अगर हम इसे वैद्य में दें तो एक नगर वैद्य या एक गांव वैद्य की उपाधि मिलती थी, जो आदमी को पूरे शहर या पूरे गांव के बारे में मालूम होता था। ये कहा जाता था कि उस वैद्य को हर घर में क्या बीमारी है, कैसे लोग हैं, क्या उसको दिया जाए। यहाँ तक कि कुछ कहानियां भी हैं जिसमें वैद्य ये सुनता था, अच्छा उनके घर से आए हैं, ये बीमारी हुई होगी, उसको ये दवा दे दीजिए, बिना ये जाने, या ये औषधि दे दीजिए बिना ये जाने कि लक्षण क्या है। और यही चीज देखिए एलोपैथी में भी इस्तेमाल हुई, और वो शब्द इस्तेमाल हुआ फैमिली फिजिशियन। अब आप थोड़ी हमारी पुरानी बॉलीवुड की पिक्चर देखेंगे कि कोई बीमार होता था तो एक सूटकेस या एक रेक्टेंगुलर लेदर का डब्बा लिए एक बैग डॉक्टर साहब घर आते थे और वो एक बड़ी पुरानी लाइन बोलते थे, मैंने देख लिया है, बुखार उतर जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, कुछ दवाइयां लिख दिया हूं ले आइए। आपने एक और चीज नोटिस की होगी इन पुराने चीजों में, वो कहीं भी किसी टेस्ट की या ये मैं जांचे लिख दिया हूं करा लीजिए, या मैं एक्सरे लिख दिया हूं करा लीजिए, इसके बारे में वो कोई बात नहीं करते थे। जो एक पुरानी पद्धति थी कि मरीज से बात किया जाए, इसको इंग्लिश में हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं, हाँ, फिर उसके बारे में उससे बातचीत करके ही उस हम लोग निष्कर्ष तक पहुंचे कि उसको क्या बीमारी है। फिर मॉडर्न साइंस डेवलप हुआ तो हम छू कर तापमान देख लालिमा है, टेंशन है, ये देखकर, और जब स्टेथोस्कोप बना तो लोगों ने आला रख के छाती पे देखा। हमारे पुराने वैद्य लोग तो इतने माहिर थे, हमारे यूनानी के जो जानकार थे वो इतने माहिर थे कि वो नब्ज देखकर बीमारी बताते थे। और मैंने यहां तक सुना है कि पुराने वैद्य जो महिलाओं को छूते नहीं थे, वो एक तागा बांध कर उसको छू के बता देते थे कि क्या है। ये कभी मैंने देखा नहीं, बट हाँ सुना है। एक इंग्लिश कहावत भी है, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। तो वो समथिंग को जो आपको वापस कर सकता है उसकी बड़ी इज्जत थी। और एक मजबूत शरीर ही सबसे लड़ सकता है, वो परिस्थितियों से लड़ सकता है, पर्यावरण में लड़ सकता है, एवं जो भी मानसिक या शारीरिक कष्ट है उनसे लड़ सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत है स्वास्थ्य की। और अगर नागरिक स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा। कहा जाता है ना, एक बीमार आदमी को गिराना बड़ा आसान है। तो इसीलिए अगर हमें अपने देश को मजबूत करना है तो हमें अपने देश को स्वस्थ रखना है और बीमारियों से बचा के रखना है।
0: जब आप ये बात कहते हैं कि एक नागरिक के स्वस्थ रहने से देश स्वस्थ रहेगा, तो महात्मा गांधी की ये बात याद आती है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होगा, तो शायद हम स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई अच्छी भागीदारी ले भी नहीं सकते, ना कुछ हम कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही एक जागरूकता रही है कि राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर राष्ट्र के लोग स्वस्थ हैं तो वही राष्ट्र की ताकत है।
1: हेल्दी बॉडी एज हेल्दी माइंड। और हर बड़े से बड़ा डिसीजन पहले दिमाग से लिया जाता है। अभी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें टॉप 20 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में था, और मुझे जान के ये अच्छा लगा कि उन टॉप 20 में से 15 आर टेक कंपनीज। मतलब जो सिर्फ दिमाग दे रही हैं, वो कुछ गैजेट बना रही हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर बना रही हैं, वो कुछ प्रोसेसेस बना रही हैं, जो तो ये सोचिए दिमाग की कितनी वैल्यू है। और अच्छा दिमाग एक मजबूत शरीर में ही रहता है।
0: अब इस शरीर के स्वास्थ्य को मजबूती देने के लिए, ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, इन चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है, इस पर हम चिंता करते हुए आ रहे हैं। कई लोग इन चिंतनों को सुन रहे हैं तो हमारे इन चिंतन की धाराओं से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लिए ले रहे हैं। पिछले दिनों जब हम बातचीत कर रहे थे कि आहार कितनी बड़ी भूमिका निभाता है शरीर को स्वस्थ रखने में, और अगर हमें यही ना पता हो कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो फिर हम अपने शरीर के साथ बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं और हम अपने ही स्वास्थ्य को खोने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये बात बताई थी कि विटामिन्स शरीर में कुछ ऐसा काम करती हैं जिसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये भी आपने बताया था कि विटामिन्स बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, मगर वो कम मात्रा में भी अगर वो ना हो शरीर के अंदर, अगर वो ना मिले, तो स्वास्थ्य कितनी जल्दी बिगड़ सकता है। आप ये बात कह रहे थे। विटामिन ए के बारे में हमने जानकारियाँ हासिल की हैं, एक और विटामिन के बारे में आप आज हमें परिचय कराएं कि कौन सा ये विटामिन है जिसके बारे में हमें और ध्यान रखना है और समझना है।
1: हमारी विटामिन की श्रृंखला में हम लोग पहले उन विटामिन्स के बारे में बात कर रहे हैं जो फैट सॉल्युबल है, जो वसा में घुल जाते हैं। तो हमने पहले विटामिन ए के बारे में बात की, और ए को हम जोड़ते हैं हर नारंगी चीज से, और अगर हमारा ए गड़बड़ है तो हमारी नज़र गड़बड़ हो जाएगी। और तो हमको कोशिश करना चाहिए कि विटामिन ए पूरा करने के लिए हमको जो भी नारंगी चीज़ें हैं और स्पेशली गाजर, उसका हमें सेवन करना चाहिए। इसी श्रृंखला में विटामिन नंबर दो विटामिन डी, और ये मैजिकल विटामिन है। ये सबसे ज्यादा जिसके बारे में बात होती है मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल कम्युनिटी में, वो विटामिन डी है। और इसके बारे में इसलिए इतनी बात होती है क्योंकि ये मुफ्त में मिलता है और ये प्रकृति से मिलता है, और इसको अगर हम इसे धर्म से जोड़ के देखें तो ये सूर्य का आशीर्वाद है। इसकी कमी से जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं सिर्फ धूप सेकने से ठीक हो जाती है। विटामिन डी जो है, इसकी सिंथेसिस, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, इसके बारे में छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा कमी अगर किसी विटामिन की पूरी दुनिया में है तो वो विटामिन डी। ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसमें सूर्य का प्रकाश विटामिन डी नहीं है, मगर वो इसको बनाने में हमारा मदद करता है। जो सूर्य की किरणें हैं वही विटामिन डी को बनाने की शुरुआत करती हैं, और मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन इन दिस होल वर्ल्ड इज डेफिशिएंट ऑफ विटामिन डी।
0: ये बड़ी मजेदार बात लग सकती है डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि भाई ये विटामिन मुफ्त है और ये विटामिन के लिए कोई पैसा खर्चना नहीं है, प्रकृति से मिलता है, सूर्य के किरणों से ये चीज बनता है। चलिए गाजर के बारे में आप कह रहे थे, विटामिन ए गाजर तो फिर भी खरीदना पड़ेगा ही, कभी सूरज की रोशनी खरीदने की नौबत तो नहीं आई। जब ये मुफ्त में मिल रहा है, सूरज हर दिन दुनिया के हर कोने में सूरज की रोशनी पहुंच रही है, तो ये बड़ी मजेदार बात लगती है कि अगर दुनिया की 60% आबादी, आधे से ज्यादा आबादी को अगर इस विटामिन की कमी है, तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है जो मुफ्त में मिलते हुए भी हम कोई चीज को नहीं ले रहे। वरना तो हम सबको तो आदत है, कोई चीज मुफ्त है तो लोग पहले से हथिया लेते हैं।
1: भैया मजाक में तो ये तक कहा जाता है कि अगर जहर मुफ्त में मिल रहा तो वो भी रख लो, पता नहीं किस दिन काम आ जाए। इसको दो भाग में बांट लेते हैं। जिन जगहों पर

0: था। तो सबसे बड़ा पहला जो कारण है कि इसकी दुनिया में कमी है, एक जिन देशों में सूर्य का प्रकाश कम मिलता है, कुछ ऐसे देश भी हैं जैसे आर्कटिक सर्कल के पास जहां 6 महीने दिनों 6 महीने रात होती है, तो वहां इसकी कमी। दूसरा जो सबसे कॉमन कारण इसका ये है कि हम सब घर में बंद हो गए हैं, हमारी गाड़ी भी बंद है उसमें भी एसी है, हमारा घर भी बंद है उसमें भी एसी है, और हम जहां काम कर रहे हैं वो भी बंद है उसमें भी एसी है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये सन रेज की बात हो रही है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो आपके शरीर के ऊपर पड़ना चाहिए, न कि एक कमरे में आप बैठे हैं और वो थोड़ा सा आपको उजाला दिख रहा है तो वो गलत है। इट इज डायरेक्ट सन रेस। तीसरी जो सबसे बड़ा कारण है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये प्रकाश कहां लगना चाहिए। लोग सोचते हैं कि मेरे चेहरे तो थोड़े सूर्य का प्रकाश पड़ गया, मेरे हाथों के ऊपर पड़ गया और हमको सनलाइट मिल गई। नहीं, ये आपकी पीठ पे पड़ना चाहिए और खासकर ऊपरी पीठ पर। और अगर आपको डायरेक्ट सनलाइट आपकी पीठ पे पड़ेगी तभी आपके विटामिन डी सिंथेसिस में ये आपका सहयोग करेगी। एक बात समझिए कि हम और आप धूप में घूमने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले टोपी लगाते हैं। अच्छा, महिलाएं तुरंत अपने चेहरे पे सनस्क्रीन लगा लेती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आजकल तो चुन्नी से वो अपने आप को ऐसे ढक लेती हैं कि जैसे जो हमारे पुराने जमाने में हम लोग डाकू दिखाते थे कि पूरा चेहरा ढका हुआ है। अच्छा, हाथों में सब ग्लव्स पहन लिया जाता है और हर आदमी इस होड़ में पड़ा हुआ है कि कैसे वो अपने शरीर को सूर्य के प्रकाश से बचा ले। हमने शाम को खेलना बंद कर दिया, हर बच्चा पहले दौड़ रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, जो कॉलोनी सिस्टम था हमारा वो खत्म हो गया। तो सूर्य का प्रकाश मिल ही नहीं रहा है लोगों को। मैं सबको एक सजेशन देता हूं जो मैं खुद करता हूं कि मैं सुबेरे जब सूर्य को जल चढ़ाता हूं तो चढ़ाने के बाद अपनी पीठ सूर्य की तरफ करके करीब 5 से 7 मिनट तक खड़ा हो जाता हूं और इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे जो विटामिन डी का जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है। अगर आप गोरे हैं तो आपकी विटामिन डी की जरूरत जल्दी पूरी होगी और अगर आप डार्क स्किन्ड हैं तो आपके त्वचा में मेलानिन जो एक पिगमेंट होता है जो आप हमें त्वचा का रंग देता है वो अगर ज्यादा है तो आपको सूर्य का प्रकाश आपकी जो त्वचा है वो कम एब्जॉर्ब करेगी। तो आपको ज्यादा देर सूरज की किरणों में रहना पड़ेगा। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा सूरज सबसे अच्छा है, किस समय का सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा सूर्य का प्रकाश या तो सुबेरे 9 बजे के पहले है या शाम को 5 बजे के बाद का है गर्मियों के मौसम में। और ठंडक के मौसम में जब भी आपको प्रकाश मिले आप इसको जरूर लीजिए।
1: जब आप ये बात कहते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये तो एक कॉमन सी बात होनी चाहिए, ये तो एक सामान्य प्रज्ञा की बात है कि हर व्यक्ति कॉमन सेंस से समझ सकता है कि भाई ये सूरज की रोशनी मिल रही है तो उसको लेना चाहिए। मगर जैसे आपने कहा कि कमी होने के कारण क्या है, क्योंकि हम अपने आप को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं, हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं, सूरज की रोशनी में खेल कूद नहीं रहे हैं, बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, हम एसी में हैं, बंद कमरों में हैं, बंद गाड़ियों में हैं, तो सूरज की रोशनी अगर पड़नी भी चाहिए तो हमारी त्वचा पूरी तरीके से ढकी हुई है। तो अब ये तो बात समझ में आती है कि हाँ, कम से कम 5-7 मिनट तो सूरज की रोशनी लेनी है सुबह शाम का समय आपने बताया। साथ में ये भी बताएं कि किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये भी पता रहे।

0: सबसे जो जरूरी प्रिकॉशन है कि आपकी पीठ पूरी तरह से खुली रहनी चाहिए। कुछ माताएं बहने कुछ लड़के ये बोलते हैं कि हमने पतली चुन्नी अपने पीठ पर डाल ली। मैं सबको बोलता हूं कि हमको सन लाइट चाहिए, सन की हीट नहीं चाहिए, हमें सूर्य की गर्मी नहीं महसूस होनी चाहिए, हमें नहीं होनी चाहिए, हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपकी त्वचा चुनचुनाने लगे, आपको खुजली होने लगे, आपको इरिटेशन होने लगे, तो प्लीज आप सूर्य के प्रकाश से हट जाइए। और तीसरा, आप करीब आधा गिलास पानी पी के सूर्य का प्रकाश लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा, क्योंकि जो पानी है वो पसीने के रूप में आपकी त्वचा को बचा के रखेगा और हल्का ठंडा करेगा। तो आप सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक ले पाएंगे। गर्मियों में दोपहर 12-1 बजे जब एकदम बुरी तरीके से सूर्य अपना प्रकाश दे रहा है, उसमें बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करना चाहिए कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो जाए। तो सुबेरे का सूर्य और शाम का सूर्य का प्रकाश गर्मी के लिए, और ठंड में आप पूरे दिन में कभी भी ले सकते हैं। हाँ, ठंड में जब आप सूर्य का प्रकाश ले रहे हो तो प्लीज अपना स्वेटर उतार दीजिए, अपनी पीठ को थोड़ा खोल दीजिए, और ये एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि थोड़ा हाथ पे पड़ गया तो मुझे मिल गया, थोड़ा चेहरे पे पड़ गया तो मुझे मिल गया, थोड़ा मेरे पैरों पे पड़ गया, ये नहीं है, उसको पीठ पे ही चाहिए। आप देखिए कितने विदेशी समुन्दर किनारे वो अपनी पीठ सूर्य की तरफ करके लेटे रहते हैं, किताब पढ़ते हैं और लेट जाते हैं रेत में। वो सिर्फ इसीलिए कि वो अपनी विटामिन डी की पूर्ति कर लेते हैं, कि ठंडक के समय में वो अपने शरीर को बचा के रखेंगे। ये फैट सॉल्युबल है तो ये लिवर में आपकी स्टोर हो सकता है, इसीलिए अगर आप सूर्य का प्रकाश लेते रहेंगे तो आपके शरीर में ये बना रहेगा।
1: वैसे विटामिन डी के बारे में बात करते हुए ये बात समझ में आ रही है कि ये फ्री में मिल रहा है, शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और कैसे इसे लेना है ये बात समझ में आई है। दोस्तों, मेरे मन में प्रश्न तो ये है कि विटामिन डी के फायदे क्या हैं, क्यों जरूरी है, नहीं लोगे तो क्या होगा, ऐसे आपके मन में भी होंगे ऐसे मैं समझता हूँ, मगर घड़ी इशारा करती है कि यहाँ रुकना होगा। तो मैं डॉक्टर साहब से इन प्रश्नों को अगली कड़ी में मैं जरूर पूछूंगा, मगर आज विटामिन डी के बारे में जो जानकारी मिली है उसे लेने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है, ये भी हम सबको पता चला है, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और अगर आपको फिर भी आप आगे पीछे सोच रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, तो याद रखिए मुफ्त में मिल रहा है, तो जल्दी जाइए और सुबह शाम इस विटामिन को अपने शरीर के लिए जो आवश्यक है उसको लेने की शुरुआत करें। आज की बातचीत में इतना ही दोस्तों। आज हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर डॉक्टर राहुल मोदी जी ने दिया, तो आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में विटामिन डी की अहमियत को समझा, उसका स्रोत क्या है और कितना समय हमें ये सूर्य की रश्मि में खड़े होकर सुबह और शाम, या सर्दियों के दिनों में दिन भर कम से कम 5 से 7 मिनट हम अपनी पीठ पर सूरज की रोशनी गिरे, इस बात का ध्यान रखना है ताकि हमें ये विटामिन डी की कमी ना महसूस हो। आगे की कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आज की जय।
1: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माँ खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: हेलो बच्चों, चलो चलो आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी और परी आ गए हैं लेकर के आपका पसंदीदा कार्यक्रम
3: सपनों की सैर। और आजकल हमारा सिलसिला चल रहा है सवालों के जवाब देने का, जो बच्चे हमें पूछते हैं।
2: हाँ परी, और बच्चों की समस्याएं भी कुछ कम नहीं है, है ना? छोटी छोटी चीजें जो होती है बच्चों, कभी कभी बड़ी होकर और बड़ी बात बन जाती है। इसीलिए अभी ही ये सब बातें अपने मन से आप निकाल दिया करो।
3: अब देखो पिंकी ने कैसा अच्छा सवाल पूछा है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता।
2: ऐसी कोई बात नहीं है पिंकी, दूसरे पसंद करें ये जरूरी नहीं है, पहले तो हमें खुद को पसंद करना सीखना पड़ेगा।
3: हाँ, और अगर किसी से दोस्ती करनी हो तो पहले मुस्कुराओ, दूसरों की मदद करो और अच्छे व्यवहार रखो।
2: हाँ, जब अच्छा व्यवहार करोगे, सबकी मदद करोगे, कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट दोगे, कुछ शेयर करोगे, तो खुद आकर के सभी आपके दोस्त बनने लगेंगे, सहेलियाँ बनने लगेंगे आपके स्कूल में भी।
3: हाँ, तो ये नुस्खा ट्राई करना और फिर हमें जरूर बताना, ठीक है ना पिंकी? और चलो अब कहानियों की बारी शुरू होने वाली है, तो हम चलते हैं। हम इस छोटे से गाने के बाद फिर आएंगे,
2: छोटे से ब्रेक के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,
3: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर,
2: सपनों की सैर को।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: बच्चों चलो बैठो रेडियो के पास, फिर से कहानी शुरू कर रही है परी। और आज भेड़ चराने वाले लड़के की कहानी सुनेंगे जिसके साथ एक भेड़िया भी है। एक भेड़ चराने वाला लड़का था, रोज भेड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था। जंगल में वो अकेला रहता था, इसलिए उसका मन नहीं लगता था। एक दिन उसे मजाक करने की सूझी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया भेड़िया आया। आसपास के खेतों में किसान काम कर रहे थे, उन्होंने लड़के की आवाज सुनी और अपना अपना काम छोड़कर लड़के की मदद के लिए दौड़ पड़े। जब लड़के के पास पहुँचे तो उन्हें कहीं भी भेड़िया नहीं दिखाई दिया। किसानों ने लड़के को पूछा, भेड़िया तो कहीं है नहीं, तुमने हमें क्यों बुलाया? तो लड़का हंसने लगा और कहा, मैं तो मजाक कर रहा था, भेड़िया तो आया ही नहीं था, जाओ जाओ तुम काम पे लग जाओ। किसानों ने लड़के को खूब डांटा फटकारा, इसके बाद लौट गए। बच्चों एक बार लड़के ने फिर ऐसा मजाक किया, आसपास के किसान मदद के लिए दौड़ आए। लड़के के इस मजाक पर उन्हें बहुत गुस्सा आया, लड़के को फिर से डांट फटकार कर चले गए। बच्चों कुछ समय बाद एक दिन सचमुच भेड़िया आया, सोचो क्या हुआ होगा। और भेड़ चराने वाला लड़का दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, बच्चों सोचो क्या हुआ होगा। और इस बार उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया, सभी ने यही सोचा कि ये बदमाश लड़का पहले की तरह मजाक कर रहा होगा। भेड़िया ने कई भेड़ों को मार डाला, इससे लड़के को अपने किए पर बड़ा दुख हुआ। तो बच्चों झूठे आदमी की सच्ची बातों पर भी लोग विश्वास नहीं करते, ये कहानी हमें समझाती है। इसलिए कभी भी ऐसा मजाक नहीं करना जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, और हमेशा सच बोलना। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों के।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, मनी दीदी तो आ गई। अभी आपने तो परी की कहानी सुन ली, अब मनी दीदी से किताब भी तो पढ़कर सुननी है ना। और आपको तो पता ही है मनी दीदी लेकर आती है तेनाली राम की अनोखी दुनिया की किताब, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जिसमें तेनाली राम को ये चुनौती मिली है कि दो स्वर्ण पिंड है, एक भारी और एक खाली यानी कि हल्का, तो बिना छुए सिर्फ देखकर कैसे बताएगा तेनाली कि दोनों में से कौन सा भारी है और कौन सा खाली है। तो चलो बिना देर किए मैं किताब पढ़ना शुरू करती हूँ। तेनाली राम ने तो सभी सभासदों को एक बार और पूछा कि क्या कोई और है जो ये पहेली हल करना चाहता है, लेकिन किसी ने सहमति नहीं दी। और फिर व्यापारी से भी पूछा तो व्यापारी ने घोषणा की वह अपने प्रस्ताव की वापसी नहीं चाहता है। अंततः तेनाली राम ने अपने आसन पर बैठे बैठे ही ऊंचे स्वरों में कहा, महाराज आपकी बाएं भुजा की ओर टंगा स्वर्ण पिंड ठोस है और दाएं भुजा की ओर टंगा स्वर्ण पिंड खोखला है। तेनाली राम का स्वर इतना तेज था कि उसे सभी सभासदों ने सुना और व्यापारी सोमदत्त के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ने लगी। फिर भी उसने तेनाली राम से कहा, ये दाएं बाएं कहने से समस्या का सही हल नहीं हो सकता, आप ठोस पिंड के पास पहुंचकर बताएं कि यह ठोस है। तेनाली राम तत्परता से अपने आसन से उठा और महाराज के बाईं तरफ के पिंड के पास पहुंचकर कहा, महाराज ये स्वर्ण पिंड ठोस है। क्यों व्यापारी सोमदत्त, तेनाली राम का हल सही है? महाराज कृष्णदेव राय ने पूछा। जी हाँ महाराज, ऐसा कहकर व्यापारी ने दोनों स्वर्ण पिंड उतारे और उसे अपने पास में रखकर उसे महाराज को सौंप दिया। महाराज अब इन स्वर्ण पिंडों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। महाराज ने स्वर्ण पिंडों वाली जो संदूक थी वो थामते हुए कहा, हाँ अब इन स्वर्ण पिंडों पर तेनाली राम का अधिकार है। तो बच्चों चलो भाई, अब तेनाली राम ने तो गुत्थी सुलझा दी और सही जवाब दिया कि कौन सा स्वर्ण पिंड भारी है और कौन सा हल्का है, और उसे तो उन दोनों स्वर्ण पिंडों का बॉक्स भी मिल गया। तो अब आगे तेनाली राम बताएंगे कि कैसे उन्होंने ये युक्ति सुलझाई, तो वो हम जानेंगे अगली घड़ी में। तो चलो भाई अभी तो समय हो रहा है प्यारा सा गाना सुनने का, तो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: फिर से रेडियो के पास, याद है ना पिछली कड़ी में हमने आपको पूछा था कि एफर्मेशन को आप हमें वॉइस नोट करके भेजो, तो देखा मनी दीदी कितने सारे बच्चों ने हमें वॉइस नोट भेजे हैं।
3: हाँ परी, तो चलो चलो बच्चों की ही प्यारी प्यारी आवाजों में ये एफर्मेशन सुनते हैं।
2: बिल्कुल मनी दीदी।
4: मैं हूँ चांद सा प्यारा, सपनों का हूँ सितारा, मेहनत से मैं चमकूंगा, हर मुश्किल को मैं हराऊंगा।
5: मैं हूँ चांद सा प्यारा, मैं हूँ सपनों का सितारा, मेहनत से मैं चमकूंगा, हर मुश्किल को मैं हराऊंगा।
2: तो चलो बच्चों, एफर्मेशंस तो बहुत प्यारी प्यारी आवाजों में हमने सुना, अब नोट कर लो आज की पहेली। कभी सफेद तो कभी रंगीन, कागज पर मैं दिखूं, बच्चों के हाथ में खेलूं, चित्र बनाकर सबको खुश करूं।
3: अच्छा, कभी सफेद तो कभी रंगीन, कागज पर दिखता है और बच्चों के हाथ में खेलता है, इससे हम चित्रों में रंग भरते हैं और सबको खुश करते हैं। चलो चलो सही जवाब क्या है हमें जल्दी से 9414 1415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: हाँ, और याद है ना भगवान जी को सॉरी और थैंक यू लिखना मत भूलना।
3: हाँ बच्चों, तो चलो अब करते हैं गुड नाइट।
2: Sleep tight. Goodbye. सुनते रहिए,
3: मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन
3: 107.8 FM पर।

जो हम सुनेगा ये जहां, कहेंगे जो हम सुनेगा ये जहां, मिलकर जो

तो आज महेश नवमी है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और ये माहेश्वरी समाज का बहुत बड़ा त्यौहार है। आज के दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति हुई है, इसलिए महेश नवमी के रूप में इसको मनाया जाता है। स्वागत है उस पावन बेला का जो गौरव का संदेश लाती है। महेश जयंती की शुभ घड़ी हर हृदय में खुशियां जगाती है, हर हृदय में खुशियां जगाती है। तो महेश नवमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। भक्ति करो तो ऐसी करिए कि जिसमें ईश्वर के दर्शन हो जाए। कैसे, जरा विचार करेंगे। और जी हाँ, ये हमारे हाथों की 10 उंगलियां है, इसके कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे हाथों के द्वारा कि बहुत सारी बीमारियों पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो आज हाथों के सूक्ष्म व्यायाम आप सीखेंगे, और जी हाँ, खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे। और व्यंजन भला कैसे भूल सकते हैं, आज मैं अपनी पसंद की रेसिपी सिखाऊंगी। हमेशा आपकी पसंद पूछती हूँ, आप बताते नहीं हैं, तो आज मैं अपनी पसंद की रेसिपी सिखाने वाली हूँ। उसका नाम अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा इंतजार करिए, सुनिए कार्यक्रम, जान जाएंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत सुंदर रहेगा, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुनः आप सभी को महाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का सुंदर सा विचार है, भक्ति करो तो ऐसी करिए कि ईश्वर के दर्शन हो जाए, ईश्वर के समीप पहुंच जाए। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता, मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बस फिर बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब या 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन वहां से चले जाते हैं। और ऐसे कह के चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने इष्ट पर, अपने शिव पर, कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी, देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया, और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वे बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और

बाद आया हूं, तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रहे हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगछाल पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शंकर के दर्शन कर लिए है। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार। कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधु कि ईश्वर भक्ति करनी ही है तो सच्चे हृदय से करिए, ताकि हम ईश्वर के समीप पहुंच जाए। और अब फिर से सुन लेते हैं एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: aware and follow this true path of what Brahma Kumari teaches of only love and peace. God bless humanity. God bless the Brahma Kumaris.
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना कार्यक्रम में बात करते हैं हमारे हाथों की पांचों उंगलियों और उनसे जुड़े पंच तत्वों के योग और एक्यूप्रेशर। परंपरा में माना जाता है कि हर उंगली एक विशेष तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, तो मैं आपको अब हाथों के सूक्ष्म व्यायाम सिखाने जा रही हूँ। देखिए, हमारे ऋषि मुनि भी क्या गजब के है, कथा कीर्तन करते हैं, बीच बीच में कहते हैं ताली बजाओ। कितने सारे फायदे, एक तो नींद नहीं आएगी जो भी सुना रहे ध्यान से सुनेंगे, दूसरा है ताली बजाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां खत्म होगी। इसलिए ऋषि मुनियों को कम नहीं आंकना है। तो हाथों के सूक्ष्म व्यायाम में पहले तो ताली ही बजानी है, और ताली ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऐसे नहीं, कड़क दोनों हाथ रख करके इतने अच्छी तरह बजानी है कि हमारे हाथ के जो हथेलियों के जो भी ये नसें है, ये सब पॉइंट है, ये दबे, इसलिए जोर से बजानी है। ठीक है, तो आप कथा कीर्तन में भी जाओ या कोई भी प्रोग्राम देखो और ताली बजाओ, थोड़ी जोर से बजा देना। धीरे धीरे बजाओगे तो पॉइंट नहीं दबेंगे, ठीक है। इसलिए बजा ही रहे हो तो अच्छी तरह बजाइए। तो तालियां बजानी है पहले। एक्सरसाइज क्या फायदा है वो मैं जरूर आपको बताऊंगी बाद में कि भाई कौन सी उंगली का कौन सा फायदा है। तो पहले तो आप ताली बजाइए। दूसरा, आप अपने अंगूठे को नीचे की ओर करिए और अच्छी तरह दूसरे हाथ से घुमाइए, उसको रगड़िए, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी रगड़िए, ऐसे सभी उंगलियों को, ठीक है। दो दो मिनट सभी पर दीजिए। और तीसरा है एक्सरसाइज, अपने हथेलियों को खुला रखिए, उंगलियों को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, ठीक है, और एक उंगली के अंदर दूसरे हाथ की उंगली जाए, ऐसे आप करके दोनों जैसे ताली बजाते हैं ऐसे अब इन पॉइंट को दबाइए। उंगलियां एक दूसरे में फंसनी चाहिए और जोर जोर से करिए, ठीक है, इससे भी पॉइंट दबेगा। तो ये तीसरी हो गई। चौथी ये कि अब आप है ना, ये हथेली के पंजे उंगलियां है ना, उंगलियों के ऊपर का अग्रसर भाग है, तो दोनों हाथों को ऊपर से ताली बजाइए। मतलब ताली बजाते ऐसे स्थिति में आप एक दूसरे पर बड़ी किया, ठीक है, लेकिन ताली नहीं बजनी चाहिए। ये जो हथेलियों के फर्स्ट जो ये होते हैं टेरवे, इनको आप है ना जो ये एक दूसरे से दबने चाहिए, इस तरह बजाइए। फिर आगे के एक्सरसाइज है, ये हमारे हथेलियों के बीच चारों तरफ ये जो उभरे हुआ भाग है ना, इसको पर्वत भी कहते हैं। इन पर्वत को भड़ी के एक दूसरे पर ताली नहीं बजानी है, उभरे हुए भाग को आप जोर जोर से दोनों हाथों से इस तरह भड़ी के, ठीक है। और अब नीचे की तरफ आइए, हथेलियों के नीचे की तरफ। नीचे की तरफ उभरा हुआ भाग है क्योंकि ऊपर ताली बज गई है, ऊपर हमने पॉइंट दबा दिया एक दूसरे को भड़ी करके, लेकिन नीचे का अभी अच्छी तरह नहीं भड़ी पा रहे। तो अब नीचे की तरफ आइए और नीचे की तरफ आप एक दूसरे को इस तरह भड़कीएगा, ठीक है। तो और जैसे बुजुर्ग है वो तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, वो ये एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक हाथ को आप ऐसे उल्टा कर दीजिए, दूसरे हाथ के उंगलियों को उंगलियों में फंसा करके अब यहाँ घिसिए, नीचे इनको घिसिए, तो इससे भी पॉइंट दबेगा और बहुत सारी बीमारियां ठीक होगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। फिर लास्ट का है, आप एक हाथ को अच्छी तरह पूरी तरह नीचे लटका दीजिए, दूसरे हाथ से आप हाथ के जॉइंट के यहाँ आप दबाइए और घिसिए पूरे हथेली को, पूरी हथेली को आपको घिसना है। धीरे धीरे जॉइंट से आना है नीचे की ओर, फिर ये उंगलियों का जॉइंट एंड ये सब आप घिसिएगा, इस तरह दोनों हाथों को घिसना है, ठीक है। तो ये है सूक्ष्म व्यायाम। अब अंगूठा, जिसका अग्नि तत्व का प्रतीक है, अंगुष्ठ कहते हैं इसको, तो ये पाचन शक्ति, ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म से जुड़े माना जाता है। अग्नि तत्व संतुलित रहने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, ठीक है, वो कहते ना हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, एक तत्व भी गड़बड़ करेगा तो बीमारी आनी है, स्वाभाविक है, इसलिए पांचों तत्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। पांचों तत्व का बैलेंस तभी रहेगा जब एक तो हम खान पीन का ध्यान रखेंगे, दूसरा व्यायाम का। तो अंगूठा इस तरह फायदा करता है। फिर दूसरी उंगली है अंगूठे के पास वाली तर्जनी। तर्जनी उंगली को वायु तत्व का प्रतीक माना जाता है। यह मन की चंचलता, जोड़ों और शरीर की गतिशीलता से जुड़ी हुई मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मन की चंचलता खत्म होगी, जोड़ों में लाभ मिलेगा और शरीर की मतलब शरीर भी गतिशील रहेगा। ठीक है, अब सबसे लंबी उंगली है जिसको कहते हैं मध्यमिका। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। तो इससे फायदा यह है कि मानसिक संतुलन, एकाग्रता और आंतरिक शांति से संबंधित इस उंगली को माना जाता है। तो मानसिक संतुलन बना रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी और मन हमारा शांत रहेगा। अब है अनामिका जो मध्यमिका के पास वाली है। अनामिका यह पृथ्वी तत्व के प्रतीक है। यह शरीर की मजबूती, सहन शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। तो शरीर को मजबूत बनाता है, सहन शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है और हमारा मन स्थिर रहता है। इतना फायदा है। फिर है कनिष्ठा, चिट्टी उंगली जिसको कहते हैं कनिष्ठा। यह जल तत्व का प्रतीक है। यह शरीर में नमी बनाए रखती है, त्वचा और संतुलन से जुड़ा माना जाता है। त्वचा भी इससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, ग्लो वाली, और बॉडी का संतुलन बना रहता है। और कुछ लोकप्रिय मुद्राएं उनका लाभ भी है। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाइए, माना जाता है इससे एकाग्रता और मानसिक शांति भी बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारे है ध्यान मुद्रा। अंगूठे और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाइए जैसे मैंने आपको बताया था, तो इससे एकाग्रता और हाँ मानसिक शांति बढ़ती है। प्राण मुद्रा से स्फूर्ति आती है, वायु मुद्रा से संतुलन हमारा बना रहता है, पृथ्वी मुद्रा से शक्ति बढ़ती है। अंगूठा और अनामिका को मिलाइए, इस शरीर की स्थिरता और शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा माना जाता है। अंगूठा और तर्जनी उंगली को ऐसे ऐसे मिलाना है। तो कहते ना कि भाई हमारे हाथ केवल कर्म के साधन नहीं, स्वास्थ्य के संकेत भी है। दिन में कुछ मिनट सही मुद्रा का अभ्यास करिए, सकारात्मक सोच रखिए और स्वस्थ जीवन के ओर कदम बढ़ाइए। तो ध्यान दीजिए, मुद्राएं और एक्यूप्रेशर पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियां है। यदि कोई बीमारी गंभीर हो या लगातार बनी रहती है तो आप योग्य चिकित्सक से सलाह लीजिएगा। बाकी आप व्यायाम जरूर करिएगा। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको सिखाई है, जरूर ध्यान दीजिएगा। हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: जी जय श्री हरि, नमस्कार, स्वागत आपका।
2: रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की जरूर शुभकामना मंगल कामनाएं
1: जी।
2: और कैसे हो दीदी?
1: हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
2: बस हम भी अच्छे हैं। आज क्या
1: आज का प्रश्न है? आज महेश जयंती है, माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है?
2: अच्छा, वो तो हम मैं ऑफलाइन ठीक है
1: ठीक है ठीक है,
2: चलिए
1: चलिए, बहुत बहुत आभार आपका।
2: विषय क्या है?
1: विषय अभी बहुत जल्दी रखेंगे, अभी नुस्खे पूरे हुए हैं। ठीक है
2: ठीक है ठीक है,
1: हाँ जी, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से, और आइए अब यहाँ पर एक गीत सुन करके चलिए। प्रश्न वैसे सुरेश भाई को बताया, आपको भी बता देती हूँ, माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है, ये आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: महेश वंश की गौरव गाथा सदियों से जग में छाई है। संस्कार सेवा और समर्पण की यह अनुपम ज्योति जगाई है। संस्कार सेवा और समर्पण की यह अनुपम ज्योति जगाई है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में अब विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महेश जयंती ही मनाते, हर समाज की उत्पत्ति दिवस को मनाते हैं हम, है ना। अपने अपने समाज के उत्पत्ति दिवस को सभी मनाते हैं। तो आज हम विषय यही लेंगे कि देखिए, हम समाज के उत्पत्ति दिवस को क्यों मनाते हैं, क्या मिलता है हमें, पूरा दिन हमारा इसमें जाता है। अरे, चार चार पांच पांच दिन, किसी किसी का तो एक एक सप्ताह भी जाता है। तो आप अपने समाज के अनुभव से आप बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब वैसे एक है। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। तो कोई अलग नहीं है, सभी साथ में है, ठीक है। फिर भी जो समाज है वो तो है, उनको नकारा भी तो नहीं जा सकता ना। ब्राह्मण समाज, जैन समाज, बात तो करते ही है हम। तो समाज में भी देखिए बहुत सारे बातें होती रहती है। तो पूरा समाज इकट्ठा मिल करके उत्पत्ति दिवस क्यों मनाता है? और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है, ये आज का प्रश्न है। क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ व्यस्त हो गए? अरे भाई, मैं ही मैं बोले जा रही हूँ, अच्छा भी तो नहीं लगता ना। आप जुड़ेंगे तो बात होगी, नहीं तो फिर तो क्या होगा, आप जानते हैं ना। फिर तो हम अपने मन से तो बोलते ही है। चले ठीक है, आप नहीं जुड़ते हैं तो हम तो बैठे ही है। जब आपका मूड हो तो जरूर फोन घुमा दीजिएगा। नंबर है 9414151415, ठीक है। तो देखिए, कोई सभी समाज की उत्पत्ति दिवस हो, पहले बात तो यह है कि इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाता है, सभी का मिलना हो जाता है। क्योंकि आजकल सभी व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। 5 मिनट के लिए कोई रुकना नहीं चाहते हैं। कहेंगे अच्छा, वो 5 मिनट बाद आपसे मिलेंगे, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, तो वो इंतजार बड़ा भारी पड़ता है। 5 मिनट भी कोई इंतजार करना पसंद नहीं करते हैं। तो कहाँ समय है स्पेशल एक दूसरे से मिलने का। तो एक अच्छा सा स्नेह मिलन हो जाता है सभी के साथ, इसलिए समाज वाले सब इकट्ठे होते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि देखिए, समाज में अच्छाइयाँ भी होती है तो बुराइयाँ भी होती है। तो 8-8, 10-10 दिन पहले प्रोग्राम रखने का, आयोजन रखने का तात्पर्य यही है कि कुछ ऐसे कुरुतियाँ है जिस पर सभी तर्क वितर्क कर सके, अपने अपने विचार व्यक्त कर सके और इस कुरुति को कैसे मिटा सके, वो अपनी राय व्यक्त कर सके। हेलो
1: जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, सुरेश भाई बोलता हूँ नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, कैसे हो सुरेश भाई?
1: सर बहुत अच्छे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, अच्छी बात है। आज समाज के, जो समाज के बारे में सोचा आपने, सवाल बिल्कुल सही बात है दीदी। मैं बताऊँ तो समाज एक दर्पण है
0: जी।
1: और समाज एक कहते हैं कि माँ बाप भी है
0: जी।
1: तो समाज की जो आदमी बनता है, तो समाज इसीलिए दीदी उत्पत्ति इसीलिए हुई कि समाज में हम जाए, कुछ नई बात सुने, किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो समाज वाले इकट्ठा हो के इसका प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। कोई बात है, कोई गांव की बात है, कोई समाज की बात है, कोई हमारे परिवार की बात है। तो दीदी समय जो कोई हम प्रॉब्लम है ना, तो ये हमारी जो सॉल्व कर देते हैं। कोई शादी में कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई घर परिवार में कोई ऐसा हो, तो समाज वाले आते हैं, समाज वाले बोलते हैं, समाज के से हम कुछ न कुछ कह पाते हैं। क्योंकि समाज में कुछ हम बात करेंगे तो समाज वाले हमारी सुनता है। और इसलिए हम कोई भी, देखो हमारा के दीदी, हमारा भी समाज बहुत बड़ा समाज है। तो हमारी कोई मीटिंग होती है, कोई शादी हो तो समूह लग्न होता है, कोई ऐसा फंक्शन रखते हैं, कोई नाम वितरण का कार्यक्रम होता है, तो हरदम हम जाते हैं। क्योंकि जाते हैं तो दीदी कुछ नहीं, इसी बहाने हम जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, सभी एक दूसरे मिलते हैं, कोई एक दूसरे की बातें को शेयर करते हैं, कोई शादी करनी हो किसी बेटी बेटा की तो भी इसमें एक दूसरे को बातचीत कर पाते हैं। इसीलिए समाज का इकट्ठा होना, समाज में जाना, समाज से जुड़ना, इसीलिए तो दीदी ये समाज बनाया है
0: जी,
1: वरना हम अकेले तो किसी के साथ जा नहीं सकते, किसी के सबके घर नहीं जा सकते, लेकिन इसी बहाने हम इकट्ठे होते हैं तो सबको वहाँ मिल जाते हैं, तो कई सारी बातें भी होती है, कई सारे एक दूसरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है इसमें, इसलिए समाज एक दर्पण कहलाता है दीदी। समाज से जुड़ना है, समाज में रहना है, समाज से अलग नहीं होना है। हम समाज से अलग हो गए तो समाज कोई हमारा जो हम अलग ही रह जाएंगे दीदी, समाज से जुड़कर नहीं रहेंगे
0: जी।
1: तो बस हम तो दीदी यही कहेंगे समाज से जुड़ते रहना है, समाज में रहेंगे तो समाज से हमारा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाता है
0: जी।
1: बस दीदी नमस्ते।
0: ठीक है भैया, थैंक यू। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आपने भी बहुत ही अच्छी बात कही है कि भाई समाज एक दर्पण है, तो मिलेंगे तभी तो समस्या का समाधान होगा, नहीं तो कैसे होगा। इसलिए इसी बहाने ये प्रोग्राम

0: हम रखते हैं कि चलिए हर समाज का होता है, जिस तिथि को जिस समाज का मतलब जिस समाज की उत्पत्ति हुई, स्थापना हुई हो, उस दिन को मनाते हैं अच्छी तरह, क्योंकि भाई बर्थडे सेलिब्रेशन ही हो गया ना, तो धूमधाम से मनाते हैं, खुशियाँ भी मनाते हैं और अच्छा सा प्रतिभोज भी रखते हैं। कहीं कहीं पर तो चार चार पाँच पाँच दिन लगातार भोजन रखते हैं। धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, घटने का नाम नहीं हर चीज़। और इस त्यौहार को भी मतलब त्यौहार ही है ना, पूरा समाज मिल करके देखे इसमें क्या होता है। 5 दिन पहले से प्रतियोगिताएं शुरू हो जाती है, गेम्स वगैरह, कहीं कहीं पर 8 दिन पहले से शुरू हो जाती है। क्रिकेट है, जिसको जो गेम आता हो, टेबल टेनिस और भी खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, जिनको भी शौकीन है पहले से ही नाम लिखा देते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो महीना पहले ही नाम लिखाना पड़ता है। हेलो,
1: हाँ बुरा राम बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी बुरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
1: राम राम, बस आपकी जैसे से खाल पे सोए है और आपकी तो सुन रहा हूँ कान लगा के, और अभी फोन भी पे बोला राम राम तो कर दू
0: जी जी।
1: सब मधुबन भाइयों को, सबको मेरा राम राम हाथ जोड़ते,
0: थैंक यू, राम राम।
1: क्या प्रश्न है
0: आज का? प्रश्न है, माहेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी को क्यों मनाते हैं? महेश जयंती, इस त्योहार को क्यों मनाते हैं?
1: इतना तो इसमें अपने को तो माहेश्वरी का तो अपने को ज्ञान नहीं है।
0: आप अपने समाज के आधार पर बोल सकते हैं।
1: अपने समाज का तो ये बोलते हैं कि भाई देखो, पहली बात तो अपने जो समाज की जो उत्पत्ति हुई है, तो हमारे जो जितने भी लोग भाई हैं, तो वो हमारे एक चौपड़ा भाग आते हैं, बोले तो वो उनका पूरा लेखा जोखा होता, कहाँ से उत्पत्ति हुई और कहाँ से आप आए और कहाँ कौन सा आपका इष्ट देव, सब पूरा बताते और पूरा समाज को बुलाते, पूरे रीति के राज से हमारे कहाँ से उत्पत्ति है, तो सब बैठ के सुनते हैं और फिर बाद में उसके ऊपर फिर सब हमको मालूम पड़ता है कि हमारे उत्पत्ति कहाँ से हुई और अपना कौन सा इष्ट देव है और क्या है, सब पूरा समाज फिर सत्संग को खाना वाना खिला के हम जीते। बाकी समाज में हमारे ऊपर बहुत ये होता है कि समाज का तो हमको मानना ही पड़ता है, कुछ गलतियां भी होती है तो समाज हमको दंडित करती है, तो समाज के भीतर चलता ही नहीं है। क्यों कि इतना समाज का ऊपर प्रतिबंध नहीं रहे तो लोग गलतियां कर देते हैं। अभी माहौल कोई किसी का कोई भी हो गया, कोई झगड़ा समझा या किसी का हार ना हो गया, बच्ची का कोई तलाक हो गया, तो उसका निवारण समाज आके करती है। तो समाज तो समाज ही है, समाज रहते ही अपने पूरे तो जीवन व्यापक होता है। बाकी तो क्या सुनना, इतना सुनाता हूँ
0: जी। चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई है। हाँ जी, और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है, समाज इकट्ठा होता है तो और आप क्या करते हो? खाना पीना तो होता है, कोई गलती है उसको तो सजा दी जाती है, और
1: तो सजा तो जो समाज अपने ऊपर कुछ गलतियां होती है तो समाज उसके ऊपर ये दंडित करती है, फिर उनको वो अपने घर पे उनको बुला, मतलब उसको हमारी भाषा में बोलते ओरबा देते हैं।
0: हाँ।
1: तो ओरबा मिटाने के लिए समाज को बुलाते हैं और समाज आके फिर उसका निवारण करती है, दंडित करती है, भाई ये गलती आपकी है या दूसरों की है, तो वो भी अपने ऊपर जो कि भाई अपनी गलती नहीं है, तो फिर जिसकी गलती आगे वाले की होती है तो उसके ऊपर दंडित करेंगे, अपने को छोड़ देंगे, खाना वाना खाकर जाके समाज उसका निवारण करके जाती है। मतलब समाज का हमारा बहुत ये होता है, प्रतिबंध बहुत होता है
0: जी।
1: तो ऐसा है, समाज तो समाज में ही रहना पड़ता है
0: जी।
1: और इतना प्रतिबंध नहीं हो गए तो बिल्कुल बोले तो अपन बोले तो फिर कोई ये नहीं रहता, फिर किधर भी जाओ किधर फिरो, कोई मतलब नहीं
0: है। सही बात है, अंकुश होना बहुत जरूरी है,
1: अंकुश होना जरूरी है मैडम
0: जी। चलिए बहुत बहुत आभार भूरा राम जी, बहुत सुंदर बातें आपने बताई है।
1: ओके
0: जी, तो ये थे भूरा राम जी ओर से, और आइए इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक गीत। अगर आप जुड़ रहे हैं तो तुरंत जुड़िएगा, नहीं तो एक ब्रेक के बाद जरूर जुड़िएगा। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, महेश्वरी समाज के इष्ट देव कौन है और महेश नवमी को क्यों मनाई जाता है। ठीक है, तो जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: जी की जय।
1: आज सजा है खुशियों का द्वार, आज सजा है खुशियों का द्वार, गूंज रहा है मंगलाचार, महेश जयंती का शुभ अवसर आया लेकर प्रेम संस्कार और सत्कार। पुनः आप सभी को महेश जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम बात भी इसी पर कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हम समाज के स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं। स्थापना हो गई, जैसे इंसान का जन्म होता है हर साल जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे समाज की बात है। समाज की स्थापना होती है, जन्म होता है, फिर हर साल मनाते हैं। और कौन मनाएंगे, समाज वाले ही मनाएंगे। सब इकट्ठे होते हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं? आपके भी देखे, हर एक इंसान सामाजिक प्राणी है, समाज में घर परिवार में ही रहना पसंद करता है। नहीं तो भाई ये सब कुछ पसंद नहीं है तो जा करके जंगल में ना रहे। भाई कोई ना कोई समाज से तो सभी जुड़े ही होते हैं, संस्था से जुड़े रहते हैं, है ना। कहीं कहीं से तो हम जुड़े ही रहते हैं। अकेला इंसान तो कहीं पर नहीं देखा होगा कि वो बिल्कुल नितांत अकेला जंगल में रहता है, पहाड़ों पर। हाँ, कौन रहते हैं? तपस्वी, तपस्या करते, वो भी ईश्वर के संग रहते हैं, अकेले नहीं रहते। कोई भी अकेला नहीं रहता। प्राणी प्राणी के साथ बैठना पसंद करेंगे, इंसान इंसान के साथ बैठना पसंद करेगा, तो घर परिवार समाज गाँव मोहल्ला शहर यहीं पर रहता है। लेकिन समाज के उत्पत्ति दिवस का एक आनंद ही अलग होता है। एक तो स्वयं का पर्सनल जन्मदिन मनाओ, एक समाज का एक साथ मिलकर के मनाओ, कितना फर्क है ना। बहुत अच्छा लगता है। और हमारे श्रोता बंधु भी जुड़े हैं, उन्होंने भी अच्छी अच्छी बातें बताई है। आप भी जुड़िएगा, हर एक श्रोता बंधु समाज से ही जुड़े हुए हैं, तो सामाजिक नॉलेज तो सभी के पास होगा। जरूर आप जुड़ करके बताइएगा कि समाज में रहना क्यों जरूरी है। देखिए, ये समाज का उत्पत्ति दिवस हम मनाते हैं कि इसी बहाने सब इकट्ठे हुए, तो कैसे मनाते वो भी थोड़ा जान लीजिए। पहले से कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, क्योंकि समाज के होनहार बच्चे वो भी तो आगे आने चाहिए ना, वो भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ हमारे समाज के होनहार बच्चे कौन कौन है, जो पढ़ने में टॉप है, फलाने गेम्स में टॉप है, उसमें टॉप है, किसी ने किसी का भला किया हो। मतलब टू मच भला तो सभी करते हैं, लेकिन बड़ा सा सहयोग किया हो, तो इस तरह के लोगों को सामने आने का अवसर मिलता है। समाज के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो सारे खबर रखते हैं और उन बच्चों का नाम भी लिखते हैं, पहले से अनाउंस कर देते हैं कि भाई जो होनहार बच्चे हैं जिनको 80% से या 90% से जो ऊपर लेके आए हैं नंबर रिजल्ट, वो नाम लिखाइएगा। जो टॉप 10 में आए हैं उनका नाम लिखाइएगा, जो फर्स्ट डिवीजन में आए हैं उनके नाम लिखाइएगा। हरे खरे क्लास के अलग होते हैं, जैसे बोर्ड के एग्जाम के अलग होते हैं, 10th 12th वालों के रिजल्ट अलग देखा जाता है, कॉलेज वालों का अलग देखा जाता है, तो अन्य क्लासों वालों का अलग देखा जाता है। उस आधार पर बच्चों को समाज के मंच पर बुलाकर उनका सम्मान भी किया जाता है और उनको मोटिवेट भी किया जाता है। हेलो,
2: जय माता दी, जय श्री हरि।
1: हाँ जी, जय श्री हरि, नमस्कार।
2: क्या है विषय?
1: विषय यही है, आप जैसे भाई गहलोत समाज से है, तो आप ये अपने अपने समाज के स्थापना दिवस को क्यों मनाते हैं और क्या फायदा है?
2: एक्चुअल में देखिए, स्थापना दिवस मनाने के पीछे ये है कि अपने समाज में कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो किसी और को भी उससे मोटिवेशन, मतलब उनको कुछ जानकारी मिले। अपन अच्छा कार्य करते तो उनको भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकते
1: जी।
2: तो और मतलब अपने समाज की पूरी जानकारी अपन मतलब वो मनाते हैं तो अच्छे कार्य सभी के सामने रखते हैं, तो वो भी उससे कुछ सीखते हैं, इसलिए मनाते हैं ना
1: जी।
2: हाँ
1: बिल्कुल।
2: और बाकी तो हमारे और भी दोस्त जुड़ेंगे, इसलिए शॉर्ट में ही जाए तो बात करता है।
1: अच्छा चलिए, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। तो हम बात कर रहे थे, देखिए समाज के स्थापना दिवस को सभी धूमधाम से मनाते हैं। तो पहले ये सारी प्रतियोगिता होती है, होनहार बच्चों के नाम लिखे जाते हैं, लिस्ट में कौन कितना परसेंटेज लाया है, सारे नाम बच्चों के अलग अलग लिखे जाते हैं, और किसी ने कुछ स्पेशल किया हो जो सभी के दिलो दिमाग में छाए हुए हो उनका भी नाम लिखा जाता है। फिर समाज में किनकी परिस्थिति कम है उनको भी देखा जाता है। अच्छी बात है, मैं तो कहूँ उनका जरूर मदद मिलनी चाहिए। हेलो,
2: हाँ बुराराम बोल रहा हूँ मैं, सुभाषा बहन जी।
1: हाँ जी बुराराम जी बोलिए।
2: और मैं एक, आपने बहुत अच्छा दिलाया मेरे को ये बच्चों को प्रोत्साहन करते है, तो हमारे समाज का सब हर साल इधर मानपुर ग्राउंड में बोले तो हमारा ये मतलब सम्मान निधि, सम्मान के लिए बच्चों को जो जो अच्छे डिविजन पास करते यार अच्छा जो आते हैं तो उनका प्रोग्राम रखते हैं इधर मानपुर में
1: जी।
2: तो सबको बच्चों को उधर उत्साहित करके उनको सम्मान देते और पूरा समाज मिल के बोले तो खाना परोसना और सब एकता हो, सब भाई लोग सब मिल के खाना परोसना और समाज में क्या बुराई है क्या गलतियां है वो भी पढ़े लोग लिखे सब उसमें सब पढ़े लिखे लोग आते हैं और नेता लोग भी आते हैं और सब भाषण करते हैं तो उसमें बहुत परिवर्तन होता है हमारा। तो ये भी आपने अच्छा मेरे को याद नहीं था, लेकिन बच्चों को हर साल बोले तो उधर जो जो दसवीं पास होता है बारहवीं पास होता है या किसी अच्छे पोस्ट में लगाते उसको सम्मानित करते हमारे इधर
1: जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
2: ओके
1: हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो बिल्कुल भुराराम जी ने सही बताया है, इस तरह का होता ही है प्रोग्राम। तो फिर ये सारी लिस्टें तैयार होती है, गेम्स में जो जीतते हैं बच्चे उनके नाम लिखे जाते हैं, जो टीम जीतती है उस टीम का नाम लिखा जाता है। हेलो, जिसका फोन कट जाता है वो फिर से ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह पूरी लिस्ट तैयार की जाती है, फिर भाई समाज मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा चंदा सबसे लिया जाता है ना, क्योंकि भोजन भी रख रहे, दो दो तीन तीन दिन इस त्योहार को मनाते हैं आजकल, तो तीन तीन चार चार दिन सब जब मिलते हैं तब नाश्ता भी रखते हैं, चाय पानी सब रखते हैं, तो चंदा भी इकट्ठा किया जाता है, थोड़ा समाज के पैसे होते हैं, थोड़ा फिर चंदा लिया जाता है, और फिर एक दिन पहले ये सारा सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, एक दिन पहले सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, एक दिन पहले गेम्स वगैरह तो पहले हो जाता है, पहले गेम्स सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, कल्चरल होता है, जो भी जिसको भी कविता है डांस वगैरह करना हो करते हैं। फिर जैसे कि आज महेश नवमी है, ठीक है, तो सुबह टाइम दे दिया जाता है कि इतने बजे शोभा यात्रा निकलेगी, तो सभी शोभा यात्रा में जाएंगे, और इसमें जरूर कहेंगे क्योंकि महेश्वरी समाज में मैंने देखा है केसरिया कलर बहुत ही फेमस है, तो सभी को केसरिया कलर के कपड़े पहनने का ही कहते हैं, विशेष करके बहनों को। भाई लोग भी ज़्यादातर धोती जब्बा का बोलते हैं कि भाई धोती जब्बा आज की जनरेशन तो पहनती नहीं है, लेकिन केसरिया कलर का दुपट्टा ज़रूर लगा के आना है, भले आप कपड़े कोई से भी पहनो, केसरिया कलर का दुपट्टा ज़रूर आपको गले में टाक के आना है। और जिसके पास नहीं होता है, वैसे आजकल ऐसा होता है कि जहाँ से शुरुआत होती है शोभा यात्रा की वहीं पर सबको पट्टा पहना दिया जाता है ताकि सबके एक जैसा पट्टा हो, और तिलक लगा दिया जाता है, फिर बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा नाचते गाते पूरे शहर में निकलती है। बहुत सारे लोग, कोई अपनी तरफ से कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, तो कोई आइसक्रीम, तो कोई क्या नाश्ता, कोई ड्राई फ्रूट्स, अलग अलग तरह की चीज़ें देते हैं, कहीं पानी की व्यवस्था होती है ठंडे पानी की, सबको ठंडा पानी पिलाया जाता है, इस तरह जगह जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर भी जिन्होंने नाश्ता रखा है, माहेश्वरी समाज के बहुत सारे लोग जिनका बीच में घर पड़ता हो वो इस तरह उनको आने वाले सभी समाज के लोगों का स्वागत करते हैं और अच्छा सा उनको तृप्त करके भेजते हैं, ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, नाश्ते गाते जाते हैं, भजन कीर्तन होते रहते हैं, और ऐसे पूरी शोभा यात्रा घूम के आती है। गांवों में तो दो घंटा में आ जाती होगी, शहरों में जितना बड़ा शहर उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है। खैर बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जाते, लेकिन कस्बों में तो पूरा कस्बा मतलब लगभग कवर कर लेते हैं, मेन रास्ता है, तो 3 घंटे 4 घंटे हो जाते हैं, इसलिए 6 बजे ये शोभा यात्रा निकाल दी जाती है ताकि 9-10 बजे तक वापस आ जाए एक जगह अपने जहाँ समाज की समिति होती है वहाँ पर, क्योंकि भाई दूसरे कार्यक्रम भी है, फिर भोजन भी करना है सभी को, तो ऐसे 10 बजे तक आ जाएंगे। अब नाश्ता पानी तो बहुत हो गया, फिर भी आते ही सबको नाश्ता दिया जाएगा, ठीक है। और फिर पहले तो ईश्वरी वंदना होती है, ईश्वरी वंदना के बाद फिर सभी को पारितोषिक देना शुरू करते हैं। इसमें बहुत समय जाता है, कौन किस में फर्स्ट आया, कौन कौन सी क्लास का क्या है, सभी को गेम्स में कौन जीते, कौन इस तरह सभी का नाम लेकर के सभी को वहाँ पारितोषिक दिया जाता है। डांस में कौन आए हैं, सबका पारितोषिक देते देते 12:30 बज जाती है और फिर सभी का भोजन होता है। जो कार्यक्रम होना होता है पहले हो जाता है। आज के दिन मतलब जिस दिन मना रहे हैं उस दिन बस ये इसी में समय जाता है, सब भोजन करते हैं और ये पारितोषिक लेने में थोड़ा स्पीच समाज की कोई कुरुति हो तो वैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम में ये सब हो जाता है, लेकिन फिर भी कोई बोलना चाहते हैं तो उनको अवसर जरूर देते, कुछ हटके बोलना चाहते हैं उनको वो भी लिमिटेड। और फिर बहुत ही बड़ा मतलब बड़े से भोजन का आयोजन रखा जाता है, तो सभी को अच्छे अच्छे वैरायटी खाना खिलाते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं आ सकते उनका टिफ़िन पहले से कह दिया जाता है। आजकल तो समाज में टिफ़िन भी रखने लगे, तो भाई टिफ़िन ले जाओ, खाली कर दो, वापिस शाम को आओ तब लेते आना साफ सुथरा, क्योंकि दोनों टाइम भोजन रहता है। फिर दिन में भी अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं, दिन में जैसे कुछ प्रोग्राम बाकी रह गए, रंगोली प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, डेकोरेशन प्रतियोगिता है या फिर पैकिंग प्रतियोगिता है, ये जो बाकी रह गई वो पूरे दिन चलता है। फिर शाम को 6-7 बजे से वापस कार्यक्रम शुरू होता है, तो पहले तो भोजन कर लेते हैं कि भाई जिसको भोजन करना पहले एक बार भोजन कर लो, ठीक है। भोजन करते करते 8 बज जाते, उस दिन कह देते हैं कि जल्दी करेंगे भोजन क्योंकि वापस बाकी है कार्यक्रम, 8 बजे तक फ्री कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वापस प्रोग्राम चलते हैं जिसको बोला, क्योंकि लगभग सभी को अवसर देते हैं, छोटे बड़े कोई भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो अब समाज में नहीं बोलेंगे तो वो कहाँ जा करके बोलेंगे, दूसरे समाज वाले तो चांस नहीं देंगे ना, तो बहुत सारे समझदार लोग हैं तो यही कहते हैं कि नहीं चांस सबको, भले 2 दिन मनाओ इसको, 3 दिन मनाओ, लेकिन सभी को चांस मिलना चाहिए, जो भी बोलने के इच्छुक है आओ मंच पर बोलो। और कहीं कहीं पर तो

0: लगता है कि कंपटीशन नहीं रखा जाता कल्चरल कार्यक्रम में, जो बोलेगा उसको सभी को यथा योग्य पारितोषिक दिया जाएगा, क्योंकि उनका भी प्रोत्साहन बना रहे और उनको लगे कि हम स्टेज पर गए हैं, क्योंकि स्टेज पर आकर खड़े रहना यह भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, बोलना तो अभी दूर है, स्टेज पर जाकर के खड़े रहना यह भी बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, और फिर अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो भाई हिम्मत हो वही तो स्टेज तक पहुँचते हैं ना, मंच तक पहुँचते हैं, तो बहुत सारी जगह पर तो ऐसे होता है, सबको दिया जाता है पारितोषिक, और बहुत सारी जगह ऐसे कि जो अच्छा बोलेगा उन्हीं को दिया जाएगा, तो सभी के अलग अलग मत मतांतर है। कुरुतियों के बारे में भी बताते हैं कि भाई ये कुरुति है, कैसे इसको बंद की जाए, वहाँ पर भी राय ली जाती है। फिर कोई समाज के गरीब घर है, ठीक है सभी तो एक जैसे नहीं है ना, सभी पैसे वाले नहीं होते या सभी मध्यम नहीं होते, बहुत जने ऐसे कि दो वक्त का खाना उनके लिए भारी पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए फिर जो भामाशाह होते हैं उनको आगे करते हैं, कहते हैं कि भैया इनके ये तकलीफ है, अब इनकी मदद कौन करना चाहेगा, तो फिर जो भामाशाह होते हैं वो आगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ मैं इतने तक की इनकी मदद कर सकता हूँ, तो इस तरह मदद के लिए भी गुहार लगाई जाती है, मतलब समाज वाले नोटिस में रखते हैं और इस तरह किसी को तैयार भी करते हैं, और वो भी कहीं कहीं पर, हर जगह ये कार्यक्रम नहीं होता है, हर जगह इस तरह की बातें नहीं होती, कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन गरीब की तरफ ध्यान रखने वाला कहीं कहीं पर ही ऐसा होता है, बाकी गरीबियों की तो बात ही नहीं उठती है। इसलिए मैं तो रेडियो के जरिए कहना चाहूँगी कि अगर आप इतना भव्य कार्यक्रम रख रहे हैं तो उसमें गरीबों को भी जरूर लीजिए और उनके प्रति भी दयावान होइए। समाज में बहुत सारे ऐसे भामाशाह हैं जिनके पास बहुत संपत्ति रहती है, कुछ अंश वो गरीबों के लिए निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुआएं ही मिलेगी। इसलिए भामाशाह बन करके अपने समाज का कल्याण करिए। कोई कोई समाज ऐसे होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, वो गरीबी सहन कर लेंगे लेकिन हाथ नहीं फैला सकते किसी के सामने, अरे अरे नाक कट जाएगी, हाथ कैसे फैलाए। और कोई कोई स्वाभिमानी भी होते, खुददार भी होते कि नहीं भूखे मर जाएंगे लेकिन हाथ तो बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, खुददारी की बात है, अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि अहंकार कहाँ है, गरीबी है, अहंकार तो है ही नहीं है, खुददारी की बात है कि मेहनत करेंगे, भूखे रहेंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, आप सभी जानते हैं, मनाते हैं इस त्यौहार को, इसलिए चलिए बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, माहेश्वरी समाज के इष्ट कौन है और महेशनवमी क्यों मनाई जाती है, यह आज का प्रश्न है। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हैं और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक फिर से गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः रूबरू होंगे, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो पधारिए आप आशियाना के किचन में। आज भाई स्पेशल आपको सिखा देते हैं त्योहार, आज का महेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस है, महेश जयंती है, तो स्पेशली आपको खिलाएंगे। क्या खाना पसंद करेंगे? चलिए मैं अपनी पसंद का रेसिपी सिखा रही हूँ, फालूदा। ठीक है, फालूदा बनाना सिखा रही हूँ। गर्मियों के मौसम में ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैं सामग्री आपको लिखवा रही हूँ। 2 ग्लास ठंडा दूध ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच फालूदा सेव लेनी है, ठीक है, 2 बड़े चम्मच सब्जा जिसको तुकमरिया भी कहते हैं, तुकमरिया के बीज ये ले लीजिए, काले आते हैं छोटे छोटे से दाने आते हैं ये, 3 बड़े चम्मच गुलाब शरबत लीजिए।

0: के टुकड़े। अब बनाने की विधि भी जान लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सब्जा के बीज जो है ना, सब्जा के बीज लिए है उनको 15-20 मिनट तक पानी में भिगो के रखिएगा। फालूदा सेव को उबालिएगा, पानी में 4-5 मिनट पकाना है, फिर ठंडे पानी से इसको धो लेना है। अब दूध में चीनी मिला करके अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए। अब एक लंबे गिलास में सबसे पहले गुलाब शरबत डालिएगा, इसके ऊपर भीगे हुए सब्जा बीज डालिएगा, फिर फालूदा सेव की परत लगाइएगा। अब ठंडा दूध डालिएगा, ऊपर से आइसक्रीम रखे हुए डालिएगा, मतलब आइसक्रीम के टुकड़े डालिएगा, और फिर ड्राई फ्रूट के कटे हुए ड्राई फ्रूट डालिएगा, और आप थोड़ा सा बर्फ का टुकड़ा डाल करके आप रख सकते हैं, दे सकते हैं अपने मेहमानों को। तो इस तरह फालूदा बनाया जाता है। और देखिए, इकट्ठा बनाएंगे तो भी अच्छी बात है, बड़ा सा भगोना ले लीजिए, बहुत ज़्यादा बनाना हो तो भगोना ले लीजिए, और फिर उसमें सब्जा के बीज डालिएगा, ठीक है, थोड़ा सा पानी में। फिर अब आप ये जो फालूदा की सेव ली है इसको उबालिए, 4-5 मिनट उबालने के बाद ठंडे पानी से इसकी धुलाई कर लेनी है। तो ये भी पतीले में डाल दीजिएगा। आप दूध में चीनी मिलाकर अच्छी तरह ठंडा कर लीजिए, ठंडा हो जाए तो फिर मिलाना है, ठीक है। फिर आप ये सब्जा भी डाल रखा है, अब आप ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए, आइसक्रीम भी डाल दीजिए, और बर्फ के टुकड़े भी डाल करके अच्छी तरह हिला करके बस ये फालूदा बन गया है हमारा, तैयार हो गया है। तो आप इसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन देखिए, सात्विक जो भी चीज़ हम बनाते हैं ना, तो अपने इष्ट देव को भोग लगा करके ही लीजिएगा, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं ये। अगर बच्चों की बर्थडे है या ऐसे कुछ पिकनिक विकनिक पार्टी वार्टी मना रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें बना कर दोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं कि गर्मी की दोपहर हो या शाम सुहानी, एक गिलास फालूदा कर दे मौसम को रूहानी। तो आइए प्यारे श्रोताओं, अगर आप फालूदा को और भी खास बनाना चाहते हैं तो इसमें रबड़ी या कुल्फी के छोटे टुकड़े भी मिला सकते हैं। स्वाद ऐसा कि मेहमान बार बार पूछे आखिर बनाया कैसे है, ऐसे पूछना चाहिए, ठीक है। तो भोग लगाने के बाद आप स्वीकार करिएगा और आइए फिर से अल्प विराम लेकर के पुनः लौटेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
1: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
2: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: प्यारे श्रोता बंधु, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, काफी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर गौर करेंगे और नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए हैं, कैसे आप हाथों के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा बीमारियों को भगाओगे। और फिर रेसिपी में भी आपको बहुत ही स्वादिष्ट फालूदा बनाना सिखाया है, जरूर बना करके खाइएगा। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, माहेश्वरी समाज के इष्ट कौन है और महेश नवमी क्यों मनाई जाती है। तो जवाब दिया है सुरेश भाई झोटाना से, दीपा सोमानी कपासन से, भूरा राम जी और से सुरेश भाई ने जवाब नहीं दिया है। बाकी आपका जवाब सही है, महेश्वरी समाज के इष्ट देव है। संगीता जी लावटी का भी फोन आया है कपासन से, उनका भी सही जवाब है। तो माहेश्वरी समाज के इष्ट है भगवान महेश, जिनको शिव के रूप में पूजा जाता है, उनके आराध्य शिव भोलेनाथ है। और भाई नवमी के दिन, ये जो जेठ महीने की नवमी के दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति होती है, इसलिए इस दिन महेश जयंती मनाते हैं। तो आप सभी के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया है उन सबके लिए ढेर सारी तालियां। जो भी विषय में जुड़े हैं उनके लिए भी ढेर सारी तालियां। और आज का मीठा मोती है संयम, संतुलन और संतुष्टता का गुण अपनाने से महान बन जाएंगे। और लास्ट में कहना चाहूंगी, शब्द अगर मुस्कान बन जाए तो बात ही कुछ और है, ज्ञान अगर सबके काम आ जाए तो सौगात ही कुछ और है। बांटते रहिए खुशियां, बांटते रहिए प्यार, यही है जीवन का सबसे सुंदर उपहार। मुस्कान से महके हर आंगन और द्वार, मुस्कान से महके हर आंगन और द्वार, यही है हमारी दुआ बारंबार, यही दुआ है हमारी बारंबार। अब मैं आपको समाज के ऊपर एक प्यारा सा थोड़ा सा कटाक्ष करता हुआ गीत है कि देखिए समाज में किस तरह की कुरुतियां है। तो आप लेंगे, मतलब कविता सुनाऊंगी स्वरचित, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। देखिए माहेश्वरी समाज में क्या आजकल विदेशियों की होड़ लग रही है कि हमारे बच्चे विदेश जाए पढ़ने के लिए, तो उनके लिए सुनिएगा। मारो छोरो परदेश पढ़न चालियो, माँ बाप रा नेणा भर आया, डिग्री तो ले आवे दुनिया भर की, पर संस्कार रो दीप न बुझाया। क्रिसमस री रंगीन गलिया में आपनो पर्व न भूले रे लाल, क्रिसमस री रंगीन गलिया में आपनो पर्व न भूले रे लाल, महेश वंश रो मान बढ़ावे, यही है घर परिवार रो ढाल, महेश वंश रो मान बढ़ावे, यही है घर परिवार रो ढाल। रिश्तों की मर्यादा रखना भी बहुत जरूरी है, कैसे तो आइए सुनेंगे। आजकल प्रेम री आंधी एड़ी, कई बार सोच बिना बह जावे, आजकल प्रेम री आंधी एड़ी, कई बार सोच बिना बह जावे, माँ बाप रा अरमान ने छोड़ घर आंगना रो चैन घवावे, माँ बाप रा अरमान ने छोड़ घर आंगन रो चैन घवावे, प्रेम करो तो मर्यादा संग बड़ो रो आशीष साथ निभाए, महेश समाज री रीति रिवाज सम्मान सहित आगे बढ़ाए। देखे बेटे की डेथ हो जाती है तो बहू और पोते पोती के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, जब तक बेटो घर में रहवे बहू सबकी लाडली कहवावे, जब तक बेटो घर में रहवे बहू सबकी लाडली कहवावे, किस्मत को खेल बदल जावे तो क्यों अपनोपन ने दूर भगावे, बहू भी तो बेटी जेड़ी है, बहू भी तो बेटी जेड़ी है, पोतो कुलरो उजियारो है, दुख में जो परिवार संभाले वही साचो घर वालो है। तो यहाँ कहना चाहूंगी महेश जयंती रो संदेश यही, महेश जयंती रो संदेश यही, प्रेम संस्कार सम्मान रहे, बुजुर्ग बहु बेटी हर बालक सब पर सम्मान ध्यान रहे, बुजुर्ग बहु बेटी पर हर बालक सब पर सबका सम्मान रहे। मारो समाज तभी बढ़सी जब मन में मानवता जागे, मारो समाज आगे तभी बढ़सी, जब मन में मानवता जागे। महाराजा महेश रा वंशज हम, महाराजा महेश रा वंशज हम, एकता रो दीप सदा ही लागे, एकता रो दीप सदा ही लागे। महेश जयंती की पुनः पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। समाज की शक्ति केवल धन में नहीं, संस्कार और संवेदना में होती है। जय महेश।
1: जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।

0: जान जाऊं ऐसी कोई दवा है क्या? खुद को जान जाऊं ऐसी कोई दवा है क्या? दूसरों से मिलने की तो की थी, मगर मुझको मुझसे मिलाने की कोई दुआ है क्या? रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है लव यू जिंदगी, और लव यू जिंदगी में खुद से मिलने की कोशिश कर रहे हैं हम मिलकर। और कैसे जान जाएंगे आप? अगर आप पिछले कार्यक्रम में जुड़े थे, पुरानी कड़ियां सुनी है, तो वो जर्नी आगे बढ़ेगी। और अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, तो समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला है जिंदगी को आसान बनाने का। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे एक्सपर्ट कल्पना जी, जुड़ गई हैं ग्लोबल अस्पताल से, जो कि स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। साथ साथ श्रीनिधि जी जुड़ गए हैं, जो कि रेडियो मधुबन के जाने माने आरजे भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आरुषि जी।
2: थैंक यू आरुषि जी, बहुत अच्छा लग रहा है लव यू जिंदगी में आके। और खुद को जानना और खुद के मिलने के बारे में आपने जो शुरुआत में चीजें कही, मैं सोच रहा था क्या कभी हम भी सोचते हैं कि कभी हम अपने आप से मिलेंगे। और लव यू जिंदगी में शायद मैं समझता हूँ अगर हम अपनी मुलाकात अपने आप से करवा दें तो फिर तो क्या कहने।
0: हाँ, ये मुलाकात बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये तो मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि बहुत देर लग गई, इतने साल लग गए खुद से मिलने में, दूसरों से तो जल्दी मिल लिए, खुद से मिलने में इतना समय बिता दिया। और पिछले जो कड़ी थी उसमें आप लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था सेल्फ अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस में क्या क्या चीजें आती हैं, खुद के एटीट्यूड को, फीलिंग्स को समझना, उसके कारण को समझना, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। एक और शब्द आता है, बड़ा भारी लगता है और ऐसा लगता है वो बंधन भी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी वो एक्चुअली क्या है, और वो है सेल्फ रेगुलेशन। क्या ये उतना ही भारी और उतना ही बंधन में बांधता है, या इसका मतलब कुछ ऐसा है जो शायद अभी तक हमको समझ में नहीं आया? क्या अर्थ है इसका, ये मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी।
2: सबसे पहले तो जब सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाती है तो एक शब्द जो हमेशा इसके साथ जुड़ा हुआ आता है वो है संयम।
0: ओके।
2: हालांकि संयम के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है, भारतीय दर्शन में जब हम चीजें देखते हैं, पारंपरिक रूप से ऐसे लोग जो जीवन में संयमी होते हैं तो उनकी बहुत तारीफें की गई है। और साथ ही साथ हर व्यक्ति जब जल्दीबाजी करता है या किसी भी चीज का अति करता है, अति चीज किसी भी चीज में अधिकता या अत्यधिक लिप्त होता है तो उसे हिदायत के रूप में यही चीज कहा जाता है कि भाई थोड़ा समझबूझ के साथ करो, थोड़े संयम के साथ बरतो चीजों, ये चीज कहा जाता है। अब जब ये रेगुलेशन की बात कही जाती है तो ये संयम आवश्यक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अक्सर मान्यताओं में ये मान लिया जाता है कि जो व्यक्ति संन्यास के मार्ग पर चले जाते हैं, जैन मुनि या जैन साधु साध्वी बन जाते हैं, तो लोग अक्सर उनके कहते हैं ये संयम पथ के राही बन गए, मतलब जीवन में एक डिसिप्लिन है, एक संयम उन्होंने धारण किया है। सिर्फ ऐसा नहीं है, उन्हें छोड़कर जो मुमुक्षु हैं, जो घरों में रह रहे हैं और अपने गृहस्थ जीवन को रहते हैं, अनेक चीजें करते हुए भी कार्य व्यवहार में भी वो एक अलग प्रकार के संयम को बरत जरूर रहे हैं। तो जब मैं संयम की बात समझता हूँ तो हर चीज में ये संयम या रेगुलेशन की बात कही जाती है।
0: Okay.
2: अपने आप को नियंत्रण करने के लिए आप कह सकते हो, इसे आत्मनियंत्रण आप कह सकते हैं। अपने आप को रेगुलेट करने की जब हम बात करते हैं तो आप अक्सर डॉक्टरों से सुन सकते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए आपको कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है, इन चीजों से आपको बचना है, थोड़ा सा सोच समझ कर खाना है, सही समय पर सोना, उठना बैठना, अनेक ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नहीं है, हर चीज के लिए कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ जब हम इस प्रकार से इस रेगुलेशन को समझते हैं, पूर्णतया किसी चीज को यकायक त्यागने की बात नहीं है, मगर कभी भी जब हम किसी भी चीज का अति करने लगते हैं या बिना सोच समझ के बस हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो फिर वो चीजें हद से बाहर चली जाती हैं और नुकसानदायक होते हैं।
0: ओके। तो संयम की आपने बात की, लेकिन रेगुलेशन जब ये शब्द सुनते हैं तो सबके लिए बहुत अलग अलग इसकी डेफिनेशन होती है। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी लिमिट है या ये मेरा रेगुलेशन है, किसी को कुछ और लग सकता है, किसी को कुछ और लग सकता है। तो क्या इसकी कोई

0: कोई एक मतलब एक डेफिनेशन कही जा सकती है, या मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे रेगुलेशन बताया वो रेगुलेशन है, या मैं जिस सोसाइटी का पार्ट हूँ वो जो रेगुलेशन बता रहे हैं वो रेगुलेशन है, या मैं जिस देश का पार्ट हूँ वो रेगुलेशन है, या मेरा अपना कुछ और मैंने बना लिया वो मेरा रेगुलेशन है, एग्जैक्टली क्या है? कल्पना जी, आपसे भी जानना चाहूंगी।
1: जी, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ में, जब हम सेल्फ शब्द को लेते हैं, तो सेल्फ में आपका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, हर तरह का सेल्फ इंक्लूडेड है। जब आप पर्सनल लेवल पर आते हो, फिजिकल सेल्फ को रेगुलेट करना, उस पर नियंत्रण रखना, इसका मतलब है कि मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, कितना सोना है, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, क्या नहीं सूट करता है, मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है और अपनी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को कैसे जीना है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन में पहला पड़ाव ये हो सकता है कि मैं फिजिकल सेल्फ को मैनेज करती हूँ, उसका प्रबंधन करती हूँ, उसके स्वस्थ रहने का मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपनाती हूँ। तो ये है फिजिकल सेल्फ का रेगुलेशन। देन आता है हमारा मेंटल सेल्फ। मेंटल सेल्फ रेगुलेशन क्या है? मैं जो आया जैसा आया सोचते जा रही हूँ, बस वेस्ट और नेगेटिव मैं सोचते जा रही हूँ। अरे भाई, मेरे मन में विचार आ रहे हैं तो वो जरूरी भी है, कहीं मैं नेगेटिव साइड में तो नहीं जा रही हूँ। ये समझकर समय पर अपने आप को चेंज करना, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना, जो लास्ट कुछ एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे हैं, कि मेरा एक पैटर्न बन जाता है। अगर नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है तो वो मेरे लिए बहुत हानिकारक है। इस समझ के साथ उसको पॉजिटिव में बदलना, ये है मेंटल सेल्फ रेगुलेशन। एंड देन इंटेलेक्चुअल सेल्फ रेगुलेशन क्या है? इंटेलेक्ट माना बुद्धि। हम सबको भगवान ने बुद्धि दी है। मैं ये आपसे नहीं पूछ सकती हूँ कि अरुषि आप में बुद्धि है कि नहीं, सबके
0: सबके पास है,
1: पास है।
0: मेरे पास भी होगी।
1: बुद्धि का काम है समझना, हर बात को समझना और डिसीजन लेना, अपने लाइफ के सही डिसीजन लेना। अगर हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करें, तो मैं किसी भी बात को सही मायनों में समझकर अपने लिए सही डिसीजन ले सकती हूं, तो मैं स्वयं का प्रबंधन कर रही, खुद को मैनेज कर रही। कई बार हम अपने लिए निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते हैं और फिर हम दूसरों को पूछते हैं, क्या हम ऐसा करें? छोटी छोटी बात में पूछते हैं, क्योंकि हम खुद के लिए डिसीजन लेने का शक्ति नहीं रखते हैं। तो दूसरे हमें कितना जानते हैं, वो हमें जो डिसीजन देंगे वो शायद हमारे लिए सही हो सकता है, चाहे गलत भी हो सकता है। तो मैं अपने लाइफ के निर्णय खुद अच्छी तरह से समझ कर ले सकूं, ये है बुद्धि का इंटेलेक्चुअल रेगुलेशन। देन फिर हमारे संस्कार आते हैं, हमारी आदतें आती हैं। अगर मेरी आदत में कुछ गलत चीजों को कंज्यूम करना, जैसे आजकल के युवा फ्रेंड्स के साथ पार्टी आदि करते समय नशे का सेवन करते हैं, और मुझे पता चलता है कि ये मेरे लिए हानिकारक है, इससे मुझे अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, बट अब मेरी आदत में आ गया है, दोस्तों ने तो एक बार फ्री में मुझे ऑफर किया और बाद में मैंने उसको आदत के रूप में बदला, अब ये मेरी ऐसी आदत हो गई जिसे मैं बदल ही नहीं सकता। अब सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है? मुझे उस आदत को बदलने के लिए हर संभव प्रयास खुद करना है।
0: अच्छा जी,
1: कोई मेरी फैमिली मुझे बदलने की कोशिश करती है,
0: खुद
1: बट
0: को खुद
1: मेरी विल
0: बदलना।
1: पावर, मैं खुद अपनी विल पावर से अपने आप को बदलने का प्रयास करूं, पॉजिटिव चेंज। सो ये सेल्फ स्व प्रबंधन है। तो स्व में फिर मेरा समय, मेरा श्वास, मेरा संकल्प,
0: सब कुछ आ गया।
1: सब कुछ आ जाता है। मेरे
0: मतलब
1: दोस्त, उनको चुनने का मेरा
0: मुझसे
1: अधिकार,
0: जुड़ा हुआ अभी जो कुछ है वो भी
1: हर
0: आ
1: चीज।
0: गया, और मेरे अंदर जो भी है वो भी आ गया।
1: जी
0: तो श्रीनिधि जी, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, रेगुलेशन की जब बात आती है तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि हमें लगता है कि मैं क्यों खुद को रेगुलेट करूं, मैंने जब तक अनुभव ही नहीं किया है सब कुछ, तो मुझे रेगुलेशंस तो जो चले आ रहे हैं, जो सही लगता आ रहा है, वो ही ठीक लगेंगे। मैं एक्सपीरियंस तो करूं, एक ही बार लाइफ मिली है, एक ही बार ये एज है, एज निकल जाएगी, उसके बाद तो भाई आप सब चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। अभी ये एज है मेरी मस्ती करने की, इंजॉय करने की, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने की, तो मैं इसमें भी रेगुलेशन लगा दूं, बाउंडेशन लगा दूं, तो फिर मैं लाइफ कब जियूं? तो क्यों मैं दूसरे की एक रेगुलेशन, अरे ये सही है ये गलत है, ये क्यों लेके चलूं?
2: जो आपने ये बात कही ना, तो मुझे याद आता है ये जो आप कह रहे थे कि एक ही तो लाइफ है, तो ऑफन पॉपुलरली जो हम युवा इसका एक जार्गन अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, इसे योलो कहा जाता है।
0: ओके,
2: यानी यू लिव ओनली वंस, वाई ओ एल ओ, योलो यानी यू ओनली लिव वंस। यानी ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये एक ही जीवन है, उसमें ही सब कुछ कर लेना है, तो सब कुछ हम कर सकते हैं। और प्रायः इस योलो की फिलॉसफी को ये भी कहकर जस्टिफाई किया जाता है कि हमारा कैसा भी बिहेवियर ठीक है, हमारा रिस्की बिहेवियर, या फिर हम नियम के खिलाफ जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सब कुछ सही है। और ये बात समझी जाती है कि भाई आज का दिन है तो आज के दिन में ही हमको सब कुछ करना है,
0: कल किसने देखा,
2: कल किसने देखा, ये बात कही जाती है। और खास तौर पर इसको लोग
0: ये भी लगता है कि रेगुलेशंस के साथ जो रह लिए उनका क्या भला हो गया, वो लोग बड़े कौन से खुश है तो फिर हम क्यों इतना खुद को रेगुलेट करें, ये नहीं करना ये करना है, टफ क्यों बनाए और लाइफ को, ऑलरेडी बहुत टफ है।
2: मैं समझता हूँ ये सब कुछ एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग से आता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट बहुत सारी चीजें ये पश्चिम के देशों से आती है, जो पश्चिम के संस्कृतियां हैं वहां पर। एक और मैं समझता हूँ ये लैटिन के शब्द होंगे, कार्पे डीम, बहुत सारी जगह आपने लिखा हुआ देखा भी होगा, यानी सीज द डे या सीज द मोमेंट, मतलब इस मोमेंट को आप सीज कर लो, मतलब ये पूरी तरह से जी लो,
0: पूरी तरह से जियो।
2: हाँ, तो बहुत बार इसके सही और डीपर फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को नहीं समझा जाता कि जब कार्पे डीम कहा जाता है कि इस दिन को पूरी तरह जियो, तो लोग उसे सीज करने के बारे में कहते हैं। इसके लिए जो अंग्रेजी में शब्द यूज किया जाता है, सीज द मोमेंट या सीज द डे, इफ नॉट नाउ व्हेन, अभी नहीं तो फिर कभी, तो उसके चलते हम ये सोच लेते हैं कि हमें एक छोटी सी जिंदगी मिली है और उसमें मुझे सब कुछ कर लेना है, और ये अंडरस्टैंडिंग ही हमें ट्रबल में डाल देती है।
0: ओके,
2: और इसकी वजह से जैसे आप रेगुलेशन की बात अगर आप साइड में दरकिनार कर दें, अगर आप ये देख लें कि हमारे पास एक जीवन है और हमें सब कुछ करना है, और हम देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा कर रहे हैं, तो मुझे वो कष्ट देने लगता है, क्योंकि मैं कंपेयर करने लगता हूँ कि वो 22 साल का है, मैं भी 22 साल का हूँ, उसके पास तो ऑलरेडी गाड़ी आ चुकी है, उसके पास तो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, उसके पास तो इतना पैसा है, वो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा है या जा रही है, उसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, उसके इतने दोस्त है, तो मैं कंपेयर करने लग जाता हूँ, और उसकी वजह से जो मुझे करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूँ, और मैं उस कंपैरिजन की वजह से अपने आप को हीन समझने लगता हूँ, अपने आप को कमजोर या अपने आप को नालायक या अनवर्दी फील करने लगता हूँ। तो ये फिलॉसफी आपको मोटिवेट करने से ज्यादा यंगर जनरेशन में ये आपको नीचे की ओर ले जाती है, व्यक्ति के मनोदशा को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बजाय ये उसके कॉन्फिडेंस को और कम करने का काम कर रही है। तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि सब कुछ आप आज नहीं कर सकते, सब कुछ आप आज नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपके पास धन नहीं है, हो सकता है आज आपके पास टाइम नहीं है, हो सकता है आज आपके पास नौकरी नहीं है, हो सकता है आज सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप ये सोच लें कि आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आज ही जवानी है मेरे पास और आज ही मेरे को दोस्तों के साथ घूमना है और 3 दिन बाद एग्जाम है, तो अगर आप ये समझ के जाएंगे, अगर आप अपने आप को रेगुलेट नहीं करेंगे, वो हालांकि आपके मन में अर्ज ही है, कई लोग आपको ये कह भी रहे हैं यार अभी तो हमारे ये कॉलेज का ईयर समाप्त हो जाएगा फिर हम कब करेंगे, कॉलेज के लिए फीस देना, ट्यूशन जाना, जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो पढ़ाई के लिए ना, बेसिक तो उस चीज के लिए कि आप उस डिग्री को हासिल करें या वो एजुकेशन पूरा करें. अगर आप वही चीज ना करके आप हर चीज उसी लाइफ में सब कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर शायद आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, या जो चीज बेहतर होनी चाहिए थी वो चीज हम बेहतर नहीं कर पाते. इसलिए समय के अनुसार चीजों के करने के ऊपर भी लोगों को ध्यान खिंचवाया गया है. कहा गया है कि हर चीज के लिए एक समय है. तो जीवन में बहुत कुछ मिलता जाएगा और ये चीज समझना है कि जो चीज मैं हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल किया जा सकता है. और इसी चीज को अगर हम देखें तो हम बचपन से जो कहानियां पढ़ते आए हैं उनमें ये चीज बताई गई है कि भाई संयम से चलना है आपको. मैं फिर से संयम शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्टोरी आपको कहूंगा कि पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में. और हम बहुत ही मशहूर कहानी है कि कछुआ और खरगोश की कहानी. और कहा गया कि भाई आप जानते हैं इंग्लिश में कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. स्लोली धीरे धीरे करते करते एक एक चीज हासिल करते हुए जा सकते हैं. और जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस संयम, इस पेशेंस और इसी लेसन को देखकर उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है और आगे उन्होंने बहुत कुछ लोगों के लिए देने वाले एग्जाम्पल्स भी बने. तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी चीज है कि उस चीज को जब हम समझ कर करते हैं तो तब हम लंबी रेस के घोड़े बनते हैं.
0: मतलब तो वो परमानेंट है या लंबा है ज्यादा?
2: तो एक परमानेंट सी चीज है वो. और क्योंकि आप अभी ये सब कुछ कर लेना चाहते हैं, आप हो सकता है आपके माता पिता के पास पैसा हो, आपके कहने पर आपको एक फैंसी बाइक दिला दें या कार दिला दें, मगर आप क्योंकि आपने खुद उस चीज को कमाया नहीं है तो आप शायद इरेस्पॉन्सिबली रेकलेस ड्राइविंग करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे. इसकी वजह से आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस. तो आपको लगता है ये थ्रिल महसूस कर लेना चाहिए, गाड़ी फुल स्पीड पर चला लेनी चाहिए, बट इसके कारण डैमेज होगा. अगर आपने खुद ही अपने पैसे से वो चीज कमाई हो तो शायद आप कभी भी ऐसा रेकलेस बिहेवियर नहीं करेंगे, आप एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से वो गाड़ी चलाएंगे क्योंकि यू नो वॉट इट मीन्स टू अर्न दैट मच मनी, वो कमाने के लिए कितनी मेहनत लगती है. तो इसलिए ये सारी चीजें संचित करने से आती है, धीरे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठे करते करते वो एक परमानेंट और लाइफ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस करने की बात की जाती है. और इसलिए भारतीय दर्शन में जब भी हम लोगों को जीवन के लिए आशीर्वाद देने की बात कही जाती है तब भी यही बात कही जाती है आयुष्मान भव. सबसे पहले ये चीज कहा जाता है कि लंबी आयु जियो ताकि तुम सब कुछ देख सको जीवन में,
0: समय पे सब कुछ देख सको,
2: समय पर सब कुछ जी सको. और विवाह पर भी, जब आयुष्मान तो तभी एक प्रौढ़ अवस्था में व्यक्ति आयु बड़ी होने पर ही विवाह होता है, तो उस समय पर भी जब आशीर्वाद किया जाता है तब कहा जाता है जीवितम शरदम शतम, यानी तुम 100 शरद ऋतु देख सको, तुम 100 वसंत देखो, ये नहीं कहा जाता. कहा जाता है कि तुम 100 शरद ऋतु देखो, यानी जीवन के हर ऋतु को देखो, हर चीज का आनंद ले सको, पर वो आनंद धीरे धीरे लेना है, बिट्स एंड पार्ट्स में, पोर्शंस में लेना है. एक साथ अगर तुम सब कुछ लेना चाहोगे तो संभव नहीं है. वन लाइफ टाइम इज नॉट इनफ.
0: ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, ये समझ में आया कि समय पे और क्यों जरूरी हैं चीजें, और एकदम से सब कुछ संभव भी नहीं है और शायद अच्छा भी नहीं लगेगा, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे. लेकिन मैं कल्पना जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अगर मुझे ये दिख रहा है जो आपने डेफिनेशन बताई इंटेलेक्चुअल रेगुलेशन और सेल्फ रेगुलेशन में कितना कुछ आता है, और मैं ये देख रही हूँ कि मेरे से ज्यादा व्यक्ति वो खुश है जो इन रेगुलेशन से परे होके जीवन जी रहा है, उसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, और मैं इतना सोच रही हूँ, रेगुलेट कर रही हूँ और मैं कम खुश हूँ, तो फिर इसके मायने समझ में नहीं आते. ये तो ऐसा लगता है कि रेगुलेशन इसलिए बनाए गए हैं कि मैं रिस्क ना लूं और कॉन्सिक्वेंसेस के डर में जीती रहूं, तो डर में जीना तो अच्छा जीना है ही नहीं, तो कहीं वो रेगुलेशन डरा तो नहीं रहे.
1: एक शब्द अगर हम जीवन में सीख ले तो सभी चीजों का निचोड़ उसमें आ सकता है, वो है बैलेंस. बैलेंस का मतलब है अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे सब कुछ करना है, लेकिन वेटेज किस चीज को कितना देना है, मेरे टाइम का, मेरी एनर्जी का, ये मुझे तय करना है.
0: ओके,
1: अगर मैं स्टूडेंट्स के कॉस्ट्यूम में हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तो मुझे जाहिर है कि पढ़ाई के लिए ज्यादा समय देना होगा, लेकिन एंटरटेनमेंट में भी मेरे जीवन का एक जरूरी हिस्सा है, उसके लिए भी मुझे समय देना ही पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, और फिर उसके अलावा अगर मुझे स्पीचेस देने में मेरी कला है, माहिर है, या मैं डिबेट कर सकता हूँ, या मैं कोई कंपटीशन दे सकता हूँ, तो वो भी। मतलब मैं अपने लाइफ में एक ही चीज एक तरह से ही ना करूं, लेकिन चार सभी चीजों में अपना हिस्सा बैलेंस रखूं, तो मुझे सभी चीजों का आनंद भी आएगा, बोरियत भी नहीं होगी, और खुद को मैं रेगुलेट भी कर सकूंगा।
0: ओह, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं तो ऐसा हो रहा है कि एकदम बहुत एक्साइटेड या एकदम ही बोर्ड हूं मैं लाइफ से। कहीं पे बैलेंस ही नहीं मिल रहा है। ओके,
1: तो जो व्यक्ति दिखता है ना कि ये बहुत रिलैक्स है, कुछ भी रेगुलेशन नहीं करता है, किसी बारे में सोचता नहीं है, वो एक्चुअली उसका दिखाने का स्वरूप होता है, लेकिन अंदर से वो काफी कनेक्टेड होता है और इसीलिए वो खुश रह पाता है।
0: ओके, मतलब उसका रीजन कुछ और होता है खुशी का, हमें जो रीजन लग रहा है एक्चुअली वो रीजन से हटके कुछ रीजन है।
1: अगर कोई इंसान सॉर्टेड आउट है अपनी लाइफ में, उसने सॉर्ट आउट किया हुआ है सब कुछ, तो वो नेचुरली निश्चिंत रहेगा। समझो एग्जाम है, मैंने साल भर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, बैलेंस रखा है, थोड़ी पढ़ाई, थोड़ा खेलना, थोड़ा मनोरंजन, थोड़ा फ्रेंड्स, थोड़ा आउटिंग, तो मैंने थोड़ा थोड़ा रोज किया हुआ है। तो एग्जाम के टाइम पर अचानक मुझे ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं देना पड़ेगा, और तब भी मैं बैलेंस करके चल पाऊंगी, और मुझे स्ट्रेस भी नहीं होगा क्योंकि मैंने रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है।
0: ओके, इंटरेस्टिंग। तो बहुत सारी चीजें अभी मुझे समझ में आई कि रेगुलेशन, संयम, ऐसे तो बहुत बड़ा और बहुत ना टफ साउंड करता है। जैसे श्रीनिधि जी ने कहा कि कोई संन्यास ले रहा है तो बड़ा संयम है, वो फॉलो कर रहे हैं, और बाकी जीवन में ऐसा टफ लगता है, लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर चीज एक साथ नहीं की जा सकती, वो इंजॉयबल ही नहीं है लाइफ में, और किस तरीके से अगर आप सेल्फ रेगुलेट करते हैं तो एक बैलेंस लाइफ में क्रिएट करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है पेंडुलम की तरह कभी एकदम चले गए इधर और कभी एकदम उधर चले गए, और बीच में तो है ही नहीं। ओके, सो इस बारे में थोड़ा सा और क्लैरिटी लेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी ये एपिसोड हमें यहीं तक इजाजत दे रहा है समय कि यहीं तक बातें की जाएं। तो क्या हम कुछ अनुभव कर सकते हैं इस आधार पर, कोई मेडिटेशन या कुछ अफर्मेशंस?
1: जी बिल्कुल, कुछ अफर्मेशंस के साथ हम सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं।
0: okay.
1: और रिफ्लेक्शन के साथ सेल्फ रेगुलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं अनुरोध करूंगी अपने सभी श्रोताओं को कि जहां कहीं भी है एक आरामदायक जगह पर बैठ जाएं, खुद के शरीर को रिलैक्स मोड में ले आए, गहरी और लंबी सांस लेते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर एकाग्र करें, भीतर जाती हुई सांस के साथ पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर प्रवेश होते हुए महसूस करें, बाहर जाती हुई सांस के साथ सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर छोड़ दें, अपनी आंखों को बंद करके अपने संपूर्ण शरीर को एक बार अच्छी तरह से महसूस करें, कोशिश करें अपने ही चेहरे को अपने मन के आईने में देखने की, गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने शरीर को महसूस करते हुए ये सोचिए कि मैं कितने ही सालों से इस शरीर का, अपने मन का, अपने बुद्धि और अपने संस्कारों का पहचान के साथ प्रबंधन करते आ रही हूं। जो मेरे भीतर है उसे समझना ही मेरी ताकत है, जो मेरे भीतर है, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, उसे समझना ही मेरी असली ताकत है। गहरी लंबी सांस ले, अपने आप को याद दिलाए, मेरी भावनाएं मेरी दुश्मन नहीं है, मेरी मार्गदर्शक है। स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखना अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, लेकिन उन्हें समझकर सही प्रतिक्रिया को चुनना है। गहरी लंबी सांस लें। इस समय अपनी भावनाओं को समझें, फीलिंग्स का एहसास करें। इस समय मेरे विचार मेरी भावनाएं शांत हैं, स्थिर हैं। ऐसी स्थिति मुझे अच्छी लगती है। मैं कोशिश करके सारे दिन में अपनी इसी स्थिति को बनाए रखने का अपने आप से वादा करती हूँ। धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू सो मच श्रीनिधि जी। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज पता चली। मुझे लगता है जो आप लोगों ने आज बताया उसको बैठ के और रिफ्लेक्ट करेंगे तो और समझ में आएगा और उसे जिंदगी में शामिल भी कर पाएंगे। अब थोड़ा उतना भारी शब्द साउंड नहीं कर रहा है रेगुलेशन, अब समझ में आ रहा है। जैसा आपने मेडिटेशन के दौरान भी अनुभव कराया कि ये दबाना नहीं है भावनाओं को, तो ये क्लैरिटी मिली। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले एपिसोड में और जानेंगे कि कैसे रेगुलेट करें कि हमें फोमो ना हो जाए, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट भी ना हो और रेगुलेशन भी लाइफ में लेकर आ सके अपने अनुसार। फिलहाल लेते हैं इजाजत। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहिए लव यू जिंदगी,
1: लव यू जिंदगी।

0: भावों की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, राम राम। आज आपको मिलवाएंगे आबू तलेटी के रहने वाले शरावती महाजन से। आपके उम्र 76 वर्ष के हैं, 76 ईयर्स के, और आप में बहुत सारी खूबियां हैं। भजन कीर्तन करना, कढ़ाई बुनाई का काम करना, सिलाई करना, घर के सारे काम को संभालते हुए कैसे परिवार को एक साथ में लेके चलना, तो आपकी बहुत बड़ी खूबी है। आइए आपसे मिलवाएंगे शरावती महाजन से। मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: कैसे हो आप?
1: अच्छे।
0: अच्छा मैडम, अभी आपके उम्र 76 इयर्स के आप हैं, जीवन में काफी, कहते हैं ना कि 76 साल का जो सफर है जीवन का बहुत लंबा होता है, और काफी अनुभव आपको हुए होंगे जीवन में। तो चलिए हम वर्तमान की बात तो फिर बाद में पूछेंगे, लेकिन थोड़े से बचपन को याद कर लीजिए कि आपका बचपन कहाँ पर बीता, कैसे बीता?
1: हमारा बचपन कोकण में बीता है।
0: था कोकण महाराष्ट्र?
1: हाँ, कोकण महाराष्ट्र में बीत गए है।
0: अच्छा, आप कितने भाई बहन थे, कैसे रहते थे?
1: हमारे दो भाई थे और मैं अकेली।
0: अच्छा, तीन भाई बहन।
1: हाँ,
0: तो आप इकलौती बहन होने के नाते आपको बहुत प्यार मिला होगा।
1: हाँ, प्यारी तो थी सबकी।
0: आप छोटे थे या भाइयों से बड़े थे?
1: मैं सबसे बड़ी।

0: भाई छोटे हैं।
1: ठीक।
0: अच्छा, आपके माता पिता उस समय क्या काम करते थे?
1: हमारा मना पिताजी का किर्लोस्कर प्रेस में कैंटीन था।
0: अच्छा, कैंटीन था। माताजी भी कुछ करते थे?
1: माताजी नहीं, घर काम, माताजी काम नहीं करती थी।
0: अच्छा, तो आप जैसे तीन भाई बहन थे, आपस में कैसे रहते थे?
1: आपस में अच्छे रहते थे हम।
0: कभी झगड़ा होता था? खट्टी मिट्टी तकरार कहते हैं ना, होती थी?
1: नहीं, हम पहले से ही, मेरी माँ पहले से ही एकदम मना आनंदी स्वभाव की थी, इसीलिए हम भी कुछ भी हो जाए आनंदी रहते थे ऐसे।
0: बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपके माताजी खुश मिजाज रहते थे तो आप भी हमेशा खुश मिजाज ही रहते थे।
1: हाँ, मेरे को भी ऐसे बिलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं था, बिंदास रहने का ही स्वभाव हमारा।
0: अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई की आपने?
1: 11वीं हुई है, वो पुणे में हुआ।
0: अच्छा, वो पुणे में, तो क्यों कोकण में पढ़ाई नहीं थी?
1: कोकण में नहीं की, हम बचपन पूरा हुआ और पुणे में ही आए, तो मना बात का जीवन हमारा पूरा पुणे में गया।
0: बचपन आपने कोकण में बिताया। हाँ। और उसके बाद आप
1: पुणे में आए?
0: जी।
1: क्योंकि हमारा पिताजी किर्लोस्कर प्रेस पुणे में है ना, इसीलिए हम पुणे में आए।
0: अच्छा, आप कितने साल के होंगे और पुणे में आए?
1: 7 साल की।
0: अच्छा, तो फिर कोकण की तो आप याद ही भूल गए होंगे।
1: नहीं, में कोकण की अच्छी तरह से याद है हमको, बहुत अच्छा लगता था कोकण भी और पुणे में भी।
0: बीच बीच में आना जाना होता था पुणे से कोकण?
1: हाँ, कभी जाते थे, कुछ हुआ तो बीच बीच में।
0: अच्छा, और पुणे में आपने फिर पढ़ने, मतलब पढ़ाई की शुरुआत आपकी पुणे में हुई या कोकण में भी जाते थे स्कूल?
1: नहीं, स्कूल में कोकण में नहीं जाती थी, पुणे में ही जाने लगी।
0: अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ और आपको क्या क्या शौक था? उस समय आप कौन सा खेल खेला करते थे?
1: खेल से हम आजकल के जमाने जैसा नहीं, बच्चे बच्चिया सब इकट्ठा खेलते थे हम बिंदास। मना हमारा पेशवे कालीन वाड़ा था, 3-4 मजली, तो उसमें हम रहते थे ना, तो सब इकट्ठा खेलते थे, ताश खेलने का खेलते थे और सब लुका छुपी क्या बोलते हैं ऐसा खेल खेलते थे हम।
0: अच्छा, और वो कहते हैं कि कभी कभी खेल खेल में कभी झगड़े भी हो जाते, तो ऐसा भी होता था? खेलते खेलते कभी कोई जीत गया कोई हार गया तो झगड़े हो जाते, तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ?
1: झगड़े नहीं, ऐसे सब अच्छे थे।
0: अच्छा, और स्कूल में आपने पढ़ाई की, वहाँ पर कैसा माहौल था, कैसा माहौल मिला आपको?
1: पढ़ाई पहले मैं 2-3 बरस मना म्यूनिसिपल स्कूल में नजदीक था ना, पुणे से आई थी तो वो मालूम नहीं था मेरे को भी, तो नजदीक थी इसीलिए म्यूनिसिपल स्कूल में रही थी 2-3 बरस, तो उधर इतना अच्छा माहौल नहीं था, हमारे टीचर विचर बेकार थे, मना वो लड़कियों पर नजर विजर ऐसा होता था म्यूनिसिपल स्कूल में, तभी टीचर अच्छे नहीं होते थे।
0: अच्छा, फिर बाद में क्या किया, स्कूल चेंज किया?
1: बाद में लड़कियों के स्कूल में जाने लगी मैं, मेरे पिताजी को बोली मैं इसमें ये स्कूल में नहीं रहेगी, मेरे को दूसरे स्कूल में जाना है, तो लेडी स्कूल में जाने लगी मैं।
0: अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे आप?
1: पढ़ाई में मना ठीक था, ऐसे 5 नंबर के अंदर ही आते थे।
0: तब तो होशियार थे आप, टॉप 5 में आते थे आप।
1: हाँ,
0: बहुत अच्छी बात है। और उस समय तो थोड़ी सी भी पढ़ाई करो और जॉब मिल जाती थी, तो आपके भी सर्विस का ऑफर आया आपको भी?
1: सर्विस जाती थी।
0: अच्छा, सर्विस की थी।
1: हाँ।
0: चलिए, सर्विस की बात जरूर करेंगे कि कब से आपने शुरू की, परंतु अभी चल रहा है कि जैसे आपने बताया कि टॉप 5 में आप आते थे, और भी कोई एक्टिविटीज होती थी आपके स्कूल में, जैसे खो खो है, कबड्डी? हाँ, है
1: खेल बिल पीटी ऐसा होता था, लेजिम बिजिम सब सिखाते थे हमको।
0: तो आप भी रहते थे?
1: हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता था लेजिम बिजिम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कंपटीशन में आप रहते थे, गीत संगीत कविता वगैरह डांस वगैरह में भी आप रहते थे?
1: हाँ, गाना बिना खेलते थे हम,
0: गाने का शौक था आपको?
1: हाँ, गाना बिना गाती थी।
0: किस तरह के गाने आप गाते थे?
1: कौन सा भी गाना हो मेरे को अच्छा लगता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भजन या राष्ट्रगीत ऐसे अच्छे लगते थे मेरे को पहले से। पढ़ने का भी शौक था, बहुत छोटी छोटी किताबें मैं पहले से ही पढ़ती थी।
0: तो राष्ट्रीय गीत आप सुनाते थे?
1: हाँ, मैं भी सुनाती थी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप घर पर अपने मम्मी को किस तरह हेल्प करवाते थे, घर के कामों में हेल्प करवाते थे?
1: नहीं, इतना नहीं, घर में काम करने को मेरे को इतना ये नहीं था, खाली सफाई थोड़ी करती थी। मेरी मम्मी मजबूत थी, वो हमको देती ही नहीं थे ऐसे काम, स्वयं करने का उसको शौक था। और मेरे को सहेली या बाहर खेलना ऐसा अच्छा लगता था।
0: अच्छा, खेलना अच्छा लगता था?
1: हाँ, खेलना, थोड़े बड़े होने के बाद बातें करना अच्छा लगता था, उसमें समय जाता था। और पढ़ाई भी हम सहेलियों के साथ ही करते थे, कभी हम उनके घर में जाते थे, वो हमारे घर में आते थे ऐसे।
0: तो चलिए मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, परंतु अभी समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं, आपकी उम्र 74 वर्ष की है, काफी अनुभवी हैं, इनके अनुभव हमने सुने भी हैं और भी सुनेंगे, परंतु एक गीत के बाद। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: नमस्ते डॉक्टरनी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है? डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है, सोनोग्राफी। मगर क्यों? लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे। मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू, क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो ना।
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने। देखिए, भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
2: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
3: वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। शरावती जी महाजन, जो आबू तलेटी के रहने वाले हैं और आपकी उम्र 76 वर्ष की है, आपकी बचपन की बातें हमने सुनी थी और भी सुनेंगे। चलिए तो मैडम, आपका पुनः स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में। थैंक यू। आपके बचपन की बातें चल रही थी, आपको कैसा लग रहा है आज आप 76 वर्ष के हैं और बचपन की बातें जो आपको ताजा ताजा याद आ गई और जो बातें आप कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको?
4: हमको बचपन तो बहुत अच्छा ही, किसी को भी लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा गया बचपन।
3: जी जी, तो आपको हर एक एक्टिविटीज में रहने का शौक था, है ना?
4: हाँ, बहुत एक्टिविटीज थी, गाना गाना और दूसरों को खुश रखना और हम भी खुश रहना।
3: क्या बात है, बहुत खूब। तो अच्छा, आपको गाना गाने का शौक था, तो आप दो लाइन सुनाएंगे?
4: हाँ, ये मैंने खुद किया है तैयार गाना, वही गाती हूँ।

0: अच्छा, तो आप मराठी में गाते थे है ना, और मराठी में बनाते भी थे।
1: हाँ,
0: तो ये जो दो लाइन आपने सुनाई है इसका अर्थ क्या है?
1: उस टाइम बालक वर्ष था ना,
0: अंतरराष्ट्रीय बालक दिवस।
1: हाँ, तो मेरे पोते को ये मैं लिख के दिया था और ये गाने के ऊपर उन्होंने कार्यक्रम भी किया था स्कूल में उसके।
0: अच्छा, बहुत खूब। तो पढ़ाई आप करते थे उस समय भी गीत बनाते थे?
1: नहीं, तभी इतना खेलने में टाइम जाता था।
0: अच्छा, और बोले हुए गीत गाते थे?
1: हाँ, टाइम मिलेगा तभी गाने बोलते थे या बनाते थे ऐसे।
0: जी जी जी। और आपके अंदर ऐसी क्या विशेषता है जो मतलब सभी पसंद करते हो?
1: माना ऐसे अच्छा अच्छा आइटम किचन में बनाना, हमारे मोदक उकड़ी के मोदक बोलते हैं, उकड़ बना के उसके मोदक करते हैं, वो हमको अच्छे आते थे। केक भी बनाती थी।
0: क्या बात है, ये सब शादी के बाद शुरू किया या पहले ही बनाते थे आप?
1: पहले से भी बनाती थी। पूरी पूरी हमारी प्रसिद्ध है, वो भी आती थी।
0: तो आपने अपने मम्मी से सीखा?
1: हाँ, मम्मी से सीखा।
0: अच्छा, कितने साल के थे और आपकी शादी हुई?
1: 21 बरस की थी तभी मेरी शादी हुई।
0: और आप कह रहे थे कि आपने जॉब भी की, तो जॉब आपने कब की? 10th की पढ़ाई के बाद शुरू की या कब की आपने?
1: शादी के पहले ही की थी।
0: हाँ, तो स्कूल में की? टीचर बने थे आप?
1: नहीं नहीं रेडियो का पार्ट बनाने की कंपनी थी उसमें की थी, और उधर भी हमको अच्छे सब मिले थे, माना कर्मचारी सब बहुत अच्छे थे।
0: कितने समय तक की आपने नौकरी?
1: 2 बरस तक की।
0: अच्छा,
1: और 400 रुपए था, लेकिन तभी तो बहुत माना इसको मूल्य था।
0: 400 रुपए
1: मैंने शादी के लिए आधा खर्चा मैंने ही किया था।
0: जी जी जी। आज आप 76 साल के हैं और बात है आपके कम से कम 60-65 साल पहले की, है ना, क्योंकि आपका

0: बचपन की बातें चल रही है, तो आप 15 साल 17 साल के बाद आपने सर्विस की होगी, 18 साल के बाद, तो इतने समय पहले 400 रुपए की बहुत कीमत हुआ करती थी।
1: बहुत कीमत थी तभी, सोना 140 रुपए है तोला। तोला
0: जी, बहुत सस्ता था उस समय। तो बहुत अच्छा है, आपने फिर जॉब क्यों छोड़ी, जब इतनी अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी थी, फिर आपने क्यों छोड़ी?
1: शादी के बाद हम बम्बई में आए ना, इसीलिए पुणे छोड़ना पड़ा।
0: अच्छा, शादी के बाद भाई कि अब बॉम्बे रहना है तो फिर कोई फायदा नहीं जॉब करने का,
1: तो छोड़ के बम्बई में आई। उसके बाद हम नहीं कर सके क्योंकि बम्बई में पहली बार आई ना, तो कुछ भी मालूम नहीं था।
0: शादी करके आप बॉम्बे में आए, तो आपके ससुराल बॉम्बे में?
1: नहीं, ये बम्बई में नौकरी करते थे, ससुराल हमारा कोकण में ही था।
0: अच्छा, वापिस कोकण चले गए।
1: हाँ, इसीलिए बम्बई में सब बात का जीवन
0: अच्छा, तो फिर आप कोकण से, आपके हस्बैंड की जॉब बॉम्बे थी इसलिए आप
1: गया।
0: बॉम्बे आ गए। तो क्या जॉब करते थे आपके हस्बैंड?
1: रेलवे में नौकरी थी उनको। हाँ,
0: अच्छा, परिवार के साथ रहे आप कोकण में कभी?
1: बीच बीच में जाते थे ना, तो परिवार हमारा अच्छा था, सास भी अच्छी थी। आम के दिन में हम हमेशा जाते थे, तो आम भी हमारे लिए अच्छे अच्छे रखती थी, तो बच्चियों को भी और हमको भी अच्छा लगता था।
0: कितना बड़ा परिवार था ससुराल में?
1: ससुराल में था लेकिन वो अपने अपने घर में ही था ना, एक देवर खाली था, सास थी और इनके बड़े भाई की 2 बच्चियां थी। वो हमारी सास देवरानी उस माना बच्चियों की माँ बचपन से ही गई, तो वो दोनों हमारे साथ संभालती थी। एक अच्छी थी और एक थोड़ा सिर पर परिणाम था। वो अच्छी एक थी, वो उसको हम पति को बोले कि हम उसको ले जाएंगे और उसका शिक्षा सब अच्छा करेंगे, तो हम उसको लेकर बंबई में आई और उसका एजुकेशन, बाद में थोड़े दिन नौकरी करती थी।
0: बेटियों को लेके आए?
1: हाँ, उसके देवर के बेटी को लेके आई, क्योंकि सास को दोनों दोनों संभालना जमता नहीं था ना, इसीलिए लेके आई और उसकी शादी भी हमने की।
0: अच्छा, तो देरानी कहाँ गई आपकी?
1: ऑफ हो गई
0: अच्छा, भगवान को प्यारी हो गई,
1: बचपन से, ऑफ हो गई थी।
0: अच्छा, बेटियों को जन्म देने के बाद।
1: इसीलिए मैं उसको पालना दी।
0: जी, आपके कितने बच्चे?
1: मेरी 2 बच्चियां है।
0: जी, आपके 2 बेटियां हैं और एक बेटी हो, 3 बेटियां आपके हैं। और फिर जैसे कि आपके देरानी नहीं है, खाली देवर आपके गांव में रहे और आपके सास ससुर आपके साथ रहते थे या कोकण में ही रहते थे?
1: नहीं, कोकण में ही रहते थे बाकी सब।
0: बीच बीच में आप जाते थे।
1: हाँ,
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैडम, आपसे और भी बातचीत करेंगे, फिर से समय हो चला है गीत सुनने का, तो सुनेंगे एक गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम, और शरावती महाजन हमारे साथ बने हुए हैं। आप काफी अनुभवी हैं, 76 वर्ष के आप हैं, और काफी आपके जीवन के अनुभव रहे हैं, हमने भी सुने हैं और भी सुनेंगे। तो मैडम, आप बॉम्बे में, मतलब तीन बेटियां, आप सभी कैसे रहते थे और किस तरह आपने शिक्षा और संस्कार दिए अपने बच्चों को?
3: मैंने मेरी बेटियों को, दोनों बेटियों को और मेरे देवर की लड़की को, तीनों को बहुत अच्छे संस्कार दिए और अच्छे अच्छे कपड़े भी सिलाती थी उन्हों को, वो भी बहुत अच्छे संस्कार वाली हो गई।
2: अच्छा, और कपड़े आपको सिलाई, कढ़ाई, बुनाई इन सब का भी शौक है ना? तो आप क्या क्या करते थे घर में?
3: हम घर में सब थैलिया, पर्दा, ऐसे बच्चों का थोड़ा सा कपड़ा भी सिलाती थी। मना हमने कोर्स किया था
2: सिलाई का।
3: हाँ,
2: कहाँ, बॉम्बे आने के बाद या पुणे में ही?
3: पुणे में ही किया था।
2: अच्छा, तो और क्या सिल लेते थे आप, और क्या सिलाई करते थे? बच्चों के कपड़े वगैरह भी आप ही सिलते थे?
3: हाँ, आती थी, छोटे छोटे कपड़े होते थे तभी मैं सिलाती थी।
2: अच्छा, कभी आपने मॉल की सिलाई भी की, दूसरों के भी सिले?
3: नहीं, दूसरों के नहीं की, घर में ही सबका टाइम जाता था।
2: जी जी, और कढ़ाई बुनाई में क्या करते थे आप?
3: कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा आता था, इतना नहीं किया है।
2: अच्छा, आपको भजनों का बड़ा शौक है, तो सत्संग में जाते थे आप?
3: हाँ, मेरे बाजू वाली और हम भजन के क्लास में रोज जाते थे।
2: तो पूरे आपका ग्रुप था?
3: हाँ, मना उनका ही ग्रुप था, उसमें हम दोनों जाती थी। तो हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, मना शास्त्रोक्त गाना, भजन गीत सिखाते थे हमको।
2: आप सीखने जाते थे या सत्संग करने जाते थे?
3: सत्संग नहीं इतना किया हम।
2: अच्छा, तो आप गीत संगीत सीखने जाते थे?
3: हाँ, सीखने के लिए जाती थी मैं।
2: तो उस समय क्या फीस लेते होंगे?
3: अच्छे अच्छे भजन गीत उसने सिखाए हमको, हमने लिख भी दिए सब।
2: अच्छा, तो फीस लगती होगी ना?
3: फीस थोड़ी सी थी, 100 रुपया ऐसा कुछ था।
2: अच्छा, तो मतलब तीन बच्चों का काम करना, फिर आपके हस्बैंड का भी काम करना, पांच जनों का काम करने के बाद भी आपको समय मिलता था?
3: दोपहर का टाइम मिलता था ना, तब भी जाते थे, एक घंटा होता था तब भी जाती थी।
2: अच्छा, तो कितने समय तक आप गए इस तरह सीखने के लिए?
3: एक दो बरस तक गई।
2: एक दो साल तक आपने गीत संगीत सीखे?
3: हाँ, भजन गीत अच्छा लगता था ना, तो मैंने मना सीख लिया ऐसे।
2: अच्छा, तो कभी आपने फिर गाया भजन, जैसे आप सीखे साल दो साल, उसके बाद कभी आपको गाने का अवसर मिला?
3: हाँ, ऐसे कभी मिलता था तभी गाती थी।
2: अच्छा, तो फिर तो आप, वो कहते हैं ना कि साल दो साल अगर हम क्लास करते हैं तो काफी परफेक्ट हो जाते हैं, तो आपके भजन सभी पसंद करते होंगे फिर तो?
3: हाँ, भजन गीत मेरे को बहुत अच्छे लगते, भीमसेन जोशी ऐसे अच्छे अच्छे गीत वाले के गीत भी मेरे को अच्छे लगते हैं, लेकिन मराठी में, हिंदी में नहीं था ना।
2: अच्छा, मराठी में सीखा आपने?
3: हाँ, मराठी में सीखी ना, ज्ञानेश्वर, पंढरी का विठोबा, इसके ऊपर सब गीत थे, तुकाराम महाराज।
2: अच्छा, पर सारे मराठी में।
3: हाँ,
2: तो वो कहते हैं कि जब हम गीत संगीत सीखते हैं तो खुद का भी अनुभव बढ़ता है और हम खुद भी बनाते हैं। तो जैसे आपने दो लाइन तो बोली थी कि आपने ही बनाई, इसके अलावा भी आपने बनाए होंगे गीत संगीत?
3: संगीत ऐसे बनाए नहीं है मैंने, गाने को अच्छा लगता था।
2: अच्छा, गाना अच्छा लगता था, लेकिन आपने कभी बनाया नहीं?
3: नहीं,
2: कभी कोशिश नहीं की?
3: नहीं, याद भी नहीं है।
2: अच्छा, आप कह रहे थे आपके तीन बेटियां हैं, तो बेटियों को भी आपने पढ़ाया तीनों को?
3: ज्वेल एक थे तो मैं मराठी पढ़ाती थी उसको, वो कर्नाटक की थी ना, मद्रासी थी, तो उस समय मराठी विषय स्कूल में था, तो उसके बेटी को मैंने मराठी पढ़ाया है।
2: अच्छा, पड़ोस की बेटी को?
3: हाँ।
2: और आपने अपनी तीनों बेटियों को कहाँ तक पढ़ाई कराई?
3: बड़ी वाली बीकॉम हो गई और छोटी वाली 13वीं तक गई और बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, ऐसा क्यों? बड़े वाले ने जब बीकॉम पूरी कर ली तो छोटे वाले को भी तो पूरे करनी चाहिए ना, डिग्री तो पूरी लेनी चाहिए।
3: अध्यात्म में बड़ी गई ना, तो इसको भी जाना था इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी।
2: अच्छा, अध्यात्म में इंटरेस्ट आ गया था इसलिए?
3: सबको, हमको सभी को अध्यात्म में इंटरेस्ट था।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि जीवन में हम घर का काम काज करते हुए अध्यात्म को अपनाते हैं, सत्संग को अपनाते हैं, तो अच्छा ही है ना, हमारी श्रद्धा अच्छी बनी रहती है, हमारे विचार अच्छे चलते हैं। तो मैडम, आपने बेटियों को किस तरह की शिक्षा और संस्कार दिए?
3: बेटियां भी अपने आप ही सीखी मेरे से ही, तो वो भी मना अच्छे संस्कार वाली निकल गई और अध्यात्म में आगे गई।
2: जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। और शादी भी करवाई होगी बेटी की?
3: हाँ, एक बेटी ने शादी की, एक ने नहीं की, बड़ी ने।
2: जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे आपको भजन में इंटरेस्ट था, आपने सीखा भी, इस तरह बेटियों को भी अलग से कोई कोर्स करवाया?
3: हाँ, उन्होंने दोनों को गाने के क्लास में डाला था, तो गाना दोनों को भी पसंद है इसीलिए, और छोटी वाली को डांस भी सीखी है।
2: अच्छा, डांस क्लास भी करवाया आपने?
3: हाँ, और बड़ी छोटो दोनों को गाने के क्लास में भी जाती थी।
2: अच्छा, और आपकी तीसरी बेटी, आप कह रहे थे देवर की बेटी, उसने भी किया?
3: नहीं, उसने नहीं किया।
2: अच्छा, उसकी शादी हुई या क्या हुआ?
3: शादी की उसकी, और अच्छी तरह से रहती है। ऐसे हमने बहुत जनों के शादियां भी की है। मेरी एक मौसी की लड़की की, एक हमारा पहचान गांव में रहते थे ना, तो उसमें गांव में लड़के अच्छे अच्छे मिलते नहीं थे मना शादी के लिए, तो हमको पत्र लिखती थी कि हमको भी उधर देखो, तो मेरे एक लड़की को मना मौसेरी बहन को लाया, उसकी शादी की। दूसरी ने भी फोन किया उधर देखो, तो दूसरी की भी लाया और शादी की। मेरे भाई को भी पूना से बम्बई लाया, उसको मना नौकरी लगवाई, उसकी शादी भी हमने ही की। ऐसे बहुत जनों के शादियां भी की है।
2: क्या बात है, बहुत आपने दुआओं का काम किया, बहुत सेवा की लोगों की।
3: हाँ, दुआएं तो होती ही है पीछे।
2: तो जैसे आपने इतना सपोर्ट किया सभी का, तो सभी खुश तो हुए होंगे ना?
3: हाँ, मेरे से सभी खुश है, मेरा कोई शत्रु नहीं है।
2: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मैडम। आपसे और भी बात करेंगे, परंतु समय हो चला है एक ब्रेक का, तो ले लेते हैं एक ब्रेक, पुनः लौट करके आ रही हूँ। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन

0: हॉबी होने के कारण बेकरी आइटम मैं अनेकों को मेरी ये कला का लाभ दे सकी, आज भी दे रही हूँ। और बाकी जो है जैसे सिलाई होती है या कोई चीज का जैसे गाना होता है, तो ये हमको फंक्शन होता है उसमें प्रोत्साहन देने में काम आता है। सिलाई होती है तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम अपना छोटा मोटा काम जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी ये सदैव इच्छा रही कि मैं खुद भी करती हूँ और दूसरों को भी मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ कि अपने जीवन में पढ़ना जरूरी है, पढ़ करके दूसरों को बनाने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो हमको देख करके और 10 जन बने, ऐसा जीवन ना हो कि हमको देख करके 10 लोग भी बुराई की तरफ जाए, ऐसा नहीं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है, तो ये लक्ष्य मेरा रहा।
1: क्या बात है, बहुत खूब तेजश्री जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत स्वयं को भी सीखने को मिला। और जैसे आप दो बहनें हो, फिर एक आपके अंकल की लड़की भी है, फिर आपके मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी है, तो अभी आपकी एज क्या होगी?
0: मेरी एज अभी 55 चल रही है।
1: 55 के आप क्या बात करते, लगते नहीं है। और आपने भाई शादी नहीं करने का जो फैसला लिया है वो इन्हीं वजह से लिया या आप बताएंगे?
0: जी देखो, ये शादी एक जिम्मेवारी, शादी यानी जिम्मेवारी, शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जिम्मेदारी को महत्व देती हूँ। तो हम दो बहनें हैं और छोटी बहन की शादी हो गई है, तो मदर फादर को कौन संभालेगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, भगवान ने मुझे दिया है, ऐसा मैं समझती थी और इसी वजह से मैंने शादी नहीं की। लेकिन जैसे शादी होती है ना, तो एक नया परिवार से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन इसके वजह से मना शादी के हिसाब से नहीं, लेकिन शादी ना करके भी मैं बहुत बड़े परिवार से जुड़ी हूँ, पूरा विश्व मेरा परिवार है और ईश्वर मेरा साथी है, तो बस हम इसलिए मदर फादर को साथ रख करके अपना जीवन बहुत ही आनंद से गुजार रहे हैं।
1: जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी सोच है आपकी कि आपने अपने माता पिता के बारे में सोचा कि माता पिता की सेवा कौन करेगा, और इस वजह से बहुत सारे कारण जो कि आप ईश्वर में रुचि रखते हैं, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ये भी कारण है, फिर माता पिता की सेवा का भी सवाल है, तो बहुत बड़ा त्याग किया आपने।
0: मुझे तो त्याग तो नहीं लगता है, लेकिन ये लगता है कि लाइफ जीने की कला हमेशा सीखते रहना चाहिए और ये सीखना कभी भी बंद नहीं होगा, अंतिम सांस तक ये सीखते रहना है और सीखते रहना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है।
1: बहुत खूब, बहुत सुंदर लक्ष्य है। और तेजश्री जी, जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु सुन रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको आप अपने जीवन के अनुभव से क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने अपने माता पिता की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली, बड़े प्यार से आप सभी के साथ रहते हैं, तो क्या कहेंगे आप समाज में?
0: एक समाज का एक छोटा सा हिस्सा मैं खुद होने के कारण मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि समाज में हम रह रहे हैं, ये अवेयरनेस, ये जागृति हमको जरूर होना चाहिए कि हम जो करते हैं उसका असर हर चीज का समाज के ऊपर पड़ता है, फिर चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो। तो हमको हमेशा ये लक्ष्य रहना चाहिए कि हमको अच्छा ही करना है ताकि हम भी अच्छे बने और हमको देख करके भी दूसरे अच्छे बने। बुरा करो, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप किसी का बुरा कर सकते, किसी को मार सकते, कुछ भी कर सकते, लेकिन भोगना तो आपको ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम जो कर्म करेंगे वही हमारे साथ जाएगा। दुनिया वालों का किसी का बुरा नहीं होगा, मेरा खुद का बुरा होगा, इसलिए मेरे को ये सदैव याद रहता है कि मुझे जब मैं शरीर छोड़ूंगी यानी भगवान के पास जाऊंगी तो मुझे मेरे अच्छे कर्म के साथ ही जाना है ना, तो ये मेरी सदिच्छा है।
1: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है। चलिए अब हम फिर से मैडम की तरफ चलते हैं। मैडम, आप जैसे बॉम्बे में रहे, पुणे में रहे, पुणे में बड़े हुए, बॉम्बे में आए, बॉम्बे से फिर आबू कैसे आना हुआ?
2: क्योंकि हम बूढ़े हो गए, तो बूढ़े होने के बाद बीमारी वगैरह आई, तो तेजश्री बड़ी लड़की इधर थी इसीलिए हम उसके साथ आए।
1: अच्छा, तेजश्री जी आबू में थे तो आप भी दोनों जने इधर आ गए।
2: हाँ, उसके नजदीक ही जगह ली और इधर आना हुआ।
1: जी जी, तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हो?
2: 2 साल हुए।
1: अच्छा, आबू में अच्छा लगता है आपको?
2: हाँ, आबू तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है।
1: कहाँ आपकी मराठी भाषा, फिर कहाँ यहाँ राजस्थानी भाषा?

0: हिंदी भी हम ऐसे बोलते हैं ना, मराठी तो है ही हमारी भाषा, लेकिन हिंदी में ऐसा सब फर्क नहीं लग, मना द्वंद्व नहीं रखते।
1: जी जी जी, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है और हाँ, ये भाषा सब जगह चलती है।
0: हाँ, सब जगह चलती है ना, इसीलिए ऐसा कुछ लगा नहीं मना।
1: अच्छा माता जी, लास्ट में आपसे इतना सा पूछना चाहूंगी कि 76 वर्ष के सफर में विशेष आपको क्या अनुभव हुए, आपको क्या सीखने को मिला जो हमारे समाज को आप प्रेरणा दे सकते हैं?
0: हमको प्रेरणा मिली कि हम कुछ स्ट्रांग रहना चाहिए, माताएं होके भी हम पुरुष के जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही पुरुषों ने महिलाओं को द्वितीय स्थान दिया है, लेकिन अभी वो समय रहा नहीं है, इसीलिए हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। अब स्ट्रांग रहने के साथ भी हमको अच्छा भी रहना चाहिए, हमको आनंदी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो दूसरे भी हमको मान देंगे और स्वयं भी खुश रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया है कि महिला है तो क्या हुआ, महिला होने के बावजूद भी हम स्ट्रांग रह सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया है, हमारी माताएं बहनें सभी सुन रही हैं, जरूर आपके मैसेज पर गौर करेगी। और अब आपसे मैं अनुमति चाहूंगी, बहुत ही सुंदर आपने जीवन के अनुभव दिए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू, आपको भी धन्यवाद।
1: तो शरावती महाजन, जिनका सुंदर सा नाम है, काफी आपने देखे पढ़ाई भी अच्छी की है और जीवन के अनुभव भी काफी शेयर किए हैं, लेकिन परिवार के साथ मिलजुल कर रहना, और जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे परिवारों की शादी भी आपने करवाई है, तो इतने जनों का आपने सपोर्ट भी किया, और हर कार्य करना, सीखना और बच्चों को सिखाना, उमंग उत्साह में लाना, जॉब करना, कहते हैं कि नारी कहीं पर भी हारती नहीं है, हर परिस्थिति में कड़ी होती है, चाहे अच्छी परिस्थिति हो चाहे विपरीत परिस्थिति हो, खुद को कैसे ढालना, एक नारी शक्ति को आना चाहिए जो आपने बखूबी निभाया है। तो ऐसी नारी शक्ति को, ऐसी मातृशक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहती हैं, तो हमारे नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हो। अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी, अगले रविवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

थिंग्स दैट कैनॉट बी इरेज्ड फ्रॉम योर हार्ट। इसलिए लौट आई हूँ फिर से कार्यक्रम गुलदस्ता में, जो गीत हमारे दिलो दिमाग पर बरसों से हैं, जिसे हम मिटा नहीं सकते, उन्हीं गीतों को नए अनोखे अंदाज में आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर फिर से आपका मनपसंद दिल पसंद कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं स्वर्णलता। हमेशा नए अनोखे अंदाज में उड़ती रहती हूँ आपकी खातिर। तो रेडी है ना आज के सफर पर हमारे साथ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सुनते हुए मुस्कुराते हुए। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीवन में हर अनुभव एक दर्पण है जो आपकी आत्मा के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: कुछ अलग, कुछ खास, कुछ अद्भुत सुनने के लिए आपको ट्यून करना होगा रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। और मैं हूं स्वर्णलता। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट कार्यक्रम गुलदस्ता। आज गुलदस्ता कार्यक्रम में हम हैं बिल्कुल बेफिक्र मूड में। आप भी बेफिक्र हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम पुराने गीतों के नए रूप को देखने के लिए आप सभी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं। आइए इस कार्यक्रम में, डोंट मिस द शो। वन एंड ओनली स्वर्णलता के साथ आप बिताएंगे पूरा एक घंटा। इस एक घंटे के सफर को यादगार करते हैं हम दोनों मिलकर। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आप सुन रहे हैं नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में। वैसे हमारे पुकारने पर आप चले आते हो रेडियो मधुबन पर, ट्यून इन करते हो और फौरन हाजिर हो जाते हो, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और आपसे आज एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं और मन ही मन मैं इसे पढ़ भी लूंगी, क्योंकि आपके भाव रीच हो जाते हैं, शब्दों से पहले भावनाएं पहुंच जाती हैं, है ना। तो ओरिजिनल बॉलीवुड क्लासिक्स को आज एक अनोखे अंदाज में सिंगर पेश कर रहे हैं, उसे एक रीइमेजिन्ड तरीका दिया जा रहा है, उसे नव कल्पना का रूप दिया जा रहा है। तो इस नव कल्पना को आप कैसे स्वीकारते हैं, स्वीकारते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आपको किसी भी गीत का ओरिजिनल वर्शन ही पसंद है, क्या ख्याल है आपका? सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: पुराने गीतों को अगर कोई अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में गाए या उसमें कोई चेंजेस लाए म्यूजिक में, क्या आपको पसंद है? आपको पसंद है ऐसे चेंज्ड वर्शन को सुनना? तो आज के कार्यक्रम में उन लोगों को शामिल होना ही पड़ेगा जो ऐसे स्टाइल को पसंद करते हैं, अपना लेते हैं तुरंत। किसी की क्रिएटिविटी को तुरंत जो अपना लेते हैं वह सहज ही अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। और अगर कोई एक ही वस्तु के साथ लगाव लगाए बैठा रहता है तो कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद वह पीछे अपने आप को पाता है, वह कतार में अपने आप को पीछे पाता है क्योंकि वह आगे बढ़ नहीं पाता। हमें कई बार ऐसे चेंजेस को अपनाने पड़ते हैं

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: बॉलीवुड ओल्ड म्यूजिक को, ओल्ड मेलोडीज को सदाबहार गीत भी कहे जाते हैं। अब इन सदाबहार गीतों के जो ओरिजिनल वर्शन है उनका न्यू वर्शन आ चुका है। सभी अपने अपने अंदाज में इसे गाते हैं। ओरिजिनल वर्शन का एक अनोखा अंदाज भी है जो अपने अनोखेपन को दर्शाते हैं इन गीतों के नए वर्शन में। तो आप सब इन्हें सुन रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। हमारा तो इस कार्यक्रम का यही लक्ष्य रहता है कि कुछ ना कुछ नया आपको दे और उस नएपन को आप दिल से कबूल कर ले। तो बने रहिएगा अंत तक आज के प्रोग्राम में भी हमेशा की तरह, क्योंकि आपका वादा है हमारा साथ हमेशा निभाएंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

साथियों, संगीत प्रेमियों का कहना है कि ओल्ड मेलोडीज का अपना ही एक दौर था, वह दौर कभी वापस आ नहीं सकता। पर हम कहते हैं कि आज की जनरेशन भी ओल्ड मेलोडीज गा रही है, और आज की जो जनरेशन है उसमें कुछ जो म्यूजिक लवर्स हैं, इन पुराने गीतों को एक अनोखे अंदाज में पेश कर रहे हैं। वह भी सही है, इससे नयापन आ जाता है, और नयापन कौन नहीं चाहता साथियों, है ना। हर चीज में तो नयापन हम ढूंढ रहे हैं, तो इसमें भी सही। री इमेजिन्ड न्यू वर्शन आज आप सुन रहे हैं इन सदाबहार गीतों के। तो आप बताइएगा आपको ये गीत कैसे लग रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे भी हमें बता सकते हो। आप व्हाट्सएप करके भी बता सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो। तो ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक के आधुनिक वर्शन आपके लिए रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम गुलदस्ता में। तो अभी बैक टू बैक दो गीत हम सुनने वाले हैं।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: कार्यक्रम गुलदस्ता में आज हम पुराने गीतों के, पुराने दौर के जो सदाबहार गीत हैं, उन गीतों के नए वर्षन हम सुन रहे हैं, जिसको रीमेक वर्षन भी कहा जाता है। और अभी हमने दो गीत बैक टू बैक सुने,

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने वो छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है, अपने क्यूट बॉय को देखती है।

0: अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बना कर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉरएवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।
1: 4 दिन की जिंदगी है, हंसते गाते चलता चल, 4 दिन की जिंदगी है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाते हुए आगे चलता चल, 4 दिन की जिंदगी है, मुस्कुराते हुए हर लम्हा बिताते हुए आगे बढ़ता चल। फ्रेंड्स, आज स्वर्णलता को जाने की इजाजत दीजिए। उम्मीद है आपको आज के कार्यक्रम के सारे गीत बहुत पसंद आए होंगे, और ऐसे ही गीतों को हम लेकर आएंगे। और जाते जाते आपको यही कहना चाहूंगी कि इमेजिनेशन इज द मदर ऑफ ऑल न्यू क्रिएशन। अगर आपको कुछ नया करना है, कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए कल्पना शक्ति की बहुत आवश्यकता है। कंप्लीट एकांत की स्थिति एक आनंददायक स्थिति है, जब कुछ नया अपने आप दौड़े चला आता है, और इस कल्पना शक्ति के लिए एकांत की स्थिति की भी बहुत आवश्यकता है। तो आनंद लेंगे हम बॉलीवुड हिंदी क्लासिक्स का हमेशा, क्योंकि ये सदाबहार गीत ही हमें कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो आज स्वर्णलता को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह सदाबहार गीतों के साथ, नए नए गीतों के साथ। अब कौन से गीत पेश करने वाली हूँ जरा देखते हैं। बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखे और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

so, so hum. As I was, I will become.

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 24 जून 2026 और आज हम सबकी प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का स्मृति दिवस है। और जैसे ही मम्मा का स्मृति दिवस नजदीक आता है, हरेक के मन में मम्मा के प्रति बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट जागृत हो जाता है। भले अधिकतर ब्राह्मण वत्सों ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को साकार में नहीं देखा, परंतु जो अनुभव सुने हैं दादियों से, उसके आधार पर उनका चैतन्य जीवन चरित्र हम सबके सामने आ जाता है। बाबा तो बाबा था ही, परंतु मम्मा हमारी रियल में मां का साक्षात स्वरूप, जिसमें तीनों ही स्वरूप स्पष्ट महसूस होता था, चाहे वो दुर्गा का स्वरूप हो, लक्ष्मी का स्वरूप हो या मां सरस्वती का स्वरूप हो। और इसीलिए बाबा के ज्ञान को जीवन में जिसने इतना सुंदर तरीके से धारण किया, अपने जीवन के द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बने, कई बाबा के यज्ञ में बहने अगर समर्पित हुई शुरू में, मम्मा के जीवन को देखते हुए, उनसे आकर्षित होते हुए और अपने जीवन का फैसला किया कि जीवन बनाना है तो इन जैसा बनाना है। भावार्थ यही कि मम्मा अनेकों के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत रही। मम्मा का जीवन चरित्र बहुत ही धीर गंभीर वाला, अनेकों को सुख प्रदान करने वाला। कहा जाता कि मम्मा के दृष्टि जब पड़ जाती थी तो अनेक भाई बहने ये महसूस करते थे जैसे कि एक मां का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया, उनकी कृपा दृष्टि से हमारा जीवन निहाल हो गया। मम्मा को ज्ञान के एक एक बात की गहराई इतनी स्पष्ट थी, जो मम्मा की मुरलियों से प्रैक्टिकल झलकती थी। मम्मा खाली ज्ञान का स्वरूप नहीं, परंतु साक्षात बाप समान हर एक चीज की धारणा का प्रैक्टिकल स्वरूप रही। तो इसीलिए आज मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मम्मा का जो ज्ञान की गहराई थी, चाहे वो आत्मा का विषय हो, परमात्मा का विषय हो, कर्मों का विषय हो, कोई भी विषय अगर मम्मा को एक्सप्लेन करना होता तो बहुत स्पष्ट और सुंदर तरीके से उसका प्रेजेंटेशन मम्मा करती रही। तो आज भी मम्मा के मधुर महावाक्य सुनेंगे और ये मम्मा के मधुर महावाक्य अनेक बातों को स्पष्ट करते हुए हम जरूर सुनेंगे। चाहे ड्रामा का ज्ञान हो, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान हो या आत्मा की यथार्थता, परमात्मा का यथार्थ परिचय बहुत स्पष्ट रीति से मम्मा उसको सबके सामने स्पष्ट करती रही। सुनते हैं आज के मम्मा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा मां के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। यह सृष्टि कर्मों का खेत है, सृष्टि कर्म का खेत है,
जहां हर एक मनुष्यात्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। परमात्मा आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्मों का खाता उल्टा नहीं बनता। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूं, इसीलिए मुझे लिबरेटर बंधन से छुड़ाने वाला गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं। परमात्मा आकर आत्मा के बंधन को छुड़ा करके उनको प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम है, कायदे हैं, उन्हें भी समझना है। सृष्टि के नियम और कायदे को भी अच्छी तरह समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, सृष्टि की वृद्धि बढ़ती भी है लेकिन कम कैसे होती है, तो वो भी टाइम आता है जब वो पॉपुलेशन कम होने लगता है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है, प्रकृति का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। इस तरह से मनुष्य जीवन बढ़ता जाता है, बचपन, किशोर, युवा, वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं है, वृद्ध होते होते जड़ीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना ये भी नियम है। जैसे दुनिया के अंदर लोग प्राकृतिक नियम समझाते हैं, लॉज ऑफ नेचर या लॉज ऑफ द यूनिवर्स, इसी तरह आज मम्मा समझा रही है लॉज ऑफ द वर्ल्ड साइकिल, कि ये सृष्टि चक्र का भी एक नियम है और उस नियम से ही वो चलता है। और उस सृष्टि चक्र में भी अनेक नियम है जिस नियम से ही हर आत्मा भी अपना पार्ट प्ले करती है और प्रकृति भी पार्ट प्ले करती है। तो मम्मा कहती है कि हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। इस तरह से सृष्टि के जनरेशंस का भी नियम है। इस सृष्टि चक्र में जो मनुष्य की जनरेशंस है उसका भी एक नियम है, एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों के भी स्टेजेस है, फिर जनरेशंस भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है, इस तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाला है, देवता धर्म सबसे ताकत वाला है। पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सभी बातों को भी समझना है, यानी सारे लॉज को समझना जरूरी है। लॉज ऑफ द यूनिवर्स, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ द वर्ल्ड साइकिल और लॉज ऑफ द जनरेशंस, या धर्मों के भी जो लॉज है, नियम है, उसको भी समझना है कि कैसे एक से बाद एक धर्म आते रहते हैं। तो मम्मा कहे इन सब बातों को समझना है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं, मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूं। शिव बाबा भी एक सोल है, आत्मा है,
मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूं, मैं भी सोल ही हूं, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसे ही हूं। जैसे आपका बच्चा है, वो भी तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें तो कोई फर्क नहीं है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, पशु पक्षियों का पिता पशु पक्षी है, तो आत्मा का पिता भी परमात्मा, वह भी आत्मा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं भी आत्मा ही हूं, आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। फर्क कहाँ है? स्वरूप में नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं, मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूं, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूं, हद की चीज का क्रिएटर नहीं हूं, बेहद इस विश्व के क्रिएटर हूं। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, धर्म स्थापक की आत्माएं जो आती है, वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूं। मेरा कर्तव्य विशाल है, शिव बाबा का कर्तव्य विशाल है, ये बाबा कहते हैं। मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है, इसलिए कहते हैं तेरा काम निराले। उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधन से छुड़ाना, ये परमात्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है? और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना, इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना, हेवनली वर्ल्ड कहते हैं, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया, हेवन का स्थापक परमात्मा हो गया। और उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा ना, परमात्मा को एक तो कहते हैं हेवनली गॉड फादर, उस बात को मम्मा ने स्पष्ट किया। दूसरा, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, तो ट्रुथ क्या चीज है, इसमें ट्रुथ, इस बात में ट्रुथ, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है, गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, परंतु नहीं। अब मम्मा उसको स्पष्ट करती है, ये नहीं कि सच बोलना ही गॉड हो गया, नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रुथ माना ही गॉड ही ट्रुथ बतलाते हैं, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, गॉड नोज, कहते ना गॉड नोज, तो ईश्वर जानता है, तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना, तो वो कौन सी जानकारी है? ये नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज, ये नहीं कि ये व्यक्ति ने चोरी की तो भगवान जानता है, नहीं। मम्मा कहे, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना, वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वह जानता है, चक्र के सारे आदि मध्यंत को जानता है कि कैसे ये दुनिया नीचे गिरी फिर कैसे ऊपर चढ़ती है।
इस चक्र की बातों को वह जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोज, तो भगवान जानता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है, मनुष्य का जानना हद है। कहते भी है मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है, यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उससे हमें क्या फायदा। जानने दो, सबको जानने दो, परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है। मम्मा कहे परमात्मा की जानकारी से भी हमें कोई फायदा मिला है, तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशंस गाते हैं, उसके पीछे पढ़ते हैं, उसके क्वालिफिकेशन गाते हैं, या नहीं उसके महिमा गाते हैं, विशेषताएं गाते हैं, उसके पीछे पढ़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू ही ये कर, खैर कर, तू ही ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है। अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर। कहते हैं उसने बड़ी मुसीबत के समय पर मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो

लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं, तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना। इसलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूं। कर्म के लॉज भी नियम भी हमें बताते हैं, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है, जिसको मम्मा कहती है कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज में बताता हूं। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूं। कर्म को श्रेष्ठ कैसे करना है वो परमात्मा आकर के सिखाते हैं, जिससे फिर तुम्हारे कर्मों का खाता अकर्म रहता है। सतयुग में फिर वो अकर्म बन जाता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता। बाप कहते हैं, मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं, इस साकारी दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। मम्मा कहे, बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए साकारी दुनिया में आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। मम्मा कहे, बाबा की यही चाहना है कि मेहनत थोड़ी करे और अभी कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं कि तुम सिर्फ इतने थोड़े समय के लिए ये मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं। तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है, जितनी प्राप्ति है उसकी भेंट में तो मेहनत कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी, वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो उसे। ये लोग कहते ना, हम ये करेंगे तो जरूर लेकिन दुनिया क्या कहेगी, फलाना क्या कहेंगे। मम्मा कहे, अरे दुनिया तो क्या कहेगी, छोड़ दो इसे, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते उस वेस्टेज को बचाओ, इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहां संभालूंगा। जो तुम्हारी रचना है वो तो तुम्हें संभालनी है, बाबा थोड़ी संभालेगा, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वह तो तुमको फ्री करता हूं, बाबा भी हम बच्चों को उसके लिए फ्री करते हैं, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूं, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है, क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। मम्मा कहे, बाबा बार बार हमें इशारा देता है कि इन फालतू झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो।

झंझटों से तुम कैसे छूटो वही तो तुम्हें बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहां की रीत है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी उंगली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। सीधा अगर हाथ नहीं दिया तो बाबा नाक से पकड़ करके भी ले चलेगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाए खानी पड़ेगी ना। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा। या तो हाथ में हाथ देके चलो, या अगर सीधी तरह नहीं चला तो बाबा कहते हाथ में नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन बिचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है जो बैठ के सुन के फिर उन्हीं बातों में गफलत की तो उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। मम्मा ने तो 10 गुना ही कहा लेकिन बाबा तो हिसाब बताते हैं 1 का 100 गुना। तब कहते हैं अपने नुकसान को घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो यानी बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी है जैसा संग वैसा रंग होता है, इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। कई ऐसे इविल्स है जो यहां भी कईयों को छोड़ते नहीं है, फिर 1-2 के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो, उल्टे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहां नहीं है। नहीं, यहां भी वह घूमते रहते हैं, अंदर भी ऐसे संग दोष वाले हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, इस समय माया का राज्य है, तो माया ने अपने भी बंदे छोड़े हुए हैं। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो, कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्र को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी है जो करता है वह पाता है, ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहां तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहां तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड न करे, कोई गलत फहमी में न आए, इसलिए यह सब समझाया जाता है। तो यह सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहां कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी यह सब खर्चा दूसरे के कल्याण अर्थ ही यूज करना है, एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, फिर प्रश्न पूछा है किसी ने मम्मा से, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित